0: मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
1: भूत?
0: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
2: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
0: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
3: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
0: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा,
2: चलो
0: सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
0: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
3: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
1: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
2: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
5: तुम झूठ बोलते हो।
1: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
2: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग।
8: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
11: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
12: कौन सी कहानी टीकी?
11: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
13: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
11: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
12: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
11: तो

0: उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन. दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हर रोज़ हम कुछ अलग अलग विषय लेकर आते हैं एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ मिलता है इससे, क्योंकि उनकी खेती में आने वाली परेशानियों का हल हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम को सुनकर उन्हें मिल जाता है. तो आज भी एक खास विषय हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, गन्ने की वैज्ञानिक खेती द्वारा आमदनी में आप कैसे वृद्धि करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी. और इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर हरि ओम. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विषय की ओर और जानते हैं कि आज के परिवेश में गन्ने की खेती की क्या उपयोगिता है.
1: जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में पश्चिम चंपारण में 46% गन्ने की खेती होती है, पूर्वी चंपारण में 17%, इसी तरह से हमारा गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये हमारा ज़्यादातर गन्ने का खेती इसी जिलों में होती है. और जैसे अपना ये भागलपुर, बांका, नौगछिया, पूर्णिया, किशनगंज या कटिहार या हम पटना या उसके आगे आरा बक्सर भी जाते हैं, तो इधर बहुत कम ही किसान थोड़ा मोड़ा खेती करते हैं
0: जी,
1: कम ही क्षेत्रफल पे. तो आजकल ये देखते हैं कि हम तुलना जैसे करेंगे, अभी कोविड के बाद से ये देखने को मिला है कि लोग अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं
0: जी.
1: तो गुड़ और चीनी, तो हमारा जो गुड़ होता है उसमें 0.6 से लेकर के 1% तक मिनरल्स होते हैं, जबकि चीनी में हमारा 0.05% हमारा मिनरल्स होता है. तो हम कह सकते हैं चीनी में ना के बराबर हमारा मिनरल है. तो ये हमारा जो मिनरल्स होता है पर्टिकुलरली विशेष तौर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन गुड़ में ज़्यादा होता है, और इसको खाने से प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है. तो अभी हमारा उपभोक्ता का जो है इस तरफ झुकाव हुआ है
0: जी,
1: गुड़ की तरफ. और हमारा जो गन्ना है, गन्ने के ऊपर वाला जो भाग होता है हरा भाग, उसको चारा के रूप में भी उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई.
0: डॉक्टर साहब, और ये भी कहा जाता है गन्ने की खासियत है जैसे गुड़ बनाया जाता है, और ये गुड़ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन वो भी ले सकते हैं, उनसे उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं है
1: जी. बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका. जैसे गुड़ और चीनी में ये अंतर है, गुड़ में जो सुक्रोज होता है वो 65% से 80% तक होता है, लेकिन हमारा जो चीनी होता है उसमें 99.5% हमारा उसमें जो है सुक्रोज होता है
0: जी.
1: तो चीनी के तुलना में हमारा गुड़ में जो है सुक्रोज का मात्रा कम होता है, इसलिए वो खा सकते हैं. इसमें मिनरल्स भी होता है तो वो उनके लिए बेहतर है,
0: लेकिन एक संतुलित मात्रा में खाना चाहिए उन्हें. डायबिटिक पेशेंट जो
1: जरूर,
0: है, इवन जो नॉर्मल लोग भी हैं उन्हें भी एक संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चीनी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. तो आगे

0: बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गन्ने की खेती के लिए, तो इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब?
1: जैसे हम ये जानते हैं कि गन्ना हमारा एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसको उगाने के लिए हमको लंबा गर्म दिन के साथ साथ पर्याप्त वर्षा या हमारे पास सिंचाई का साधन होना आवश्यक है और जो हमारा सूर्य लंबे समय तक जो चमकेगा उसके चमकने की अवधि होगी और सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी तो उससे

0: ने का जो वृद्धि होती है उसका कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और अगर 50 डिग्री से ज़्यादा का ये तापमान अगर चला जाता है ऊपर, तो गन्ने का जो ग्रोथ होता है, शुगर केन का जो ग्रोथ होती है, वो स्टॉप कर जाती है। और तो इस तरह से ये हम देखेंगे कि सक्रिय वृद्धि के समय वर्षा भी एक उपयोगी है ना। जब हमारा गन्ने का एकदम अधिकतम ग्रोथ होता रहता है, उस समय अगर बारिश मिल जाए गन्ने को, तो उससे गन्ने की वृद्धि और बढ़वार और जो इंटरनोड होता है उनके निर्माण में और तेजी हो जाती है। और गन्ना के जो पकने का समय होता है, उस समय 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का उसको ज़रूरत पड़ता है। और पकने के समय बारिश नहीं होनी चाहिए, अगर बारिश होती है गन्ना पकते समय तो उसके गुणवत्ता पर असर पड़ता है, रस की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये नॉर्मली हम देखते हैं कि 7-9 घंटा तक चमकती हुई सूर्य की रोशनी सक्रिय वृद्धि और कल्ले निकलने और पकने में सहायक होती है। और इसके साथ ये जो है तना को मोटा करता है और वो छोटा होता है, पत्ती चौड़ी होती है एवं हरी होती है। तो इस तरह के हम जलवायु में गन्ना को बहुत आसानी से हम लोग उगा सकते हैं।
1: जी, तो ये तो हो गई जलवायु की बात है। और अगर हम अपने बिहार क्षेत्र की बात करें तो इसकी रोपाई हमारे यहाँ यानी कि बिहार में कब कब कर सकते हैं?
0: जी, गन्ने की हमारा रोपाई हम तो कभी भी कर सकते हैं, पर पहले गन्ने का जो ज़रूरत है मिट्टी, किसी भी मिट्टी में हम उगा सकते हैं, और उस मिट्टी में अच्छा जल निकास होना चाहिए। और दोमट मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारा जो पीएच होता है उदासीन होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है तो अच्छा रहता है। अगर मिट्टी हल्की है तब सिंचाई का हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, अगर मिट्टी भारी है तो जल निकास का भी समुचित प्रबंध होना चाहिए। रोपाई का मौसम, जैसे हमारा दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो वहाँ रोपाई नवंबर से लेकर अप्रैल तक करते रहते हैं, पर कुछ इलाकों में जून से अगस्त में भी हम गन्ने का रोपाई करते हैं ना। तो पर जो हमारा बारिश में रोपाई करते हैं वो 12 से 18 महीने का फसल हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो दूसरी भी बारिश देख लेती है तो उसका जो है थोड़ा गुणवत्ता प्रभावित होता है रस का ना। तो और दूसरी तरफ अपने इलाके में नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर बिहार या यूपी इस तरह में, तो हम 3 समय में गन्ने का खेती कर सकते हैं। एक तो जो है शरदकालीन, शरदकालीन का मतलब यह है कि बारिश जैसे हमारा ख़त्म होगा सितंबर अक्टूबर में हम गन्ने का रोपाई करेंगे, तो इस समय क्या होता है कि पर्याप्त नमी होती है और मौसम भी गन्ने के लिए उपयुक्त रहता है, और फसल का जो अवधि होगा थोड़ा लंबी होगी तो उससे हमको उपज अच्छा मिल जाएगा। पर ये शरदकालीन गन्ने की बुआई सिर्फ टोटल जो गन्ने का बुआई होता है उसमें सिर्फ 15% तक ही होता है, क्योंकि अगर इस समय हम गन्ने की बुआई कर देंगे तो किसानों में ये अवधारणा है कि हमारा रबी के फसल का नुकसान होगा, हम गेहूं नहीं ले पाएंगे, आलू नहीं ले पाएंगे, सरसों नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारे किसान भाई शरदकालीन गन्ने को थोड़ा अवॉइड करते हैं। पर इस मौसम में गेहूँ आलू सरसों की अंतर्वर्ती खेती किया जा सकता है शरदकालीन में। दूसरा हम जब करते हैं तो रबी फसल की कटाई के बाद फरवरी मार्च में रोपाई करते हैं, तो ज़्यादातर 80-85% गन्ने का जो रोपाई होता है हमारा इसी महीने में होता है, और थोड़ा और देर में थोड़ा बुआई करते हैं गेहूं के कट जाने के बाद, अप्रैल मई में भी करते हैं, लेकिन अप्रैल मई में जो हमारा बुआई होता है उसमें नमी का तनाव और ज़्यादा तापमान होता है, उससे फसल थोड़ा प्रभावित होती, उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है।
1: जी। और इसके अनुशंसित प्रजातियों के बारे में बता दें।
0: जी, तो जैसे कि हम अनुशंसित प्रजातियों से पहले ये कहेंगे कि जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के तने को हम काट काट के बुआई करते हैं, उसको सेट्स बोलते हैं, तो वो सेट्स का जो है गुणवत्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें रोग कीट या व्याधि ना हो, उसका जो कली होता है आई जिसको बोलते हैं आँख, वो स्वस्थ हो और उसमें अधिक नमी हो, पर्याप्त पोषक तत्व हो, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। और सेट्स को कार्बेंडाजिम 0.1% घोल में उपचारित करके ही सेट्स का बुआई करना चाहिए। और अनुशंसित हमारी जो प्रजातियां हैं बिहार के लिए, इसमें दो तरह की प्रजातियां होती हैं, एक तो जल्दी पकने वाली गन्ने की प्रजातियां और एक जो है देर से पकने वाली प्रजातियां। तो अभी जल्द में ही वैरायटी रिलीज़ हुई है COLK94184, जिसको हम बीरेंद्र कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के लिए अनुशंसित की गई है, जिसका औसत उपज जो है 76 टन प्रति हेक्टेयर है, और इसमें चीनी भी अच्छा पड़ता है, लगभग 9 टन से ज़्यादा का इसका जो है चीनी प्रति हेक्टेयर ये पड़ता है इसमें, और इसकी एक खासियत

0: ये भी है कि ये जलमग्न क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, और इसका रटून जिसको पेड़ी कहते हैं भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरी एक प्रजाति है COLK12207, तो ये भी प्रजाति लगभग 75-76 टन प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन हमको दे देती है, और इसका पेड़ी भी अच्छा होती है। और गन्ने में एक रोग लगता है लाल सड़न रोग, इसके ये प्रतिरोधक क्षमता इसके पास होती है, इसमें कम लगता है। तो हमारी जो दूसरी और प्रजातियां हैं, जैसे देर से पकने वाली गन्ने की प्रजातियां हैं, तो COLK8102 ये जो प्रजाति है ये अच्छा उत्पादन देती है, लगभग 78 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें उत्पादन हो जाता है, और कल्ले भी अधिक निकलते हैं, और पेड़ी के लिए ये प्रजाति बहुत ही उपयुक्त है। और इस प्रजाति में लाल सड़न रोग नहीं लगता है ना, और दूसरी एक जो बात है इसमें सूखा सहन करने की भी क्षमता है, और यह प्रजाति बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है
1: जी।
0: तो किसान भाई इसको भी कर सकते हैं। एक दूसरी और जो प्रजाति है COLK12209, इस प्रजाति का भी औसत उत्पादन 78 टन प्रति हेक्टेयर है, और ये भी पेड़ी के लिए उपयुक्त है, और इसमें जो एक लाल सड़न रोग लगता है जिसको हम लोग रेड रॉट कहते हैं, तो इसमें प्रतिरोधक क्षमता इसमें कम लगता है, और यह भी यूपी और बिहार झारखंड इस इलाके के लिए अनुशंसित की गई है
1: जी। और डॉक्टर साहब आपने अभी कहा था कि पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए, गन्ने की खेती हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हम पोषक तत्व प्रबंधन गन्ने में?
0: गन्ने में जैसा कि है कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 70 किलोग्राम हमारा पोटास प्रति हेक्टेयर इधर से अनुशंसित किया गया है। तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तो हम बुआई के समय कूट में ही डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं, और हमारा जो नाइट्रोजन है उसको हम तीन भागों में जो है डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला जो भाग होगा उसको हम बुआई के समय ही दे देंगे, और बाकी जो बचा भाग होगा तो एक कल्ला निकलने के समय ना, तो ये लगभग 50 से 60 दिन में कल्ला निकलने लगता है, फिर वनस्पतिक वृद्धि होने लगती है 120-125 दिन में ना। तो कल्ले निकलते समय और वनस्पतिक वृद्धि के समय जो है बचा हुआ दो भाग नाइट्रोजन का हम इसमें देते हैं। अगर गन्ने का पेड़ी है तो उसमें हम जो है 25% और ज़्यादा अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, करना चाहिए
1: जी। तो ये बातें हुई पोषक तत्व प्रबंधन की, लेकिन पोषक तत्व तभी हमारे जो फसल है उन्हें पूर्णता मिल पाएगा जबकि खरपतवार का हम प्रबंधन करें, तो कैसे करेंगे हम खरपतवार का प्रबंधन करने की खेत में?
0: जैसे कि अगर शाकनाशी का प्रयोग हमको बाद में ही करना चाहिए, पहले और दूसरे ऑप्शंस को देखना चाहिए। एक ब्लाइंड होइंग होती है, अंधी गुड़ाई जिसको कहते हैं, उसको अगर हम करेंगे तो खरपतवार जो है वो समाप्त हो जाएंगे, और हमारे गन्ने को उसमें एरेशन होगा ना, प्रॉपर हवा उसमें मिलेगी जड़ में उसके। और इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंटरक्रॉपिंग करेंगे ना, अंतर्वर्ती खेती करेंगे, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। और अंत में अगर खरपतवार की समस्या हो तो हम 240 जो है आधा किलोग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं, और ये 60 से 90 दिन तक इसका कर सकते हैं, 60 से 90 दिन तक इसको हम 240 का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और हर्बिसाइड है अटराजिन जिसको बोलते हैं हम लोग, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना के बुआई के 3 दिन के अंदर ही कर लेते हैं, हम 3-4 दिन के अंदर में छिड़काव कर लेते हैं न, तो उससे भी हमको खरपतवार नियंत्रण में राहत मिल जाती है।
1: जी जी, अभी आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की अंतर्वर्ती फसलों के, तो ये तो की जा सकती है, तो कौन कौन से फसलों का हम चयन करें अंतर्वर्ती फसलों के रूप?
0: जैसे हमारा जो शरतकालीन गन्ना होता है अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, तो उसमें अगर हम गन्ने के साथ 2 कतार आलू का या 2 कतार मसूर का या 2 कतार सरसों का अगर हम करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि कम से कम हमको 200 से 250 कुंटल आलू मिल सकता है, 10 से 12 कुंटल मसूर भी मिल सकती है, और 10 से 12 कुंटल हमारा जो है सरसों भी प्राप्त हो सकती है अगर गन्ने के बीच में करेंगे तो इंटरक्रॉपिंग। और अगर हमारा जो है गर्मी के सीजन में जो फरवरी मार्च में हमारा फसल लगाते हैं बसंत कालीन में, उसमें उड़द और मूंग का भी अगर हम 2 गन्ने के कतारों के बीच में 2 कतार का बुआई करें तो 7 से 8 कुंटल हमारा उड़द या मूंग भी हमको मिल सकता है।

0: और हमारा गन्ने का उपज भी प्रभावित नहीं होगा।
1: तो चलते चलते एक और सवाल अंत में डॉक्टर साहब की, जो गन्ने में लगने वाले कीट हैं और रोग हैं उनसे कैसे बचाव करें हम?
0: जैसा कि हम इधर भागलपुर में देखा है कि यहाँ पे रेड रॉट बीमारी लगती है, लाल सड़न रोग लगता है, तो इसका लक्षण यह है कि हमारा जो 3-4 पत्ती होती है ऊपर से वो पीली दिखने लगती है, और बाद में देखेंगे ना पत्ती के जो बाहरी सिरा है वहाँ से वो सूखना शुरू करती है और अंदर की तरफ वो सूखती है ना, सूखने लगती है और अंत में वो मतलब मर जाती है, जिसको कहेंगे समाप्त हो जाता है उसका हरापन ना। तो तने का जो प्राकृतिक रंग है वो भी समाप्त हो जाता है, और जब हमारा गन्ने का जो तना होगा, जब तने को दो बराबर भागों में हम काट देते हैं खड़े, तो उसमें देखेंगे लाल रंग का उसमें जो पिथ होगा ना उसमें स्ट्रिप्स पड़ी होगी, सफ़ेद रंग का उसमें बैंड्स पड़ा हुआ होगा, और उसमें स्मेल भी आता है, और उसमें इस प्रभावित गन्ने से उसका रस जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें हमको सावधानी ये करनी चाहिए बुआई से पहले गन्ने का, हमारा जो सेट्स होगा जो गन्ना हम खरीद कर लाएंगे वो देखेंगे कि इसमें ना हो ना उसके ये बीमारी ना हो, और अगर हम खेती कर रहे हैं उस खेत में लाल सड़न रोग आ गया है तो हमको ग्रीन मैन्योरिंग और धान उगा लेना चाहिए, थोड़े दिन के लिए गन्ने का खेत को बदल देना चाहिए
1: ना।
0: और वैसे ही ये बीमारी जब आ जाती है तो कोई इसका खड़ी फसल में कोई उपचार नहीं है, पहले से ही है कि हम बीज को उपचारित करके बोएं, स्वस्थ हमारा जो है गन्ने का सेट्स हो, तो यही ज़्यादा अच्छा इसमें है
1: जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों और श्रोताओं, इस प्रकार आप गन्ने की खेती करते हैं तो डेफिनेटली आमदनी में वृद्धि ज़रूर होगी, और आगे चलते हुए आप सभी से फिर एक अलग विषय के साथ मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम 90.8 MHz पर। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ हाँ हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ।

0: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हिम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का, लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद

100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैली में बोए। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। उन्हें साफ और सूखा और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। इन ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी में। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है। और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहु उपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में। जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।

0: धन्यवाद उमा जी। मैं भी मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
0: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बेसिलस किसी को पता नहीं है। जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है। तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है, और बेसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है, और वो एक बैक्टीरिया है। तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बेसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है, या जड़ों में भी मिल जाता है। तो बेसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है। और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बेसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं।
1: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
0: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बेसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफून का जो माइसेलिया होता है या फफून की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफून की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो ये हुआ कि डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है। और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बेसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है, यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बेसिलस काम करता है। तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है, और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है। तो इसीलिए ये बहुपयोगी है।
1: तो मैम, अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है,
0: जी,
1: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है,
0: जी।
1: तो मैम, किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
0: तो जैसे मैंने बताया पहले से ही कि बेसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो मैम, अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं। बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो जैसे बेसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज़ करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है। तो बेसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर 1 किलो बीज है तो 1 किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बेसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छांव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई

0: करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 liter पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 g टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
1: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
0: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। अब अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी को मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
1: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
0: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबोर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट। बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए तो जरूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइजर दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं और वो सभी जगह पे अवेलेबल भी है।
1: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिल।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
0: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। जैसे बहुत सारी चीजें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग यह है कि जैसे मैंने बताया

0: बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं. जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मतलब जब बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है, जो बाकी के जैव नियंत्रक कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते. बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहाँ पर थ्राइव कर लेता है. तो जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो बैसिलस फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में. इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें, और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा. और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है. जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है, या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बैसिलस एक ऐसी बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये बहुपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते.
1: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस, और बहुत ही कारगर भी है. तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई. किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही. उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल, और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार. नमस्कार.
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन. टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो. टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान. घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे. खांसी खोखो खांसी. बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो. खांसी खोखो खांसी. टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए.
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा.
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद.
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार.
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना.
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ. माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ. तो दोस्तों बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल.
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ. टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.
9: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर.
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
11: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है. और हुकुम सिंह भी. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर.
12: हर घर सूर्य घर.
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें.
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार करियर की बातें।

0: आते हैं।
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
0: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, मैं आरजे अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का 90.8 FM ग्रीन पर। आप सुन रहे हैं मुझे इसी फ्रिक्वेंसी पर और ये है आपका बहुत ही खास फ्रिक्वेंसी जिस पर बातें होती हैं खास हमारे किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आज फिर से उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खास विषय और वो विषय है खासतौर पर हमारे किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, हर रोज़ की तरह आज खास बातें करेंगे, खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। और जब सब्जियों की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है लालची हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम ही होता है सब्जियों का मौसम, और उसमें जब बात फूल गोभी की ना हो तो सर्दियों का मौसम भी थोड़ा अधूरा रह जाता है क्योंकि इस सर्दियों के मौसम में ही हमें फूल गोभी चखने को मिलता है, खाने को मिलता है इसका स्वाद। तो फिलहाल तो आज इसी की बातें होंगी। हमारे किसान भाइयों के लिए हम पूरी तरीके से लेकर आए हैं फूल गोभी की उन्नत खेती की बातें जो कि आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय भारद्वाज जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: जी धन्यवाद।
1: और फूल गोभी की बात हो रही है तो जितना ही स्वादिष्ट ये लगता है, इसके जितने भी हम डिशेस बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये फूल गोभी कैसे, कहाँ, इसकी खेती क्या होती है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है। वैसे किसान भाइयों को तो पता ही रहता है लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो जो खा रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में बताएं।
2: देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कई ऐसे प्रकार के न्यूट्रिशन पाया जाता है जो बाकी सब्जियों में नहीं होता है। ख़ास तौर से फूल गोभी में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिससे विटामिन सी के जितने भी लगने वाले बच्चों को या बड़ों को जो रोग होते हैं उससे उनका निदान पाया जा सकता है। विटामिन बी की भी इसके अंदर पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साथ ही फूल गोभी को अलग अलग तरह से हम अलग अलग पकवानों के रूप में, अलग अलग खाने के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी,
2: जिसमें सब्जी हो गया, सूप हो गया, या इसको अचार के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं। और प्रोटीन तरह के अलग अलग जो न्यूट्रिशियस पदार्थ होते हैं वो भी फूलगोभी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फूलगोभी की खेती को पूरे वर्ष भी किसान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम फूलगोभी को लगा सकते हैं और किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। तो फूलगोभी को लगाकर न्यूट्रिशन के साथ साथ अपना मुनाफा भी किसान भाई कमा सकते हैं।
1: और मैंने सुना है कि अभी जो अचार है इसे संवर्धित करके भी लोग जो हैं इसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, अचार बनाकर या फिर कुछ और जो तरीके हैं उन तरीके से। फिलहाल उनके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं।
2: देखिए, किसी भी सब्जी को या कोई भी ऐसी फसल है जिसको हम अपने खेत में लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें उसकी प्रजातियों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: जी जी।
2: वो चाहे कोई भी फसल हो, तो इसी प्रकार से जो फूलगोभी की फसल है इसको हम मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियों में विभाग करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं। इसके अंदर अगेती फूलगोभी भी आती है, मध्यम फूलगोभी भी आती है और पछेती फूलगोभी भी आती है। तो जैसे अगेती प्रजातियां हैं, अगेती प्रजातियों में हमारे यहाँ से ही रिलीज हुई एक वैरायटी है सबौर अग्रिम।
1: अच्छा।
2: तो इसी तरह की कई वैरायटीज हैं जिनको हम अगेती प्रजातियां बोलते हैं, जिनको हम लगा सकते हैं अपने खेतों में, जिसमें पूसा दीपाली है, पूसा कार्तिक शंकर है, पूसा मेघना है, अरली कुआरी है, पंत गोभी दो है, पंत गोभी तीन है। तो इस प्रकार से कई फूल गोभी की अगेती प्रजातियां हैं जिनको किसान भाई अगेती लगाकर फायदा कमा सकते हैं। उसके बाद मध्यम प्रकार की प्रजातियां, उसके अंदर पंत शुभ्रा है, इम्प्रूव्ड जैपनीज है, फिर पूसा शरद है, पूसा हाइब्रिड दो है। इस प्रकार से कई तरह की ऐसी वैरायटियां हैं जो मध्यम मौसम में लगाई जा सकती हैं। और उसके बाद जो पछेती वैरायटीज हैं, पछेती प्रजातियां, उसके अंदर आपका

0: जो वैरायटीज़ हैं उसमें स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज़ आती हैं, पूसा सिंथेटिक आती है, बनारसी माघी आती है, जाइंट स्नोबॉल आती है, पूसा स्नोबॉल 1 है, पूसा स्नोबॉल 2 है, स्नोबॉल 16 है। इस प्रकार की कई वैरायटीज़ हैं जो हम बछेती मौसम में लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर आपने जाना उन्नतशील प्रजातियों के बारे में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, किस मौसम में लगाई जाती हैं और उन्हें लगाकर आपको फ़ायदा हो सकता है। और अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम इसकी खेती करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए हमें पौध की तैयारी और रोपाई की आवश्यकता होती है, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको भूमि की तैयारी करनी पड़ती है, साथ में आपको प्रजातियों का पता है, प्रजाति किस मौसम में लगनी है, तो उस मौसम के हिसाब से आपको उस पौध की उस समय के अनुरूप तैयारी करनी पड़ती है।
1: अच्छा।
0: तो सबसे पहले तो हम भूमि की तैयारी की बात करते हैं। भूमि की तैयारी के लिए हम खेत की जो पहली जुताई होती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं और अंत में उसको पाटा लगाकर समतल और भुरभुरा बना लेते हैं और इस हिसाब से खेत को तैयार करते हैं कि उसके अंदर से पानी के निकास की जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके बाद बात आती है कि आपने जब पौध की तैयारी करनी है तो आपको कितना बीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके खेत के हिसाब से कि आपको कितना बीज अपने खेत में लगाना है पौध तैयार करने के लिए,
1: मतलब डायमेंशन के हिसाब से।
0: हाँ, डायमेंशन के हिसाब से, या तो उस हिसाब से अगर जो हम 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में जो बीज दर होती है वो 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फूल गोभी का बीज जो है लगता है। इसमें भी 2 तरह के बातें होती हैं कि अगर आप अगेती फसलें लगाते हैं तो उसके अंदर बीज दर जो होती है वो आपका थोड़ा बढ़ जाता है, और जो पिछेती किस्में होती हैं या मध्यम किस्में होती हैं उसके अंदर बीज दर आपका कम हो जाता है। और इसी प्रकार से संकर किस्में हैं और जो आपकी ओपी वैरायटीज है उसके अंदर भी आपका बीज दर जो है वो घटता और बढ़ता है। तो संकर किस्में हैं उसके अंदर आपका बीज दर जो है वो कम लगेगा, और अगर जो ओपी किस्में हैं तो उसके अंदर आपका बीज दर ज़्यादा लगेगा।
1: अच्छा।
0: अब बीज दर आपको पता चल गया कि 450 से 500 एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से 450 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा फूलगोभी की खेती के लिए लगती है। आपने बीज ले लिया है, बीज लेने के बाद उसकी जो उपचार है, बीज का जो उपचार है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आपको इसके अंदर 2 से 3 ग्राम कैप्टान, बेविस्टिन या कैप्टान या थीरम जो फंजीसाइड आते हैं उससे आपको इसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मात्रा मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आपको प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 से 3 ग्राम जो भी फंजीसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से आपने उस बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने का मतलब है कि आपका जो फंजीसाइड है, जो भी फफूंदनाशी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एक परत जो है वो आपके बीज के ऊपर चढ़ जानी चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर जो लग जाएगी तभी उससे आप फफूंदजनक जितने भी रोग हैं, या अगर जो आपकी मिट्टी जो जिसके अंदर आप पौध तैयार करेंगे उसके अंदर भी फफूंदी के कुछ कीटाणु होंगे,
1: अवशेष,
0: तो जो अवशेष होते हैं उससे वो उसका बीज का बचाव करते हैं।
1: जी।
0: अब बात करते हैं कि पौध की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं मौसम की बात बताता हूँ कि जो अगेती फसल होती है वो आप मई लास्ट से मध्य जुलाई तक लगाते हैं, उसका जो पौध रोपण जो करते हैं, पौध की जो तैयारी करते हैं वो मध्य मई से अंत जुलाई तक आप करते हैं, और मध्यम फसल के लिए जुलाई से मध्य अगस्त तक उसकी पौध तैयार करते हैं, और जो पछेती फसल होती है वो 15 अक्टूबर के बाद से पौधशाला में उसकी बुआई करनी चाहिए। ये तो हो गई मौसम की बात कि कब अगेती फूलगोभी की बुआई कब करनी है, उसके बीज की पौध तैयार करने के लिए, उसके बाद मध्यम की और पछेती की कब करनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पौध तैयार करनी है तो पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी चौड़ी क्यारियां बनानी है। तो हम इसमें ऐसा बताते हैं किसान भाइयों को कि जो भी क्यारी आप बनाएंगे वो आपकी लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर चौड़ा बेड आपको बनाना है, तैयार करना है। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बेड है वो आपका लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के करीब जमीन से, जो आम जमीन है उससे उठा हुआ होना चाहिए, और जो इसकी लंबाई है, जो क्यारी की लंबाई है वो आपकी जरूरत के मुताबिक आप उसको लंबा या छोटा बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: सामान्यतः इसको 5 से 10 मीटर लंबा बनाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर जो आप 2 क्यारियां बना रहे हैं, 3 क्यारियां बना रहे हैं, तो क्यारियों से क्यारी के बीच का जो डिस्टेंस

0: होता है जो दूरी होती है उसको हम 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि जो आप पौध के अंदर जितने भी कार्य जो हमें करने पड़ते हैं उसको करने में आसानी रहे। और अब इसके बाद जब हमें बीज डालना होता है, जो आपका उपचारित बीज है, उसको डालने के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनानी चाहिए, और 4 से 5 सेंटीमीटर की कतारें बनाकर इतनी दूरी की उसके अंदर आपको बीज डालना चाहिए। और बीज डालने के बाद उसको आपने सड़ी गली हुई गोबर की जो खाद होती है उससे उसको ढक देना चाहिए, और ढकने के बाद फिर दोबारा से उसके ऊपर पुआल बिछा देना चाहिए ताकि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो उसके अंदर पौध के अंदर बनी रहे। और इसके बाद 1 या 2 दिन के बाद आप उसको हल्का सा सिंचाई और ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर सिंचाई देनी है। जैसे जैसे आपके सफ़ेद रोए आने चालू हो जाएंगे, बीज में से अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, तब उसके बाद आपने जो उसका पुआल है तो उसको आपने हटा देना है, और आवश्यकता अनुसार उसके अंदर जितने भी कार्य करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसकी जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने से कब करनी है, कितनी दिनों के बाद करनी है, कितने दिन में वो पौधे तैयार हो जाएंगे, तो सामान्यतः ये देखा गया है कि 30 से 45 दिन के अंदर फूलगोभी की जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है पौध रोपाई के लिए। तो ये चीज़ किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि कैसे पौध उपचारित करनी है, कैसे उसको खेत में, मुख्य खेत में लगाना है, आपको जो बिचड़ा तैयार करना है उसके लिए कितनी चौड़ाई के बेड की आवश्यकता पड़ती है, कितना बीज आपको लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब जब आपकी पौध जो है वो तैयार हो गई है लगभग 30 से 45 दिन, कई लोग बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो वैरायटी टू वैरायटी वैरी करता है।
1: अच्छा।
0: कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में
1: मतलब
0: तैयार होती है,
1: वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है वो।
0: जी। अब इसके बाद रोपाई की बात करते हैं, तो रोपाई में सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि दूरी, कितनी दूरी पर आप फूलगोभी की फसल को, जो आपका बिचड़ा तैयार हुआ है, जो पौध तैयार हो गई है, उसको आपने अपने मुख्य खेत में लगाना है। तो मुख्य खेत में लगाने के लिए जो दूरी होती है, वो जब आप अगेती वैरायटी लगाते हैं, जो अगेती किस्में मैंने आपको बताई, तो उसके अंदर पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर के करीब हम रखते हैं। और जैसे जो मध्यम फसलें हैं, मध्यम में 50x50 यानी 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 50 सेंटीमीटर ही लाइन से लाइन की दूरी। और जो पछेती फसलें हैं उसके अंदर हम 60x60 पे लगाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर ही पौधे से पौधे के बीच की दूरी और 60 सेंटीमीटर ही पौधे से लाइन की दूरी। तो इस प्रकार से अगर जो आप बुआई करते हैं तो आपको अच्छी फसल मिलने की संभावना
1: होती है,
0: बढ़ जाती है। तो इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखें किसान भाई, तो अच्छी फसल अपने खेत में वो लगा सकते हैं।
1: तो यहाँ पर बात हो गई है पौध की तैयारी की और रोपाई की, साथ ही डॉक्टर साहब ने आपको बीज उपचार के तरीकों के बारे में भी बताया, और क्यारियों के जो दूरी है एक क्यारी से दूसरी क्यारी की दूरी, और खेत के डायमेंशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से आपको बताया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है खाद और उर्वरक की, तो उन्हें भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में कौन सी देनी चाहिए डॉक्टर साहब बताएँ फूल गोभी के लिए।
0: हाँ, फूल गोभी के लिए देखिए, जैसे हमने 3 भागों में इसको डिवाइड करा था कि अगेती, मध्यम और पछेती, तो अगेती फसल की अपेक्षा जो मध्यम और पछेती किस्म की फूल गोभी होती है उसमें खाद और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: लेकिन अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आपको जब भी आप खेत तैयार कर रहे हैं, जब आप पाटा देते हैं लास्ट, जब भूमि को समतल बनाते हैं, उसको तैयार करने से पहले आपको 250 से 350 क्विंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है या कंपोस्ट जो है वो अपनी भूमि में, मुख्य खेत में डालना बहुत ज़रूरी है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा जो एक खरपतवार, जो खाद की जो मात्रा होती है वो एक किसान भाई याद रखेंगे कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश जो है वो आपके मुख्य खेत प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर में इतनी खाद की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो गोबर की खाद जैसे मैंने बताया कि खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के वक्त मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जैसे मैंने आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बताया, तो उसकी आधी मात्रा जो है खेत तैयार करते वक्त या उस खेत में मिलानी चाहिए। और फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा

0: मिश्रण बनाकर उसमें मिला देना चाहिए मुख्य खेत में। और जो नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको दो भागों में देना चाहिए, एक 30 दिन के बाद, आपने जब रोपाई कर दिया रोपाई के 30 दिन के बाद, और उसके बाद जो तीसरी मात्रा जो है उसको देना है आपने 45 दिनों के बाद, मिट्टी के उपरिवेशन के रूप में मिट्टी में मिला देना चाहिए।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसमें एक चीज और ज्यादा फायदेमंद है किसानों के लिए कि अगर नाइट्रोजन के लिए लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, गोभी की फसल में अगर जो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन का उपयोग करेंगे यूरिया की अपेक्षा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कैन में कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाती है जो एक जरूरी पोषक तत्व है, तो उससे भी आपका पौधा जो है अच्छा तैयार होता है। दूसरा, सल्फर भी पौधे की बढ़वार में बहुत फायदा करता है, तो सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस के लिए, जो हम फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग अगर करें तो उससे सल्फर की आवश्यकता भी पूरी हो जाती हो सकती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ जो है, कैल्शियम भी आपको हो गया वो कैन से मिल जाएगा, सल्फर जो है वो आपको फॉस्फोरस यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट से मिल जाएगा, और तीसरा जो है बोरॉन। बोरॉन के लिए आप 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से बोरेक्स अगर जो आप अपनी ज़मीन में मिला देंगे, तो कई तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो ऐसे विकार हैं जो गोभी की फसल में आते हैं, तो उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है।
1: तो इसके बारे में जानेंगे विकार और रोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना चाहेंगे हम।
0: हाँ, जैसे पौधों की हम रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई देनी होती है, और इसके पश्चात आपको आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तो ये सिंचाई के बारे में थोड़ा जैसे ही आपके खेत में नमी कम हो जाए तो आपको उस हिसाब से सिंचाई देनी चाहिए। मुख्य सामान्यतः हम 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही सिंचाई करते हैं। और दूसरी चीज़ कि खरपतवारों का जो नियंत्रण होता है उसको अगर जो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर देते हैं तो उससे आपका जो है खरपतवारों का नियंत्रण तो हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने केमिकल का इस्तेमाल करना है तो केमिकल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टॉम्प पेंडीमिथिलीन जो होती है पौध की रोपाई से पहले स्टॉम्प या बेसालिन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आपको प्रयोग करनी चाहिए, जिससे आपको खरपतवारों से नियंत्रण मिल हो सकता है।
1: हाँ, और ये हो गई पूरे इसके बारे में कि तैयारी, खेत की तैयारी, रोपाई, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने जाना, सिंचाई के बारे में भी जान लिया, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी जाना। अंत में आते हैं डॉक्टर साहब, कटाई के बारे में और इसके उपज के बारे में और भंडारण के बारे में जानने की बारी आ जाती है।
0: देखिए, कोई भी फसल जब तैयार होती है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं कि ये फसल तैयार हो गई है, उसी अवस्था में हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए यानी उसकी कटाई करनी चाहिए। तो फूल गोभी में भी उसी प्रकार के, जब आपको फूल लगे, जब आप अंगूठे से उस फूल को दबाकर देखेंगे, अगर जो वो ठोस लगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फूल है, फूल गोभी का जो फूल है वो तैयार हो गया है, तो उस दौरान आप उसकी कटाई कर सकते हैं। और काटने के लिए एक चीज का किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी फूल गोभी के डंठल आपने काटने हैं या फूल गोभी का जो फूल आपने काटना है वो जमीन की सतह के बराबर काटना चाहिए, ताकि उसका डंठल जो है वो लंबा हो। तो ऐसा करने से अगर आपने दूर भी उसको लेकर जाना है,
1: मतलब जमीन से बिल्कुल जो सटा कर जिस चीज से वो काट रहे हैं,
0: जब भी उसको काटें तो वो जमीन के पास से काटें, ताकि आपने जब भी उसका दूर लेकर जाना है, किसी मार्केट में लेकर जाना है, तो उससे आपका जो फूल
1: बना रहता है,
0: वो फूल को आपको कम से कम नुकसान हो। और दूसरी बात कि फूलों की कटाई जो करनी चाहिए सुबह या शाम में करनी चाहिए, अगर जो आप तेज दोपहरी में करेंगे तो फूल को नुकसान होता है, उसका रंग पीला पड़ सकता है या उसके ऊपर धब्बे वगैरह आ सकते हैं जितनी ज्यादा गर्मी में आप उसको काटेंगे, तो इसलिए सुबह या शाम में करनी चाहिए। और एक और बहुत जरूरी बात है कि किसान भाई अगर जो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल सकती है, उसमें ये है कि आप जब भी आपने फूल काटना है, कटाई करनी है, कटाई करने के 3 से 4 दिन पहले जो सबसे नीचे के 4 पत्ते होते हैं
1: जी,
0: जो हरे वाले पत्ते होते हैं फूल के चारों ओर, उन पत्तों को अगर जो 4 दिन पहले आप ऊपर बांध देते हैं, उस फूल के ऊपर बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो फूल है वो सफेद रंग का रहेगा, आकर्षक रहेगा, अगर जो धूप से उसका रिएक्शन नहीं होगा
1: मतलब
0: तो उसका रंग ताजा तरीन दिखेगा। तो अगर जो आप उस पत्तों को, चारों पत्तों को ऊपर जाकर बांध देते हैं, तो वो आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा और बहुत अच्छा ही आपको मार्केट में जाकर उसका दाम मिलेगा। और भंडारण करने के लिए एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इनका भंडारण करें तो 85 से 90% आर्द्रता का मौसम हो और 14 से लेकर हम 20 डिग्री तापमान पर इनको आराम से 2 से 3 सप्ताह तक आराम से सुरक्षित इन फूलों को हम रख सकते।

0: तो यहाँ पर भंडारण की बात होगी, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है कि ये जो फफूंद जो है जो लग जाते हैं फूलगोभी पर, तो ये कौन से कीटों की वजह से लगते हैं, ये कौन से रोग होते हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे कीट हैं जो इन पर लगते हैं, जो हानि पहुँचाते हैं फूलगोभी की फसल को, और रोग भी हो सकते हैं उनसे, तो उनके बारे में बताएं, साथ ही उपचार के बारे में भी बताएं।
1: जी, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई तरह की बीमारियाँ हैं जिनको जो किसान

0: सबसे पहले आता है भूरा धब्बा, यानी ब्राउन स्पॉट जो होते हैं वो हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं वो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं और इसके तने जो हैं वो खोखले हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: ये बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बोरोन की कमी के कारण एक और इसका लक्षण दिखाई देता है कि इसके मध्य भाग पर जलीय धब्बे, जलयुक्त धब्बों का होना भी होता है। ये अधिकतर जो बीमारी होती है ये क्षारीय एवं अधिक अम्लीय भूमि में होती है, तो इसमें पत्तियां भी और फूल भी पीले पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर जो आप बोरेक्स का इस्तेमाल करेंगे 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों के खेतों में एक बटनिंग या बोल्टिंग नाम की बीमारी लगती है। देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे फूल लग जाते हैं, एक ही पौधे में दो तीन तरह के छोटे छोटे फूल लगते हैं जिसको बटनिंग या बोल्टिंग किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये परिपक्व होने से पहले ही वो छोटे छोटे रहकर फटने लगते हैं और उनका विकास भी सामान्य नहीं रहता
1: जी, जी।
0: तो ये इसलिए होता है कि अगर जो आप अगेती प्रजातियों को देर से बो देते हैं तो ये वाले लक्षण मिलते हैं, या आप नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है कि रोग होने की संभावना बढ़ जाती है
1: जी।
0: और अगर जो आप नर्सरी में समय से हर एक प्रकार की वैरायटी का बुआई करेंगे तो इससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगेती में अगेती ही किसमें उगाए, मध्यम मौसम में मध्यम ही किस्में उगाई जानी चाहिए और पछेती में पछेती। अगर आप इनका मिसमैच करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा। एक बीमारी आती है इसके अंदर विप टेल।
1: अच्छा,
0: ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। विप टेल होता है एक मॉलिबिडनम की कमी से।
1: तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विप टेल?
0: हाँ, विप टेल का सिम्टम ये है कि इसका मध्य शिरा का ही विकास होता है और उसका जो पत्रक होता है, जो उसके पत्ते होते हैं, उसका विकास नहीं हो पाता।
1: अच्छा।
0: है तो उसको विप टेल बोला जाता है, यानी पूंछ के आकार में वो पौधा जो है हो जाता है। तो इसको अगर जो आपने दूर करना है तो आप इसके लिए मिट्टी में चूना मिलाकर, चूना आप उस कंडीशन में मिलाते हैं जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां की भूमि जो होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी अम्लीय भूमि होती है। और उस केस में आपने क्या करना है कि आपने अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज करना है।
1: अच्छा,
0: चूना भी मिलाइए और अमोनियम मॉलिब्डेट जो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा मिट्टी में डालकर पीएच को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर इसी अमोनियम मॉलिब्डेट को 4 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं, तो भी आप इससे बच सकते हैं।
1: अच्छा।
0: एक होता है ब्लाइंडनेस, फिर उसके बाद राइसीनेस आता है, फुजीनेस होता है, ये भी इसके कई तरह के रोग नहीं, हम इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलेंगे। ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कई बार जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो हल्का सा कट लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो ब्लाइंड हो जाता है, पौधा है उसके ऊपर फूल का विकास ही नहीं होता है। तो जब भी आप पौध की रोपाई करें तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पौध की रोपाई संभल कर करें कि कहीं कट ना लगे या कोई कीट उसको जो मुख्य भाग होता है, जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, उसको ना खाए, और कम तापमान ना हो तो इससे आप बचा सकते हैं। राइसीनेस की थोड़े थोड़े हल्के हल्के रोएं से उसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी वैरायटी का जो है चयन करना पड़ेगा, और अच्छा ही बीज आपके पास होगा तो आपका जो फूल गोभी है वो अच्छे प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद कई तरह के कीट लगते हैं, कीटों में चैंपा हो गया, माहू हो गया, कई तरह के कीट इसके अंदर आते हैं। ये छोटे हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो पत्तियों को और कलियों का जो फूल है
1: नुकसान पहुंचा,
0: फूल देने की अवस्था में उसका रस चूसते हैं। तो अच्छा। इसके इससे बचने के लिए आपको इमीडा क्लोप्रिड एक दवाई आती है। इमीडा क्लोप्रिड जो है उसको आपने 0.1 ml को, 0.1 नहीं, 1 ml को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करना है। 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना है। इसके अलावा इसके अंदर डैम्पिंग ऑफ भी लगती है। डैम्पिंग ऑफ जो होती है वो आपकी जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं, जब आप उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के एकदम से बाद जब उसमें पानी देते हैं तो क्या करते हैं कि तन जो देखते हैं कि जो भूमि से सटा हुआ जो तने का पोर्शन होता है बिल्कुल खोखला होने लग पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो गल रहा है, उसको डैम्पिंग ऑफ बोला जाता है। तो इससे बचने के लिए आप या तो जब आप रोपाई करने से पहले अपने खेत का भूमि शोधन करें, या तो फॉर्मेल्डिहाइड से या किसी और केमिकल से, या आप सूर्य की रोशनी अपने खेत को दिखाएं, तो आप उससे उस रोग से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसके लिए जो बेविस्टिन नाम की दवाई आती है उसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर जो ड्रेंचिंग करेंगे, यानी पौधे की जड़ में देंगे, तो भी इससे बचा जा सकता है। एक और बहुत ज़्यादा भयानक जो

0: के अंदर बीमारी लगती है वो है ब्लैक रॉट, काला दलन जिसको बोला जाता है। इसमें पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं और इसकी जो शिराएं होती हैं वो काली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए आप बीज का शोधन अगर जो करें, उसके अंदर बीज के अंदर अगर जो बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं उसको मारने के लिए आप गर्म पानी करके उसके अंदर अगर जो उसको उपचारित करें बीज को, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होना चाहिए, और उसको अगर जो बीज को 30 मिनट के लिए उसके अंदर रखते हैं तो ऐसा करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया वाले कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक दवाई आती है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो इस रोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फूल गोभी की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, जैसे कि फूल गोभी की उपयोगिता के बारे में हमने जाना, इनकी प्रजातियों के बारे में जाना, पौध की तैयारी और रोपाइयों के बारे में, साथ ही खाद और उर्वरक के बारे में हमने चर्चा किया, सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण, कटाई, उपज और भंडारण बारे में, और साथ ही कीट और रोगों के बारे में भी। तो इस तरीके से आपने पूर्णतः जाना कि आप फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर दिए गए निर्देशों को अपनाएंगे, और अगर आप फूलगोभी की खेती की सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो सावधानियां यहां पर बरतने के लिए आप सभी को कही गई हैं तो उन सावधानियों को बरतें और एक उन्नतशील जो प्रजातियां हैं उन्हें लेकर एक अच्छी फूलगोभी खेती करें और एक सफल किसान बने। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी के लिए कुछ और भी अलग विषय लेकर मैं हाजिर रहूंगी। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
3: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार।

0: हो, इन सबको समय नियंत्रण करना जरूरी है।
1: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
1: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और

से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ग्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को 1 या 2 किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 PPM का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% EC की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील

0: 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, खांसी को खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
4: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
16: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार के युवाओं, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, किसानों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, नए सपनों की उड़ान। दोस्तों, बिहार आज केवल रोजगार खोजने वाला राज्य नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो रोजगार सृजित करता है, और खास तौर से जो युवा है वो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी सोच को साकार करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लागू की है, और जिसका उद्देश्य है युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृति। डॉक्टर कृति हैं कृषि प्रसार विभाग से, और साथ ही मैम हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, और मैम स्टार्टअप जागरूकता के कार्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
17: धन्यवाद उमा।
16: मैम, सबसे पहले तो

0: आप हमें ये समझाइए कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य बिहार में नवाचार, उद्यमता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस नीति के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और इंक्यूबेशन सुविधा एवं निवेशकों से जुड़ने का अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि बिहार का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो केवल नौकरी की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सके।
0: यस मैम। मैम, अगर हम स्टार्टअप को आसान भाषा में समझना चाहें तो आप इसे कैसे समझाएंगे?
1: अगर इसको सरल भाषा में कहें तो कोई ऐसा नया व्यवसाय जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता हो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई युवा किसान है जो या कोई यदि कोई युवा किसान के लिए मोबाइल ऐप विकसित करता है जो कि महिला स्थानीय उत्पादकों को ऑनलाइन बेचने में का प्लेटफॉर्म बनाती है या कोई शोधार्थी नई कृषि तकनीक विकसित करता है तो ये सभी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकते हैं अगर ये उनके इस तकनीक से, जो नवीन तकनीक है, इनसे ना केवल वो जीविकोपार्जन अपना इनकम बढ़ा सकते हैं बल्कि इससे वो समाज को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और कई और भी लोगों को वो जॉब दे सकते हैं।
0: मैम, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में जैसे आपने बताया, कुछ उद्देश्य अभी आपने बताया, लेकिन अगर हम विस्तार से इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में समझना चाहें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: इसका अगर प्रमुख उद्देश्य देखा जाए तो सबसे पहला तो उद्यमता को बढ़ावा देना होगा, उसके बाद युवाओं में नवाचार और व्यवसायिक सोच विकसित करना, इसका ये प्रमुख उद्देश्य अगर माना जाए तो सबसे पहले कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके अंदर एक इनोवेशन, नवाचार और व्यवसायिक सोच जो होता है, जो उसको फाइनेंशियली कैसे कन्वर्ट कर सके, वो लोगों को कैसे उससे व्यवसाय के रूप में उसको डेवलप कर सके, ये प्रमुख हैं। इसके साथ साथ स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना भी है, साथ ही इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना है, प्रशिक्षण और मेंटरशिप एवं विशेषज्ञ का मार्गदर्शन देना, इसके साथ ही साथ जितने भी सरकारी प्रक्रिया है उसको और भी सरल बनाना और स्कूल और विश्वविद्यालय में उद्यमता शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं हम आगे बात करेंगे कि इनक्यूबेशन और को वर्किंग स्पेस जो है ये सब क्या होता है,
0: लेकिन मैम अभी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार कोई सहायता देती है और कितनी सहायता देती है?
1: बिल्कुल, यह जो है इस नीति का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है जो कि वित्तीय सहायता है। तो अगर हम स्टार्टअप में वित्तीय सहायता की बात करें तो जो योग्य स्टार्टअप होते हैं, जो एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं, उनको सरकार 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है। यह राशि स्टार्टअप के विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, मार्केटिंग, उत्पाद विकास एवं प्रारंभिक संचालन के लिए उपयोग की जा सकती है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लगता तथा पुनर्भुगतान के लिए लगभग 10 वर्ष तक का समय सीमा दिया जाता है।
0: हम सीड फंड, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे लोग इसे बैंक लोन समझ लेते हैं, क्या ये एक ही है या इसमें कोई अंतर है?
1: बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीड फंड और बैंक लोन में क्या अंतर होता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त सीड फंड प्रदान करती है, मैंने बैंक लोन नहीं बोला, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन में ब्याज देना पड़ता है, नियमित ईएमआई चुकानी होती है और कई बार तो हमारी हमें गारंटी भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत मिलने वाला सीड फंड, ब्याज मुक्त एक फंड होता है, इसकी बात करें तो इसका उद्देश्य जो होता है वो स्टार्टअप को प्रारंभिक सहयोग देना होता है। यह समान बैंक ऋण से अधिक उद्यमी अनुकूल व्यवस्था है।
0: और इसमें क्या महिलाओं को और जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा है?
1: बिल्कुल, महिला उद्यमों को तो बिल्कुल अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है तथा उनको प्रशिक्षण एवं मेंटरशिप में भी विशेष सहायता दी जाती है। और इसी प्रकार से जैसे एसटीएससी उद्यमी जो होते हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ, विशेष सहायता तथा स्टार्टअप फंड में आरक्षित

0: प्रावधान भी रखे गए हैं जिससे अधिक से अधिक युवाओं को अवसर मिल सके।
1: मैम, अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप प्रोसेस इसका पूरा बता दे तो?
0: बिल्कुल, मैं इसे एक चरणबद्ध तरीके से समझाना चाहूंगी। इसका सबसे पहला चरण जो है वो समस्या की पहचान यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम ये तय करें कि हम जो समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि किस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जैसे किसानों की फसल का रोग पहचान, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पादन विपणन, ग्रामीण ई कॉमर्स या कृषि मशीनरी साझा सेवा, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं हमारे समाज के रूप में, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करें। अगर हम दूसरे, ये तो पहला चरण हो गया, इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे जहां हम बिजनेस आइडिया तैयार करें। तो इसके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, जैसे समस्या क्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें नया क्या होगा, और इसके जो ग्राहक होंगे, सबसे पहले जो मार्केटिंग, जो हमारे कंज्यूमर होंगे, उनके बारे में हम सोचेंगे, और आय का स्रोत क्या होगा, हम जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें कहाँ से फंडिंग आएगा, और कितना पैसा जो हमारे जो कंज्यूमर होंगे उनसे किस रूप में हमें आय मिल पाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे चरण पे जाएंगे जिसमें हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। तो ये एक मजबूत, इसमें एक हम बहुत मजबूत बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उत्पाद होगा या सेवा होगा, प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस पे भी हम सोचेंगे। फिर हमारे संभावित ग्राहक कौन होंगे, है ना। फिर हम बाजार को भी देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, कितनी दूरी पे है, और इसके लिए जो हमारे जो स्टार्टअप जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए वित्तीय सहायता कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, और इससे रिलेटेड राजस्व मॉडल क्या हो सकता है। तो ये हो गई हमारे पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण। इसके आगे है चौथा चरण जिसमें हम आवश्यक दस्तावेज तैयार करेंगे। तो अगर हम समानता देखा जाए तो दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बिजनेस प्लान हो गया, पिच डेक हो गया, जैसे कि पीपीटी, पीडीएफ, ये सब हम कहीं प्रेजेंट करते हैं तो हमें पावर पॉइंट के रूप में उन दिखाना पड़ता है, और फिर DPIIT मान्यता जो होता है इसमें हमें एक लेना पड़ता है, उपलब्ध अगर है हमारे पास तो ये भी दस्तावेज हम अपने साथ रख सकते हैं। तो समस्या की पहचान करते हुए, बिजनेस आइडिया तैयार करते हुए, बिजनेस प्लान बनाते हुए और अपने पास आवश्यक दस्तावेज को संग्रहित करने के बाद हम पांचवें चरण पे जाएंगे जो कि है स्टार्टअप बिहार पोर्टल पे आवेदन करना। तो आवेदक को स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है और वहां उनको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसके बाद अपने सारे दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और अपना बिजनेस आइडिया प्रस्तुत करना होता है। अब एक बार जब उन्होंने स्टार्टअप बिहार पोर्टल पर आवेदन कर दिया, ये पांचवा चरण है, और इसके बाद हम छठे चरण की तरफ जाएंगे जब जहां पे मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसमें जो विशेषज्ञ समिति है जो स्टार्टअप बिहार के, उनके द्वारा हम जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनका, उनके विचार का मूल्यांकन होता है। तो वो देखते हैं, अब वो क्या क्या देखेंगे कि जो आइडिया आपने दिया है उसमें नवाचार है या नहीं है, इनोवेशन है या नहीं है, नयापन है या नहीं है। तो उसके बाद सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ही है नवाचार, न्यूनेस। उसके बाद उसमें व्यवहार्यता है या नहीं है, बाजार जो है उसका संभावना है या नहीं है, उसके बाद रोजगार सृजन की क्षमता है कि नहीं है, कि हम खुद ही नहीं हम औरों को भी रोजगार इससे दे सकते हैं कि नहीं है। फिर इससे सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पे मूल्यांकन करती है जो विशेषज्ञ समिति है स्टार्टअप बिहार के। मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण के बाद सातवें चरण पे हम पहुंचेंगे जहां पे हम इंक्यूबेशन और मेंटरशिप की बात करते हैं। इन सब को देखते हुए जो हमने छठे चरण की बात की, जो जहां पे हमारा मूल्यांकन हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसमें से अब जो आइडिया है उसमें स्वीकृत हो गया, मान लीजिए आपका आइडिया सेलेक्ट हो गया, तो सेलेक्ट होने के बाद जितने भी सेलेक्टेड स्टार्टअप होते हैं उनको इनक्यूबेशन सेंटर अलॉट किए जाते हैं। तो उसमें स्वीकृति मिलने के बाद जैसे स्टार्टअप को मेंटरशिप सेशन, मतलब उनको समय समय पे आपको गाइडेंस मिलता है, उनको जो सहायता की जरूरत होती है, कार्यालय सुविधा अगर उनको चाहिए तो वो भी दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है,

0: नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए इसके रूप में भी उनको सहायता की जाती है और उनको हेल्प किया जाता है, मदद किया जाता है कि वो निवेशकों से कैसे संपर्क में आए। जैसे बहुत बड़े बड़े बड़े मेगा फेस्ट होते हैं जहां पे ऐसे स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है ताकि वो दूसरे से मिल सके, उनको एंजल इन्वेस्टर मिल सके जो उनके आइडिया को में इन्वेस्ट करना पसंद कर सके। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है सीड फंड हेतु आवेदन। जब विचार व्यवहारिक साबित हो जाता है तब स्टार्टअप सीड फंड के लिए आवेदन कर सकता है और जो यह राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाती है और इसके उपयोग की निगरानी भी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको पैसे दे दिए गए और फिर उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, आपको ये पैसे, ये सीड फंड जो होता है ये दिया तो जाता है पर इसकी निगरानी भी रखी जाती है। तो इस तरह 8 चरण में जो है स्टार्टअप पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
1: मैम आपने 8 चरणों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या हर स्टार्टअप जो कोई शुरू करना चाहता है वो इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, एक जैसे प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा?
0: समानता जो होते हैं कोई भी स्टार्टअप वो 6 चरण से गुजरते हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें एक सफल कंपनी बनाने का जो पूरा सफर तय किया जाता है उसको हम 6 स्टेज के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं आइडिएशन स्टेज। और आइडिएशन स्टेज में हम क्या करते हैं तो हम अपने नए विचारों को जन्म देते हैं, हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं, जो नवाचार आते हैं उसका जन्म होता है। सो विचारों का जन्म होना आइडिएशन स्टेज कहलाता है। दूसरी जो स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसको हम वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज कहते हैं। तो ये वैलिडेशन या प्रोटोटाइप स्टेज का मतलब होता है प्रारंभिक मॉडल विकसित करना, जो दिमाग में आपका आइडिया आपने उसको मॉडल के रूप में विकसित किया। तीसरा स्टेज की जब बात कर ले तो इसको हम कहते हैं अर्ली ट्रैक्शन स्टेज। अर्ली ट्रैक्शन स्टेज में क्या करते हैं हम, प्रारंभिक ग्राहक प्राप्त होना इसमें हम ट्रैक करते हैं, अर्ली ट्रैक्शन स्टेज कहते हैं। इसके बाद ग्रोथ स्टेज आता है जिसमें हम अपने व्यवसाय को विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ग्रोथ स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो होता है स्केलिंग स्टेज। इसमें हम अपने जो व्यवसाय है उसको राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेंगे, तो इसको स्केलिंग स्टेज कहते हैं। और सबसे लास्ट स्टेज जो होता है, एक अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो उसमें होता है मैच्योर स्टार्टअप स्टेज। मतलब अब आपका जो स्टार्टअप है वो मैच्योर हो चुका है, इसमें इसका मतलब है कि अब आपका स्टार्टअप स्थापित हो चुका है और एक सफल कंपनी के रूप में उभर चुका है। तो ये समानता 6 स्टेज होते हैं, 6 चरण होते हैं किसी भी स्टार्टअप के।
1: यस मैम, मैम जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में क्या कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप की कोई संभावनाएं हैं?
0: बिल्कुल, ये अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं हैं, आप जितने भी स्टार्टअप देखेंगे मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो की जाती है ना वो एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब व्यापक संभावनाएं हैं, अत्यंत व्यापक। अगर इसकी बात करें तो जैसे कि एग्रीटेक हो गया, ड्रोन की सेवाएं हो गई, मिट्टी परीक्षण की बात करते हैं, सॉइल टेस्टिंग, फसल रोग पहचान करने की, और खाद्य प्रसंस्करण, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, मतलब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम ये बहुत ही उभरता हुआ एक व्यापक संभावनाएं लिए हुए एक विषय है। इसके बाद जैसे जैविक खेती हो गई, ई मार्केटिंग हो गई, डेयरी और पशुपालन हो गया, FPO आजकल जो होता है संगठन के रूप में विकास होना, इस पे मुख्य बल सरकार भी दे रही है, तो FPO का हो गया। ऐसे क्षेत्रों में हजारों अवसर उपलब्ध हैं कृषि के क्षेत्र में।
1: और मैम बिहार कृषि विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं का इसमें कुछ अहम इनकी भूमिका होती है?
0: बिल्कुल, अगर हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय की बात करें उमा, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा है वो बिहार राज्य का एकमात्र इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है इसका कोई भूमिका ना हो, और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। तो युवाओं को ये जानना जरूरी है कि जो हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय है ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टार्टअप सेल भी हैं और इनक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जो कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ

0: केंद्रों में से शीर्ष स्थान पर आते हैं। तो अगर हम BAU की बात करें तो ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारा स्टार्टअप सेल है, इनक्यूबेशन सेंटर है, ये युवाओं को बहुत ही मदद करता है, जैसे कि वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में, अनुसंधान सहायता में, प्रोटोटाइप परीक्षण में, किसान परीक्षण में, मेंटरशिप में और इनक्यूबेशन जैसी सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इनक्यूबेशन में हम मेंटरशिप सेशन देते हैं उनको समय समय पर, उनको कहाँ से फंड उपलब्ध, इवन हम जैसे स्टार्टअप सेल है तो उनको जब स्टार्टअप बिहार पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होता है तो हम उसमें भी उनको मदद करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो हमारे जो ये दोनों सेंटर हैं ये बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आते हैं, तो हमें वहां से ही जो जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं उनको अटैच किया जाता है। तो हमारे कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे अटैच्ड हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर BAU की भूमिका की बात है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग प्रदेश, इस अंग की धरती पर और इस इधर के क्षेत्रों के लिए इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। और स्टार्टअप में रोजगार देने में इसमें ना सिर्फ केवल सिर्फ स्टार्टअप सेल और इनक्यूबेशन सेंटर पर की अगर बात करें तो नेशनल लेवल पे भी यहाँ पे सब एग्री है जो कि फंडिंग करती है और जो जो भी उद्यमिता की ओर बढ़ना चाहते हैं ऐसे युवाओं को हम बहुत ही आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
1: जी मैम, मैम अगर आप कार्यक्रम के अंत में युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या आप संदेश देंगी?
0: मैं बिहार के सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि आज अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई नया विचार है, कोई नई समस्या जो है हमारे पास उसका समाधान है, या समाज में बदलाव लाने की इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो उसे केवल सपना बनाकर ना रखें। स्टार्टअप बिहार पॉलिसी जो है वो आपके सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार है। आवश्यकता है तो केवल आत्मविश्वास का, नवाचार का और निरंतर प्रयास का। तो मैं इन लोगों से जो हमारे युवा वर्ग हैं उनसे यही मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, एक अच्छा विचार केवल आपके जीवन को ही नहीं बदल सकता बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।
1: जी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपके पास कोई नया विचार है और उसमें समाज को भी बदलने की, एक नई दिशा देने की क्षमता है, तो आप बिल्कुल अपने विचार को आगे बढ़ाइए और इसमें आपका पूरा पूरा साथ देता है स्टार्टअप बिहार पॉलिसी, आपके सपनों को उड़ान देता है। दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ हमें दीजिए अभी इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार

0: अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हुई उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें।

0: अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो

0: मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी

पूरी कोशिश करें जल निकासी गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी

0: सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 3 की ध्वनि शाला में।
1: रिमझिम कक्षा 3 पहला पाठ कक्कू

प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता को दोहरा लेते हैं। तो हम कविता गाना शुरू करें? ठीक है। कविता का नाम है कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन है तो दिन भर रोता। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क करो जब, इससे तनिक ठिटोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। रहता मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए। ऐसे झगड़ा लू को अब से, क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया? तो यह कविता है कक्कू के बारे में। अब कक्कू के बारे में तीन बातें और हैं। पहली बात कि कक्कू को गाना गाना नहीं आता। दूसरी बात, कक्कू बात बात पे भड़क जाता है, यानी कि कक्कू को बात बात पर गुस्सा आता है। और क्या करता है कक्कू? कक्कू हमेशा मुंह फुलाए बैठा रहता है, यानी कि वह नाराज रहता है, वह खुश नहीं रहता। और वह बच्चों दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा करता है। तो कक्कू की ये आदतें हैं। बच्चों, कहीं ये आदतें आपके अंदर तो नहीं है ना? तो मैं जानती हूँ कि आप बच्चों के अंदर ऐसी आदतें नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना तो हो जाता है कि कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम चिढ़ भी जाते हैं। लेकिन बच्चों सोचिए कि ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है कि कोई आपको चिढ़ाता है और आप नाराज हो जाते हैं? कभी आपने कारण जानने की कोशिश की है? शाबाश, बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बड़े, हमारे दोस्त हमें बहुत प्यार से चिढ़ाते हैं। उनका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि हमें चिढ़ाया जाए, लेकिन वे हमारे साथ हंसी ठिटोली करते हैं और हमें ऐसे ही बनावटी तौर

पर चिढ़ाते हैं और हम इस बनावटी चिढ़ाने को असली समझकर नाराज हो जाते हैं। तो हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो चिढ़ा रहा है वे सच में हमें चिढ़ा रहा चाह रहा है या फिर बनावटी है, यानी कि सिर्फ मजाक हो रहा है। तो मजाक को हमें मजाक के तौर पर ही लेना चाहिए। बच्चों, आपने कक्कू के कई नाम इस कविता में जाने, क्या आप उन नामों को दोहरा सकते हैं? कोशिश कीजिए। शाबाश, आपने बताया सक्कू, बिल्कुल सही। भक्कू, ये भी ठीक है। झक्कू, शाबाश। तो आपने कक्कू के कई नाम हमसे साझा किए। तो झक्कू, सक्कू और भक्कू, कक्कू को इन नामों से क्यों चिढ़ाते थे? क्योंकि उसकी आदतें ऐसी थी। तो अब आप ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को गप्पू कहकर बुलाया जाता है तो उसे गप्पू क्यों कहते होंगे? कभी आपने सोचा है? बच्चों को ये पता है कि हम किसी को गप्पू कहकर क्यों चिढ़ाते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जो गप मारता हो, कोरी गप, नए सिरे से गप करता हो, उसे हम गप्पू कह सकते हैं। और हम ऐसे बच्चे को भी गप्पू कह सकते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी खाता है, यानी कि गप गप गप गप गप गप करके चीजों को खा जाता है। तो ऐसे बच्चों को भी हम गप्पू कह देते हैं। और कुछ बच्चे जो गोल मटोल से होते हैं उन्हें भी हम गप्पू कह देते हैं। लेकिन किसी भी नाम से पुकारे उसमें उस बच्चे का मजाक बनाना ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता। तो सोचिए बच्चों कि हमने जिस बच्चे का नाम गप्पू रखा है उसका वह नाम क्यों रखा है? तो एक कारण था गप मारने वाला गप्पू। लेकिन बच्चों, आपको ये पता है कि गप मारने में क्रिएटिविटी है, यानी कि हम कुछ अलग हटकर बोलते हैं। जो बच्चे गप मारते हैं उनमें एक खास तरह की क्रिएटिविटी, एक खास तरह की सृजनात्मकता होती है। वे वैसा नहीं सोचते जैसा आम तौर पर दूसरे बच्चे सोचते हैं या फिर बड़े सोचते हैं। बच्चों, ऐसे बच्चे ऐसा सोचते हैं जो दूसरा नहीं सोच पाता। तो गप किसे कहते हैं? अगर बच्चों से पूछा जाए कि गप क्या होती है तो बच्चे कहेंगे बात करना। शाबाश, ये बात भी ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसी बात कहना जिसमें कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि जो हो ही नहीं सकता। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी मुलाकात एक गप्पू से हुई, तो आप पूछेंगे कि गप्पू आपको कहां मिला दीदी? तो मैं कहूंगी मैं बाजार जा रही थी तो मुझे गप्पू मिले। और गप्पू ने क्या गप मारी, आप सुनना चाहेंगे? ठीक है बच्चों, तो आपको मैं गप सुनाती हूँ जो मुझे गप्पू ने सुनाई। गप्पू ने पता है क्या कहा? गप्पू ने कहा, उषा दीदी, मैंने एक ऐसा ऊंचा पेड़ देखा जो पहाड़ के ऊपर था। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें क्या गप हुई? लेकिन असली बात तो आगे है। उसने कहा कि मैंने एक ऐसा ऊंचा पेड़ देखा जो बहुत ऊपर था और उस पर बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने सोचा ठीक है, गप्पू मियाँ जो हैं वे फलों के नाम लेंगे। लेकिन गप्पू ने जो गप सुनाई उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। जानते हैं बच्चों उसने क्या कहा? उसने कहा कि उस पेड़ पर खूब बड़ी बड़ी मछलियां टंगी हुई थी। मैंने कहा गप्पू मियाँ, आप तो गप मारने में एकदम उस्ताद हैं, पेड़ पर भला मछलियां? तो उसने कहा हाँ दीदी, पेड़ पर खूब सारी मछलियां थी। मैंने कहा अच्छा, और तो फल कहाँ गए? तो बच्चे ने कहा कि उस पेड़ के सारे फल मछलियों ने खा लिए। ये लीजिए, ये तो दूसरी गप हुई। और इसीलिए सारी मछलियां फूल कर गप्पू हो गईं। तो मैंने कहा गप्पू तो आपका नाम है। तो उसने कहा हाँ दीदी, गप्पू मेरा नाम है, लेकिन मछलियाँ सारे आम सारे फल खाकर खूब मोटी हो गईं, गप्पू हो गईं, फूल गईं, तो इसलिए मैंने उनका नाम रखा गप्पू। तो फिर मेरी जिज्ञासा और बढ़ी,

मैंने पूछा, तो फिर समुद्र में कौन रहने लगा? तो उसने कहा कि पेड़ के ऊपर जितनी चिड़िया बैठती थी, उन सब ने पानी के अंदर अपने अपने घोंसले बनाए और वे उसमें रहने लगी। इससे बड़ी गप तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। यानी कि जो चीज पानी के नीचे रहती है, उसे गप्पू ने पेड़ के ऊपर बैठा दिया, और जो चीज पेड़ के ऊपर रहती है, गप्पू मियां ने उसे पानी के नीचे कर दिया। और तो और, एक और गप सुनिए, और ये गप पता है किस बच्चे ने सुनाई? वही बच्चा जो आपकी क्लास में पढ़ता है। अरे भाई नंदू, नंदू ने जो गप सुनाई वो तो गप्पू की गप से भी आगे थी। उसने सुनाया कि उषा दीदी, मैंने एक दिन ऐसी लंबी रेलगाड़ी देखी, इतनी लंबी रेलगाड़ी देखी, उसमें कम से कम 1 करोड़ डिब्बे थे। तो मैंने पूछा, नंदू बेटा 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो उसने कहा, दीदी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे जरूर गिन लिए थे। 1 से लेकर 1 करोड़ तक डिब्बे लगे हुए थे, और इतनी लंबी रेलगाड़ी थी, और इतनी लंबी रेलगाड़ी थी, जब वे धीरे धीरे छुक छुक छुक छुक छुक छुक करके चल रही थी, तो मैं उसे देखता रहा, देखते देखते मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो पता है क्या हुआ? तो मैंने पूछा, बताओ क्या हुआ? तो उसने बताया कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए। मैंने कहा, कपड़े कैसे छोटे हो गए? तो उसने कहा कि मैं तो 2 साल बड़ा हो गया था, इसलिए जिन कपड़ों में मैं सोया था, जब मैं उठा 2 साल बड़ा हो गया, तो सारे कपड़े छोटे हो गए। तो मेरी हंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि नंदू मियां की तो जो गप है वह गप्पू मल की गप से भी कहीं आगे है। तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं गप्पू, जो कोरी गप मारता है। लेकिन बच्चों, इस गप मारने में भी एक आनंद है। अच्छा सोचिए बच्चों कि अगर हम किसे भोली कहते हैं तो वो क्यों कहते होंगे? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। तो जो बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं, सीधे सरल सच्चे होते हैं, ठीक आपकी तरह बच्चों, उसे हम भोली कह देते हैं। तो हम छुटकी किसे कहेंगे? वेरी गुड, हम छुटकी उस बच्चे को कह देते हैं जो छोटा सा होता है। तो फिर गोलू किसे कहते हैं? गोलू हम उसे कह देते हैं जो गोल मटोल होता है। तो ऐसे ही बच्चों की आदत, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन और उनके स्वभाव, इन सब के आधार पर हम बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो मजा आया बच्चों को अलग अलग नामों में? तो आप बताइए, आप अपने दोस्तों को और क्या नाम देना चाहेंगे? और साथ में यह भी बताइएगा कि आप ये नाम उन्हें क्यों दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब आप मुझे यह बताइए कि आपका ऐसा कौन सा दोस्त है और ऐसी कौन सी सहेली है जिसे आप भक्कू नाम देना चाहते हैं? भक्कू माने जो भड़क जाता है, जो बात बात पर गुस्सा करता है, जैसे कक्कू करता था। तो आप बता पाएंगे कि आप अपने कौन से दोस्त, कौन सी सहेली को भक्कू नाम देना चाहेंगे? यानी आपका कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली है जो भक्कू है? आपका ऐसा कौन सा दोस्त या सहेली है जो झक्कू है? झक्कू मतलब झगड़ने वाला। और ऐसा कौन सा दोस्त है जो गप्पू है, यानी गप मारने वाला? तो आप अपने ऐसे दोस्तों को खोजिए और उन्हें ये नाम दीजिए। प्यारे बच्चों, आपने कविता में यह भी तो जाना था कि कक्कू कोयल जैसा नहीं है। तो आपको पता है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? कोयल की क्या खास बात है? बिल्कुल ठीक बताया आपने बच्चों, कोयल की खास बात है कि वह मिश्री सा मधुर बोलती है। तो क्या कक्कू मिश्री सा मधुर नहीं बोलता? बिल्कुल भी नहीं। कोयल तो कितना मीठा गाना गाती है। तो क्या कक्कू को गाना गाना नहीं आता? नहीं, कक्कू को तो जरा भी गाना नहीं आता। वह बाहर तो क्या बाथरूम में भी नहीं गाता, किसी के सामने भी नहीं गाता और गुनगुनाता भी नहीं है। तो इसलिए कक्कू जो है कोयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बच्चों, एक बात और बताइए, और बहुत ईमानदारी से बताइएगा

0: कि जब आपको कोई चिढ़ाता है, जैसे कक्कू को चिढ़ाते थे लोग, तो जैसे आपको कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। बुरा लगता है? हाँ, लेकिन मुझे कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है। पर बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही तो बात है, चिढ़ाना। अब चिढ़ाना कभी अच्छा लग सकता है, कभी बुरा लग सकता है, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो बच्चों, ये ऐसे हो सकती हैं। वो कैसे? तो वो ऐसे बच्चों कि हमें ये पता होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति हमें किसी नाम से चिढ़ा रहा है, दरअसल वे हमसे मजाक कर रहा है, हंसी टिटोली कर रहा है, तो इसलिए उसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरे लोगों के सामने हमें चिढ़ाता है तो ये बात बुरी लगने वाली है, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने बच्चों। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और सबका नाम उनकी खास पहचान है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम किसी को ना चिढ़ाएं, और किसी का अपमान अनादर करने के लिए तो कतई उसे ना चिढ़ाएं। लेकिन हाँ, ये तो हो सकता है ना बच्चों कि हम दोस्त आपस में गप मारें, हंसी टोली करें और एक दूसरे को चिढ़ाते रहें। लेकिन चिढ़ाना बस इतना हो कि किसी का दिल ना दुखे। तो आपने आज ये जाना कि कक्कू कैसा है। वह झक्कू है क्योंकि झगड़ा करता है, वह भक्कू है क्योंकि बात बात पे भड़क जाता है, ठीक है? लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप ना तो नाराज होते हैं, ना झगड़ा करते हैं, और आप बहुत मीठा गाना भी गाते हैं। मुझे मालूम है, मुझे बताया है आपके परिवार वालों ने कि आप सब बहुत मीठा गाना गाते हैं। तो आप सब मिलकर एक मीठा सा गाना गाइए और मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो हम फिर एक और नई कहानी के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
8: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

0: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। किसान भाई बहनों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपने फसलों की भी अच्छी निगरानी कर रहे होंगे। जब हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं तो उसमें खरपतवार दिखते हैं और ये किसान भाई बहनों के लिए बड़ी चिंता का सबब होते हैं। खरपतवार नाशी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन खरपतवार नाशी कई बार गहरे प्रभाव भी छोड़ते हैं और ये प्रभाव नकारात्मक होते हैं, यानी कि अन्य फसलों पर भी प्रभाव देखा जाता है। तो बदलते वक्त के साथ खेती गृहस्थी भी थोड़ी बदली है और चीजें आसान भी हुई है। खेती गृहस्थी को आसान बनाने के लिए कुछ नई चीजें भी आ रही है, उन्हीं में से एक है नैनो हर्बिसाइड्स, यानी कि नैनो शाकनाशी या नैनो खरपतवार नाशी। और इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक कुमार, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आइए आज के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक कुमार से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं नैनो हर्बिसाइड्स के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
0: सर। आपसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि नैनो शाकनाशी क्या है?
4: यह जो है आज के परिप्रेक्ष्य में आपका जो प्रश्न है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि जो अभी का जो समय चल रहा है, जो परंपरागत खरपतवार नाशी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं, तो उसी के चलते अभी जो रिसर्च के द्वारा नए चीज आए हैं किसान भाइयों के लिए, जिसे कि हम नैनो शाकनाशी भी कहते हैं, नैनो खरपतवार नाशी भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में नैनो हर्बिसाइड भी बोलते हैं। यह एक खरपतवार नाशी है जिसे नैनो तकनीकी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें कि खरपतवार नाशक तत्व जो होते हैं लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के भीतर समाहित रहता है, या नैनो कण के वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक कुशल एवं लक्षित होता है, और इसे ही नैनो खरपतवार नाशी कहा जाता है।
0: तो नैनो खरपतवार नाशी किसे कहा जाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन पहले से बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशी मौजूद हैं, नैनो खरपतवार नाशी की क्या जरूरत है सर, अभी इसका महत्व क्या है?
4: यह जो परंपरागत जो हम यूज करते थे, जो प्रयोग में लाते थे हमारे किसान भाई जो खरपतवार नाशी, उसके तुलना में अभी जो यह नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खरपतवार नाशी है, यह जो है ना, इसका बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि यह लक्षित वितरण प्रणाली पे काम करते हैं, मतलब कि यह एकदम जो है ना टू द पॉइंट जहां पे हमको यूज करना है वहां पे यह काम करता है, और परंपरागत जो हम यूज करते थे उसके तुलना में यह अत्यधिक कुशल भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आवश्यक रसायन की मात्रा होती है वह बहुत कम होती है, और इससे भी अधिक जो इसका महत्वपूर्ण चीज़ है अभी के परिपेक्ष में, जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि अपना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो यह जो नैनो हर्बिसाइड है या नैनो खर पतवार नाशी है, यह जो है ना पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होता है, मतलब अवशेष मात्रा इसका कम होता है, और भी देखें साथ ही साथ तो यह नियंत्रित रिलीज प्रदान करता है, जिससे कि मात्रा जो है ना कम हो जाती है।

0: है, और साथ ही साथ जो है ना जो आगे जो भी फसल भी आएंगे उसके लिए भी यह जो है ना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। और यह उपयोग की मात्रा भी अगर देखें तो परंपरागत के तुलना में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। ऐसे समझा जाए कि लगभग 10वां हिस्सा हम लोग यूज करते हैं परंपरागत के तुलना में। और यह धीरे धीरे भी काम करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इसका जो है ना टारगेट डिलीवरी होता है, तो इसीलिए यह जो है ना धीरे धीरे काम करता है। और भी देखें तो बीज का जो छिलका होता है उसमें भी जो खरपतवार नाशी पौधे के जो बीज होते हैं, कुछ कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, उस कठोरता के में भी यह जो है ना बहुत आसानी से जो छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी अंदर चले जाते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो हम सुन रहे हैं कि जो बहुत सारे जो परंपरागत खर पतवार नाशी हैं उससे जो है ना प्रतिरोधी क्षमता आ रहा है, तो उसको भी जो है ना उसको भी अगर हम देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम नैनो खर पतवार नाशी का प्रयोग करें तो अच्छा है। और साथ ही साथ पौधे के विकास में भी बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। उसके बाद है कि जो नीचे का पानी जो लेवल था परंपरागत खरपतवार नाशी से दूषित हो रहा था, तो उसके अदूषित जो प्रभाव है इसके उपयोग से कम कम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और इससे इसके चलते जो कृषि की पैदावार है उसमें भी बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है ना किसानों की आय दुगुनी करें, तो उसमें हम समझते हैं कि यह जो है ना टेक्नोलॉजी जो आने वाला समय है अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने के कगार पे है। और ओवरऑल देखेंगे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो है ना स्वास्थ्य पर भी जो है ना चूँकि कम प्रभाव होगा, चूँकि इसका जो है ना रेसिडुअल इफेक्ट अवशेष का जो प्रभाव है कम है, तो इससे कुल मिलाकर स्वास्थ्य पर भी बहुत इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
1: तो सर अभी जैसे कि आपने बताया तो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद है और ये बहुत कम मात्रा में और अवशेष भी कम छोड़ता है, तो कम मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद भी इतने फायदे इसके होते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बताइए
0: जी। यह क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थी उसमें भी हमने अभी बात भी किया, उसी में है कि यह जैसे सबसे जो पहला और जो प्रथम इसका जो यह है नैनो खर पतवार नाशी का, यह पूरा लक्षित जो करता है या जो है ना लक्षित क्रिया द्वारा काम करता है, कि मतलब हमको जहाँ पे डालना है वहीं पे भी जाता है, जिससे कि जो है ना जो खरपतवार नाशी जो पौधे के विशिष्ट भाग होते हैं जैसे बीज है या प्रकंद है, तो उसके जो है ना सभी अंगों में यह आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसका जो है ना आकार हमने जैसा कि बताया था इसके परिभाषा में भी कि इसका जो साइज होता है 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज में होता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसके चलते यह जो है ना पूरा जो है ना लक्षित करके जाता है और उसके लगभग सभी भागों को यह लक्षित करता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है ना इसका प्रवेश भी बहुत बेहतर तरीके से होते हैं, जो हम परंपरागत यूज करते थे चूँकि उसके साइज में अंतर था लेकिन इसका साइज छोटा होता है, तो इसका जो है ना वो जो है ना प्रवेश भी बहुत बेहतर होता है। और साथ ही साथ प्रवेश बेहतर के साथ साथ जो इसका जो ऊपर का सतही क्षेत्रफल जितना छोटा कण होगा उसका उतना ही सतही क्षेत्रफल भरा होता है, तो इसके इसके चलते क्या होता है कि यह बड़ा प्रभावी होता है, क्योंकि वह जो है ना उसका जो कार्य क्षमता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सतही का जो क्षेत्रफल है वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा क्या है कि यह जो रासायनिक संजय और बहाव को कम करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, क्योंकि इसका जो है ना अपशिष्ट कम होता है, तो इसलिए जो है ना यह अत्यधिक टिकाऊ होता है। तो इस तरह से यह जो है ना यह तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह जो है पूरा लक्षित होके काम करता है, बेहतर ढंग से प्रवेश करता है, और रासायनिक संजय के अपशिष्ट को जो है ना वह कम कर

0: बातें करते हुए अपना टिकाऊपन बनाए रखता है।
1: मतलब सबसे बड़ी बात है कि लक्षित होकर काम करता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: जिस चीज को खत्म करना है ये उसी को खत्म करता है और अवशेष भी नहीं रहता।
0: जी, जी।
1: सर काम कैसे करता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन नैनो हर्बिसाइड को बनाया कैसे जाता है?
0: तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है तो मुख्यतः दो तरह से इसको बनाए जाते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट नैनोकन का उपयोग करते हैं, लोग बोलते हैं डायरेक्ट नैनोकन, और प्रत्यक्ष रूप से जो कि हम क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे चीज हैं जो डायरेक्ट खरपतवार नाशी की तरह काम करते हैं और उसको जो है ना नैनो रेंज में हम ला के उसका उपयोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि नैनोकनों को समाहित करके भी हम बनाते हैं। इसमें जो है ना जो परंपरागत जो अपना खरपतवार नाशी है उसको नैनोकन के साथ समाहित करके भी हम इसका बनाते हैं, जिससे कि इसका जो है ना कार्य क्षमता में जो है ना कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो नैनो जो कण होते हैं या छोटे छोटे हैं होते हैं इसका कार्यशीलता बहुत ज़्यादा होता है, सतह का जो जो ऊर्जा है वह भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद सतह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि परंपरागत में ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या है कि अब दो प्रकार है बनाने का, उसमें जैसे कि प्रत्यक्ष जिसमें नैनो कणों का हम उपयोग करते हैं उसमें जो परंपरागत जो सक्रिय अवयव होते हैं वह उसको जो है ना नैनो रेंज में स्केल में डिलीवरी सिस्टम में शामिल किया जाता है, इससे क्या हो जाता है ना इसका जो है ना प्रभावशीलता बढ़ जाती है और पर्यावरण का कि पे जो है ना जो बुरा प्रभाव है वह कम हो जाता है। और तीसरा जो ऑलरेडी हम लोगों ने चर्चा भी पहले भी किया कि जो यह टारगेट होता है और कंट्रोल रिलीज होते हैं, हम आपको जो इसमें जो है ना जो हम प्रयोग करते हैं वह बहुत लक्षित तरह से होता है और इसका नियंत्रण जो हम रिलीज का नियंत्रण है वह भी बहुत प्रभावी होता है। साथ ही साथ जो हमने चर्चा किया था कि इसका उपयोग जो है ना जो धीरे धीरे जो होता है ना तो इसको जो है ना कि जितना जहाँ जिस पौधे को चाहिए उस तरह से काम करके या जो है ना अपना कुशलता से उस पौधे को नाश करने में या खरपतवार नाशी को हटाने में बहुत भूमिका निभाती है। और जो दूसरा जो है नैनोकन समाहित जो करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो उपयुक्त होता है जैसे पॉलीमर जो यूज होता है पॉलीमर आधारित जो हम लोग बाहक यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉली के प्रेक्टो पीसीएल जो यूज करते हैं यह जो है ना बहुत ही उसके लिए जो है ना कंफर्टेबल होता है जो है ना बहुत उसके लिए सहयोगपन का काम करता है। दूसरा है कि मिट्टी के आधारित पे भी हम लोग बाहक का यूज करते हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्ले वेस्ट बाहक। तो उसमें उसका खासियत यह है कि जो क्ले हम यूज करते हैं वह तो ऑलरेडी प्राकृतिक चीज़ है, हम उसमें वहाँ रसायन का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ से भी इसकी जो है ना महत्ता और भी बढ़ जाती है चूँकि यह प्राकृतिक रूप से हम इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है सबसे बड़ा किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि इसमें खर्च जो है ना कम हो जाती है, लागत कम हो जाती है, क्योंकि जो है ना अच्छे गुणवत्ता अगर हम मिट्टी क्ले को यूज करते हैं तो उसमें भी जो है ना नैनोकन को समाहित करने में बड़ा अच्छी भूमिका निभाती है। और साथ ही साथ जो है ना इसमें क्या होता है कि सोखने की भी क्षमता बढ़ जाती है।
1: अच्छा
0: जी, जिसमें सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है ना और भी है जैसे सिलिका आधारित बाहक है जिसको कि मेसोपोरस सिलिका नैनोकन भी बोलते हैं, उसी तरह कार्बन आधारित बाहक होते हैं जिसमें कि मुख्यतः जो है ना तेल वगैरह का भी जो है ना यूज करते हैं। तो इसमें जो है ना जो मुख्य जो चीज होते हैं इसमें जो है ना कार्बन होते हैं और कार्बन से जो संबंधित है जैसे ग्राफीन वगैरह होता है उसका जो है ना उपयोग जो है ना बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो इस तरह से जो है ना दो इसका मुख्य तरीका है बनाने का कि जिसमें कि हम नैनोकन को हम जो है ना प्रत्यक्ष रूप से हम यूज करते हैं, दूसरा नैनोकनों को डिफरेंट तरह के पॉलीमर में या क्ले या सिलिका वेस्ट बाहक में उसको समाहित करके जो है ना अपना जो खरपतवार नाशी है उसको यूज करके बनाने से क्या होता

0: है कि इसकी जो है ना कार्य क्षमता जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
1: सर आपने बताया कि इसे कैसे बनाया जाता है, दो प्रकार से इसे बनाया जाता है
0: जी।
1: और दो प्रकार से बनाया जाता है तो इसके प्रकार भी कई तरह के होते होंगे
0: जी, जी।
1: तो नैनो हर्बिसाइड्स कितने प्रकार के मौजूद हैं?
0: अच्छा अच्छा जी, यह जो है ना मुख्यतः अगर अगर देखेंगे तो यह तीन तरह के होते हैं, जैसे कि पालक

0: खरपतवार नाशी। तो यह जो है ना, जो तीनों का जो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बनिक खरपतवार नाशी के रूप में जो नैनो खरपतवार नाशी होता है, इसमें मुख्यतः मुख्य चीज जो होता है ना, कार्बनिक चीज का उपयोग किया जाता है, जैसे तेल वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जिससे कि इसकी जो है ना क्षमता में बढ़ोतरी होती है और धीरे धीरे इसका जो है ना उपयोगिता बढ़ता है। तो और दूसरा है कि कार्बनिक खरपतवार जो नाशी होता है, इसमें हम लोग मुख्यतः जो धातु युक्त जो है ना नैनोकण होता है, जो बहुलता से मिल जाता है, वैसे नैनो खरपतवार नाशी का यूज करते हैं, जिससे कि इसमें जो इसकी खासियत क्या है और कार्बनिक खरपतवार नाशी का, इसमें जो धातुकण यूज करते हैं ना, तो उसमें जो है ना छिद्र पोरस चीज होता है, और उसमें जो पोरस में आसानी से जो अपना परंपरागत जो खरपतवार नाशी, जैसे एट्राजिन है, सेमाजिन है, ग्लूफोसाइनेट है, ग्लेफोसाइनेट है, तो यह सब जो है ना बहुत आसानी से उसमें समाहित हो जाते हैं, जिससे इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। और जो तीसरा है, इसको संयुक्त नैनो शाकनाशी भी बोलते हैं, तो इसमें दोनों तरह के चीज यूज करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक।
1: अच्छा,
0: तो यह देखते हुए कि कहीं दोनों के उपयोग से इसकी जो है ना कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो जाए, तो तीसरा जो है ना संयुक्त नैनो शाकनाशी का भी इसमें यूज होता है। इसमें संयुक्त रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों मिला रहता है। और उदाहरण तौर पे जो हम लोग यहाँ एक आया है, जैसे है ना बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो यह जो है ना जो हर्बिसाइड का उदाहरण है, नैनो हर्बिसाइड का, जो कि बेंटाजोन इनकेप्सुलेटेड इन कैल्शियम फॉस्फेट नैनो पार्टिकल्स में, तो इसमें जो है ना किसान भाई लोग इस तरह के जो है ना नैनो हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। उसी तरह जो है ना PCL जो है ना एटीजेन NPS है, PCL जो एक पॉलीमर है और एट्राजिन नैनो पार्टिकल बेस्ड है, उसी तरह PCL एमेट्रॉन है, नैनो पार्टिकल है, PCL सिमाजिन्स नैनो पार्टिकल्स है, तो इसमें जो है ना दोनों तरह के, इसमें जो परंपरागत जो खरपतवार नाशी है उसको नैनो कण के साथ मिक्सित जब करते हैं, तो इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाता है।
1: मतलब बनाया दो प्रकार से जाता है, लेकिन अभी जो मौजूद है तीन प्रकार के हैं, एक कार्बन बेस्ड है, दूसरा जो कि अकार्बनिक है, और तीसरा संयुक्त है जिसमें दोनों प्रकार के मिलाए हुए हैं। अब तक हमने नैनो खरपतवार नाशी से जुड़ी लगभग हर बात जानी है, लेकिन सबसे अहम बात जो किसान भाई बहन के लिए ज़रूरी होती है कि इसे उपयोग कैसे करेंगे, नैनो खरपतवार नाशी का उपयोग करने का क्या तरीका है, ये सर बताएं आप।
0: यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने बहुत चीज़ देखा कि इसको कैसे बनाया जाता है, यह है क्या, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका उपयोग।
1: जी जी,
0: क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो कण बहुत छोटा होता है, अपना जो सूक्ष्म जो मतलब इतने छोटे छोटे हैं, अपने आँख से इसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, और इसका उपयोग निश्चित तौर पर सुरक्षात्मक ढंग से ही करना चाहिए। और दूसरी जो बात है कि जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग किया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसान भाई भावनात्मक में आके या किसी तरह के दूसरे को देख के भी जो है तो कभी कभी ज़्यादा यूज कर लेते हैं।
1: जी, जी।
0: तो उस तरह से हमको बचना चाहिए, जहाँ पे जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा भी है, तो इसके साथ सावधानी भी बरतने की उतनी ही ज़रूरत हो जाती है। और जो तीसरा जो है कि इसका जो उपयोग पौधों के सक्रिय चरणों के आधार पे करें तो और अच्छा होता है, कि जो पौधा जो खरपतवार जो पौधे होते हैं तो उसका जो विकसित जो पूरा सक्रिय फेज जो होता है, अगर उस समय टारगेट करें तो जो है ना नैनो हर्बिसाइड या नैनो खरपतवार नाशी या जो है ना अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि उस फेज में यह बहुत एक्टिव तरह से काम करेगा, बहुत सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे कि उसमें जो है ना खरपतवार नाशी पे जो है ना बुरा इफेक्ट तो पड़ना है,
1: अच्छा
0: पड़ना चाहिए, ताकि वह पौधा मर जाए और जो अपना जो

0: जो खाद्य पौधा है उसको जो है ना विकास व्यवहार अच्छा हो। और भी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यतः इसको जो है ना बहुत तरह से यूज करते हैं, लेकिन जो अभी तक देखा गया है कि इस जब हम स्प्रे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, तो इसलिए किसान भाइयों को इसका उपयोग जो है ना स्प्रे तरह से करें तो अच्छा है। और जो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका उपयोग तभी करें जब देखें कि हवा की बहाव नहीं है। अच्छा। उसमें बहाव होने से जो है जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि बहाव के साथ कुछ जो है ना खरपतवार नाशी, जो नैनो खरपतवार नाशी है, अपने खाद्य पौधे पे भी आ जाए तो उससे जो है ना उसमें हानि की संभावना है। तो हम यहाँ किसान भाई को जरूर यह चीज़ बताएंगे कि जिस समय हवा का बहाव कम हो और उस समय जो है नहीं करें तो यह ज़्यादा कारगर भी होगा और इसका हानिकारक जो प्रभाव है कम है। और किसान भाई जब भी यूज करें तो जरूर या उपयोग करें तो उस समय जरूर मुंह पे कुछ कपड़ा हो या जो मास्क है उसका यूज करें, क्योंकि यह हमने बताया था प्रारंभ में यह बहुत छोटे होते हैं, तो जितना ही छोटा होगा तो हो सकता है कि उसका प्रभाव ही उतना ही होगा। और तीसरी और जो आगे की बात है कि किसान भाई अगर नहीं जानते हैं किसी तरह का कि हम कितना लें क्या करें, तो जो परंपरागत हम यूज करते थे प्रयोग करते थे उसका जो है ना दसवां हिस्सा से
1: काम हो जाता
0: है। हाँ, के तुलना में आप लें, अगर पहले एक लीटर लेते थे तो उसका दसवां हिस्सा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना किसान भाई ध्यान में रखें इसका उपयोग, और जब जरूरत हो तभी करें
1: जी।
0: हाँ, जब जरूरत हो तभी करें और जरूर बुद्धिमत्ता को प्रयोग करके ही करें। भावनात्मक में दूसरे को देखा होसी करके किसान भाई इसका उपयोग नहीं करें, जहाँ जितना जरूरत हो उतना ही करें।
1: तो मतलब नैनो खरपतवार नाशी बहुत फायदेमंद है, लेकिन जितनी इसकी आवश्यकता होती है उतनी ही उतना ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और हवा का बहाव ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही इसकी मात्रा कितनी है ये तो ज़रूरी है ही, और मास्क पहनना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि ये हमारे किसान भाई बहनों के काम आएगी। और जो परंपरागत खरपतवार नाशी है उसका एक विकल्प है, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान भी होते थे, तो उसका एक ये बेहतरीन विकल्प है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
6: कौन सी कहानी टीकी?
5: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
7: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
5: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
6: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
5: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा।

0: विश्वास के साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि

रिलीज पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व तो देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है आप लोग ज्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना जरूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डाले तो कितना डाले, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वेराइटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे, अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए, और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए।

और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, माने पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें तो इसके लिए हम लोगों को एक हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसके इसको देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फास्फोरस पोटास दे देना चाहिए और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या एक महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को एक हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है, जो कि हरी खाद में। और एक हुआ
सिर्फ नाइट्रोजन नहीं और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पोटाश भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक।

0: फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट है, और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फॉस्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फॉस्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि तीन बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम तीन बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका तीन हफ्ता या चार हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन उसका पहले एक बार। तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम दो बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है, तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज़ करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?

0: 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात।

0: सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफ़ी ज़्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
0: आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है।
2: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है। आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है। इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक

0: ഉന്നത് കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. तो आज हम खास विषय लेकर आए हैं बुआई से पहले भूमि की तैयारी, और इसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री, जो कि वैज्ञानिक हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम. भूमि की तैयारी क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं
1: जी. तो किसी भी प्रकार की खेती में भूमि की तैयारी करना सबसे महत्वपूर्ण है. ये एक महत्वपूर्ण चरणों में से बहुत ज़रूरी होती है. फसल की स्थापना के लिए उसके विकास और उपज पर सीधा प्रभाव डालती है ये. चाहे आप कहे किसी छोटे बगीचे की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े क्षेत्र में कृषि की तैयारी, फसल उगाने की तैयारी कर रहे हों, इसके लिए आपको उचित तरीके से भूमि की तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है. भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसकी महत्वता जानते हैं. मिट्टी की संरचना में सुधार करती है ये. जैसे कि हम भूमि की तैयारी करते हैं तो बड़े ढेले जो होते हैं उनको हम छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं या उनको भुरभुरा बना देते हैं, जिसके वजह से पानी हवा काफ़ी अच्छे से फैलती है मिट्टी में और पेड़ या फसलों की जड़ें भी काफ़ी अच्छे तक नीचे तक जा सकती हैं. उसके बाद अगर हम मिट्टी को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो पोषक तत्व जो होती है उनका संतुलन भी बना रहता है, जिसमें हम उनके न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलते हैं वो सही तरीके से पौधे को मिल सकता है उनके ग्रोइंग स्टेजेस में. देन उसके बाद जल निकासी में सुधार करने के लिए भी हमें मिट्टी का तैयारी करना या भूमि का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है. खरपतवार या कीट नियंत्रण के लिए भी हम भूमि की तैयारी करते हैं. भूमि को जब हम तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो पिछले फसल के वजह से जो कीट रह गए या जो वीड्स रह गए, खरपतवार रह गए, वो भी अच्छे तरीके से भूमि से निकल जाएं. तो ये भी हम, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम भूमि को तैयार करने के दौरान ध्यान में रखते हैं.
0: अब भूमि की तैयारी के कुछ प्रमुख चरणों के बारे में हम जानना चाहेंगे
1: जी. तो भूमि का तैयारी जब हम करते हैं तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कुछ उसके चरण जो हैं. सबसे पहले तो हम किसी भी भूमि का जहाँ पे फसल उगाना है हम सबसे पहले देखेंगे कि उस भूमि का ढलान क्या है. पहले हम भूमि के ढलान को नापेंगे, जिससे पानी का निकास या पानी का ठहराव उससे हम पता कर सकते हैं. इसके बाद हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं, उसमें मौजूद पोषक तत्व कितने हैं, उसमें पीएच कितने हैं. पहले हम ये नापते हैं. अलग अलग जगह के अलग अलग पोषक तत्व होते हैं तो इनको नाप कर हम पहले ये देखते हैं कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं. उसके बाद उसके हिसाब से कितने फसलें, कितने फर्टिलाइजर्स खाद देना चाहिए वो हम बताते हैं. उसके बाद दूसरी चीज़ हो जाती है, जब हम ये कर लिया फिर मिट्टी की जुताई और पलटाई करना. मिट्टी की जुताई या पलटाई इसको हम प्लॉविंग बोलते हैं, और उसे भी हम इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी को हम भुरभुरा बना सके, मुलायम बना सके, हवा और पानी का समुचित संचरण हो सके. और इसके लिए हम कई सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हल चलाते हैं. पारंपरिक खेती में अक्सर हम हल देखते हैं जो किसान बैल के मदद से हल चलाते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि जो बड़े ढेले हैं खेतों में वो छोटे छोटे भुरभुरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, ताकि

0: जो भी फसलें हम जो भी हम बुआई कर रहे हैं बीज की, तो वो अच्छे तरीके से लाइन में बुआई कर सके या उसकी जर्मिनेशन एक साथ हो सके, तो ये कुछ रीज़न होते हैं। उसके अलावा ट्रैक्टर चालित जुताई उपकरण का भी हम इस्तेमाल करते हैं प्लविंग के दौरान, जिसको हम टिलेज इम्प्लीमेंट्स भी बोलते हैं। तो प्लविंग के लिए सबसे पहले जो हम प्राइमरी टिलेज, सबसे पहले जो हम एकदम से हार्वेस्ट के बाद जो पहला प्लविंग करते हैं जिसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं, उसमें हम मोल्ड बोर्ड प्लाव चलाते हैं या रोटावेटर चलाते हैं। तो इसकी मदद से जो पुराने पिछले फसल के जो अवशेष रह गए हैं वो हटाए जाते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े ढेले हैं उसको तोड़े जाते हैं छोटे छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे मुलायम भुरभुरे मिट्टी में। और उसके बाद अगर हमें और भुरभुरा करना है तो हम सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट चलाते हैं, जैसे हैरो हो गए। तो इनकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी इतने भुरभुरे इतने मुलायम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुआई बहुत आसानी से हो जाती है और हवा और पानी काफ़ी अच्छे से फैल जाता है मिट्टी में। इसके बाद हम समतलीकरण करते हैं, या सो हम लेवलिंग बोलते हैं। तो लेवलिंग करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो भी मिट्टी है वो एकदम समतल हो जाए और पोषक तत्व, पानी, हवा इत्यादि का समान वितरण हो और बुआई करने में आसानी हो। और जब भी बुआई करने के बाद बीज में से जर्मिनेशन होगा तो वो एक साथ होगा, तो इसके वजह से हम लेवलिंग का भी विशेष ध्यान देते हैं। उसके बाद हम जल प्रबंधन का ध्यान देते हैं। जल प्रबंधन के लिए हम देखते हैं कि बंड्स यानी मेड़ कैसे बन रहे हैं। जैसे कुछ फसलें यानी धान, गेहूँ, गन्ने में ठहराव का ज़रूरत होता है, पानी हमें चाहिए कि वो ठहरे ज़्यादा देर तक। तो इसकी वजह से हम अच्छे से मेड़ की तैयारी करते हैं ताकि जब भी बारिश हो, जब भी हम सिंचाई करें तो पानी काफ़ी देर तक ठहरे उन फसलों में। और कुछ फसल ऐसे भी होती है जिसे हमें पानी के ठहराव के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि पानी तुरंत से निकल जाए। तो इसकी वजह से हम ध्यान देते हैं कि ड्रेनेज फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से बने। हम ध्यान देते हैं कि जब भी पानी आए तो वो तुरंत से खेत से बाहर चला जाए, उसकी निकासी का सही व्यवस्था हो। तो इसके लिए भूमि का ढलान हम उस तरफ ऐसे मोड़ देते हैं जिस तरह से ड्रेनेज के लिए जो आसानी हो। उसके बाद अगर हमें मान लीजिए ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर की सिंचाई करनी है, तो उसके वजह से उसके लिए हमें चैनल्स बनाने होते हैं। उसके लिए हमें कुछ अलग तरीके से मिट्टी की तैयारी करनी होती है ताकि जब भी हम ड्रिप चैनल्स या स्प्रिंकलर चैनल्स बना सकें तो उसके लिए वो फसलों को अच्छे से पानी दे सके। उसके बाद हम अगला जो है, उसके बाद हम उर्वरक और खाद डालने की बात करते हैं। तो जब हमारा लेवलिंग हो जाता है तो हमें ये देखना होता है कि उसमें खाद जो हम डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से मिल जाए मिट्टी में। तो लेवलिंग करने के बाद हम उसमें खाद, चाहे वो आपका जैविक खाद हो जाए, जिस तरह से गोबर, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि, हम ये डालकर मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देते हैं। या फिर अगर आप रासायनिक खादें डाल रहे हैं जैसे कि फास्फोरस हो गया, यूरिया हो गया, तो ये सब डालने के बाद हम मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देते हैं और उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि बुआई करें। उसके बाद एक बुआई करने के पहले जो बच जाती है वो हो जाती है हमारी कुछ कीटनाशक और खरपतवार को मारने की दवाएं। तो अगर हमारे खेत में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा है या कीट काफ़ी आते हैं तो इसके लिए भी हमें बुआई से पहले कुछ विशेष ध्यान देनी पड़ती है। अगर किसी खेत में हमें किसी घास ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ खरपतवार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए हम प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड देते हैं। तो उसको देने के लिए मतलब हम सोइंग के पहले या सोइंग के टाइम पे हम उन हर्बिसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं जिसके वजह से खरपतवार कम आते हैं। या फिर अगर हमें कीटनाशक अगर हमें दवाई डालनी है तो वो भी हम सॉइल में मिलाकर कीटनाशक दवाइयों को डालकर सॉइल के अंदर उसको हम सॉइल को मिला देते हैं। तो ये सब कुछ है जिनको हम करते हैं बुआई करने के पहले। तो ये प्रमुख चरण हो गए
1: जी। और किन्हीं वजहों से अगर हम भूमि की तैयारी करें तो वो कौन से वजह हो सकते हैं
0: जी? इसके अलावा भूमि की तैयारी कुछ विशेष कारणों से भी की जाती है, जैसे कि हर जगह की भूमि एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग स्लोप होते हैं, अलग अलग ढलान होते हैं, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा मल्चिंग, तो किसी जगह पे जहाँ पे पानी का इवापोरेशन या पानी बहुत ज़्यादा रहता नहीं है मिट्टी में, पानी बहुत उड़ जाता है मिट्टी से, या जहाँ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के सतह पर पौधे के अवशेष को सामग्री से ढका जाता है, इस अवशेष सामग्री से ढका जाता है।

0: है, इससे क्या होता है कि भूमि की नमी बनाए बनी रहती है और खरपतवार जो होते हैं वो भी वृद्धि उसमें नहीं होती है। और उसके अलावा मल्चिंग के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सॉइल कंडीशनिंग। सॉइल कंडीशनिंग या कंडीशनर्स जो होते हैं हम उसको भी डालते हैं जब हम जानते हैं, जब हम देखते हैं कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम है, तो उस केस पे हम सॉइल कंडीशनर्स डालकर मिट्टी को मिला देते हैं। या फिर अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा है या उसकी उसका पीएच कम है या ज़्यादा है, जो भी उस तरह से हम अमेंडमेंट्स मिलाते हैं उसमें, जैसे लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, वो मिलाकर हम मिट्टी को तैयार करते हैं। इसके अलावा एक हो जाता है हमारा कंटूर जुताई। ढलान वाले क्षेत्रों में मिट्टी को इरोजन से बचाने के लिए हम कंटूर की जुताई करते हैं, जिसमें भूमि के ढलान के समकोण पर जोता जाता है, जिससे बारिश का पानी सीधे बहने के बजाय ज़मीन पर रुक जाए और धीरे धीरे अवशोषित हो जाए। इसके अलावा एक और होती है टेरेसिंग। जब हम भूमि की तैयारी करते हैं उन जगहों पे, जैसे पर्वतीय जगह हो गया, ऊंचे क्षेत्र वाले जगह हो गए, तो उन पे हम टेरेसिंग करते हैं, जहाँ पर ढलान वाले भूमि को हम सीढ़ीदार रूप में विभाजित कर देते हैं और उन सीढ़ियों पर हम फसलों को उगाते हैं। तो इस तरह से हम भूमि की तैयारी करते हैं। एक आखिरी चीज़ हो जाती है हमारी पडलिंग, जो किसान भाइयों उनको जानकारी है, काफ़ी जानकारी है इस चीज़ की, जो धान में विशेषतर यूज़ करते हैं। पडलिंग की जाती है बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसी मिट्टी पे धान की, तो उसमें हमें चाहिए कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो काफ़ी आसानी से मिट्टी के अंदर चले जाए, और जब भी बारिश हो उसमें मिट्टी की पानी के ठहराव काफ़ी ज़्यादा हो। तो इस वजह से पडलिंग अक्सर हम धान में करते हैं, क्योंकि हमें धान में ऐसी कुछ चाहिए, ज़रूरतें होती हैं धान में, हमें चाहिए कि पानी ज़्यादा देर तक ठहरे और उनकी जो जड़ें होती हैं ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स की, जिनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी महीन होती हैं और इसीलिए काफ़ी अच्छे से उस पर इस्टेब्लिश हो, काफ़ी अच्छे से मिट्टी पर बने, तो इसी वजह से हम पडलिंग करते हैं धान की। तो इस तरह से हम विभिन्न जगहों के लिए, विभिन्न फसलों को लगाने के लिए अलग अलग तरीके से भूमि की तैयारी करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि फसल के लिए एक मजबूत आधार बनाया जा सके, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार हो।
1: जी तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बुआई से पहले भूमि की तैयारी क्यों करते हैं, इस पर विशेष वार्ता, और आप सभी के बीच थी डॉक्टर गायत्री। और आशा करते हैं कि आज यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: देखो नाटक देखो।
1: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
2: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
3: हाँ।
1: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
3: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
1: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
4: क्या क्या क्या?
2: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
4: अच्छा,
0: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
2: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
2: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
2: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल

0: क्या है?
1: चलो बताती हूँ बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
3: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
4: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
3: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
5: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
3: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
6: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
3: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
7: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
3: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति खेती होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना

जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दें अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित

पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है। और जब उनका मेनोपॉज होता है, यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है, तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है, तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जिसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियाँ होती है, पैरों की उंगलियाँ या हाथों की उंगलियाँ, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियाँ कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी

ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज़ 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही ले। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जाँच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी
की टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर जरूरत आपको लगे तो। दोस्तों महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप

सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की

0: first.
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
5: कौन सी कहानी टीकी?
4: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
6: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
4: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
4: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ഭാരത് കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं अनु और हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में आपके लिए खेती से जुड़ी अलग अलग विषय लेकर आती हूं और आज भी बिल्कुल आपके लिए है ये विषय, धान में खरपतवार प्रबंधन. तो इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं आज डॉक्टर महेश कुमार. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. अब सबसे पहले तो अपने टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, विषय की ओर. धान की बुआई किन किन विधियों द्वारा की जा सकती है और किन किन विधियों से खरपतवार प्रबंधन हम कर सकते हैं, बताएं.
1: प्रश्न बहुत ही अच्छा है. एक्चुअली हमारे भारतवर्ष में धान की जो बुआई है या रोपाई है वो मुख्य रूप से हम लोग दो विधियों से करते हैं. देखा जाए तो एक हम सीधी बुआई कहते हैं और दूसरा धान की जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है, जिसमें हम धान की नर्सरी डालते हैं और उसके बाद रोपाई करते हैं. तो धान की हम सीधी बुआई करते हैं और दूसरा धान की रोपित विधि से करते हैं. तो अब दोनों में जो खरपतवार है, खरपतवार का अलग अलग स्पेसीज आती हैं. जैसे धान की जब हम सीधी बुआई करते हैं तो धान की सीधी बुआई में सबसे

अधिक समस्या अगर किसी बात की है तो खरपतवार की है, क्योंकि सीधी बुआई में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। हम इवन वर्षा जो आधारित खेती है उसमें भी हम धान की सीधी बुआई करके खरपतवार प्रबंधन करके धान की उपज ले लेते हैं। तो वर्षा का पानी कम होने से या सिंचाई का पानी उसमें कम देने से खरपतवार ज़्यादा उगते हैं। तो यूँ कहें कि धान की जो सीधी बुआई है उसमें सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की समस्या है तो खरपतवार की है, तो उसमें खरपतवार का ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा धान की रोपित विधि है, तो धान की रोपित विधि में चूंकि हम बिचड़ा डालते हैं, बिचड़ा 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उसमें खरपतवार थोड़ा कम आते हैं। तो इसलिए दोनों विधियों में खरपतवार प्रबंधन का जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे धान की जो सीधी बुआई है, सीधी बुआई में खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें। क्योंकि धान की जो हम सीधी बुआई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, धान के खेत को तैयार कर लेते हैं, जैसे गेहूं का खेत तैयार करते हैं उसी तरह धान का खेत तैयार कर लेते हैं, दो तीन बार जुताई कर लेते हैं, पाटा लगाते हैं, खेत भुरभुरा हो जाता है। उसके बाद धान को हम 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर 20 सेंटीमीटर के कतारों में बुआई कर देते हैं जी। तो ये धान की सीधी बुआई हुई। दूसरी विधि है सीधी बुआई में, जहाँ हमारा वर्षा का पानी थोड़ा यदि अधिक मिल जाता है, किसी कारणवश खेत गीला हो जाता है, तो वहाँ पर हम जो हमारा धान की बुआई के लिए ड्रम सीडर आता है उसको हम अच्छे से पार्शियल पडल सॉइल में ड्रम सीडर में बीज भर करके 20 सेंटीमीटर की कतार को मेंटेन करते हुए बीज को गिरा देते हैं। तो चाहे धान की सीधी बुआई चाहे ड्राई मेथड से हो चाहे वेट मेथड से हो, धान में खरपतवार बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मिल जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे सांवा है, सवई है, ये सब आ जाते हैं, और मोथा कुल के कुल 6 प्रकार के खरपतवार आते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो धान में करीब 100 से 150 प्रकार की खरपतवार आते हैं, लेकिन इनको जब हम 3 ग्रुपों में बांटते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो जाते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं और मोथा कुल के खरपतवार रहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो

0: खरपतवार हैं, तीनों ग्रुप के जो खरपतवार हैं वो बहुत ही सक्रिय मात्रा में होते हैं और इनका ससमय प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि धान जब हम बुआई करते हैं सीधी, तो सीधी बुआई करने के तीन दिन, दो से तीन दिन के बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू होने लगता है और खरपतवार के बीज का भी जर्मिनेशन उसी के साथ साथ होने लगता है। लेकिन खरपतवार का ग्रोथ जो है, जो उनका वानस्पतिक विकास है, वो बहुत तेजी से होता है, इसलिए सीधी बुआई में ये समस्या आ जाती है कि खरपतवार तेजी से बढ़ जाते हैं, धान हमारा छोटा रह जाता है। तो इसमें ससमय खरपतवार प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हम लोग सीधी बुआई के लिए एक बहुत प्रचलित हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं पेंडामेथिलीन। पेंडामेथिलीन का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें वहाँ सावधानी देने की ज़रूरत है। अगर हमको पता है कि अगले 24 घंटे में या अगले 48 घंटे में बरसात होने वाली है तो पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पेंडामेथिलीन का हम प्रयोग कर देते हैं, पेंडामेथिलीन का जो हमारा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है, अर्थात 400 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ दवा लेकर के उसको 200 लीटर पानी में घोल करके हम लोग बुआई के 24 घंटे के भीतर खेत में छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये पेंडामेथिलीन एक बहुत बारीक लेयर बनाता है ज़मीन पर, और जो ही खरपतवार उगने लगते हैं और उस लेयर को टच करते हैं वो मर जाके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम पेंडामेथिलीन आज छिड़के हैं और 48 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है, तो वो पेंडामेथिलीन बरसात के पानी के साथ घुल करके बीज के टच में आ जाता है, क्योंकि बीज हम दो से ढाई सेंटीमीटर की गहराई पर ही उथला बीज बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर, तो बीज के टच में आने से बरसात के पानी के साथ वो बीज का अंकुरण भी खराब कर देता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी देना पड़ता है कि पेंडामेथिलीन का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन अगर हमको मौसम विभाग से अलर्ट मिला हुआ है कि अगले 48 घंटों में बरसात होने वाली है, तो उस कंडीशन में पेंडामेथिलीन का प्रयोग न करें। तो अब पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर भी सकते हैं और रेनी सीजन होने की वजह से बरसात का अगर आगमन होने वाला है तो आप न भी करें, तो उसके लिए हम फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं कि हमको बुआई के 8 दिन बाद 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोई हर्बिसाइड चाहिए। तो अगर पेंडामेथिलीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आप देखेंगे कि खेत में बुआई के 8 से 10 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा खरपतवार आ जाते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे केस में आप मार्केट में उपलब्ध है पाइरजोसल्फुरान। पाइरजोसल्फुरान का जो ब्रांड नेम है, बहुत से कंपनियों के अच्छे ब्रांड ही लिया जाए, चाहे टाटा का हो, चाहे सिंजेंटा का हो, चाहे एक्सेल वाला को, किसी का भी हम कंपनी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अच्छे ब्रांड का लिया जाए जिसमें उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। तो पाइरजोसल्फुरान नामक केमिकल, उसका जो कि अगर हम 8 दिन पर दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली पोस्ट इमरजेंस, 8 दिन पर दे रहे हैं तो हमें डोज थोड़ा कम करना पड़ता है, तो उसमें केवल 10 ग्राम सक्रिय तत्व, चूँकि ये आता है 10% का, इसलिए अधिक से अधिक 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रोडक्ट लगेगा, जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसकी मात्रा 100 ग्राम हो जाएगी। तो हमने कहा कि पाइरजोसल्फुरान 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है, अर्थात 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़। तो इससे क्या होगा कि जो 8 से 10 दिन पर जब हम इसको देते हैं तो 200 लीटर पानी में घोल करके, जैसे 4 ग्राम हमने पाइरजोसल्फुरान बताया और 200 लीटर पानी में घोल लिया जाए और उसको प्रति एकड़ बुआई के 8 से 10 दिन बाद छिड़काव कर दें, तो इससे जो जमे हुए खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम 20 से 25 दिन पर जब खरपतवार का प्रेशर दोबारा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट इमरजेंस। तो पोस्ट इमरजेंस के रूप में हमारे पास बहुत सी अच्छी रासायनिक दवाएं हैं, जिसमें पहला आता है बिसपाइरीवेक सोडियम। बिसपाइरीवेक सोडियम जो है ओडिसी के नाम से भी आ रहा है और नामनी गोल्ड के नाम से भी आ रहा है और बहुत से नाम से आ रहा है। तो बिसपाइरीवेक सोडियम का जो सक्रिय तत्व है वो कहते हैं 30 से 35 ग्राम हमें लेना है। बिसपाइरीवेक सोडियम 30 से 35 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत पड़ती है, अर्थात एकड़ में अगर हम बात करें तो 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व बिसपाइरीवेक सोडियम का लिया जाए। बिसपाइरीवेक सोडियम का 12 से 14 ग्राम सक्रिय तत्व लिया जाए और इसको 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 से 25 दिन पर छिड़काव करें। ध्यान रखना होगा कि उस समय छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, जिससे कि दवा अच्छे से काम कर सके। तो इससे क्या होगा कि धान के जो विभिन्न प्रकार के सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं, मोथा कुल के खरपतवार हैं।

एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, लगभग 80% तक खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम विष पारिवक सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश धान की सीधी बुआई में विष पारिवक सोडियम की उपलब्धता न हो या बाजार में नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पे आप पाइरजोसल्फ्यूरॉन ले सकते हैं। पाइरजोसल्फ्यूरॉन जो 8 दिन पर उपयोग किए थे, वही पाइरजोसल्फ्यूरॉन आप 20 से 25 दिन पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए उसका मात्रा जो है थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो पाइरजोसल्फ्यूरॉन जो रसायन है उसका 20 ग्राम सक्रिय तत्व, देखिए किसान भाइयों, हम सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं, मतलब 20 ग्राम जो पाइरजोसल्फ्यूरॉन होगा 100% केमिकल होगा। 20 ग्राम पाइरजोसल्फ्यूरॉन लिया जाए या प्रति हेक्टेयर दर से उपयोग करें, अथवा 8 ग्राम पाइरजोसल्फ्यूरॉन प्रति एकड़, अगर 1 एकड़ में देना है तो 8 ग्राम पाइरजोसल्फ्यूरॉन लिया जाए, उसको 200 से 250 लीटर पानी में घोल लिया जाए और प्रति एकड़ की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे भी वही होगा कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और मोथा कुल के खरपतवार, ये सभी लगभग 80 से 85% तक जो है नष्ट हो जाते हैं। इनका कम्बिनेशन अगर हम दें विष पारिवक सोडियम और पाइरजोसल्फ्यूरॉन का, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि 20 ग्राम आपको पाइरजोसल्फ्यूरॉन लेना है और 30 ग्राम सक्रिय तत्व लेना है विष पारिवक सोडियम का। दोनों को मिश्रित करके आप प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तो इससे जो है जो भी आपके खरपतवार हैं वो लगभग 90% तक खत्म हो जाते हैं। जो 10% खरपतवार बच जाते हैं किसी कारणवश, वो धीरे धीरे धान इतना बढ़ जाता है कि उसको अपने आप सप्रेस करके दबा देता है। तो इस प्रकार से धान की जो सीधी बुआई है, इसमें खरपतवार के रासायनिक प्रबंधन द्वारा हम खरपतवार को प्रबंधित कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको किसान भाइयों, आपको हमने बताया कि बुआई के 24 घंटे के भीतर आपको पेंडीमेथिलीन देना है। पेंडीमेथिलीन का जो डोज बताया गया, 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व देना है प्रति हेक्टेयर की दर से, अथवा 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। फिर हमने बताया कि अगर किसी कारणवश आप पेंडीमेथिलीन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पाइरजोसल्फ्यूरॉन नामक रसायन लें, उसका 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर देना है या 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति एकड़ देना है और पानी में घोल करके उसको छिड़काव करना है। उसके बाद 20 से 25 दिन पर एक हर्बिसाइड जरूर देना है। बेहतर होगा कि आप पाइरजोसल्फ्यूरॉन सक्रिय तत्व 20 ग्राम लें और आप विष पारिवक सोडियम सक्रिय तत्व 30 ग्राम ले लें, दोनों को मिक्स करके प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने धान के खरपतवार हैं वो लगभग 80 से 85% नियंत्रण में आ जाते हैं और आपको बहुत राहत मिलती है खरपतवार प्रबंधन में। दूसरी विधि हमने बताया धान की रोपित विधि। चूँकि धान में जब हम रोपित विधि करते हैं तो इसमें हम पडलिंग करते हैं। पडलिंग करते हैं तो उसके लिए हम पानी में कल्टीवेटर 2-3 बार चलाते हैं और मिट्टी को, कल्टीवेटर चलाने से मिट्टी उसमें पडल्ड हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो जो खरपतवार उसमें उगे रहते हैं वो ऑलरेडी सड़ गल के नष्ट हो जाते हैं। और चूँकि पडलिंग मेथड्स में फिर हम धान की रोपाई के बाद भी अगर 1 से 1.5 इंच पानी स्टैंडिंग मोड में रखें खेत में अगले 20 दिन तक, तो खरपतवार आएंगे ही नहीं। चूँकि हम लोग कहते हैं कि पानी एक प्राकृतिक हर्बिसाइड है। अगर खेत में आपका 1 इंच खड़ा पानी लगा हुआ है रोपाई के 20 दिन तक, तो आपके खेत में खरपतवार आएगा नहीं। लेकिन चूँकि वाटर बहुत ही कॉस्टली इनपुट है, स्टैंडिंग वाटर रखना आज के डेट में बहुत अच्छी बात नहीं है, तो वहाँ पर फिर हमें रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम यांत्रिक विधियों की बात करें तो पडल राइस में कोनोवीडर एक यंत्र है जिसके द्वारा हम राइस में, राइस के कतारों के बीच में, पडल्ड कंडीशन राइस है तो उसको एक कतारों के बीच में बुआई के, रोपाई के 20 से 25 दिन बाद चला करके खरपतवारों को हम उसी ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो कोनोवीडर का प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण हेतु। उसके बाद रासायनिक विधियों की अगर हम बात करें तो धान की रोपाई के ठीक 2 से 3 दिन के भीतर हम लोग ट्रिटला क्लोर का यूज करते हैं, ब्यूटा क्लोर अथवा

0: क्लोर दोनों का 1 से 1.25 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर लगता है। एक हेक्टेयर में आपको 1 लीटर सक्रिय तत्व लगेगा, क्योंकि प्रिटला क्लोर 50 cc का आता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बाजार का आएगा वो 2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 50% वाला है तो 2 लीटर लग जाता है। तो आप ध्यान रखें कि प्रिटला क्लोर जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर यूज करना है, प्रयोग करना है, और रोपाई के 2 दिन के भीतर इसको आवश्यकता अनुसार 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए, और रोपाई के 2 दिन के भीतर जो है खेत में अच्छे से छिड़क दिया जाए, जिससे अगले 10 दिन तक जो खरपतवार उग रहे हैं वो उगने नहीं पाएंगे और जल के नष्ट हो जाएंगे। अब रोपाई के 20 दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद फिर खरपतवार का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है, उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसको हमें रोपाई से लेकर के करीब 35 दिनों तक खेत को खरपतवार मुक्त रखना होता है। अगर रोपाई से लेकर के 35 दिनों तक हम खरपतवार मुक्त रखते हैं तो हमारा यील्ड में निश्चित तौर पे 20 से 30% तक का बढ़ोतरी हो जाता है, अदरवाइज खरपतवार के प्रेशर से हमारा उत्पादन घट जाता है। तो अब रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अगर हमें खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है तो वहाँ पे हम पायरोसल्फ्यूरान जो रासायनिक दवा है, पायरोसल्फ्यूरान का 20 ग्राम सक्रिय तत्व लेंगे और उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे, तो जो भी खरपतवार हैं चौड़ी पत्ती वाले हों या सक्रिय पत्ती वाले हों या मोथा कुल के हों वो लगभग 80 से 85% तक खरपतवार मर के नष्ट होते हैं। बशर्ते ध्यान रखना होगा कि जब हम छिड़काव करें उस समय हमारे खेत में खड़ा पानी न लगा हो, वो खेत उसमें थोड़ा नम रहे लेकिन पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। तो पायरोसल्फ्यूरान का हमने बताया 20 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, आप 20 पायरेवेक सोडियम भी यूज कर सकते हैं। 20 पायरेवेक सोडियम का 35 से 40 ग्राम मात्रा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके अच्छे से छिड़काव करें, जिससे आपका खरपतवार 80 से 85% तक नष्ट हो जाते हैं। तीसरी विधि में आप दोनों दवाओं को मिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए पायरोसल्फ्यूरान आप 20 ग्राम लीजिए और 20 पायरेवेक सोडियम का मात्रा 25 ग्राम रख लीजिए, 25 ग्राम 20 पायरेवेक सोडियम, 25 ग्राम सक्रिय तत्व 20 पायरेवेक सोडियम का, और 20 और पायरोसल्फ्यूरान का जो सक्रिय तत्व है वो 20 ग्राम रखिए, और दोनों का मिश्रण आप 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद आप अगर दे देते हैं तो इससे खरपतवारों में बहुत हद तक कमी आती है, लगभग 80 से 85% तक खरपतवार को नियंत्रण में कर लेता है और आपकी धान की फसल खरपतवार मुक्त हो जाती है। इस प्रकार आप धान की चाहे रोपित विधि हो चाहे धान की सीधी बुआई हो, इसमें खरपतवार प्रबंधन करके किसान भाई आप अपने धान के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, समेकित खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे?
0: देखिए, जब समेकित की बात करते हैं तो इसमें हमें खरपतवार प्रबंधन के लिए जो भी हमारी विधियां हैं, दो या दो से अधिक विधियों को अगर हम लाते हैं तो उसको समेकित खरपतवार प्रबंधन कहते हैं। जैसे हमको धान की सीधी बुआई करना है तो निश्चित तौर पर हम पहले से अलर्ट रहें, गर्मी की गहरी जुताई कर दें। ध्यान रखिएगा, धान की सीधी बुआई करना है तभी गर्मी की गहरी जुताई करें, अगर रोपाई करना है तो गर्मी की गहरी जुताई ना करें, क्योंकि उससे आपका केज व्हील उसमें धंस जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। तो धान की सीधी बुआई करना है तो उसमें समेकित में हम सबसे पहले गर्मी की गहरी जुताई करेंगे, जिससे जो पेरेनियल खरपतवार हैं या जो सीजनल खरपतवार के बीज हैं वो करीब 30 से 35 सेंटीमीटर गहराई पर चले जाते हैं, 1 फीट गहराई चलते हैं, वहाँ जमा उनका नहीं हो पाता है, तो 50 से 60% जो खरपतवार के बीज बैंक हैं वो ऑलरेडी उनका जमाव बाधित हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यांत्रिक विधि में हम चाहे तो ड्राई लैंड बीडर या कोनो बीडर का प्रयोग करके धान की रोपाई के 20-22 दिन बाद कतारों में के बीच में हम उसको चला करके खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और तीसरा विधि जो मुख्य विधि है, कारगर है, रासायनिक मेथड। रासायनिक मेथड जैसा हमने भी पहले बताया, सीधी बुआई के लिए हमने बोला कि आप पेंडी मिथिलीन ले सकते हैं, उसके बाद आप

0: ट्रिटला जो है पाइरेजो सल्फ्यूरॉन ले सकते हैं या आप इस पाइरेजो सोडियम ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से समेकित कृषि समेकित खरपतवार प्रबंधन अगर रोपित धान में करना है तो इसमें हमें कोनोबीडर का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद रासायनिक दवा का प्रयोग कर सकते हैं और पानी को भी उसमें रोपाई के से लेकर के 20 दिन तक स्टैंडिंग मोड में रखें 1 इंच पानी तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से समेकित का मतलब ही है कि हम दो या दो से अधिक विधियों को एक साथ उपयोग में लाएं जिससे खरपतवार थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रूप में नियंत्रण में आ सके।
1: जी तो किसान भाइयों यहाँ पर आपने जाना धान में खरपतवार प्रबंधन जो विधियाँ हैं वो बताई डॉक्टर साहब ने आपको। तो आशा करते हैं आप भी इस प्रकार अगर डॉक्टर साहब की बातों को फॉलो करते हैं उनका अनुसरण करते हैं तो आप अच्छे से धान में खरपतवार प्रबंधन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे।

0: सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है।

0: लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है, तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे, तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय

0: में चार सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से, मैं आज

0: स्वास्थ्य संबंधित व्यक्तियों को जागरूक भी करते हैं। तो ओम, आप हमें यह बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा मिलती है।
0: जी, और पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: हम पोषण को संतुलित कर उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कमजोरी, थकान, स्वास्थ्य में नहीं होती है तकलीफ, समस्याएं।
0: अगर व्यक्ति दवाई ना खाए और पोषण अपने तरीके से ही लेना चाहे, अपने घरेलू उपाय के हिसाब से ही पोषण को लेना चाहे, तो क्या करेगा?
1: उसे अच्छे साग सब्जियां खानी चाहिए, स्वस्थ और ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उसका संतुलित आहार बना रहे।
0: पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए?
1: आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड प्राप्त करने के लिए आप अंडे, मांस मछलियाँ, डेयरी, फल सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड आपको अंडे और मांस मछलियों, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही से इत्यादि से मिल जाएगी।
0: और आपका अगर आदमी या व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती?
1: अगर कोई व्यक्ति सही से पोषण ना ले तो उसे बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, खत्म करने की क्षमता कम हो जाएगी उस रोगों से लड़ने की, हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे।
0: आपका महिलाओं को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या क्या समस्या हो सकती है?
1: महिलाओं को सही से पोषण नहीं मिलने से एनीमिया, यानी खून की कमी, कमजोरी, थकान।

0: कुपोषण संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं
1: जी। ठीक है, लीन प्रोटीन क्या होता है?
0: लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा यानी फैट, खासकर संतृप्त वसा और कैलोरी का स्तर कम होता है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है। इसके कुछ अच्छे स्रोत में शामिल है अंडे, मछली, स्नेल्स, पालिया, कम वसा वाला डेयरी।
1: हमारा कृषि कॉलेज एक कार्यक्रम चलाती है, अपनी क्यारी अपनी थाली। तो अपनी क्यारी अपनी थाली क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं?
0: अपनी क्यारी अपनी थाली भारत में खासकर बिहार राज्य में शुरू किया गया एक सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और पोषण युक्त आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिका या छोटी क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों या घरों के पास लगाई जाती है। इन क्यारियों में मौसमी पोषण से भरपूर सब्जियां और फल उगाए जाते हैं।
1: तो धन्यवाद ओम जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।
2: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
1: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है, साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
0: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
1: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि खुले में

0: हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है। साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और ख़ास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वायु का प्रदूषण करती है, और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से जैसे कि अभी देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस है, तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है, और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
1: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
0: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन हैं वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग, जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिरा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना, और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद, जिसे जीवामृत कहते हैं, वो बनाया जा सकता है, जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं, उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
1: मैम, बायोचार क्या होता है?
0: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है, और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है, और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है यह।
1: मैम, बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
0: देखिए, बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है, और इसी प्रकार अगर

0: 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है, जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के दैनिक खाना बनाने की जरूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं, क्योंकि गोबर को सड़ाकर उनका गैस बनाना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
1: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
0: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
0: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में इनके मांग में काफ़ी तेजी बढ़ रही है, जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त

0: आता है उसका आप उपयोग करें, सदुपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद।
0: तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
9: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
9: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
9: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और

एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि
खुर पका, मुंह पका

और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हां, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है। और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लिम्स या स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी

0: पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है, और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए, और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए, और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं, तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है, और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर

0: होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की, उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर बी वर्मा है, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
5: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हट के अगर हम कोई चीज़ उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
4: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
5: बिल्कुल।
4: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
5: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
4: जी।
5: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
4: जी जी।
5: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी

0: ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
0: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम हो जाता है।
0: उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है
1: जी जी।
0: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर अगेती कर लेते हैं
1: पहले,
0: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं मौसम से, थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
1: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से हाँ, थोड़े महीने
0: थोड़ा
1: पहले।
0: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन, पर डे, पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए, तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं।

0: हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: होती है।
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ड कर सकते हैं तो उसको एफर्ड मतलब उसको एडॉप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ड नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर से हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो
0: हो जाती है। तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जा करके अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की, वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी कद्दू की, जिसकी हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी के मौसम,
0: हाँ ठंडी का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च में तो सबके, मार्च से अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता है।
1: जी जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: कुछ मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को गाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की।
1: हाँ,
0: थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो

0: इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज
1: नव सीखिए नहीं होना चाहिए, बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए नव
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको बताते हैं, लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी जी जी
0: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
1: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं हुआ।
0: तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की,
0: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके?
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गया, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने

0: मौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है और कम क्षेत्रफल से। देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हैं, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं। और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है। 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पॉली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है, बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फ्रूट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली
1: ज्यादा
0: बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,

0: केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद
5: मैम। आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं।
6: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है, और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं, और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं। और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
5: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
6: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका अभी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जमीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं, या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है, और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका

0: प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है ढूंढ है उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीज के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीज की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडा क्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडा क्लोप्रिड लेंगे तो इमिडा क्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं, और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ इसको बोलते हैं, वयस्क और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है, और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं, और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडा क्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटा कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है, और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो

0: शरीर इसका सफेद होता है और उस पे भी कुछ जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुंचाते हैं। और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं। और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं, उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में पिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो है पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं। और डेड हार्ट ये भी काउच करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहाँ से ये प्रवेश करता है वहाँ पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है। और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है। और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हल्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जू जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जू है और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं, यानी ये लेडीबर्ड बीटल जो है वो मित्र कीट है।

ये जो एफिड है, लाही है, जो चूसकर जो खा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट या जो लेडी बर्ड बिटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है

0: उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है
1: जी। मैम मैम बाली मिर्च ये श्रीअन्न की फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिर्च है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है। छोटी मक्खी या मच्छर कहें, दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए। नीमाधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीअन्न में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्रीअन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
2: ठीक है,
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई।

0: की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरियां जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दे, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई

के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
2: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए के अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा।
2: जी,
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
2: जी,
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी।

0: में डूबा रहता था।
1: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
1: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
1: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
1: जी,
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी,
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओ, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखियेगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी, और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है, जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, so tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger, lion,
2: yes,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So Here is a

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी। जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता, कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ।
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

उत्पादन देती है। इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में।

0: अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियां पहुंचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियां पहुंचाते हैं।
1: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
0: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
1: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
0: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहां से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
1: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
0: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
1: ओ आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
0: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
1: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
0: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
1: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
0: धन्यवाद चंचल।
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार उमंग।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त

0: ये टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रही, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उन्नत कृषि। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन। जी हाँ, आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं सूखे फूलों से बने उत्पाद के बारे में। वैसे ताज़े फूल का तो हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन जब फूल सूख जाते हैं तो हम उनको कैसे उपयोग में लाएंगे, क्या कुछ उससे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, आज इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो मैडम, सबसे पहले तो ये जो बहुत अच्छा विषय है आप लेकर आई हैं हमारे बीच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: तो चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मैडम से जानते हैं कि सूखे फूलों का महत्व तो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मैडम।
1: ये देखिए, जैसे हम जानते हैं मानव जीवन में फूलों का महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म से मृत्यु तक हमें फूलों की आवश्यकता पड़ती है। वहीं सुंदरता, कोमलता एवं कम आयु होने के कारण

0: कारण फूलों का प्रयोग करने के लिए या तो दिन प्रतिदिन बाजारों के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर मन चाहे फूलों को प्राप्त करने के लिए अगली ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। ताज़े फूलों एवं पत्तियों की सीमित आयु भी होती है और उसे हम ज़्यादा समय तक भंडारित नहीं कर पाते। इसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है कि फूलों को सुखाने की तकनीक के बारे में जाना होगा, जिसमें हम फूल पत्तियां, फन, घास या पेड़ के किसी भी पार्ट को हम इस प्रकार सुखाते हैं, इस तरीके से उसकी नमी कम कर देते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। यही हमारा कहलाता है सूखा फूल उत्पाद बनाने का तरीका या इससे रिलेटेड जो व्यवसाय है। तो हमको सूखे फूल ताज़े फूलों की तुलना में अगर हम देखें तो ये आकर्षक, हल्के भार के और कम संसाधन में बनने वाले, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। साथ ही इनमें गर्मी एवं सर्दी का भी कोई असर नहीं होता है और अधिक समय तक सुंदरता प्रदान करते हैं।
1: जी, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सूखे फूलों के व्यवसाय का स्तर क्या है, मैम इसके बारे में थोड़ा?
0: जी, भारत में सूखे फूल का व्यवसाय निरंतर प्रगति पर है और इसकी मांग बाहरी देशों से भी अधिक है। भारत के कुल पुष्प निर्यात में 70% भागीदारी सूखे फूलों की है। अधिक मांग के कारण भारत सूखे फूल के निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है और यही बात है कि भारत से 500 से भी अधिक सूखे फूल निर्यात किए जाते हैं। इस उद्योग की सालाना वार्षिक वृद्धि भी 10-15% है और सूखे फूल तकनीक द्वारा जो खिले फूलों को मुरझा जाने से पूर्व ही हम संरक्षित कर लेते हैं और यही एक सही अवस्था होती है जब फूल और उसकी पंखड़ियों को सुखाकर ऐसे कई उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी अगर व्यवसाय किया जाए तो इससे अधिक कमाई की जा सकती है।
1: जी, बिहार में सूखे फूल के व्यवसाय की अभी क्या कुछ संभावनाएँ हैं?
0: बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें बिहार में सूखे फूल उत्पादन, जिसे ड्राई फ्लावर उद्योग कहते हैं, इसको अगर हम ये तकनीक अगर हम ऐसे लोगों को सिखाएं, चाहे वे महिलाएं हों या बेरोजगार हों या फिर जो शारीरिक रूप से कमज़ोर वर्ग होता है, इनको अगर हम ये तकनीक सिखाएं तो वे आसानी से इसे सीख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी इसको, बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है। और जैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए अगर सूखा फूल व्यवसाय की बात करें तो ये आय का मुख्य स्रोत हो सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास, पत्तियाँ, खरपतवार आदि बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं और महंगाई के इस युग में अगर हम घर की बेकार वस्तुओं एवं सीमित साधनों से ही अगर कुछ इस तरीके के उत्पाद बनाएं जो अतिरिक्त आय कमा सकते हैं तो इस तकनीक से तैयार किए गए उत्पाद निर्यात के लिए भी उत्तम होते हैं एवं नवीन डिज़ाइन और अपने अनुपम सुंदरता के कारण इनकी अधिक मांग होती है। वहीं अगर हम बात करें कि इस उद्योग द्वारा जो युवतियां हैं जिनकी बीच में ही पढ़ाई छूट गई है, वे भी इसे साइड बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी रुकी हुई पढ़ाई को भी पूरा कर सकती हैं एवं आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें जो है हमें सृजनात्मक और कलात्मक दृष्टि को थोड़ा सा देखना होगा, अपना दिमाग लगा के। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी ड्राइंग आए लेकिन आपकी नवीनतम सोच और कला इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी रहेगी।
1: जी, सूखे पुष्प व्यवसाय में कितने महत्वपूर्ण चरण होते हैं?
0: देखिए, मुख्यतः इसमें 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसमें पहला चरण होता है फूलों को सही अवस्था में एवं उचित समय में काटना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर दूसरा चरण है फूलों को ठीक प्रकार से एवं सही विधि से सुखाना। ज़रूरी नहीं है एक फूल एक विधि से ही सूखे, वो दूसरी विधि से भी बढ़िया सूख सकता है, जिसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। एवं तीसरा चरण है सूखे फूलों को सही से भंडारित करना और चौथा चरण है फूलों से विभिन्न उत्पाद बनाना।
1: तो सूखे फूल हस्तकला द्वारा बनाए गए उत्पाद के बारे में थोड़ा बता दें।
0: देखिए, अगर इस अगर हम है इसके इसको जो हम ड्राई फ्लावर हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, अगर इसको बारे में हम बात करें तो एक नवीनतम विकास है। और विभिन्न रंगों के सूखे फूल के पुष्पों से हम कई ऐसे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल उत्पाद बना सकते हैं। टू डायमेंशनल माने चपटे उत्पाद और थ्री डायमेंशनल माने जिनकी संरचना ना बिगड़ी हो, थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम बात करें सूखे फूल से बनी हुई फ्रेम, जो तस्वीरों की फ्रेम

0: होती है, फ्रेम जड़ित तस्वीरें या फिर बधाई कार्ड या कवर, पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड, शीशे की कटोरी या कई ऐसे उत्पाद हैं। अब जैसे पुराने ज़माने में लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, अब आज के ज़माने में यदि हम सूखे फूल उत्पाद उनको बनाना सिखा देंगे तो ये नई चीज़ भी होगी, साथ ही उनके आगे बुरे टाइम के वक्त भी ये उससे व्यवसाय करके अपनी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। तो यदि हम थ्री डायमेंशनल उत्पादों की बात करें तो इसमें पुष्प विन्यास आ जाता है या पेन स्टैंड आ जाता है या फिर पेपर वेट आ जाता है, और वहीं यदि हम टू डायमेंशनल उत्पाद की बात करें तो इसमें ग्रीटिंग कार्ड, बुक मार्क या फिर सीनरीज, कोस्टर सेट, टेबल मैट इत्यादि आ जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी हमको कागज़ ले लेना, कागज़ वो खराब भी कागज़ हो सकता है, घर में आए निमंत्रण कार्ड के प्लेन टुकड़ों को भी इस्तेमाल करके कागज़ के रूप में लिया जा सकता है, जिस पे हमको विपरीत कलर के फूलों की पंखुड़ियों को सुखाकर उसमें फेविकॉल या किसी अन्य पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ के सहायता से उसे डिज़ाइन बना के उसके ऊपर चिपकाकर अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं।
1: जी, फूल सुखाने की कुछ सरल विधियों के बारे में थोड़ा बता दें मैडम।
0: जी, सरल विधियां तो मैं आपको यहाँ पर आज दो तीन बता देती हूँ, अन्यथा इसके अलावा भी कई ऐसी विधियां हैं जिसमें और भी तरीके से फूलों को सुखाया जा सकता है। तीन सरल विधियां आज मैं आपको बताती हूँ। पहली है एयर ड्राइंग, जिसको हम बोलते हैं हवा में सुखाने की विधि। इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके के फूलों को लेते हैं जो छूने में ड्राई होते हैं, सूखे प्रतीत होते हैं, या ऐसी खरपतवारें या घास होती हैं जो सूखने में, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट या नमी की मात्रा बड़ी कम होती है। तो ऐसे फूलों को या ऐसे घास पत्तियों को हमें इकट्ठा करके 10 से 12 डंडियों को बांध लेना है और सुतली की सहायता से बांध लेना है, और फिर इन्हें उल्टा करके किसी अंधेरे वाले हवा जिसमें हवा का आवागमन हो ऐसे स्थान पर उल्टा लटका के इसको सुखाना रहता है। और दूसरी विधि है दाब विधि, ये सबसे प्राचीन विधि है। जैसे पहले किताबों के बीच में फूल सुखाने के लिए रख देते थे, लेकिन अगर हम नहीं देखते थे तो वो फूल खराब भी हो जाते थे अधिक नमी के कारण। तो इसमें क्या करना है, एक बाजार में सोखता कागज आता है, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सीधे आप अखबार के टुकड़े ले लीजिए। अब या इन दो अखबारों के टुकड़ों के बीच में फूलों की पंखुड़ियों को या पूरे फूलों को फैला के रख देना है, और फिर इस पर दाब बना के आपको रूम टेम्परेचर पे सूखने रख देना है। तो अगर सर्दी का टाइम है तो यही चीज़ 10-12 दिन सूखने में ले लेगी, और गर्मी में ये 6 से 7 दिन में सूख जाएगा। अगर लकड़ी का पटला नहीं है तो आप इस पे कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं, या इसे आप किसी भी प्रकार के दाब से, इवन जो आपका बेड होता है उसके तखत पे भी आप इसको रख के, उस पर गद्दा बिछा के भी आप इसको सुखा सकते हैं। और तीसरी विधि है अंतःस्थापित विधि। अंतःस्थापित विधि को हम एम्बेडेड ड्राइंग भी कहते हैं। इसमें फूलों की संरचना और रंग बिगड़ने के बहुत कम आसार होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फूल को हम तोड़ते हैं और फूल की डंडी को हम इस वाले पात्र, एक पात्र में ये कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम व्यवसाय की बात करें, रंग हमको बहुत अधिक उसके प्राकृतिक रंगों को संजो के रखना है तो हम इसमें सिलिका जेल नाम के पदार्थ को लेते हैं जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलिका जेल का मेन फंक्शन होता है नमी को सोख लेना। तो इसमें थोड़ा सा पात्र में सिलिका जल डाल के उसमें फूल को धांस देते हैं, और धांसने के बाद किनारे किनारे से सिलिका जल को उस पात्र में डालते रहते हैं जब तक वह फूल को पूरा ढक ना ले। वहीं हमको ध्यान देना है कि सिलिका जल के जो कण हैं वे महीन होने चाहिए, ताकि वे अलग अलग जो पंखुड़ियों के परत के बीच में घुस के उनको बिना संरचना उनकी बिगाड़े हुए उनको सुखा सके। अब अगर घरेलू या छोटे स्तर पे बात करें तो वहीं आपको सिलिका जल यदि नहीं है आपके पास तो आप नदी के किनारे की बालू या फिर घर में जो अवेलेबल सूजी होती है उससे भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर में 8 से 10 दिन गर्मियों में एवं सर्दियों में ये कम से कम 2 हफ्ते सूखने में ले लेगी। फिर जो ये बचा हुआ मटेरियल है फूल निकालने के बाद, फूल निकालेंगे, फूल को बहुत ही सावधानी से निकालना है, ब्रश से उसके कण को झाड़ लेना है क्योंकि वो टूटने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद फूल से आप प्रोडक्ट बनाने के लिए

0: अलग रख दीजिए, और जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बचा हुआ चाहे सिलिका जेल है, चाहे सूजी है, चाहे कोई भी रेत रेत के पार्टिकल हैं, इनको भली भांति धूप में सुखा लीजिए और फिर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। और फूल सुखाते समय किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए?
0: देखिए, हमको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि फूल जो हम सुखाते हैं या सुखाने से पहले जो हम तोड़ते हैं, तो हमको इसे सुबह और शाम नहीं तोड़ना है। अक्सर हम ताजे फूल सुबह और शाम तोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमको अलग चीज़ करनी है। इसमें हमें दोपहर के टाइम ही को ही इस्तेमाल करना होगा, जब सतह पे से ज़्यादातर ओस की बूंदें और नमी ख़त्म हो जाए, वरना फूल के उत्पादों के खराब होने का एक चांस बना रहता है। दूसरा, काटने के बाद इन्हें रबर बैंड की सहायता से गुच्छों में बांधकर रख देना चाहिए, एवं जितनी जल्दी हो सके धूप से हटाकर इनको सुखाने रख देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि फूलों को काटने एवं सुखाने में कम से कम समय का अंतराल होना चाहिए, और वहीं पूर्ण रूप से खिले हुए फूलों को ही काटना चाहिए, एवं धब्बे युक्त फूलों को छोड़कर चटकीले रंग के फूलों को ही चयनित कर काटना चाहिए। और एक दो चीज़ों का और हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक पात्र में एक प्रकार के ही फूलों को सुखाना चाहिए, या फिर अभी जो हमने एम्बेडेड ड्राइंग या अंतः स्थापित शुष्कन विधि के बारे में बात करा, तो उसमें सिलिका जेल को पात्र के किनारे से ही डालना चाहिए ताकि फूलों का ढांचा ना बिगड़े। और सूखे फूल से चिपकी हुई सिलिका जेल, जैसे बताया, कि ब्रश की सहायता से धीरे धीरे ही हटाना चाहिए, एवं समय समय पर इनसे इनको सीधी धूप और कीटों से, धूप से, इन सब चीज़ों से या तोड़ फोड़ से बचाकर रखना चाहिए। तभी आपके ये जो उत्पाद हैं ये अधिक समय तक रहेंगे, इनमें अधिक क्वालिटी बनी रहेगी, एवं ये बाज़ारों में अच्छे बिकेंगे। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस अच्छी जानकारी के लिए। हमारे श्रोतागण जो फूल

0: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
1: कब से?
0: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
1: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
0: खांसी?
1: हाँ।
0: इसको तो एक आध महीना हो गया।
1: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
0: डॉक्टर, खांसी तो है।
1: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
0: टीबी?
1: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
0: ठीक है।
1: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस

ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंक्रीति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि

बीमारियों से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानि कारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं, तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा, तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और

0: कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़ा सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
1: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
1: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
0: जी
1: सकते।
0: जी,
1: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोकाकुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोकाकुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोकाकुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमा थेरेपी में भी बहुत काम आती है।
1: जी मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोकाकुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियां या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं

0: वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
1: जी मैम। मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
0: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट। ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में हैं, ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वे इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
1: जी मैम। मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में, जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं। और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरोटीनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
1: जी मैम। तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या शारीरिक कमजोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
1: जी मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ अनु, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में करती हूं आप सभी का स्वागत। तो श्रोताओं, एक बार फिर हम एक अलग विषय के साथ यहां पर हाजिर हैं। आपको बता दें, वो विषय है हमारा सरसों की खेती SRI विधि से। और इस विषय पर अपनी चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस त्यागी, और मैं बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं कि आप सरसों की खेती कैसे कर सकते हैं SRI विधि से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले क्यों ना हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि ये SRI विधि क्या होती है।
9: SRI विधि, जिसे श्री विधि भी कहते हैं, यह सरसों की खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें श्री विधि के सिद्धांतों का

0: कर अधिक उपज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम बीज की मात्रा 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करते हैं। बीज शोधन और बीज उपचार करने के बाद जो अंकुरित बीज है उसका खेत में या तो सीधी बुआई कर सकते हैं या फिर उसका नर्सरी तैयार कर रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधा और कतार से कतार की उचित दूरी हम इसमें मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 बार खरपतवार की निकासी या वीडर या कुदाल से उसकी कोड़नी भी करते हैं। तो इन सब देखभाल करके हम जो राई सरसों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और ये सामान्य विधि की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त है।
1: ओके, तो सर सरसों की खेती SRI विधि से करने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है?
0: इस विधि से करने से एक तो हमारे उपज में वृद्धि होगी, जो हम परंपरागत विधि से जो इसकी सरसों की खेती करते हैं उसके कंपैरिजन में अपेक्षाकृत 18% से लेकर 26% तक वृद्धि अंकित की गई है शोध के आधार पर। और जो हमें जो इसमें जो वो है शुद्ध लाभ जो मिलता है वो भी 6,000 से लेकर हमें इसमें 12-13,000 तक इसमें नेट रिटर्न प्रति हेक्टेयर इसमें प्राप्त होता है और जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है उसमें भी वृद्धि पाई गई है।
1: इसके साथ ही कुछ और फायदे होंगे और इसकी खेती और किस तरीके से हम अच्छे से कर सकते हैं वो भी बताएं SRI विधि से।
0: इसकी खेती करने में मुख्य रूप से बीज का चुनाव की में तो जो उन्नत किस्म के बीज हैं वो हम इसमें ले सकते हैं। यदि बीज हमारा पुराना है तो कोशिश कीजिए कि नया बीज प्रयोग करें और बीज की मात्रा वो फसल की अवधि पर निर्भर करती है। यदि अधिक दिनों की किस्म है तो उसमें बीज की मात्रा कम लगेगी, यदि कम दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा अधिक लगेगी। 100 से कम दिन की फसल है तो उसमें लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ और यदि 130 से ज़्यादा दिन की फसल है तो उसमें 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर
1: जी।
0: और आगे यदि बीज शोधन और उपचार करने के बाद ही इसका हमें खेत इसकी नर्सरी तैयार करनी है। जैसे बीज के हिसाब से हमें दुगना सूक्ष्म पानी लें और उस बीज को सूक्ष्म पानी में डालकर जो हल्का बीज है उसे हम बाहर कर दें और इसमें सूक्ष्म पानी और अच्छे बीज में बीज की मात्रा का लगभग आधा भाग गौमूत्र गुड़ एवं केचुआ खाद को मिला के 6 से 8 घंटे तक इसे छोड़ दें। फिर बीज को तरल पदार्थ से अलग करके इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाकर सूती कपड़े में बांध के अंकुरित होने के लिए 8 से 10 घंटा रख दें
1: जी।
0: और अंकुरित बीज को नर्सरी में हम 2x2 इंच की दूरी पर और 1/2 इंच गहराई में डाल दें या फिर इसकी यदि हम नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते तो इसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं। लेकिन नर्सरी तैयार करने से नर्सरी बेड का हमें इसमें निर्माण करना होगा। जिस कम दिन की यदि फसल है तो उसमें अधिक क्षेत्रफल लगेगा और अधिक दिन की यदि हमारी ये किस्म है तो इसमें कम क्षेत्रफल में नर्सरी बेड बनाया जाना चाहिए। तो जिस खेत में नर्सरी का बेड हमें तैयार किया जा रहा है उस खेत में नर्सरी के क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में 2 से 2.5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 2 से 2.5 ग्राम कार्बोफिरॉन, 100 से 150 ग्राम नीम की खली मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नर्सरी बेड की चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें और ज़मीन से नर्सरी बेड की ऊंचाई 4 से 6 इंच ऊंचा रखें
1: जी।
0: और 2 बेड के बीच की दूरी 1 फीट के करीब नाली बना लें और नर्सरी में बीज की बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और नर्सरी बेड में बीज की बुआई के उपरांत उसमें वर्मी कंपोस्ट और पुआल से उसे अच्छी तरह ढक दें और सुबह शाम उसे नियमित रूप से झरने से सिंचाई करते रहें। तो हम देखेंगे कि हम 8 से 10 दिन में या 8 से 12 दिन में हमारा बिचड़ा तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए। फिर जिस खेत में हमें ये नर्सरी बिचड़ा हमें डालना है उस खेत की तैयारी हमें इस तरह करनी चाहिए कि उस खेत में एक तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए। यदि खेत सूखा है तो उसमें सिंचाई करके गहरी जुताई वाले हल से 2-3 चांस करके मिट्टी को भुरभुरा बना दें और खेत से सभी खरपतवार घास वगैरह को बाहर कर दें और रोपाई के लिए जो हमारी किस्में हैं उन्हें 6 इंच चौड़ा और 8 से 10 इंच गहरे गड्ढे में का हमें निर्माण करना होगा इसके लिए। फिर उस गड्ढे को 2 से 3 दिन हम छोड़ देते हैं और बाद में 2 से 3 दिन के बाद 1 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए लगभग 1.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, मिलावा 80 क्विंटल कंपोस्ट।

0: उस चार कुंटल श्री प्रणामामृत का व्यवहार करें। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक घटे में पहले हम कंपोस्ट खाद डालेंगे, उसके बाद ये श्री प्रणामामृत खेत में अच्छी तरह मिला देंगे, फिर उस गड्ढे को 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। रोपाई करने से 2 घंटे पहले हमें नर्सरी में नमी बना के रखनी चाहिए, जिससे कि बिचड़े को आसानी से हम नर्सरी बेड से उखाड़ सकें, और उसे मिट्टी बिचड़े को खुरपी या कुदाल की सहायता से कम 1-2 इंच मिट्टी के साथ नर्सरी से निकालें, और निकालने के बाद बिचड़े को 1/2 घंटे के अंदर ही गड्ढे में उसे रोपनी कर दें, और ये भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक गड्ढे में सिंचाई अच्छी तरह से दिया हुआ हो। अब बिचड़े को उस प्रकार से रोपाई के उपरांत 3-5 दिन तक उसमें नमी बनाए रखें, ताकि इसे बिचड़े को मुख्य इसमें क्यारी में लगाया जा सके। रोपनी के 15 दिन बाद, अब रोपनी जब हम इसमें कर देते हैं बिचड़े की, उसके 15 दिन बाद हमें इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई के फिर अगले दिन हम उसमें फिर खाद 2 कुंटल प्रणामामृत श्री प्रणामामृत खाद जो है इसका प्रति एकड़ की दर से जड़ के नज़दीक इसका उपरिवेशन करें, और उसके सिंचाई के 3-4 दिन बाद उसमें फिर वर्मी मतलब रोपनी के 20 दिन बाद प्रति एकड़ 4 कुंटल वर्मी कंपोस्ट और 3 किलोग्राम PSB खेत में डालकर उसमें कुदाल से अंतर कर्षण क्रियाएं करने से उसे करके उसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरी सिंचाई हम रोपनी के 25 दिन बाद करेंगे, मतलब पहली सिंचाई के 10 दिन के बाद, और उसमें उसके बाद जब खेत में वो चलने लायक हो जाएगा तो उसमें 13.5 किलोग्राम जाइम डालकर वीडर या कुदाल चलाकर उसे मिट्टी को हल्का कर दें। रोपनी के 30 दिन बाद पौधे थोड़े तेज़ी से बड़े होने लगते हैं, साथ ही साथ उसमें नई शाखाएँ निकलने लगती हैं, तो इसलिए उस समय पौधों को अधिक नमी या पोषण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए रोपनी के 35 दिन बाद तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। इसके अगले दिन हम फिर ये जो ये श्री प्रणामामृत जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसका पौधे के जड़ के नज़दीक उपरिवेशन करें, फिर खेत में ओट आ जाने पर फिर इसमें रोपनी के 40 दिन बाद कुदाल से या वीडर से वो अच्छी तरह खेत को हल्का करके इसे मिट्टी चढ़ा दें इस पर, क्योंकि मिट्टी यदि हम नहीं चढ़ाएंगे तो पौधे के गिरने का डर रहता है, क्योंकि उसमें अच्छी शाखाएं और उसका बढ़वार काफ़ी हो जाता है, तो जिस तरह से आलू के खेत में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। फिर आगे समय में पौधे फिर और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसमें पत्ते भी मोटे होने लगते हैं और चौड़े होने लगते हैं उसके, तो अच्छी बढ़वार के लिए हमें 60 दिन पे 80 दिन और 100 और 120 दिन तक हमें इसमें हल्की सिंचाई आगे करनी चाहिए। और वैसे सिंचाई का जितना भी हमने बताया ये सब मौसम और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है, यदि आपके मौसम में यदि विंटर रेन हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है उस दौरान। और इस सरसों में जो लाही और अन्य कीट जो लग जाते हैं इससे बचाव के लिए हमें आवश्यक जो कीटनाशक और ये हैं फफूदनाशक दवाएं इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और पौधे में फूल आने से और जो दाना भरने के समय उसमें खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय नमी नहीं रहेगी तो खेत में उपज में कमी होगी, इसे नमी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस श्री विधि को अपनाने से सरसों की उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है, और ये बढ़ोतरी लगभग 1.25 गुना से लेकर 1.5 गुना तक हो सकती है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि श्री विधि के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप इस विधि से खेती करते हैं तो 1.25 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी होती है। आप इस विधि को ज़रूर अपनाएं, सरसों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको उपज में। आप अगर व्यापार के तौर पर अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो अगर उपज ज़्यादा होगी तो आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हूँ, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी?
3: हाँ,
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही कुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए,

0: चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल 0 करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल 0 आया। आप भी लगवा लो।
14: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
15: सूर्य घर 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, हाय कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया हो।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्

0: स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं, इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है, लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में

0: करना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893।

0: हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें।

0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें।

जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, डी 96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: सुनते

0: and printing while making your artwork. Display your completed work and review the work done by other groups. Criteria for assessment of group activity can be visualization of a story with an imaginary being. Uses foreground, middle ground, and background in the composition. Uses a variety of materials, tools, and techniques. Participation in review and feedback process. Chapter 5 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Amarjeet Sarkar. Production assistant, Vineet Kumar Sharma. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: Hey, yaar, phir pit gaya. Bill de na. इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था. इसकी यही प्रॉब्लम है.
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुड़बात
2: खांसी?
3: हाँ.
2: इसको तो एक आध महीना हो गया.
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए.
2: डॉक्टर, खांसी तो है.
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए. दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
2: टीबी?
3: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
2: ठीक है.
3: टीबी किसी को भी हो सकता है. अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रूबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
9: उन्नत कृषि,

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानने और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम परवल हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है इसमें रोग लगता ही नहीं, हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है इसमें भी रोग बीमारी और कीड़ा लगने के लिए स्टार्ट शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पाद भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहा है तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
1: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
1: परवल के पत्तों में दिखता है झुलास रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ का होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलास रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
1: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलास रोग के बारे में। झुलास रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता को हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते हैं, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे भूरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे, वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा झुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते है पत्ता पूरा सूख जाते है, इसी वजह से प्रकाश संशोषण संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाते है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
0: बचाव के लिए क्या करेंगे?
1: बचाव के लिए हम लोग को क्या पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तियों पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देता है, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा, पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को

0: हो जाएगा, उज्ज्वला स्रोत का प्रॉब्लम से दिख जाता है
1: जी।
0: इसी के आवश्यकता से, जो भी आवश्यकता से, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फफूंद नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता से, आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंद नाशक, उसी का ही किसी का कृषि विज्ञानी का संपर्क करें, उसी के करें। जो आपको लिए आपको जानकारी होना है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंद नाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं
1: जी। यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
0: करना चाहिए,
1: उतने ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जी सर। मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना
0: है। जो खाद और पानी कम देने, जितना चाहिए उतना। जी जब हम पानी ज़्यादा देते, खाद ज़्यादा देते, पत्ता ज़्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो जुलास रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से दिख जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी
1: जी। तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उसकी पहचान क्या है?
0: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है। चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृद रोमित असीता होता है। हम लोग ये बोल देते हैं मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो जैसे थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तियाँ आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना, वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता, मृद रोमित असीता। अभी हम बोल रहे थे वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ ऊपर दिखते थे, अभी मृद रोमित में क्या होते हैं, उसमें उल्टा हो जाते, उसमें ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग श्रेणियां के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है, आपका फफूंग दिख सकता है, वो बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकता है। इसी की वजह से क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाता है। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में, एक रोग आता है जब गर्मी ज़्यादा, वो चूर्णित असती रोग आते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, उसी टाइम में ये रोग दिख सकता है। जब उम्र ज़्यादा होता है, मृद असित होते हैं ना, वो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं हम लोग, जब उम्र ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हैं, वो बारिश आती रहते हैं। अभी जो आजकल हम देखते हैं ना, वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से जब उम्र ज़्यादा होता है, मृद रोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा
1: जी सर। इनसे बचाव के लिए क्या करें?
0: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं, ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और और खेती में क्या होते हैं ना, जो भी पत्ता दिखते हैं आप अभी आप चूर्ण जनक दिखा है और मृद जनक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले गए, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला

0: निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल रहा जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा और बालों में पूर्णित दूरी से जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का प्लान एक पौधे से दूसरा पौधे को थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से कहें जैसे होना चाहिए। सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए। जो जो फफूंग होता है ये फफूंग दोनों का फफूंग हो जाता है जो जो कचरा हाँ पत्ता का कचरा हो नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है। इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
1: जी सर। तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाएं जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें।
0: नष्ट करें पहला
1: जी। और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
0: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना तब भी हम लोग को फफूंग नाशक का चढ़ाई छिड़काव करना है। जब भी इसमें फफूंग नाशक के चूड़ियाँ असिता में हम लोग फफूंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफूंग नाशक है 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वो चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं। और मृद्रोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
1: जी यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
0: वही बोल रहा हूँ अभी ये जैसा परवल इतना क्रॉप है इसमें ज्यादा फफूंग नाशक के लिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते। जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
1: जी सर। सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए।
0: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफूंग का फफूंग वजह से होने वाले 2 रोग जो जुलास कैसे के बारे में और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होता है ना इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना। इसी में क्या होता है पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है इसी को सब लोग को जानते हैं। जब पत्ता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है एक जगह पीला हो जाता है ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है ऐसा नहीं मोज़ेक होना चाहिए। जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक दोनों मिक्सचर हो सकता है इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके और पीलापन भी हो जाते हैं पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं पीलापन हो जाता है और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना फूल और फल आने वाला पूरा अचानक वो घट सकते हैं क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पत्ता पूरा पौधों को नुकसान करेगा। वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है। जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं ये फिर देखते हैं थ्रिप्स देखते हैं ये सब चीज़ें ना यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
1: जी सर। तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें।
0: हमेशा हमको क्या करना है पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है। जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है और रोगग्रस्त पौधा जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है ये पहला हम लोग करना है क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है उसी से पूरा फैल जाता है एक भी नहीं रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है नष्ट करना है। और खेत में जो भी खाद हम देते हैं जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने अभी इसमें फॉर्मल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है जो भी होता है नीम ऑयल वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं हम लोग छिड़काव कर सकते हैं नीम

0: फीमेल को स्प्रे कर सकते हैं, और ये सफेद मक्खी दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी रख सकते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफेद मक्खी देखते हैं, तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से। इसी से हम लोग ये कीड़ा को, कीड़ा के संघ की घटना से क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी सर, तो अब हम मृदा जनित रोगों के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
0: इसमें जड़ एवं तना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते हैं उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होते हैं ना, पौधा अचानक क्या होते हैं, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं, अचानक से एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ और थाने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेती होती है ना, जब भी आप परवल डालने के बाद दो साल हो गया, अभी तीन साल चार साल दो साल के बाद आप रखे, तो जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता, क्योंकि अभी ये मृदुजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा, पौधा सूखने जैसे सूखने से क्या होता है, पूरा आपका उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घट हो जाएगा, घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
1: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं। हाँ,
0: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं, और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जिसी में होता है, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक नाशक, जैविक फफुंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, वो जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग का फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
1: जी सर, सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: किसानों के लिए हमें क्या बोलते हैं, पांच, हम वही बोलते हैं पांच महत्वपूर्ण बात, किसान भाई परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें, जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते रासायनिक दवाई, जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की, केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
1: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद, कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो

0: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें।
1: वही, ये जो हम बात किया था इसी के बारे में ध्यान में रखना है। वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज्यादा होने वाला रोग है।
0: जी सर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
6: हर घर सूर्यघर।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले।

0: हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो TB हो सकता है।
1: TB?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले

0: protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की

0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में।
1: प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सभी कहानी और कविता सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे, बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज आपका इंतजार खत्म हुआ और आज हम एक सुनते हैं कविता। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में शामिल है। क्या आप जानते हैं इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता में है एक ऊंट। जी हाँ, ऊंट। ये कविता ऊंट पर आधारित है। रेगिस्तान में यही ऊंट लोगों की सवारी बनने का काम करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक कविता जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो तैयार हैं सारे बच्चे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो कैसी लगी आपको कविता? ये कविता ऊंट के चलने पर है, लेकिन ये ऊंट चल कहाँ रहा है सोचिए। बिल्कुल सही, ये ऊंट चल रहा है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या होता है? क्या रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कोई शब्द हमारी कविता में आया है? आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, शाबाश। ये शब्द है बालू। और कविता में ये बात कैसे कही गई थी? बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारा तो पैर धस जाता है, या कोई भी चलेगा तो उसका पैर बालू में धस जाएगा या फंस जाएगा, लेकिन ऊंट कैसे चलता होगा? आपने कभी ऊंट के पैरों की बनावट देखी है? उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो उसके पैरों में ऐसी खास बात होती है कि वे ऊंट में धंसते नहीं हैं, और फिर ऊंट तेज गति से रेगिस्तान में चल लेता है। तो इसलिए कविता में यही बात कही है कि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। एक बहुत मजेदार घटना मैं आपको बताती हूँ, और ये घटना है इसी कविता के बारे में। जब एक बार टीवी पे लाइव सेशन चल रहा था और आप जैसे नन्हे मुन्ने ये कविता पढ़ते हुए देख रहे थे, तो हमारे एक नन्हे दर्शक का सवाल आया था। और पता है ये सवाल क्या था? ये सवाल था कि करवट किसे कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। तो मन ने कहा कि करवट तो करवट होती है, अब इसका क्या अर्थ है। फिर बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं, पहले हम चित्त सोते हैं, यानी कि पीठ के बल सोते हैं। फिर आप अपने शरीर को, अपनी पीठ को या तो दाईं तरफ मोड़ते हैं या फिर बाईं तरफ मोड़ते हैं। बस यही दाईं तरफ मोड़ना और बाईं तरफ मोड़ना करवट कहलाता है। लेकिन मैंने एक और बात के लिए कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल या तो हम सीधा चलाते हैं, और कभी साइकिल को हम दाईं तरफ मोड़ते हैं और कभी बाईं तरफ मोड़ते हैं। तो साइकिल का दाईं तरफ और बाईं तरफ मोड़ना करवट नहीं कहलाएगा। लेकिन ये खूब मजेदार बात थी कि करवट का मतलब क्या है। तो इसलिए मुझे कविता बेहद पसंद है, और उसमें खास तौर से ये वाला हिस्सा कि जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। हम सोच सकते हैं कि ऊंट क्यों थक गया होगा, और आप ही सोचिए कि आप किन किन कामों को करते हुए थक जाते हैं। कहानी सुनते हुए तो आप नहीं थकते होंगे। मुझे भी कहानी कहना और कहानी सुनना बेहद पसंद है। आप बच्चों को भी तो कहानी सुनना बेहद पसंद है। और सोचिए, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने में आप थकान महसूस

करते हैं। मैं सोच सकती हूँ खेलने में, आप कहेंगे नहीं। खेलने में तो बहुत मजा आता है और छुपन छुपाई खेलने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। सब बच्चे अपने गली मोहल्ले के बाकी साथियों के साथ खूब खेल खेलते होंगे। कोई चौपट की सड़क खेलता होगा, तो कोई स्टापू खेलता होगा, कोई बॉल से खेलता होगा, तो कोई गिल्ली डंडा खेलता होगा और बहुत सारे बच्चे तो कंचे भी खेलते होंगे। तो हमारे सभी के अलग अलग तरह के खेल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आप और हम कभी भी खेल खेलते हुए नहीं थकते। तो ऐसे कौन से काम होंगे जिन्हें करते करते आप थकान महसूस करते हैं? ये हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हों, या फिर आप लिखते लिखते थक जाते हों, या फिर आप बर्तन उठाते उठाते थक जाते हों। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके और हमारे जिसमें हमें थकान महसूस होती है। यानी एक ही तरीके का काम घंटों घंटों घंटों करने में हमें थकान महसूस होती है। लेकिन ये बात तय है, जिस काम में हमें बहुत मजा आता है, जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद महसूस होता है, उस काम को घंटों करने में हमें कोई थकान महसूस नहीं होती। अच्छा, इस कविता में एक और बात आई थी कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अब कभी जब हम अपने चलने की बात करते हैं तो हम क्या ये कहते हैं कि हम हिलते डुलते चल रहे हैं? ये बात ऊंट के ऊपर क्यों कही गई होगी? शायद इसलिए क्योंकि ऊंट के ऊपर बहुत सारा सामान लदा पड़ा है और जब वह रेगिस्तान में चलता है तो रेगिस्तान सड़क की तरह तो नहीं है, सपाट नहीं है, समतल भी नहीं है। कहीं ज्यादा बालू है तो कहीं कम बालू है, कहीं बहुत ज्यादा नरम बालू है तो कहीं थोड़ी सख्त बालू है। तो जब ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो उसके पैर बालू में जाते होंगे, तो कहीं उसका पैर ज्यादा धस जाता होगा तो कहीं कम धसेगा। लेकिन ऊंट रेगिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, वैसे ही जैसे आप और हम सड़क पर चल सकते हैं, कहीं और रास्ते में चल सकते हैं, घर में चल सकते हैं, स्कूल में चल सकते हैं, खेल के मैदान में दौड़ लगा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यह ऊंट भी रेगिस्तान में बहुत मजे से चल लेता है। आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे, हम तो ऊंट चला की कविता पढ़ रहे थे और अब हम कहां पर आ गए, कामों में उलझ गए। तो बच्चों, दरअसल होता ये है कि जब हम कोई कहानी कोई कविता पढ़ते हैं तो हम उसे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। हम जैसे ही कोई कहानी पढ़ते हैं वैसे हमारे मन में एक कहानी बुनना शुरू हो जाती है। यही बात कविता पर भी लागू होती है। जब आप ऊंट चला की कविता सुन रहे थे तो आप ऊंट को अपने दिमाग में देख रहे थे, आप ये कल्पना कर रहे थे कि ऊंट कैसे रेगिस्तान में चल रहा होगा। अब ऊंट के बारे में कुछ और बातें इसमें आई हैं। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इतना ऊंचा ऊंट चला में क्या खास बात है? खास बात बिल्कुल है, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऊंट बहुत ऊंचा होता है। हमारे आसपास या हमने जंगल में, टीवी पर, चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर देखे हैं। कुछ जानवर तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ जानवर बहुत मोटे होते हैं, खूब ऊंचे होते हैं। ऊंट भी उन्हीं जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो बहुत ऊंचा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा होगा ये ऊंट? तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जिराफ की भी तस्वीर उभर रही होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली तो बहुत छोटी है लेकिन ऊंट बहुत ऊंचा है। कुत्ते के लिए क्या कहेंगे, कुत्ता भी छोटा सा ही है, उसकी भी उतनी ऊंचाई नहीं है, ऊंचा तो ऊंट है। हाथी और ऊंट में से आप किसे ऊंचा कहेंगे? अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि किस सवाल में फंसा दिया हमने। तो मैं आपको सवाल में नहीं फंसा रही, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, देखिए और तब जाकर ये तय कीजिए कि हाथी ऊंचा है या ऊंट ऊंचा है। कविता में एक और खास बात आई है, शायद आप बच्चों ने बहुत गौर से सुनी हो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट कैसा है? उसकी गर्दन ऊंची है, उसकी पीठ ऊंची है और वह पीठ उठाकर रेगिस्तान में चल रहा है। बच्चों, आपने कभी टंग ट्विस्टर का नाम सुना होगा, यानी कि हम किसी शब्द को या एक वाक्य को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिसे हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, जिसमें जीभ लड़खड़ाने लगती है।

कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो झटपट बोलने का मजा देते हैं, और जब हम झटपट बोलने की बात करते हैं तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इस कविता के इस हिस्से को झटपट पढ़, तो मैं आपको सुनाऊं कुछ ऊंच। देखिए मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, तो हम कोशिश करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। दोबारा से सुनिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब आप इस हिस्से को जल्दी से बोलकर बताइए और आपको पता चलेगा कि ऊंट पूंछ ऊंची ऊंट पीठ ये सारे शब्द ऐसे लड़खड़ा गए, सब गडमड गडमड हो गए, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यही मजा है टंग ट्विस्टर का और यही मजा है ऐसे शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का। तो आप इन शब्दों को दोहरा लीजिए, याद रख लीजिए और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से कहिए कि इस हिस्से को वे जल्दी जल्दी बोलकर बताएं। आपको इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। अब आप इस कविता को कोई नाम भी दे सकते हैं। हमने इस कविता को नाम दिया था ऊंट चला। हमने तो इस कविता को इसलिए नाम दे दिया था क्योंकि इस कविता में ऊंट के चलने की बात थी। आप अपने मन से इस कविता को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप सिर्फ ऊंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रेगिस्तान का ऊंट, ये भी शीर्षक अच्छा है। आप ऊंट भाई चले, ये भी कह सकते हैं। तो खूब मजेदार शीर्षक आप इस कविता के लिए तय कर सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, हमें आपका तय किया हुआ सब पसंद आएगा। आप बच्चे हैं ही इतने प्यारे, मुझे मालूम है कि आप अपनी कविता का शीर्षक भी बहुत प्यारा सा रखेंगे। आपने कविता में एक और खास हिस्से पर ध्यान दिया होगा, मैं उसे दोहरा देती हूँ आपके लिए। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब इसमें खास बात क्या है? इस कविता के इस अंश में खास बात है इतना ऊंचा ऊंट चला। कविता में कहीं बताया ही नहीं गया कि ऊंट कितना ऊंचा है, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई को बताने के लिए इतना शब्द का इस्तेमाल किया है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा ऊंट होगा, तो मैं कुछ शब्द कहती हूँ, कुछ चीजों के नाम बताती हूँ और आप बताइए कि क्या ऊंट इतना ऊंचा होगा। तो पहला क्या है? ऊंट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी सही नहीं मान रहे तो फिर आप खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से ऊंट कितना ऊंचा होगा। हमने यहाँ ऊंट के ऊंचे होने की बात की, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी तो हैं जो बहुत मोटे हैं। बिल्ली मोटी है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं उसके सामने कहूँ कि गैंडा मोटा है तो आप कहेंगे हाँ, और अब मैं गैंडे के सामने ये कहूँ कि बिल्ली मोटी है तो आप कहेंगे ना। तो आपकी हाँ और आपकी ना ये निर्भर करती है कि हम किन किन जानवरों की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जानवरों को अलग अलग देखें तो हमें लगता है कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये दुबला है। हमने तो अकेले अकेले जानवरों के नाम लिए तो हम मोटा पतला दुबला ऊंचा नीचा हम ये तय कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम दो दो जानवरों के नाम लें तब आप ये तय कर पाएंगे कि कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है? अगर मैं कहूँ कि खूब मोटी बिल्ली आई घर में तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि बहुत मोटी सी बिल्ली खिड़की से आई और रसोई घर में कूदी और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चूहा भी आया, ठीक, तो चूहा तो बहुत छोटा सा है। अब चूहा हमारे लिए छोटा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि उस घर में एक चीटा भी आया तो अब आप कहेंगे चूहा बड़ा है। तो बस यही शब्दों का हेर फेर है और आप ये तय करने में थोड़ी दिक्कत तो महसूस करते होंगे कि ऊंचा कौन है, मोटा कौन है और छोटा कौन है। तो अभी हमने ऊंट के ऊंचे होने की बात की, अब हम मोटे होने की बात करें। तो प्यारे

बच्चों मुझे ये बताइए, हाथी कितना मोटा होगा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना? सब बच्चे सोचेंगे कि माँ के पास संदूक कितना बड़ा होगा, या फिर ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। तो बच्चों को मैंने कहीं फंसा तो नहीं दिया? नहीं, यही तो मजा है शब्दों का। तो हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। या आप कोई और ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप हाथी के मोटे होने के बारे में बता सके। तो चलिए, हमने बात की ऊंचे होने पर, मोटे होने पर, और अब हम बात करते हैं छोटे होने पर। जैसे ये हमारे बच्चे छोटे मोटे से हैं, वैसे चींटी भी छोटी सी है। तो चींटी कितनी छोटी होगी, सोचिए, चीनी के दाने जितनी? तो आप बच्चे कहेंगे, नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होती। तो चावल के दाने जितनी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इलायची के दाने जितनी? तो आप बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो चींटी आपके हिसाब से ना तो चीनी के दाने बराबर जितनी छोटी है, ना चावल के दाने जितनी छोटी है, और ना ही इलायची के दाने जितनी छोटी है। तो आप अपना शब्द खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से चींटी कितनी छोटी है। तो हमने इस कविता के आधार पर ऊंट के बारे में बात की, हाथी के बारे में बात की, और चींटी के बारे में बात की। तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से और बहुत सारे जानवर सोच सकते हैं। जैसे हम अगर पूंछ की बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी पूंछ या तो बहुत छोटी सी है, या बहुत बड़ी है, या फिर बहुत जबरीली है। जबरीली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं और बहुत फूली हुई सी दिखती है, जैसे गिलहरी की पूंछ होती है जबरेली। तो आपने अपने आसपास तरह तरह के जानवर देखे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत छोटी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ ना तो बहुत छोटी है और ना ही लंबी है। लेकिन आप प्यारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनकी पूंछ हमेशा मुड़ी रहती है। मैं समझ सकती हूँ आप सभी कुत्ते के बारे में बात कर रहे होंगे कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तो आपने गाय की पूंछ भी देखी है, भैंस की पूंछ भी देखी है, हाथी की भी पूंछ देखी है। अब हाथी तो इतना मोटा और इसकी पूंछ इतनी छोटी सी। तो और तरह तरह के जानवर कौन से हैं? ऊंट की भी पूंछ होती है, शेर की पूंछ होती है, और बंदर की पूंछ होती है, और लंगूर की पूंछ तो बाप रे बाप कितनी लंबी होती है। वह इतने ऊंचे पेड़ की एक टहनी पर बैठता है और उसकी पूंछ नीचे जमीन को छूती है। तो लंगूर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है। तो अब आप ये खेल खेलिए, आप ये प्रश्नोत्तरी कीजिए अपने घर में, और आप एक कागज पर सारे जानवरों के नाम लिख लीजिए, और ये अपने आप तय कर लीजिए कि किसकी पूंछ छोटी है और किसकी पूंछ बड़ी है। और आप फिर एक एक पर्ची खोलते चले जाइए और सबसे पूछते जाइए, अच्छा बताइए कि गधे की पूंछ कैसी होती है, छोटी है या बड़ी है? लंगूर की पूंछ कैसी है, छोटी है या बड़ी है? ये खेल खेलने में आप सभी को बहुत मजा आएगा।

आपने ये कविता सुनी ऊंट चला। कैसी लगी आपको कविता? यकीनन आपको इस कविता को सुनने में बहुत मजा आया होगा। भाई मुझे तो कविता

0: लगता गाने में बहुत मजा आया। तो आज हम यहीं विदा लेते हैं आपसे, नमस्कार।
1: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: लक्ष्मी के उपचार से ऊंट का दर्द मिटा तो लगा ऊंघने। तब उपदेश दिया उर्मी ने,
1: ऊंट का है बस एक उपाय, मिलके

साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर

0: या A&M से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
1: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और A&M से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
0: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि।
5: जी हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के बीच, आप सभी के पास उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है और खास विषय भी है आप सभी के लिए, और वो है पपीता की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश की बात करें तो रंग बिरंगे फल और फूल यहाँ पर मिलते हैं, और फलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं ये फल, और बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरे रहते हैं ये फल। वैसे पपीता की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती एक जो समझ है वो हमें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों को ये समझ होनी चाहिए। और इसी विषय पर और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फिज़ा अहमद, जो है प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद।
5: और डॉक्टर साहब, जब पपीता की बात आती है तो खेती का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सही समय क्या होता है।
14: देखिए, पपीता एक ऐसे फल है जो कि हम यहाँ पे हर समय लगा सकते हैं, सिर्फ आप ठंडे को छोड़ करके। उसकी वजह यह है कि पपीता जो है ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
5: अच्छा।
14: तो आप ये रखिए उम्मीद कि आपको नवंबर से लेकर के फरवरी तक पपीते को नहीं लगाना चाहिए, बाकी समय में आप कभी भी पपीता लगा

0: लगा सकते हैं। लेकिन पपीता लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना होगा, और जो एक अहम प्रक्रिया है पपीते का बाग लगाने के लिए, नर्सरी जैसे कि आपने फरवरी में लगा दिया है तो आपका एक महीने के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाएगा और आप मार्च में भी लगा सकते हैं। किसी वजह से आपने मार्च में नहीं लगा सके तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं। अगर मई में नहीं है तो जुलाई में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नर्सरी का प्रबंधन बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा बताया कि पानी में पपीता नहीं चल पाता है।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए आपको चाहिए कि जब पपीता का नर्सरी तैयार करना है तो आपको जमीन से करीब एक फीट ऊपर का मट्टी का एक बना दें, रेज बेड बना दें, और रेज बेड पे ही आप उसमें सीड डालें।
1: अच्छा।
0: ताकि रेज बेड डालने से क्या होता है कि पपाया जो सीड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा और मरेगा नहीं, इसलिए हमेशा रेज बेड पे उगाना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन करने के लिए पपीता में सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ों के लिए हमें मट्टी में ज़्यादा नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि मट्टी में सीड का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि सीड बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल, इसलिए हमें हर सीड से पौधे बनने चाहिए। उसके लिए प्रोट्रे आता है, किसान भाइयों के लिए प्रोट्रे समझाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से वो विश्वविद्यालय आकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पपीता का सीड कैसे तैयार करते हैं। प्रोट्रे होता है, उसमें एक बुरादा हम लोग डालते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे कि पपाया का पौधा तैयार होता है। पपीता जो है इसमें वायरस बहुत लगता है, जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बाहर में छोड़ देते हैं, उससे वायरस लग जाता है। तो हम लोग उसको पपीता को बाहर में नहीं नर्सरी को तैयार करते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें हम लोग एक जाली नुमा दार जो है चद्दर डाल देते हैं, वो मार्केट में मिलता है,
1: कवरिंग
0: कर देते हैं, ताकि उसमें जो है कीट जो है नहीं घुस सके। अगर कीट वो चला जाएगा तो वायरस कर देगा, और वायरस कर देगा तो आगे चल के कुकड़िया रोग लग जाएगा इसमें, जो पपीता का सबसे बड़ी समस्या है। किसान भाई पपीता का बहुत अच्छा पौधा देखते हैं, एक दो महीने के तक बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चला कि इसमें कुकड़िया रोग लग गया और कुछ भी फल नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है इसके लिए। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो नर्सरी तैयार करें, रेज बेड में करें, जमीन से उठे हुए एरिया में करें जहाँ पानी ना लगता हो, और जब वो सीड डालें और जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसमें नेट लगा दे वो, ताकि इंसेक्ट नहीं जा सके उसमें, अगर कीड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने कुकरैया रोग के बारे में कहा, अभी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पपीता की खेती के लिए जो बीज से नर्सरी तैयार किया जाता है तो उसकी विधि क्या हो सकती है?
0: हाँ, हमने जैसे कहा कि जो प्रोट्रे है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा, और वही चीज़ अगर आप जमीन में लगा के करते हैं तो उसमें आपको 60% 60% 70% तक मिलेगा, लेकिन प्रोट्रे में बहुत अच्छा होगा। और किसान को चाहिए कि वो विश्वविद्यालय आकर के सीखे कि पपीता का सीड को कैसे बनाया जाता है, उससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे।
1: अच्छा, तो ये बात हो गई है यहाँ पर सीखने की। तो जहाँ तक बात आती है सीखने की, तो हमारे किसान भाई जितना कुछ सीखना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, हम कोशिश करते हैं कि आपको हम पूरी की पूरी जानकारी रेडियो के थ्रू, यानी कि हमारा जो FM ग्रीन है उसके थ्रू दे। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब, जब बाग तैयार करने के तरीके आते हैं तो बाग तैयार कैसे करें, उस तरीकों के बारे में भी आप किसान भाई।
0: ये अहम प्रक्रिया है, बाग तैयार करने से पहले भूमि का चयन का बहुत जरूरी है कि पपीता जो है वो पानी जहां लगता वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी ना लगता हो। अगर बारिश में पानी एक रात भी अगर किसी खेत में लग जाएगा और वो पपीता के संपर्क में आ जाएगा तो पपीता रात भर में मर जाएगा।
1: अच्छा।
0: इसलिए किसान भाई इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस खेतों का चुनाव करें जहाँ की सालों भर पानी ना लगता हो। अगर पानी भर भी जाता हो तो 2 या 3 घंटे में वो पानी निकल जानी चाहिए, तो ऐसे खेतों का चुनाव होना चाहिए। और मट्टी जो है दोमट बलुआही मट्टी जरूरी है इसके लिए, बलुआही मट्टी भी है, दोमट भी चलेगा इसमें, मतलब हर तरह के फील्ड में रहता है, लेकिन काली मट्टी में ये नहीं चलेगा क्योंकि उसके रूट नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे जब चुनाव कर लिया गया है तो ये वैरायटी पे डेवलप करता है कि कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिस है, ये अच्छी वैरायटी है, और ये वैरायटी जो है पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है, और ये पौधा राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है, वो बीज तैयार करते हैं वहाँ पे, और किसानों के लिए ही बीज वो तैयार किया जाता है। तो किसान पूसा में जा कर के पपीता का बीज ला करके नर्सरी तैयार करेंगे। अगर पूसा डिलीशियस लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर बाय 2 मीटर पे वो गड्ढा खोदेंगे जिसमें लगाना है, उससे करीब 15 दिन पहले गड्ढे को खुला छोड़

0: दें। अग छोड़ने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर उसमें दो टोकरी कम से कम डाल दें। अगर भर्मी कंपोस्ट मिल जाता है किसानों को तो वो भी आधा किलो एक किलो के बीच में हर गड्ढे में डाल दें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाग में जो हम पौधे लगाते हैं तो साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि पौधे की दूरी, मतलब पौधे के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर है?
0: हाँ, जैसे वो लगा रहे हैं जो पूसा डेलिशियस है, पूसा मजेस्टिक है, जो पूसा ड्वार्फ है, ये सबको डेढ़ मीटर से दो मीटर के बीच में लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: आज जो चलन यहाँ हो रहा है बिहार में वो रेड लेडी का चलन चल रहा है यहाँ।
1: ये क्या होता है?
0: रेड लेडी एक वैरायटी है जो ताइवान से आती है।
1: अच्छा,
0: और ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है इसमें नर और मादा दोनों जो है फल देते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं ना पपीता में कि आधे में फल आता है आधे में नर आता है, तो नर वाला तो फल नहीं देता है, लेकिन ये जो रेड लेडी वैरायटी है ये जो भी पौधा लगेगा खेत में सब में फल आएगा, इसलिए किसान जो है इसी को प्रीफर करता है कि हमको जो है हर पौधे में फल मिले। इसलिए ये वैरायटी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा वैरायटी है।
1: हाँ।
0: तो इसको आप डेढ़ मीटर पे भी लगा सकते हैं, ये सवा मीटर पे भी लगा सकते हैं।
1: और तो अक्सर देखा भी गया कि जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द फल मिले हमें, तो ये वाला वैरायटी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा।
0: जी जी, हर साल लगाना चाहिए, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है रेड लेडी में, इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। अगर सही समय पे इसका उपचार जो कुकड़िया रोग है नहीं करा जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान फिर मुश्किल में लग जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप खाद की मात्रा बता रहे थे अभी कुछ देर
0: जी पहले। जी जी, खाद जो है अहम है, किसी भी पौधों को खाद जो एक अहम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम खाना खाते हैं, दिन में तीन बार खाते हैं, उसी तरह पौधा भी चाहता है कि हमको बार बार मिले। तो हम देखते हैं किसानों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक दो बार में वो खाद की मात्रा को पूरा कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि पपीता में हर जो डोज है उसका, जैसे 200 ग्राम नाइट्रोजन है, 200 ग्राम फास्फोरस है, और लगाते हैं 100 ग्राम फास्फोरस है और 200 से 300 ग्राम जो है पोटाश है। तो फास्फोरस की मात्रा वो लगाते समय ही डाल दे 100 ग्राम, उसके बाद वो कभी पौधे की जिंदगी भर जब तक पौधे रहेंगे तब तक फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा 200 ग्राम यूरिया का और 200 ग्राम पोटाश 300 ग्राम पोटाश का, उसको पांच भाग में बांट करके दे वो, ताकि वो हर महीना अगर डालते रहेंगे तो उसको खाना मिलता रहेगा। अगर वो खाना मिलता रहेगा तो उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। पपीता का जो असली खाना है वो पोटाश है।
1: अच्छा।
0: अगर आप पोटाश उसमें डालते हैं तो पपीता जो है अंदर से लाल और पीला जैसा जो वैरायटी है वो अच्छा होगा और स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। हम देखते हैं कि किसानों के खेत में टमाटर लाल नहीं हुआ, टमाटर लाल ना होने की वजह है कि किसान पोटाश डालता ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: जो भी रंगीन फल है उसके लिए पोटाश का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसे केला है, केला बहुत ही पोटाश चाहता है, उसी तरह से पपीता भी है वो भी पोटाश बहुत चाहता है। तो पोटाश की मात्रा को आप हर महीने उसमें 50-50-50 ग्राम देते रहें पांच डोज में, तो आपका हम समझते हैं कि पपीता जो है बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट और मीठा और बाजार में बहुत पसंद किया जाएगा। जब उसको काट करके आप रखेंगे और रंग देखेगा तो जो व्यापारी भी होंगे वो भी ले जाएंगे और जो डेली कंज्यूमर है वो इसको पसंद करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक कुकरैया रोग के बारे में भी आप बता रहे थे और उसमें आप कह रहे थे कि ये पपीता जो है इसमें गलना, जमीन से गलन इसका जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके उपचार के बारे में?
0: हाँ देखिए, गलन वाला जो बीमारी है, हम लोग जितने बैठते हैं ऑफिस में, मैं देखता हूँ कि सारे किसान जो भी आ रहे हैं वो पपीता के गलने वाले रोग को अभी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या होता है कि किसानों को उतना अंदाज नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पपीता लगा देते हैं, लेकिन जब पानी लग जाता है तो वहाँ गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ से लगा हुआ होता है वहीं से ये गलन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा रेज बेड पे पपीता को लगाए, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है थोड़ा सा पपीता को रेज बेड लगाए, था पानी जो है उसके जो मेन ट्रंक है उसको टच न कर सके।
1: पानी
0: एक तो ये चीजें हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए कि किसी पौधे में एक दो पौधे में गलना शुरू हो गया है तो उसको बचाव करने के लिए आप एक ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके उसके जड़ में दे दें। एक ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके करीब आधा लीटर या एक आधा लीटर पानी हर पौधे में डाल दें, तो ये गलने का रोग जो है वो से आप दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे पौधे। लेकिन पानी अगर नहीं लगेगा तो ये गलना वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है।
1: अच्छा।
0: दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बीमारी है इसमें है, ये है ये कुकड़िया रोग, जो कि पौधा का पत्ती जो है कुकड़ हो करके मुड़ करके ये नीचे लटक जाते हैं।
1: अच्छा।
0: ये वायरस से होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है।
1: अच्छा।
0: इसका इलाज जो है वो है कि जो इसको वायरस फैलाता है उसको मारना है, जैसे डेंगू बीमारी है, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है डेंगू को? डेंगू का इलाज है मच्छर को मारना। अगर आप मच्छर मार दिए तो डेंगू नहीं होगा। उसी तरह से पपीता में है, अगर आपने कीड़े को मार दिया तो उसमें कुकड़िया रोग लगेगा ही नहीं है। तो ये एक समस्या है यहाँ पे, किसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिर्चा में कुड़कुया लोग लगता है उसी तरह

0: पपीता में भी लगता है, तो वो नहीं समझता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 20 दिन से 22 दिन के अंदर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक पौधों में छिड़किए, और इसका जो कीड़ा रहता है वो पत्ती के नीचे रहता है, तो दवाई ऐसे छिड़कना चाहिए कि पत्ती के नीचे भी दवाई लगे, तो इससे बहुत इफेक्टिव होगा, वो कीड़ा मर जाएगा, तो ये जो बीमारी जहाँ लगा है वहाँ नहीं ले जाएगा। अगर शुरू के टाइम पे किसी पौधे में ये बीमारी लगा है तो उसको उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण बनता है, एक रिंग स्पॉट होता है। किसान भाई, जब आप खेत में जाएं तो पत्ती को गौर से देखें, और गौर देखने के बाद वहां देखेंगे कि पत्ती पर अगर गोल गोल रिंग बन रहा है तो आप उसको तुरंत उखाड़ करके ज़मीन के नीचे गाड़ दें, क्योंकि यही रिंग स्पॉट वायरस जो है पूरे बाग को चौपट कर देता है, अगर ये लग गया रिंग स्पॉट वायरस तो। इसका वही कंट्रोल है कि उसमें आप हर 15 से 20 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें, कोई भी इंसेक्टिसाइड लें, सिस्टमेटिक ले लें या आप कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड ले लें, जो भी है आपके पास उपलब्ध आप छिड़क दीजिए, तो हम समझते हैं कि उससे बहुत बच जाएंगे और पपीता का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग खेती सिर्फ कुकड़िया बीमारी की वजह से नहीं करते हैं किसान भाई, लेकिन अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे कीटनाशक के द्वारा, तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा फल आएगा इसमें।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 20 से 25 दिन पर आप अपने जो जो पपीता के जो पौधे हैं उसका देखभाल करते रहें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पे कोई रोग आ रहा है तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पपीता गलन के इस बीमारी के बारे में हमने जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना, अब एक सवाल और पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि जो पपीता में जो फल लगते हैं वो कितने समय में लग जाते हैं?
0: हाँ देखिए, ये पपीता जो है, जैसे कि पपीता आपने लगाया, रेड लेडी पपीता लगाया, तो ये करीब 3 से 4 महीने के बीच में फूल आ जाते हैं इसमें, और ये फिर उसके बाद जो है 7-6 महीने में ये तैयार हो जाते हैं, करीब साल भर में आपका साइकिल तैयार हो जाता है। तो किसान आजकल क्या कर रहे हैं, वो दो साल नहीं ले रहे हैं पपीता, वो 1 साल का पपीता लेके काट देते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो एक पपीता से करीब 5-6 साल लेते थे, तो वो अब जवाना नहीं रह गया है, अब ये जवाना आ गया है कि हर साल पपीता लगाइए और हर साल आप पपीता को लगा करके फल ले लीजिए। 1 साल में आप रेड लेडी पपीता को अच्छी तरह तोड़ करके बेच करके अच्छा आय कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये फल लगने के समय हो गया डॉक्टर साहब, और इसकी तुड़ाई हम कब करें ये जानना चाहेंगे?
0: हाँ देखिए, इसका तुड़ाई करने का तरीका कैसे जानेंगे कि ये पपीता मेरा पक गया है, तो इसके लिए किसान भाइयों देखिए, आप जो पपीता लगा हुआ है उसमें आप ब्लेड से चीरा लगाएं, अगर वहाँ से दूध जो गिर रहा है वो पतला धार हो गया है तो समझिए कि वो पपीता आपका पक गया है, अगर दूध का धार जो है वो गाढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि ये अभी नहीं पका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो 1-2 पौधे में देखेंगे कि वहाँ पे रंग चढ़ रहा है तो वो भी एक तरीका है पपीता को जानने का कि ये पक गया है और इसको अब तुड़ाई शुरू करनी चाहिए।
1: तो ये पूरी की पूरी जानकारी किसान भाइयों आपने सुनी पपीता की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, किसान भाइयों से ये सलाह देना चाहता हूँ कि रेडियो पे तो आप सुनते ही हैं हम लोगों को, लेकिन आप अगर विश्वविद्यालय में आके यहाँ के प्राध्यापक के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको, किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय बना है वही लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है, यहाँ पे एक प्राध्यापक बैठा हुआ है जो शोध करके किसानों तक पहुँचाने के लिए, अगर किसान भी एक कदम आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय में आता है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कैसे कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं, और पूरी की पूरी जो एक डॉक्टर्स की टीम है, आप समझ लें कि आपकी खेती के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जैसे कि आप अपने रोगों का इलाज कराते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो आप अपने फसलों का इलाज, अपने जो भी रोग हैं आपके पौधों के, फल के, सब्जियों के, आप उसका इलाज भी यहाँ पर आके करवा सकते हो, यानी कि जानकारी ले सकते हो, और सही जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चलेंगे, इसे अपनाएंगे और अच्छे तरीके से पपीता की खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अरे अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो

0: टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार

रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-85% और दोपहर में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेग सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350-400 ग्राम बीज और 20-25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40-60 किलोग्राम पोटाश और 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1-2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800-1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40-50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300-350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7-10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10-15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20-25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही

पर नियंत्रण रखे। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखे और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी की 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एक कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है. कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी. तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा. सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा जी.
0: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
1: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए. मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा. मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को. मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें. तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में. और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था. इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को. तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियां या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें. इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा है.
0: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसी है?

0: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छी तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
1: सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती। हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
0: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5,00,000-8,00,000-6,00,000 पहुँच गया है। तो अगर 5,00,000 किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है। उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
1: सर, जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
0: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और कर सकता है। तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान, वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं, और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज, इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है, उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर, आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
0: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं, सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य

0: से होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है एफपीओ बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं एफपीओ, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी नाबार्ड जो है वो मदद भी करती है एफपीओ खोलने के लिए, क्योंकि एफपीओ एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन नाबार्ड उसके उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका एफपीओ का जो मालिक होते हैं, जिसको सीईओ बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि एफपीओ के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि एफपीओ के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत, अगर उसको उसको लेना है मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का एफपीओ बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए एफपीओ का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर जैसे कि आप बता रहे थे कि एफपीओ के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ एफपीओ के लोगों को नहीं, जो एफपीओ के सीईओ होते हैं, मतलब जो एफपीओ के मालिक होते हैं, सीईओ मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है नाबार्ड देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगेगा कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस नाबार्ड की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी नाबार्ड ही बियर करती है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर कोई एफपीओ खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं एफपीओ खोलने का।
1: तो सर सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
0: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो एफपीओ तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं, अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
0: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है तो वो छोड़ देते हैं बीच में, और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार को एंगेज कर पाएँ। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पर इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत ज़रूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है, लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं, इसलिए एक एक एक चेष्टा करनी चाहिए कि

0: परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें जरूर मुनाफा होगा।
1: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
0: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं, कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास ये बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
0: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाज़ार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जानते होंगे कितना अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए, जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा, जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और ख़ास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और ख़ास तौर से आप के घर पे अगर युवा हैं तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फ़ायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और समाज का भी फ़ायदा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में

0: सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
3: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: കൃഷി. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में. तो आप सभी को बता दो किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं. और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें. तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो. तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएन राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में.
1: थैंक यू मैडम.
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं, या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं.
1: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनिक कीट, धान की बभनी, धान का केसवर, धान का लपेटक, धान का पतंगा आदि कीट प्रमुख हैं. कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशकों के संबंध में जानकारी आवश्यक है. इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है. पहला कि धान की तना

भेदक कीट, तन तना भेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है। इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना भेदक कीट का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके। पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस, जड़ों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तना भेदक से बचाया जा सकता है। तना भेदक के वयस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तना भेदक कीट को अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें। तना भेदक के आर्थिक क्षति होने पर काटा हाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में कटाप हाइड्रोक्लोराइड 25 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। धान का मधुआ कीट, यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 3 mm होती है। इस कीट के लीफ एवं वयस्क, निम्फ एवं वयस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10 से 70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन,

0: प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हील 5 से 10 मधुआ कीट दिखाई दे तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 SL 250 मिलीलीटर, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: और सर आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए और आपने बताया तना बेधक के बारे में, तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावे अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
0: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25 से 30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6 से 7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं व्यस्क दोनों की अवस्था में फसल को दुधावस्था में दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों में एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण आघात प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट की आक्रमण हो जाता है उस खेत में धान के चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक पाया जाता है। प्रबंधन, खेत के मेड़ों को खरपतवार 9 गुने दें क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खरपतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में 4 प्रकाश प्रपंच जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या 1 से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक कीट, इस कीट के भारत में कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु

0: पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में उसकी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ लेती हैं और अंदर ही अंदर उसके हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां धान की पत्तियों को सफ़ेद सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु अवलिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। देने के लिए ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोफोस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया, इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर 4 प्रजातियाँ पाई जाती है और इसके अलावा मैं बता दूँ कि इनके पंखों पर भी काली जो धारियां हैं वो पाई जाती है। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खरपतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए और क्योंकि उससे कीट पतंग जो हैं उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बात।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही

0: उंगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
0: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
0: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
0: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकालें और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को

जो को बाविस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले, 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं, पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं, और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के करियर के बारे में और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस दिशा में आप जाकर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और उन्हीं बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एग्ज़ाम होता है IBPS AFO

तक ये खुला रहता है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप जून या जुलाई में इस नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप IBPS AFO के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, डेयरी साइंस में हो सकती है, फिशरी में हो सकती है, फॉरेस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, अधिकतम आप 30 साल के होने चाहिए। और वहीं सरकारी नियमों के अनुसार OBC को अधिकतम वर्ष में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं ST या SC को 5 साल की छूट दी जाती है। और वहीं अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आमतौर पर IBPS के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और फिर कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो इस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और वहीं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तीनों ही सेक्शन के लिए 40-40 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स के लिए ये 150 क्वेश्चन होते हैं। और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के आगे की बात करें, यानी कि मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस का एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और ये भी ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में आपके जो पूछे जाते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूरी तरह से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के मार्क्स जो होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में काम आते हैं। और मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं। इंटरव्यू जैसे कि आमतौर पर होता है एक क्वालिफाइंग पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि फाइनल मेरिट जो आपका बनता है, उसमें इंटरव्यू का 20% और मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है जो आम तौर पर बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि पजल्स होते हैं, सिटिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, DI, प्रॉफिट लॉस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है या कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना

सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के साथ या तो फिर इंग्लिश क्वांट के साथ जा सकते हैं, और साथ में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी नए रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, अगर कोई नई योजना आई हुई है तो उसके बारे में भी आपको जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, और अभी तो हमारे पास सूचनाओं की, जानकारियों की बाढ़ है, और आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, और अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट लगाएं। हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है, तो वीक एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जहां गलती हो रही है मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कहां ज़्यादा आप गलतियां कर रहे हैं। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको इसके लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी कृषि योजनाएं आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आम तौर पर IBPS AFO का जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कहां से अप्लाई करना है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रखें। किसी भी एग्ज़ाम की या पोस्ट की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार उस पोस्ट से मिलने वाली सैलरी भी होती है, और अगर हम IBPS AFO की सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो होती है ना वो 38,000 से 60,000 पर मंथ की हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग की लोकेशन क्या है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम गिलहरी।

0: रमेश और सुधीर दो भाई थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक सुधीर बोला,
1: भैया वो देखो गिलहरी।
0: ये कहकर सुधीर ने पत्थर उठा लिया। रमेश ने कहा,
2: नहीं नहीं पत्थर मत मारो, गिलहरी किसी को नहीं काटती, देखो कितने मजे से कुतर कुतर कर बेर खा रही है, कितनी प्यारी है, चलो उसके पास चले।

0: सुधीर बोला,
1: अरे ये तो पेड़ पर चढ़ गई।
0: रमेश ने कहा,
2: गिलहरी को फल बहुत अच्छे लगते हैं, इसे मूंगफली भी बहुत अच्छी लगती है। अगर इसे मूंगफली दे तो ये हमारे पास आ जाएगी।
0: सुधीर ने एक मूंगफली गिलहरी को दिखाकर फेंकी। गिलहरी बड़ी तेजी से नीचे उतरी। वो मूंगफली उठाकर पेड़ की डाल पर चढ़ गई और कुतर कुतर कर मूंगफली खाने लगी। रमेश बोला,
2: देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं, इसके बाल बड़े मुलायम होते हैं।
0: सुधीर ने कहा,
1: भैया ये गिलहरी बहुत सुंदर है, आओ इसे पकड़े, मैं इसे घर ले जाऊंगा।
0: रमेश बोला,
2: सुधीर गिलहरी बड़ी फुर्तीली होती है, इसे पकड़ना आसान काम नहीं, जरा सी आवाज होते ही ये पेड़ पर चढ़ जाती है।
0: सुधीर ने पूछा,
1: क्या गिलहरियां पेड़ पर रहती हैं?
0: रमेश ने उत्तर दिया,
2: हाँ गिलहरियां पेड़ पर ही रहती हैं, वही उनका घर होता है।
0: इतने में गिलहरी फिर पेड़ से उतरी। वो एक जगह रुक गई। अपनी चमकीली आंखों से वो दोनों भाइयों को देखने लगी। सुधीर उसे पकड़ने दौड़ा। गिलहरी झट से पेड़ पर चढ़ गई। सुधीर देखता ही रह गया।
3: गिलहरी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्त अलूद्रा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर। कलाकार अरिदमन शर्मा। बाल कलाकार राजेश और तेजस। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सविता। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं।

0: हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पर ऊँचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित

0: रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैडम।
1: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
4: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, तथा बिहार राज्य

0: जिसमें इसकी खेती लगभग 31 लाख हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70 लाख टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी क्षमता से काफी कम है। इसके कारण कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
1: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुंचता है हमारे धान के फसल को?
0: सबसे पहले तो खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खरपतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है, कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20-40 किलोग्राम नत्रजन, 5-15 किलोग्राम स्फुर और 15-50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4-12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7-14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
1: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
0: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकोलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
1: तो सर, कौन से स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
0: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो वन साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15-45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35-45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावी

0: नहीं करता है।
1: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो शस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है, जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो शस्य क्रिया विधि है, उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी, जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है, उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पडलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर खरपतवार की रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी

0: एक से दो सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए धान, सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई, क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है, वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है, तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताएं उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है, लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं समय ससमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं, जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे, जो धान में मुख्यतः 3 तरह के खरपतवार पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर, जो कि बहुत अच्छी दवाई है, जिसको मिंचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड, जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है बिस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है, जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है, जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है, जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी

0: ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है, जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। यह घास, मोथा, चोरी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय मीद देना बहुत ही लाभदायक। जो कि एक और भी दवा है जो चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 240D नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है आधा लीटर से 1 लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है। रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड, दो शाकनाशियों का कम्बिनेशन है जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चोरी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चोरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चोरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाइयों सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत जरूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि का हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसके में काम करें उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए, बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला

घोटो रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अल्प उपयोगी सब्जी के बारे में जो स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है, यानी कि बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में, यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी से। मैम, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, BAU सबौर से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। ये आज के श्रोताओं के लिए, जैसे किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक नया क्रॉप है। आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग

0: बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिल्डेसी इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियां इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है और इसका सुगंध एवं एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको गार्लिक चाय बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
0: जी बिल्कुल उमा, तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइफ है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
1: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
0: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइफ को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यवसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी, विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
1: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाय?
0: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविधीकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गार्लिक चाय अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित संभव प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में हमारे बीएयू सबौर में भी इसका शूट शुरू हो चुका है।
1: जी मैम, मैम अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाय की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर देखिए, जैसे कि गार्लिक चाइफ है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का लंबे समय तक जमाव नहीं रहना चाहिए। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी का संरचना और उर्वरता सुधारने में सहायक हो सकता है। पौधों की स्थापना के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के बाद उचित दूरी पर पौधे को स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि इसमें क्लोफ नहीं बनता है, तो इसका होता है नीचे का जो एक राइजोम रूट्स होता है उसको हम लोग कट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लम्प। तो इससे हम लोग लगाते हैं 15-10 के दूरी में। तो सिंचाई आवश्यकता के अनुसार हम लोग को करनी चाहिए इसमें, और खेत में अधिकतम पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण और रोग कीट की

0: नियमित निगरानी आवश्यक है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इस फसल में पाया गया कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाय की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
1: जी मैम, अगर हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक चाय की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
0: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाने ही पर्याप्त नहीं है, आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाय की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहाँ पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज़्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं और इसको हम लोग इसी में ही नहीं, पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाय केवल व्यवसाय किसानों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है, थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
1: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाय में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
0: बिल्कुल, गार्लिक चाय को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में इसकी किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है।
1: जी मैम, मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जी मेरे किसान भाई और बहनों, खेती में सफलता केवल परंपरागत फसलों से ही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाए और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दे। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
1: जी मैम, तो किसान भाई बहन जैसे कि मैम ने कहा, बाजार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाजार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाइव जैसी अल्प उपयोगी सब्जी फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल

0: को बढ़ावा दे जो पोषण से भरपूर हो, बदलती जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
0: जी मैम, तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
10: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार

0: से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ

0: ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं। इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन

0: चल रहे हैं उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
11: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
12: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योतिमाला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है, साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
0: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
1: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है, साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस है, तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
0: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
1: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग, जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिडा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना, और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद, जिसे जीवामृत कहते हैं, वो बनाया जा सकता है, जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं, उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
0: मैम, बायोचार क्या होता है?
1: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में, गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को

0: मिट्टी में डाला जाता है जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं, तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है ये।
1: मैम, बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
0: देखिए, बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के एक दैनिक खाना बनाने की ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है। अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं क्योंकि गोबर को सड़ा कर उनका गैस बनाना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
1: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
0: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
0: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में इनके मांग में काफ़ी तेज़ी बढ़ रही है जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
1: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं पशुपालक

0: लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो ये वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
1: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदउपयोग करें, और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि। क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के

पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करे। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करे। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं। और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को

साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है। और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है, और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया

0: जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 90.8 FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियाँ जो हैं, जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियाँ हैं, उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियाँ और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा, बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर बी वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
2: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता है। जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता है उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
1: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाजार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
2: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
2: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
1: जी।
2: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
1: जी जी।
2: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी, एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
1: जी जी।
2: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
1: प्राइस कम,
2: हाँ, उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं।
1: हाँ।
2: कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर, फूल गोभी।

0: जी।
1: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर आगेती कर लेते हैं
0: पहले,
1: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं, मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50 रुपए 60 रुपए गोभी बिक जाती है।
0: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से हाँ, थोड़े महीने
1: थोड़ा
0: पहले।
1: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है, तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं। और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है। इस संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
1: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं, तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए, वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके, जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
0: जी जी।
1: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें, बेमौसमी सब्जियों का एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे, तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
0: चैलेंजिंग हो जाता है,
1: बिल्कुल चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
0: अच्छा।
1: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है, वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
0: ज्यादा होती है।
1: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं, तो उसको एफर्ट मतलब उसको एडॉप्ट करें। जो किसान भाई उसको एडॉप्ट

0: नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ, ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर है, हम उसको ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर है हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो हो जाती है।
0: तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे छोटे किसान,
0: हाँ, छोटे किसान है, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का।
1: अच्छा।
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी हमने फूल गोभी की बात की,
1: हाँ।
0: वैसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी, कद्दू की जिसकी, हाँ, हम बात करते हैं, कद्दू को
1: ठंडी के,
0: हाँ, ठंडी का मौसम
1: आने से पहले, कुछ
0: नहीं, गर्मी आने से पहले।
1: अच्छा।
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च, मार्च में तो सबके, मार्च से अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी
0: है।
1: जी।
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है 2 रुपए 1 रुपए हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया, फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए लौकी तक,
1: मौसम में उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती है।
0: तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा हमने,
1: हाँ,
0: किया कि ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया, दिसंबर में ही लगा लिया
1: जी।
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उसको आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ, ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडॉप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को उगाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और उस इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें,
0: हाँ,
1: तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी चाहिए।
0: हाँ, अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नवसिखिए नहीं होना,
0: हाँ,
1: चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है। बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो

0: सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
1: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू, जिसको कहते हैं लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है, जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफ़ी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
0: जी, जी, जी.
1: नहीं मिलता है, तो ऐसे हाई
0: हर साल मतलब पूरे साल वो बिकती है,
1: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
0: नहीं है,
1: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़वार वाली सब्जियां में वो आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा, तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इससे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी मतलब आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
0: नहीं हुआ।
1: तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है, या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है गवर्नमेंट संस्थानों में भी, आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है।
0: जी जी।
1: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है।
0: जी।
1: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पर खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी।
0: जी।
1: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
0: 50% सब्सिडी सरकार की,
1: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, तो बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
0: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है, 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहां जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
1: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती है, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले जाते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से, देखिए ना आप कितना जो है
0: लो वॉल्यूम हाई कॉस्ट,
1: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते, हाई वॉल्यूम आप जो है और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में, आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर एक एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है। 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पॉली हाउस

0: बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है, बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं, तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त पैसा निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय-बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो

0: बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं, और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैम आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
4: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है, और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं, और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं। और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
3: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
4: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है, बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जमीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीच का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीच वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं, या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है, और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है, ठूठ है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक

0: ठीक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
1: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें।
0: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं और ये एक तरह की मक्खी है जो घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है और ये भी तना में अंदर जाकर बीज के पार्ट को खाता है और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीज की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरिफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ, इसको बोलते हैं वयस्क, और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है। और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसकर इसको बर्बाद करते हैं और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण, जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटा कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुँचाते हैं और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका

0: से विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं, और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं। और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुँचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं, उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में फिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है, और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो है पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काउज करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जई, गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुँचाता है। और ये जो है जहाँ से ये प्रवेश करता है वहाँ पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है, और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है, और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हल्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए, और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में, या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में, या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जू जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जू है, और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं, और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं, यानी ये लेडी बर्ड बिटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है लाही है जो चूसकर जो खा रहे हैं हानि पहुंचा रहे हैं उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बिटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति

0: प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए, ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए, जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है
1: जी। मैम बाली मिर्च ये श्रीअन्न के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिज है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है। छोटी मक्खी या मच्छर कहें, दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए। नीमाधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीअन्न में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्रीअन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90

मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी

जिसमें हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, सीओ 7 अलका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका मुंह पका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा
2: जी।
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं, ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया
2: जी।
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी, ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी
2: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर, बहुत से वैज्ञानिक

0: लोगों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए
1: जी।
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
1: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी।
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओं, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी। और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है, जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओह यस।
2: ऑल राइट, so tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger, a lion,
2: yes,
3: monkey, birds of different kind,
2: very nice,
3: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी, जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: हाथी बोला,
1: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ।
0: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई।

0: चींटी और हाथी। और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिये का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।

0: किसी एक दिन
1: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
0: देखो डाकिया आया।
1: चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
2: डाकिया अंकल,
3: आओ बेटा।
2: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
3: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
2: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
3: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
2: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
3: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
2: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
2: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
3: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहां से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
2: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
3: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
2: ओ, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
3: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
2: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
3: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
2: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, धन्यवाद डाकिया अंकल।
3: धन्यवाद चंचल।

0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.
12: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर एफएम ग्रीन. जी हाँ, आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं सूखे फूलों से बने उत्पाद के बारे में. वैसे ताज़े फूल का तो हम काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, हर जगह उसका उपयोग होता है, लेकिन जब फूल सूख जाते हैं तो हम उनको कैसे उपयोग में लाएंगे, क्या कुछ उससे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, आज इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो मैडम, सबसे पहले तो ये जो बहुत अच्छा विषय है आप लेकर आई हैं हमारे बीच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु.
0: तो चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मैडम से जानते हैं कि सूखे फूलों का महत्व तो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं मैडम.
1: ये देखिए, जैसे हम जानते हैं मानव जीवन में फूलों का महत्वपूर्ण स्थान है. जन्म से मृत्यु तक हमें फूलों की आवश्यकता पड़ती है. वहीं सुंदरता, कोमलता एवं कम आयु होने के कारण फूलों का प्रयोग करने के लिए या तो दिन प्रतिदिन बाजारों के चक्कर काटने पड़ते हैं, या फिर मनचाहे फूलों को प्राप्त करने के लिए अगली ऋतु का इंतज़ार करना पड़ता है. ताज़े फूलों एवं पत्तियों की सीमित आयु भी होती है और उसे हम ज़्यादा समय तक भंडारित नहीं कर पाते. इसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना है कि फूलों को सुखाने की तकनीक के बारे में जाना होगा, जिसमें हम फूल पत्तियां, फन घास या पेड़ के किसी भी पार्ट को हम इस प्रकार सुखाते हैं, इस तरीके से उसकी नमी कम कर देते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाते हैं. यही हमारा कहलाता है सूखा फूल उत्पाद बनाने का तरीका या इससे रिलेटेड जो व्यवसाय है. तो हमको सूखे फूल ताज़े फूलों की तुलना में अगर हम देखें तो ये आकर्षक, हल्के भार के और कम संसाधन में बनने वाले, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं. साथ ही इनमें गर्मी एवं सर्दी का भी कोई असर नहीं होता है और अधिक समय तक सुंदरता प्रदान करते हैं.
0: जी, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सूखे फूलों के व्यवसाय का स्तर क्या है, मैम इसके बारे में थोड़ा.
1: जी, भारत में सूखे फूल का व्यवसाय निरंतर प्रगति पर है और इसकी मांग बाहरी देशों से भी अधिक है. भारत के कुल पुष्प निर्यात में 70% भागीदारी सूखे फूलों की है. अधिक मांग के कारण भारत सूखे फूल के निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है. और यही बात है कि भारत से 500 से भी अधिक सूखे फूल निर्यात किए जाते हैं. इस उद्योग की सालाना वार्षिक वृद्धि भी 10-15% है. और सूखे फूल तकनीक द्वारा जो खिले फूलों को मुरझा जाने से पूर्व ही हम संरक्षित कर लेते हैं, और यही एक सही अवस्था होती है जब फूल और उसकी पंखड़ियों को सुखाकर ऐसे कई उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जो न सिर्फ घर की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि निर्यात के क्षेत्र में भी अगर व्यवसाय किया जाए तो इससे अधिक कमाई की जा सकती है.
0: जी, बिहार में सूखे फूल के व्यवसाय की अभी क्या कुछ संभावनाएँ हैं?
1: बिहार में बहुत संभावनाएं हैं. अगर हम बात करें बिहार में सूखे फूल उत्पादन, जिसे ड्राई फ्लावर उद्योग कहते हैं, इसको अगर हम ये तकनीक अगर हम ऐसे लोगों को सिखाएं, चाहे वे महिलाएं हों या बेरोजगार हों या फिर

0: जो शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग होता है, इनको अगर हम ये तकनीक सिखाएं तो वे आसानी से इसे सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी इसको, बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा भी सीख सकता है। और जैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए अगर सूखा फूल व्यवसाय की बात करें तो ये आय का मुख्य स्रोत हो सकता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास, पत्तियाँ, खरपतवार आदि बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं। और महंगाई के इस युग में अगर हम घर की बेकार वस्तुओं एवं सीमित साधनों से ही अगर कुछ इस तरीके के उत्पाद बनाएं जो अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, तो इस तकनीक से तैयार किए गए उत्पाद निर्यात के लिए भी उत्तम होते हैं एवं नवीन डिज़ाइन और अपने अनुपम सुंदरता के कारण इनकी अधिक मांग होती है। वहीं अगर हम बात करें कि इस उद्योग द्वारा जो युवतियां हैं जिनकी बीच में ही पढ़ाई छूट गई है, वे भी इसे साइड बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करके अपनी रुकी हुई पढ़ाई को भी पूरा कर सकती हैं एवं आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें जो है हमें सृजनात्मक और कलात्मक दृष्टि को थोड़ा सा देखना होगा, अपना दिमाग लगा के। ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी ड्राइंग आए, लेकिन आपकी नवीनतम सोच और कला इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी रहेगी
1: जी। सूखे पुष्प व्यवसाय में कितने महत्वपूर्ण चरण होते हैं?
0: देखिए, मुख्यतः इसमें चार महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसमें पहला चरण होता है फूलों को सही अवस्था में एवं उचित समय में काटना, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर दूसरा चरण है फूलों को ठीक प्रकार से एवं सही विधि से सुखाना। जरूरी नहीं है एक फूल एक विधि से ही सूखे, वो दूसरी विधि से भी बढ़िया सूख सकता है, जिसके बारे में अभी आगे बताया जाएगा। एवं तीसरा चरण है सूखे फूलों को सही से भंडारित करना, और चौथा चरण है फूलों से विभिन्न उत्पाद बनाना।
1: तो सूखे फूल हस्तकला द्वारा बनाए गए उत्पाद के बारे में थोड़ा बता दें।
0: देखिए, अगर इसको जो हम ड्राई फ्लावर हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, अगर इसको बारे में हम बात करें तो एक नवीनतम विकास है। और विभिन्न रंगों के सूखे फूल के पुष्पों से हम कई ऐसे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल उत्पाद बना सकते हैं। टू डायमेंशनल माने चपटे उत्पाद, और थ्री डायमेंशनल माने जिनकी संरचना ना बिगड़ी हो, थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो जैसे इसमें अगर हम बात करें सूखे फूल से बनी हुई फ्रेम जो तस्वीरों की फ्रेम होती है, फ्रेम जड़ित तस्वीरें, या फिर बधाई कार्ड या कवर, पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड, शीशे की कटोरी, या कई ऐसे उत्पाद हैं। अब जैसे पुराने ज़माने में लड़कियों को सिलाई बुनाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, अब आज के ज़माने में यदि हम सूखे फूल उत्पाद उनको बनाना सिखा देंगे तो ये नई चीज़ भी होगी, साथ ही उनके आगे बुरे टाइम के वक्त भी ये उससे व्यवसाय करके अपनी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। तो यदि हम थ्री डायमेंशनल उत्पादों की बात करें तो इसमें पुष्प विन्यास आ जाता है, या पैन स्टैंड आ जाता है, या फिर पेपर वेट आ जाता है। और वहीं यदि हम टू डायमेंशनल उत्पाद की बात करें तो इसमें ग्रीटिंग कार्ड, बुकमार्क, या फिर सीनरीज, कोस्टर सेट, टेबल मैट इत्यादि आ जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी हमको कागज ले लेना, आप कागज वो खराब भी कागज हो सकता है, घर में आए निमंत्रण कार्ड के प्लेन टुकड़ों को भी इस्तेमाल करके कागज के रूप में लिया जा सकता है, जिस पे हमको विपरीत कलर के फूलों की पंखुड़ियों को सुखाकर उसमें फेविकॉल या किसी अन्य पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ के सहायता से उसे डिजाइन बना के उसके ऊपर चिपकाकर अलग अलग उत्पाद बना सकते हैं
1: जी। फूल सुखाने की कुछ सरल विधियों के बारे में थोड़ा बता दें मैडम
0: जी। सरल विधियां तो मैं आपको यहाँ पर आज दो तीन बता देती हूँ, अन्यथा इसके अलावा भी कई ऐसी विधियां हैं जिसमें और भी तरीके से फूलों को सुखाया जा सकता है। तीन सरल विधियां आज मैं आपको बताती हूँ। पहली है एयर ड्राइंग, जिसको हम बोलते हैं हवा में सुखाने की विधि। इसमें क्या होता है कि हम इस तरीके के फूलों को लेते हैं जो छूने में ड्राई होते हैं, सूखे प्रतीत होते हैं, या ऐसी खरपतवारें या घास होती हैं जो सूखने में, जिनमें मॉइस्चर कंटेंट या नमी की मात्रा बड़ी कम होती है। तो ऐसे फूलों को या ऐसे घास पत्तियों को हमें इकट्ठा करके 10 से 12 डंडियों को बांध लेना है, और सुतलीस की सहायता से बांध लेना है, और फिर इन्हें उल्टा करके किसी अंधेरे वाले हवा जिसमें हवा का आवागमन हो, ऐसे स्थान पर उल्टा लटका के इसको सुखाना रहता है। और दूसरी विधि है दाब विधि,

0: ये सबसे प्राचीन विधि है। जैसे पहले किताबों के बीच में फूल सुखाने के लिए रख देते थे, लेकिन अगर हम नहीं देखते थे तो वो फूल खराब भी हो जाते थे अधिक नमी के कारण। तो इसमें क्या करना है, बाजार में सोखता कागज आता है, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो सीधे आप अखबार के टुकड़े ले लीजिए। अब या इन दो अखबारों के टुकड़ों के बीच में फूलों की पंखुड़ियों को या पूरे फूलों को फैला के रख देना है और फिर इस पर दाब बना के आपको रूम टेम्परेचर पे सूखने रख देना है। तो अगर सर्दी का टाइम है तो यही चीज 10-12 दिन सूखने में ले लेगी और गर्मी में ये 6-7 दिन में सूख जाएगा। अगर लकड़ी का पटला नहीं है तो आप इस पे कोई भारी चीज भी रख सकते हैं, या इसे आप किसी भी प्रकार के दाब से, इवन जो आपका बेड होता है उसके तखत पे भी आप इसको रख के उस पर गद्दा बिछा के भी आप इसको सुखा सकते हैं। और तीसरी विधि है अंतःस्थापित विधि। अंतःस्थापित विधि को हम एम्बेडेड ड्राइंग भी कहते हैं। इसमें फूलों की संरचना और रंग बिगड़ने के बहुत कम आसार होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फूल को हम तोड़ते हैं और फूल की डंडी को हम इस वाले पात्र, एक पात्र में ये कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम व्यवसाय की बात करें, रंग हमको बहुत अधिक उसके प्राकृतिक रंगों को संजो के रखना है तो हम इसमें सिलिका जेल नाम के पदार्थ को लेते हैं जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। सिलिका जेल का मेन फंक्शन होता है नमी को सोख लेना। तो इसमें थोड़ा सा पात्र में सिलिका जल डाल के उसमें फूल को धांस देते हैं और धांसने के बाद किनारे किनारे से सिलिका जल को उस पात्र में डालते रहते हैं जब तक वह फूल को पूरा ढक ना ले। वही हमको ध्यान देना है कि सिलिका जल के जो कण है वे महीन होने चाहिए ताकि वे अलग अलग जो पंखुड़ियों के परत के बीच में घुस के उनको बिना संरचना उनकी बिगाड़े हुए उनको सुखा सके। अब अगर घरेलू या छोटे स्तर पे बात करें तो वहीं आपको सिलिका जल यदि नहीं है आपके पास तो आप नदी के किनारे की बालू या फिर घर में जो अवेलेबल सूजी होती है उससे भी आप ये क्रिया कर सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर में 8-10 दिन गर्मियों में एवं सर्दियों में ये कम से कम 2 हफ्ते सूखने में ले लेगी। फिर जो ये बचा हुआ मटेरियल है फूल निकालने के बाद, फूल निकालेंगे, फूल को बहुत ही सावधानी से निकालना है, ब्रश से उसके कण को झाड़ लेना है क्योंकि वो टूटने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद फूल से आप प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग रख दीजिए और जो बचा हुआ मटेरियल है, जो बचा हुआ चाहे सिलिका जेल है चाहे सूजी है चाहे कोई भी रेत के पार्टिकल हैं, इनको भली भांति धूप में सुखा लीजिए और फिर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी। और फूल सुखाते समय किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए?
0: देखिए, हमको ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि फूल जो हम सुखाते हैं या सुखाने से पहले जो हम तोड़ते हैं तो हमको इसे सुबह और शाम नहीं तोड़ना है। अक्सर हम ताजे फूल सुबह और शाम तोड़ते हैं लेकिन इसमें हमको अलग चीज़ करनी है, इसमें हमें दोपहर के टाइम को ही इस्तेमाल करना होगा जब सतह पे से ज़्यादातर ओस की बूंदें और नमी खत्म हो जाए, वरना फूल के उत्पादों के खराब होने का एक चांस बना रहता है। दूसरा, काटने के बाद इन्हें रबर बैंड की सहायता से गुच्छों में बांधकर रख देना चाहिए एवं जितनी जल्दी हो सके धूप से हटाकर इनको सुखाने रख देना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि फूलों को काटने एवं सुखाने में कम से कम समय का अंतराल होना चाहिए और वहीं पूर्ण रूप से खिले हुए फूलों को ही काटना चाहिए एवं धब्बे युक्त फूलों को छोड़कर चटकीले रंग के फूलों को ही चयनित कर काटना चाहिए। और एक दो चीज़ों का और हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक पात्र में एक प्रकार के ही फूलों को सुखाना चाहिए, या फिर अभी जो हमने एम्बेडेड ड्राइंग या अंतःस्थापित शुष्कन विधि के बारे में बात करा तो उसमें सिलिका जेल को पात्र के किनारे से ही डालना चाहिए ताकि फूलों का ढांचा ना बिगड़े। और सूखे फूल से चिपकी हुई सिलिका जल, जैसे बताया कि ब्रश की सहायता से धीरे धीरे ही हटाना चाहिए एवं समय समय पर इनसे इनको सीधी धूप और कीटों से, धूप से, इन सब चीज़ों से या तोड़ फोड़ से बचाकर रखना चाहिए। तभी आपके ये जो उत्पाद हैं ये अधिक समय तक रहेंगे, इनमें अधिक क्वालिटी बनी रहेगी एवं ये बाज़ारों में अच्छे बिकेंगे। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस अच्छी जानकारी के लिए। हमारे श्रोतागण जो फूल का व्यवसाय करते हैं और उनके फूल सूख गए हैं तो इस प्रकार आप उसके उत्पाद बना सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

0: കൃഷി.
1: बेल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है.
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से.
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं. बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ.
1: इसको तो एक आध महीना हो गया.
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप. चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है.
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए. दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है.
1: टीबी?
2: हाँ. तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए.
1: ठीक है.
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए. नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है. समझ गए भाई साहब आप? आइए. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए. टीबी हारेगा देश जीतेगा.
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर.
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे.
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
8: हर घर सूर्य घर.
9: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक.
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. आइए जानते हैं मौसम का हाल. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है. साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है. हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है. सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी. आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए. जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे. ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें. पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें. जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें. जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें. पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले. कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय

लगातार निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई

कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितम्बर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानिकारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल्य संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफ़ी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़े सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबाल

0: छानकर पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
1: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
0: जी,
1: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
1: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
0: जी, जी।
1: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोका कुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोका कुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात ये है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोका कुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमाथेरेपी में भी बहुत काम आती है
1: जी। मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है?
0: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोका कुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए, और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियाँ या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए।

0: ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफ़ेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
1: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
0: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में हैं, ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वह इसका बहुत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
1: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में,
0: जी,
1: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
0: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
1: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या शारीरिक कमज़ोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
1: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु, और उन्नत कृषि कार्यक्रम में करती हूं आप सभी का स्वागत। तो श्रोताओं, एक बार फिर हम एक अलग विषय के साथ यहां पर हाजिर हैं। आपको बता दें, वो विषय है हमारा सरसों की खेती SRI विधि से। और इस विषय पर अपनी चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस त्यागी, और मैं बता दूं ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। और आज डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं कि आप सरसों की खेती कैसे कर सकते हैं SRI विधि से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले क्यों ना हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि ये SRI विधि क्या होती है।
10: SRI विधि, जिसे श्री विधि भी कहते हैं, यह सरसों की खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें श्री विधि के सिद्धांतों का पालन कर अधिक उपज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम बीज की मात्रा 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करते हैं। बीज शोधन और बीज उपचार करने के बाद जो अंकुरित बीज है, उसका खेत में या तो सीधी बुआई कर सकते हैं या फिर उसका नर्सरी तैयार कर रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधा और कतार से कतार की उचित दूरी हम इसमें मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 बार खरपतवार

0: की निकासी या वीडर या कुदाल से उसकी कोड़नी भी करते हैं। तो इन सब देखभाल करके हम जो राई सरसों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और ये सामान्य विधि की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त है।
1: ओके, तो सर सरसों की खेती SRI विधि से करने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है?
0: इस विधि से करने से एक तो हमारे उपज में वृद्धि होगी, जो हम परंपरागत विधि से जो इसकी सरसों की खेती करते हैं उसके कंपैरिजन में अपेक्षाकृत 18 से लेकर 26% तक वृद्धि अंकित की गई है शोध के आधार पर। अच्छा। और जो हमें जो इसमें जो वो है शुद्ध लाभ जो मिलता है वो भी 6,000 से लेके हमें इसमें 12-13,000 तक इसमें नेट रिटर्न प्रति हेक्टेयर इसमें प्राप्त होता है और जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है उसमें भी वृद्धि पाई गई है।
1: इसके साथ ही कुछ और फायदे होंगे और इसकी खेती और किस तरीके से हम अच्छे से कर सकते हैं वो भी बताएं SRI विधि से।
0: इसकी खेती करने में मुख्य रूप से बीज का चुनाव की में तो जो उन्नत किस्म के बीज हैं वो हम इसमें ले सकते हैं। यदि बीज हमारा पुराना है तो कोशिश कीजिए कि नया बीज प्रयोग करें और बीज की मात्रा वो फसल की अवधि पर निर्भर करती है। यदि अधिक दिनों की किस्म है तो उसमें बीज की मात्रा कम लगेगी, यदि कम दिनों की किस्म है तो बीज की मात्रा अधिक लगेगी। 100 से कम दिन की फसल है तो उसमें लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ और यदि 130 से ज़्यादा दिन की फसल है तो उसमें 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर
1: जी।
0: और आगे यदि बीज शोधन और उपचार करने के बाद ही इसका हमें खेत इसकी नर्सरी तैयार करनी है। जैसे बीज के हिसाब से हमें दुगना सूक्ष्म पानी लें और उस बीज को सूक्ष्म पानी में डालकर जो हल्का बीज है उसे हम बाहर कर दें और इसमें सूक्ष्म पानी और अच्छे बीज में बीज की मात्रा का लगभग आधा भाग गौमूत्र गुड़ एवं केचुआ खाद को मिला के 6-8 घंटे तक इसे छोड़ दें। फिर बीज को तरल पदार्थ से अलग करके इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाकर सूती कपड़े में बांध के अंकुरित होने के लिए 8-10 घंटा रख दें
1: जी।
0: और अंकुरित बीज को नर्सरी में हम 2x2 इंच की दूरी पर और आधा इंच गहराई में डाल दें या फिर इसकी यदि हम नर्सरी तैयार नहीं करना चाहते तो इसकी सीधी बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी तैयार करने से नर्सरी बेड का हमें इसमें निर्माण करना होगा। जिस कम दिन की यदि फसल है तो उसमें अधिक क्षेत्रफल लगेगा और अधिक दिन की यदि हमारी ये किस्म है तो इसमें कम क्षेत्रफल में नर्सरी बेड बनाया जाना चाहिए। तो जिस खेत में नर्सरी का बेड हमें तैयार किया जा रहा है उस खेत में नर्सरी के क्षेत्रफल के प्रति वर्ग मीटर में 2 से 2.5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 2 से 2.5 ग्राम कार्बोफिरॉन, 100 से 150 ग्राम नीम की खली मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। नर्सरी बेड की चौड़ाई 1 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें और ज़मीन से नर्सरी बेड की ऊंचाई 4 से 6 इंच ऊँचा रखें
1: जी।
0: और 2 बेड के बीच की दूरी 1 फीट के करीब नाली बना लें और नर्सरी में बीज की बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और नर्सरी बेड में बीज की बुआई के उपरांत उसमें वर्मी कंपोस्ट और पुआल से उसे अच्छी तरह ढक दें और सुबह शाम उसे नियमित रूप से झरने से सिंचाई करते रहें। तो हम देखेंगे कि हम 8 से 10 दिन में या 8 से 12 दिन में हमारा बिचड़ा तैयार हो जाएगा रोपाई के लिए। फिर जिस खेत में हमें ये नर्सरी बिचड़ा हमें डालना है उस खेत की तैयारी हमें इस तरह करनी चाहिए कि उस खेत में एक तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए, यदि खेत सूखा है तो उसमें सिंचाई करके गहरी जुताई वाले हल से 2-3 चांस करके मिट्टी को भुरभुरा बना दें और खेत से सभी खरपतवार घास वगैरह को बाहर कर दें और रोपाई के लिए जो हमारी किस्में हैं उन्हें 6 इंच चौड़ा और 8 से 10 इंच गहरे गड्ढे में का हमें निर्माण करना होगा इसके लिए। फिर उस गड्ढे को 2 से 3 दिन हम छोड़ देते हैं और बाद में 2 से 3 दिन के बाद 1 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए लगभग 1.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलावा, 80 क्विंटल कंपोस्ट, 4 क्विंटल श्री प्रणामामृत का व्यवहार करें। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक गड्ढे में पहले हम कंपोस्ट खाद डालेंगे, उसके बाद ये श्री प्रणामृत खेत में अच्छी तरह मिला देंगे, फिर उस गड्ढे को 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। रोपाई करने से 2 घंटे पहले हमें नर्सरी में नमी बना के रखनी चाहिए जिससे कि बिचड़े को आसानी से हम

0: दूसरी बेड से उखाड़ सकें और उसे बिचड़े को खुरपी या कुदाल की सहायता से कम 1-2 इंच मिट्टी के साथ नर्सरी से निकालें और निकालने के बाद बिचड़े को आधे घंटे के अंदर ही गड्ढे में उसे रोपनी कर दें और ये भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक गड्ढे में सिंचाई अच्छी तरह से दिया हुआ हो। अब बिचड़े को उस प्रकार से रोपाई के उपरांत 3-5 दिन तक उसमें नमी बनाए रखें ताकि इसे बिचड़े को मुख्य इसमें क्यारी में लगाया जा सके। रोपनी के 15 दिन बाद, अब रोपनी जब हम इसमें कर देते हैं बिचड़े की, उसके 15 दिन बाद हमें इसमें पहली सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई के फिर अगले दिन हम उसमें फिर खाद 2 क्विंटल प्रणामत श्री प्रणामत खाद जो है इसका प्रति एकड़ की दर से जड़ के नज़दीक इसका उपरिवेशन करें और उसके सिंचाई के 3-4 दिन बाद उसमें फिर वर्मी मतलब रोपनी के 20 दिन बाद प्रति एकड़ 4 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट और 3 किलोग्राम PSB खेत में डालकर उसमें कुदाल से अंतर कर्षण क्रियाएं करने से उसे करके उसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरी सिंचाई हम रोपनी के 25 दिन बाद करेंगे, मतलब पहली सिंचाई के 10 दिन के बाद और उसमें उसके बाद जब खेत में वो चलने लायक हो जाएगा तो उसमें 13.5 किलोग्राम जाइम डालकर वीडर या कुदाल चलाकर उसे मिट्टी को हल्का कर दें। रोपनी के 30 दिन बाद पौधे थोड़े तेज़ी से बड़े होने लगते हैं, साथ ही साथ उसमें नई शाखाएँ निकलने लगती हैं तो इसलिए उस समय पौधों को अधिक नमी या पोषण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए रोपनी के 35 दिन बाद तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। इसके अगले दिन हम फिर ये जो ये श्री प्रणामृत जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसका पौधे के जड़ के नज़दीक उपरिवेशन करें, फिर खेत में ओट आजने पे फिर इसमें रोपनी के 40 दिन बाद कुदाल से या वीडर से वो अच्छी तरह खेत को हल्का करके इसे मिट्टी चढ़ा दें उस पर, क्योंकि मिट्टी यदि हम नहीं चढ़ाएंगे तो पौधे के गिरने का डर रहता है क्योंकि उसमें अच्छी शाखाएं और उसका बढ़वार काफ़ी हो जाता है। तो जिस तरह से आलू के खेत में मिट्टी चढ़ाते हैं उसी तरह से इसमें मिट्टी चढ़ा देंगे। फिर आगे समय में पौधे फिर और काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसमें पत्ते भी मोटे होने लगते हैं और चौड़े होने लगते हैं उसके, तो अच्छी बढ़वार के लिए हमें 60 दिन पे 80 दिन और 100 और 120 दिन तक हमें इसमें हल्की सिंचाई आगे करनी चाहिए। और वैसे सिंचाई का जितना भी हमने बताया ये सब मौसम और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आपके मौसम में यदि विंटर रेन हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है उस दौरान। और इस सरसों में जो लाही और अन्य कीट जो लग जाते हैं इससे बचाव के लिए हमें आवश्यक जो कीटनाशक और ये हैं फफूदनाशक दवाएं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और पौधे में फूल आने से और जो दाना भरने के समय उसमें खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए क्योंकि उस समय नमी नहीं रहेगी तो खेत में उपज में कमी होगी, इसे नमी बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस श्री विधि को अपनाने से सरसों की उपज में बढ़ोतरी की जा सकती है और ये बढ़ोतरी लगभग 1.25 गुना से लेकर 1.5 गुना तक हो सकती है।
1: तो किसान भाइयों आपने सुना कि श्री विधि के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप इस विधि से खेती करते हैं तो 1.25 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी होती है। आप इस विधि को ज़रूर अपनाएं, सरसों की खेती अगर आप कर रहे हैं तो बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको उपज में। आप अगर व्यापार के तौर पर अगर सरसों की खेती कर रहे हैं तो अगर उपज ज़्यादा होगी तो आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पिट गया बिल देना इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से

0: डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. See you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
4: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: या है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
12: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, है कोई माई का लाल जिसने माँ

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ

0: जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
1: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
0: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी

0: चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे, साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से एचएस, बीक्यू, एफएमडी, एंथ्रैक्स, पीपीआर एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते

0: हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर,
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुवाई कर सकते हैं और आप उपयुक्त

रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते

फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंहपका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: and techniques. Participation in review and feedback process. Chapter 5 ends here.
1: Basuri, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 5. Narration, Tripti Upadhyay. Sound recordist, Amarjit Sarkar. Production assistant, Vineet Kumar Sharma. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको outside the off time डालना चाहिए था। इसकी यही problem है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: See you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि।
9: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम एक ऐसे सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम बहुत ही चाव से खाते हैं, किसान भाई बहन बहुत ही चाव से उगाते हैं और उससे अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन शर्त इतनी होती है कि वो अपनी फसलों

0: को रोगों से बचा सके। अगर रोग लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। और आज हम परवल के प्रमुख रोगों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो सब्जी है परवल। परवल के कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और किस प्रकार से उनसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से आज हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश पाटिल। सर, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं रोग विज्ञान विभाग से BAU सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे परवल में आने वाला रोग, इससे कैसे पहचानने और इसका कैसे प्रबंधन करना है। अभी हम सोचते परवल ऐसे एक सब्जी है, इसमें रोग लगता ही नहीं। हम सोचते पहला इसमें रोग और कीट का प्रभावित नहीं होता था। आजकल जलवायु परिवर्तन से वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं परवल एक ऐसे हुए सब्जी है, इसमें भी रोग बीमारी और कीड़ा लगने के लिए शुरू हुआ है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से। ये रोग और कीट से क्या हो रहा है, इसका उत्पाद भी घट रहे और इसका गुणवत्ता भी प्रभावित भी हो सकता है।
0: जी सर, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले रोग देखने के लिए कम मिलते थे, तो अगर अभी रोग दिख रहे हैं तो वो कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो परवल में लगते हैं?
1: परवल में होता है अभी तीन चार तरफ का होता है। पत्ता में दिखने वाला रोग होता है, मृदु जनित रोग होता है, और नंजन और विष वायरस का रोग होता है, और आजकल जंतु हम बोल देते हैं नेमेटोड का भी तरफ से फैलने वाला रोग भी हम लोग को दिख रहे हैं आजकल।
0: जी सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पत्तों में भी लगते हैं, फिर विषाणु जनित भी रोग होते हैं और भी कई तरह के रोग होते हैं। हम शुरुआत करते हैं परवल के पत्तों के रोग के बारे में, तो परवल के पत्तों में कौन कौन से रोग आते हैं?
1: परवल के पत्तों में दिखता है झुलास रोग एक होता है और असित रोग होता है। हाँ, इसी में दो तरफ का होता है, चूर्णित असित रोग होते हैं हम लोग बोलते हैं इसका पाउडर मिल्ड्यू, और मृदरोमित असित रोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, ऐसा ही पत्ता में दिखने वाला रोग होता है।
0: जी सर, सबसे पहले आप हमें हमारे किसान भाई बहनों को बताइए कि झुलास रोग किस प्रकार के होते हैं, यानी कि उसे किस प्रकार से पहचाने और उसका बचाव क्या है?
1: हाँ, अभी हम बात करेंगे परवल में झुलास रोग के बारे में। झुलास रोग क्या होता है, इसी का पत्ता में दिख देता है हम लोग को वहाँ पे पत्ता में ऊपर आपको निगरानी कैसे करना है, सारा पत्ता का हम लोग को देखना है, उसी के ऊपर हम लोग को दिखता है भूरे से काले रंग का छोटे छोटे चब्बी दिख जाते हैं। अनुकूल जब वो अनुकूल मौसम होता है, अभी हम लोग देखते हैं शाम में हम लोग का ये बरसात आ जाता है, दिन में हम लोग का वो सनलाइट ज़्यादा हो जाते हैं, वो इसी वजह से क्या हो जाते हैं वातावरण उम्र ज़्यादा हो जाए, तभी हम लोग को ये पत्तियों को सूखने के लिए दिख सकता है। जब भी हम दिखते हैं सूखने वाला पत्ता, हम उसी के सामने जाके उसी का देखने से हमको पता चलता है वहाँ पे भूरे से काले रंग के छोटे छोटे छब्बे दिखते थे। वो जो छोटे छोटे छब्बे एक दो मिलकर कैसे हो जाएगा, पूरा झुलास रोग हो जाएगा। इसी से क्या हो जाते, पत्ता पूरा सूख जाते है। इसी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्षमता कम जाता है, वो इसी की वजह से हम लोग का ये उत्पादन और गुणवत्ता भी कम हो जाएगा।
0: बचाव के लिए क्या करेंगे?
1: बचाव के लिए हम लोग को क्या, पहला भी जो भी रोग होते हैं हम लोग को निगरानी अच्छा से करना है। रोगग्रस्त पत्तियों पत्तों को पहला निकाल कर नष्ट करना है। खेत में जलभराव ना होना चाहिए और बालों में पुरिया दूरी से नहीं होना चाहिए। आवश्यक पर हम लोग को जो आवश्यक है, जो खाद देते हैं, जो पानी हम देते हैं, जो आवश्यकता वजह से ही देना पड़ेगा। हमारे पास जो खाद ज़्यादा है तो ज़्यादा खाद दिया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा पत्ता हो जाएगा, पत्ता ज़्यादा हुआ तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो झुलास रोग का प्रॉब्लम से दिख जाता है।
0: जी।
1: इसी के आवश्यकता से, जो भी आवश्यकता, जब भी हम बोल देते परवल में छिड़काव करो फंग नाशक, नहीं ऐसा कोई हो नहीं होगा। आवश्यकता से, आवश्यकता जरूरत हुआ तो हम लोग जो ग्रीन लेबल्ड जो होता है फफूंदनाशक, उसी का ही किसी का कृषि

0: वैज्ञानिक संपर्क करें, विशेषज्ञ करें, जो आपको लिए आपको जानकारी होना है। तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बन डाइजिम है, जो जैसे फफूंदनाशक हम लोग छिड़काव कर सकते हैं
1: जी, यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही छिड़काव
0: करना चाहिए,
1: उतनी ही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, मतलब जुलास रोग से अगर बचना है तो खादों का हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है।
0: जो खाद और पानी कम देने, जितना चाहिए उतना। जी, जब हम पानी ज्यादा देते, खाद ज्यादा देते, पत्ता ज्यादा हो जाएगा, बाद में वो सूखने के लिए वो जो फफूंग है, वो जुलास रोग करने वाला फफूंग है, वो पत्ता में आराम से जिग जाएगा। इसी वजह से हम लोग का गुणवत्ता और उत्पादन भी घट जाएगी।
1: जी, तो हमारे किसान भाई बहनों, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से आप खाद का इस्तेमाल करें, उसी हिसाब से आप सिंचाई करें। सर, अब हम असीता रोग के बारे में बात करते हैं। तो असीता रोग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उसकी पहचान क्या है?
0: असीता में इसमें दो तरफ होता है, असीता रोग में दो तरफ होता है, चूर्णित असीता एक हो जाते हैं और मृद रोग में असीता होता है। हम लोग ये बोल देते मिल्ड्यू, इसमें मिल्ड्यू बोल देते, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं तो डाउनी मिल्ड्यू। चूर्णित असीता क्या होता है, इसमें कैसे दिखता है ना, आपको पत्तिया के ऊपर आपको आराम से वो देखते थे सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ आपको दिख जाते हैं। जो भी पत्तियाँ आप देखते हैं उसी के ऊपर सफ़ेद का चूर्ण जैसा पदार्थ दिख सकता है, उसी का पत्ता के नीचे आपको पूरा पीला रंग हो जाता है। जो आपका पदार्थ जो है वो सफ़ेद पूरा पत्ता में हो जाएगा ना, इसी वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता पूरा घट जाएगा। बाद में इसी में बाद में जो पत्ता हो जाते हैं ना वो पूरा सूखने के लिए चला जाएगा, जो पूरा पौधा सूख जाएगी, इसी वजह से उत्पादन बहुत घट जाता है इसमें। और एक है इसमें असीता, मृदरोमित असीता। अभी हम बोल देते वो सफ़ेद चूर्ण जैसे पदार्थ तो ऊपर दिखते थे, अभी मृदरोमित में क्या होते हैं उसमें उल्टा हो जाते, उसी में ऊपर आपको दिखता है पीला रंग का जैसा, पीला रंग का श्रेणिया के जैसा आपको ऊपर दिखता है, नीचे आपका नीचे पत्ते के नीचे साइड में क्या होता है आपका फफूंग दिख सकते है, वो बैंगनी रंग का फफूंग दिख सकते है। इसी की वजह से क्या हो जाते है आपको ज़्यादा उत्पादन घट जाते है। ये दोनों रोग, एक रोग आता है जून जुलाई में, एक रोग आता है जब गर्मी ज़्यादा, वो चूर्णित असती रोग आते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है ना, उसी टाइम में ये रोग दिख सकता है। जब उम्र ज़्यादा होता है, मृद असित होते हैं ना, वो डाउनी मिल्ड बोलते हैं हम लोग, जब उम्र ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग शाम में हम लोग दिख सकते हैं, वो बारिश आते रहते हैं। अभी जो आजकल हम देखते हैं ना वही वातावरण, शाम में बारिश होता है, दिन में बहुत इसी का सनलाइट ज़्यादा होता है, इसी के वजह से उम्र ज़्यादा, जब उम्र ज़्यादा होता है मृदरोमित का डाउनी मिल्ड्यू का पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा।
1: जी सर, इनसे बचाव के लिए क्या करें?
0: दोनों के बचाव के लिए हम वही बोले थे, जो भी परवल में पत्ता में आने वाले हैं उसमें पहला हम लोग को वो खाद और इसका पानी देने में जितना चाहिए उतना दीजिए। जितना आप ज़्यादा खाद दिए होते हैं ज़्यादा पत्ता हो जाता है, पत्ता हो जाते पत्ता ज़्यादा होने से पत्ता जनिक फफूंग हो जाते हैं ना, उसी का फैलने का ज़्यादा अवकाश मिलेगा। और खेती में क्या होता है ना, जो भी पत्ता दिखता है, आप चूर्ण जनिक दिखाए और मृद जनिक दिखे, जब भी आप दिखते हैं उसी का पत्ता का पहला हटा दीजिए और नष्ट कर रहे हैं वो पहले के, क्योंकि वो फफूंग हवा से फैल जाता है और पानी से फैल जाते हैं, जो आप पहले देखते हैं ना उसी का पहला निकाल कर इसको नष्ट करना है। खेत में जल प्रभाव अच्छा से देखना पड़ेगा और बालों में पूर्ण दूरी से, जब भी जैसे हम करते हैं प्लांटिंग का एक पौधे से दूसरा पौधे का थोड़ा डिस्टेंस अच्छा से करें, जैसे होना चाहिए सूर्य का रश्मि अंदर घुसना है और हवा पूरा अच्छा से सफाई होना चाहिए, जो जो

0: फफुंग होता है, ये फफुंग दोनों का फफुंग हो जाता है, जो जो कचरा हाँ पत्ता का कचरा नीचे गिरता है ना उसी से फैलता है, इसीलिए हम लोग को अच्छा से रखना है खेत को।
1: जी सर, तो मतलब अगर कोई ऐसे पत्ते दिख जाए जिनके ऊपर ये रोग लगे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि उसे नष्ट करें,
0: नष्ट करें पहला
1: जी, और साथ ही खाद और पानी का तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए।
0: जब भी ये रोग ज्यादा हो जाते हैं ना तब भी हम लोग को फफुंग नाशक का चढ़ाई छिड़काव करना है, जब भी इसमें फफुंग नाशक के चूड़िया असिता में हम लोग फफुंग नाशक एक्साकोनाजोल एक फफुंग नाशक है 1 ml पर लीटर छिड़काव कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत वो चीफ एंड बेस्ट है उसी का भी कर सकते हैं, और मृद्रोमित के लिए हम लोग मेटालाक्सिल MZ है उसमें उसी का छिड़काव करने से रोग पूरा घट जाएगा।
1: जी, यानी कि अगर कम है तो आप पत्तों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है तो फिर आप छिड़काव।
0: वही बोल रहा हूँ अभी, ये जैसा परवल इतना क्रॉप है इसमें ज्यादा फफुंग नाशक के लिए हम लोग ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, जो भी आपको करना है तो प्रिकॉशन कीजिए ना, उसी से हम ये इसका कम कर सकते हैं।
1: जी सर, सर अब विषाणु जनित रोगों के बारे में आप हमें बताइए कि वो रोग कौन कौन से हैं और पहचान कैसे किया जाए।
0: अभी हम सुना है पत्ता में आने वाला फफुंग का फफुंग वजह से होने वाले दो रोग जो जुलास्कोसी के बारे में, और वैसे ही पत्ता में वो जब हम लोग का मार्च अप्रैल में होते हैं ना इसी में विषाणु रोग दिख सकते हैं, इसी का हम लोग बोलते हैं वायरस रोग बोलते हैं ना, इसी में क्या होता है पूरा पत्ता पीला रंग हो जाता है, इसी को सब लोग जानते हैं। जब पत्ता इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्ता में एक जगह हरा रंग होता है एक जगह पीला हो जाता है, ऐसा नहीं एक पत्ता पीला हो गया दूसरे वजह से, वो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और दूसरे वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं मोज़ेक होना चाहिए, जैसा एक एक पीला और हरा रंग का मोज़ेक दोनों मिक्सचर हो सकता है, इसी के हम बोल देते हैं मोज़ेक वायरस। ओके, और पीलापन भी हो जाता है पूरा पत्ता दूर से भी हम लोग को दिख सकते हैं पीलापन हो जाता है, और पौधे पूरा वृद्धि जो भी होता है ना फूल और फल आने वाला ना पूरा अचानक वो घट सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस आता है पूरा पत्ता पूरा पौधों को नुकसान करेगा, वो ये विषाणु रोग फैलता है कीड़ा से, क्योंकि ये वायरस से कीड़ा से फैलता है, जो हमारा जो कीड़ा हम देखते हैं उसमें सफ़ेद मक्खी देखते हैं, एफिड देखते हैं, थ्रिप्स देखते हैं, ये सब चीज़ें ना यही चीज़ वो ये कीड़ा ये वायरस को फैलता है।
1: जी सर, तो इन अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन कैसे करें?
0: हमेशा हमको क्या करना है, पहला स्वास्थ्य रोग मुक्त रोशन को पहला सेलेक्ट करना है, जब भी हम सेलेक्ट करते हैं ना प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उसी टाइम में रोग मुक्त सामग्री को सेलेक्ट करना है, और रोगग्रस्त पौधा जो भी एक रोगग्रस्त पौधा आप देखते हैं ना इमीडिएटली हम लोग को ये पौधा का पूरा निकल के नष्ट करना है, ये पहला हम लोग करना है, क्योंकि एक पौधा से पूरा जो सफ़ेद मक्खी आता है उसी के बैठता है उसी से पूरा फैल जाता है, एक भी नहीं रखना है जो विषाणुजनक रोगग्रस्त पौधा को पहला हटाना है, नष्ट करना है, और खेत में जो भी खाद हम देते हैं जो भी जितना ही कम देना पड़ेगा, अवसर मिलने से अभी हम लोग को कीटनाशक क्योंकि ये सब चीज़ फैलता है कीट से ना, इसलिए हम लोग को कीटनाशक स्प्रे करने, अभी इसमें परवल में हम लोग वो केमिकल कीटनाशक थोड़ा कम करना है, जो भी होता है नीम ऑयल वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है वो इसी का स्प्रे कर सकते हैं, हम लोग छिड़काव कर सकते हैं नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और ये सफ़ेद मक्की दिखाने के लिए हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप भी रख सकते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप के ऊपर सफ़ेद मक्की देखते हैं तभी हम लोग छिड़काव कीजिए नीम ऑयल से, इसी से हम लोग ये कीड़ा के संख्या घटने से क्या होता है ऑटोमेटिकली रोग का भी प्रबंधन हो जाएगा।
1: जी सर, तो अब हम मृदा जनित

0: रोगों के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से रोग हैं जो मृदा जनित रोग होते हैं?
1: इसमें जड़ एव थना सड़न रोग होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग इसी को ये बोलते थे उकुट रोग। अच्छा। उकुट रोग भी बोलते थे। इसमें क्या होते हैं ना, पौधा अचानक क्या होते हैं, सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक से उसे एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा तरफ ठीक लगता है, एक तरफ से सूखने से स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ और थने में निचल हिमसड़न हो जाता है, इसी से भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये मृदा जनक होता है। फफुंग और जंतु जो हम बोल देते हैं नेमेटोड, आजकल जो भी पुराना खेत होते हैं ना, जब भी आप परवल डालने के बाद 2 साल हो गया, अभी 3 साल 4 साल 2 साल के बाद आप रखे, तो जो जंतु फफुंग होता है ना, इसी से फैलने के लिए ज़्यादा हो जाते, इसी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा होता, क्योंकि अभी ये मृदजनिक होता है, पूरा पौधा सूख जाएगा। पौधा सूखने जैसे सूखने से क्या होता है, पूरा आपको उत्पादन गुणवत्ता सब चीज़ घट हो जाएगा, घटने से स्टार्ट हो जाएगा।
0: जी सर, तो इन जैसे कि अभी आपने बताया कि कौन कौन से मृदा जनित रोग हैं और उनकी पहचान क्या है, तो अब प्रबंधन के बारे में बताएं।
1: ये क्योंकि मृदा जनित फफुंग होता है, इसी के लिए हम लोग ज़्यादा वो फफुंग नाशक नहीं डाल सकते, क्योंकि जितना भी फफुंग नाशक होगा इतने भी ज़्यादा आवश्यकता बेसिस से हम लोग फफुंग नाशक करते हैं। जो भी पहला ये करना है हम लोग को, स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को लेना है जब भी आप करते हैं, और खेत में जल निकास अच्छी से स्वास्थ्य रखे, और संक्रमित पौधों को निकाल कर, वही बोल रहे हो हम लोग, जो भी हम जीसी में होते हैं, एक संक्रमित रोग हम देखने से पहला उसको पूरा निकालना है, वो केस से बाहर हटाना है, ये देखना है, ये ध्यान में रखना है, केस से बाहर हटाना है। और जो भी जैविक नाशक, जैविक फफुंग नाशक होता है, ट्राइकोडर्मा हम बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास, ये जब जैविक फफुंग नाशक होते हैं उसी को हम लोग मिट्टी में भी मिला सकते हैं, और जो भी FIM से यूज़ करते हैं उसी टाइम में भी मिल सकते हैं। ये ट्रेकोडर्मा और सुडामनास ये दोनों यूज़ करने से क्या फ़ायदा है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, फफुंग का फफुंग निर्बंधन हो जाएगा, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी, जो पौधा का उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा, इसी का यूज़ करने से फ़ायदा ज़्यादा है।
0: जी सर, सर अगर हम बात करें अब समग्र प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाई बहन किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: किसान के लिए हम क्या बोलते हैं, पांच, हम वही बोलते हैं पांच महत्वपूर्ण बात किसान भाई, परवल रोग बचाने के लिए हमेशा पांच बात हम बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पहला बात है, हम लोग स्वस्थ एवं रोग मुक्त रोशन का सामग्री का प्रयोग करें, जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल लेते हैं बाहर से, स्वस्थ और रोग मुक्त प्लांटिंग मटेरियल को भी हम लोग प्रयोग करना है। और दूसरी बात है, खेत में जल भराव ना देना है, जो भी वही जिसी का भी रोग होता है जल भराव से हो जाएगा। तीसरी बात है, रोगग्रस्त पत्तियों और पौधा होते उसी को हटाकर तुरंत हटाना है, इसी को खेत से दूर नष्ट करना है। और चौथी बात होते है, खेत में स्वच्छता रखे और इसी को नियंत्रित निगरानी करना है, हमेशा हम लोग खेत को निगरानी करना है। पांचवा बात होते है, रासायनिक दवाई जहाँ पे होता है रासायनिक दवाई की, केवल अवसर बेसिस में, जब भी अवसर होते उसी टाइम में रासायनिक दवाई को छिड़काव कीजिए, नहीं तो हम लोग के पास जो प्लांट बेस्ड है और बायो कंट्रोल है, जैविक शिलिंद्र है, जैविक नाशक है, उसी से हम लोग छिड़काव करके वो इसी परवल को हम लोग उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
0: जी सर, यानी कि पूरी चर्चा में एक बात जो समान रही कि जितना कम से कम हो सके आप खाद, कीटनाशक या जो भी इस प्रकार के आप छिड़काव करते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेहतर है, और सिंचाई भी तभी करें जब ज़रूरत हो, है ना सर? जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और रोग के बारे में अगर आप हमारे किसान भाई बहनों को बताना चाहें?
1: वही ये जो हम बात किया था इसी का बारे में ध्यान में रखना है, वही पांच रोग हम डिस्कस किए ना, उसी अभी यहाँ बागा बिहार कंडेश में ज़्यादा होने वाला रोग है।
0: तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी जो परवल की खेती करते हैं प्रमुख तौर से।
1: धन्यवाद।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है।

0: कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।
1: फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया,
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
1: TB?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। TB हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids

0: are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप

का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 एसी की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें, जो मिर्च की

सौ से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20 गुना 15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अरका सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है। इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे मालूम है कि आप सभी कहानी और कविता सुनने के लिए बहुत बेचैन होंगे, बहुत समय से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो लीजिए, आज आपका इंतजार खत्म हुआ और आज

एक सुनते हैं कविता। ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में शामिल है। क्या आप जानते हैं इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता में है एक ऊंट। जी हाँ, ऊंट। ये कविता ऊंट पर आधारित है। रेगिस्तान में यही ऊंट लोगों की सवारी बनने का काम करता है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक कविता जिसका शीर्षक है ऊंट चला। तो तैयार हैं सारे बच्चे? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो कैसी लगी आपको कविता? ये कविता ऊंट के चलने पर है, लेकिन ये ऊंट चल कहाँ रहा है सोचिए। बिल्कुल सही, ये ऊंट चल रहा है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या होता है? क्या रेगिस्तान से जुड़ा हुआ कोई शब्द हमारी कविता में आया है? आपने जरूर ध्यान से सुना होगा, शाबाश। ये शब्द है बालू। और कविता में ये बात कैसे कही गई थी? बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम बालू में चलते हैं तो हमारा तो पैर धस जाता है, या कोई भी चलेगा तो उसका पैर बालू में धस जाएगा या फंस जाएगा, लेकिन ऊंट कैसे चलता होगा? आपने कभी ऊंट के पैरों की बनावट देखी है? उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो उसके पैरों में ऐसी खास बात होती है कि वे ऊंट में धंसते नहीं हैं, और फिर ऊंट तेज गति से रेगिस्तान में चल लेता है। तो इसलिए कविता में यही बात कही है कि नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। एक बहुत मजेदार घटना मैं आपको बताती हूँ, और ये घटना है इसी कविता के बारे में। जब एक बार टीवी पे लाइव सेशन चल रहा था और आप जैसे नन्हे मुन्ने ये कविता पढ़ते हुए देख रहे थे, तो हमारे एक नन्हे दर्शक का सवाल आया था। और पता है ये सवाल क्या था? ये सवाल था कि करवट किसे कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। तो मन ने कहा कि करवट तो करवट होती है, अब इसका क्या अर्थ है? फिर बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि जैसे हम बिस्तर पे सोते हैं, पहले हम चित्त सोते हैं, यानी कि पीठ के बल सोते हैं। फिर आप अपने शरीर को, अपनी पीठ को या तो दाईं तरफ मोड़ते हैं या फिर बाईं तरफ मोड़ते हैं। बस यही दाईं तरफ मोड़ना और बाईं तरफ मोड़ना करवट कहलाता है। लेकिन मैंने एक और बात के लिए कहा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल या तो हम सीधा चलाते हैं, और कभी साइकिल को हम दाईं तरफ मोड़ते हैं और कभी बाईं तरफ मोड़ते हैं। तो साइकिल का दाईं तरफ और बाईं तरफ मोड़ना करवट नहीं कहलाएगा। लेकिन ये खूब मजेदार बात थी कि करवट का मतलब क्या है। तो इसलिए मुझे कविता बेहद पसंद है, और उसमें खास तौर से ये वाला हिस्सा कि जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। हम सोच सकते हैं कि ऊंट क्यों थक गया होगा, और आप ही सोचिए कि आप किन किन कामों को करते हुए थक जाते हैं। कहानी सुनते हुए तो आप नहीं थकते होंगे। मुझे भी कहानी कहना और कहानी सुनना बेहद पसंद है। आप बच्चों को भी तो कहानी सुनना बेहद पसंद है। और सोचिए, और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने में आप थकान महसूस करते हैं? मैं सोच सकती हूँ खेलने में। आप कहेंगे नहीं, खेलने में तो बहुत मजा आता है, और छुपन छुपाई खेलने में तो सबसे ज्यादा मजा आता है। सब बच्चे अपने गली मोहल्ले के बाकी साथियों के साथ खूब खेल खेलते होंगे। कोई चौपट की सड़क खेलता होगा, तो कोई स्टापू खेलता होगा, कोई बॉल से खेलता होगा, तो कोई गिल्ली डंडा खेलता होगा, और बहुत सारे बच्चे तो कंचे भी खेलते होंगे। तो हमारे सभी के अलग अलग तरह के खेल हैं, लेकिन एक बात तो तय है
कि आप और हम कभी भी खेल खेलते हुए नहीं

थकते। तो ऐसे कौन से काम होंगे जिन्हें करते करते आप थकान महसूस करते हैं? ये हो सकता है कि आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, या फिर आप लिखते लिखते थक जाते हो, या फिर आप बर्तन उठाते उठाते थक जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके और हमारे जिसमें हमें थकान महसूस होती है, यानी एक ही तरीके का काम घंटों घंटों घंटों करने में हमें थकान महसूस होती है। लेकिन ये बात तय है, जिस काम में हमें बहुत मजा आता है, जिस काम को करने में हमें बहुत आनंद महसूस होता है, उस काम को घंटों करने में हमें कोई थकान महसूस नहीं होती। अच्छा, इस कविता में एक और बात आई थी कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। अब कभी जब हम अपने चलने की बात करते हैं तो हम क्या ये कहते हैं कि हम हिलते डुलते चल रहे हैं? ये बात ऊंट के ऊपर क्यों कही गई होगी? शायद इसलिए क्योंकि ऊंट के ऊपर बहुत सारा सामान लदा पड़ा है, और जब वह रेगिस्तान में चलता है तो रेगिस्तान सड़क की तरह तो नहीं है, सपाट नहीं है, समतल भी नहीं है। कहीं ज्यादा बालू है तो कहीं कम बालू है, कहीं बहुत ज्यादा नरम बालू है तो कहीं थोड़ी सख्त बालू है। तो जब ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो उसके पैर बालू में जाते होंगे, तो कहीं उसका पैर ज्यादा धस जाता होगा तो कहीं कम धसेगा। लेकिन ऊंट रेगिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है, वैसे ही जैसे आप और हम सड़क पर चल सकते हैं, कहीं और रास्ते में चल सकते हैं, घर में चल सकते हैं, स्कूल में चल सकते हैं, खेल के मैदान में दौड़ लगा सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यह ऊंट भी रेगिस्तान में बहुत मजे से चल लेता है। आप सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे, हम तो ऊंट चला की कविता पढ़ रहे थे और अब हम कहां पर आ गए, कामों में उलझ गए। तो बच्चों, दरअसल होता ये है कि जब हम कोई कहानी कोई कविता पढ़ते हैं तो हम उसे अपने अनुभव से जोड़ते हैं। हम जैसे ही कोई कहानी पढ़ते हैं वैसे हमारे मन में एक कहानी बुनना शुरू हो जाती है। यही बात कविता पर भी लागू होती है। जब आप ऊंट चला की कविता सुन रहे थे तो आप ऊंट को अपने दिमाग में देख रहे थे, आप ये कल्पना कर रहे थे कि ऊंट कैसे रेगिस्तान में चल रहा होगा। अब ऊंट के बारे में कुछ और बातें इसमें आई हैं। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इतना ऊंचा ऊंट चला में क्या खास बात है? खास बात बिल्कुल है, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऊंट बहुत ऊंचा होता है। हमारे आसपास या हमने जंगल में, टीवी पर, चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर देखे हैं। कुछ जानवर तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ जानवर बहुत मोटे होते हैं, खूब ऊंचे होते हैं। ऊंट भी उन्हीं जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो बहुत ऊंचा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा होगा ये ऊंट? तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में जिराफ की भी तस्वीर उभर रही होगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली तो बहुत छोटी है लेकिन ऊंट बहुत ऊंचा है। कुत्ते के लिए क्या कहेंगे, कुत्ता भी छोटा सा ही है, उसकी भी उतनी ऊंचाई नहीं है, ऊंचा तो ऊंट है। हाथी और ऊंट में से आप किसे ऊंचा कहेंगे? अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि किस सवाल में फंसा दिया हमने। तो मैं आपको सवाल में नहीं फंसा रही, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, देखिए और तब जाकर ये तय कीजिए कि हाथी ऊंचा है या ऊंट ऊंचा है। कविता में एक और खास बात आई है, शायद आप बच्चों ने बहुत गौर से सुनी हो, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट कैसा है? उसकी गर्दन ऊंची है, उसकी पीठ ऊंची है और वह पीठ उठाकर रेगिस्तान में चल रहा है। बच्चों, आपने कभी टंग ट्विस्टर का नाम सुना होगा, यानी कि हम किसी शब्द को या एक वाक्य को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिसे हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, जिसमें जीभ लड़खड़ाने लगती है। तो इस कविता में ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं जो झटपट बोलने का मजा देते हैं, और जब हम झटपट बोलने की बात करते हैं तो शब्द लड़खड़ा जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोल ही नहीं पाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी बच्चे इस कविता के इस हिस्से को झटपट पढ़, तो मैं आपको सुनाऊं कुछ ऊंच, देखिए मुझसे भी नहीं बोला जा रहा, तो हम कोशिश करते हैं। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। दोबारा से सुनिए,

ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब आप इस हिस्से को जल्दी से बोलकर बताइए और आपको पता चलेगा कि ऊंट पूंछ ऊंची ऊंट पीठ ये सारे शब्द ऐसे लड़खड़ा गए, सब गडमड गडमड हो गए, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यही मजा है टंग ट्विस्टर का और यही मजा है ऐसे शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का। तो आप इन शब्दों को दोहरा लीजिए, याद रख लीजिए और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के सदस्यों से कहिए कि इस हिस्से को वे जल्दी जल्दी बोलकर बताएं। आपको इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। अब आप इस कविता को कोई नाम भी दे सकते हैं। हमने इस कविता को नाम दिया था ऊंट चला। हमने तो इस कविता को इसलिए नाम दे दिया था क्योंकि इस कविता में ऊंट के चलने की बात थी। आप अपने मन से इस कविता को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप सिर्फ ऊंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं रेगिस्तान का ऊंट, ये भी शीर्षक अच्छा है। आप ऊंट भाई चले, ये भी कह सकते हैं। तो खूब मजेदार शीर्षक आप इस कविता के लिए तय कर सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, हमें आपका तय किया हुआ सब पसंद आएगा। आप बच्चे हैं ही इतने प्यारे, मुझे मालूम है कि आप अपनी कविता का शीर्षक भी बहुत प्यारा सा रखेंगे। आपने कविता में एक और खास हिस्से पर ध्यान दिया होगा, मैं उसे दोहरा देती हूँ आपके लिए। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब इसमें खास बात क्या है? इस कविता के इस अंश में खास बात है इतना ऊंचा ऊंट चला। कविता में कहीं बताया ही नहीं गया कि ऊंट कितना ऊंचा है, लेकिन हाँ उसकी ऊंचाई को बताने के लिए इतना शब्द का इस्तेमाल किया है। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आप सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा ऊंट होगा। तो मैं कुछ शब्द कहती हूँ, कुछ चीजों के नाम बताती हूँ और आप बताइए कि क्या ऊंट इतना ऊंचा होगा। तो पहला क्या है? ऊंट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना या बिजली के खंबे जितना। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी सही नहीं मान रहे तो फिर आप खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से ऊंट कितना ऊंचा होगा। हमने यहाँ ऊंट के ऊंचे होने की बात की, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी तो हैं जो बहुत मोटे हैं। बिल्ली मोटी है? आप कहेंगे हाँ, लेकिन अगर मैं उसके सामने कहूँ कि गैंडा मोटा है तो आप कहेंगे हाँ, और अब मैं गैंडे के सामने ये कहूँ कि बिल्ली मोटी है तो आप कहेंगे ना। तो आपकी हाँ और आपकी ना ये निर्भर करती है कि हम किन किन जानवरों की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जानवरों को अलग अलग देखें तो हमें लगता है कि ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये दुबला है। हमने तो अकेले अकेले जानवरों के नाम लिए तो हम मोटा पतला दुबला ऊंचा नीचा हम ये तय कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर हम दो दो जानवरों के नाम लें तब आप ये तय कर पाएंगे कि कौन मोटा है और कौन मोटा नहीं है? अगर मैं कहूँ कि खूब मोटी बिल्ली आई घर में तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि बहुत मोटी सी बिल्ली खिड़की से आई और रसोई घर में कूदी और उसने दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चूहा भी आया, ठीक, तो चूहा तो बहुत छोटा सा है। अब चूहा हमारे लिए छोटा है, लेकिन मैं ये कहूँ कि उस घर में एक चीटा भी आया तो अब आप कहेंगे चूहा बड़ा है। तो बस यही शब्दों का हेर फेर है और आप ये तय करने में थोड़ी दिक्कत तो महसूस करते होंगे कि ऊंचा कौन है, मोटा कौन है और छोटा कौन है। तो अभी हमने ऊंट के ऊंचे होने की बात की, अब हम मोटे होने की बात करें। तो प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए हाथी कितना मोटा होगा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना। सब बच्चे सोचेंगे कि माँ के पास संदूक कितना बड़ा होगा, या फिर ऊंट जितना या फिर पहाड़ जितना। तो बच्चों को मैंने कहीं फंसा तो नहीं दिया? नहीं, यही तो मजा है शब्दों का। तो हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। या आप कोई और ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप हाथी के मोटे होने के बारे में बता सकते हैं।

तो चलिए हमने बात की ऊंचे होने पर, मोटे होने पर, और अब हम बात करते हैं छोटे होने पर। जैसे ये हमारे बच्चे छोटे मोटे से हैं, वैसे चींटी भी छोटी सी है। तो चींटी कितनी छोटी होगी सोचिए, चीनी के दाने जितनी। तो आप बच्चे कहेंगे नहीं, इतनी छोटी तो नहीं होती। तो चावल के दाने जितनी, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इलायची के दाने जितनी, तो आप बच्चे कहेंगे कि नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, तो चींटी आपके हिसाब से ना तो चीनी के दाने बराबर जितनी छोटी है, ना चावल के दाने जितनी छोटी है, और ना ही इलायची के दाने जितनी छोटी है। तो आप अपना शब्द खुद तय कीजिए कि आपके हिसाब से चींटी कितनी छोटी है। तो हमने इस कविता के आधार पर ऊंट के बारे में बात की, हाथी के बारे में बात की, और चींटी के बारे में बात की। तो प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से और बहुत सारे जानवर सोच सकते हैं। जैसे हम अगर पूंछ की बात करें, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी पूंछ या तो बहुत छोटी सी है, या बहुत बड़ी है, या फिर बहुत जबरीली है। जबरीली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं और बहुत फूली हुई सी दिखती है, जैसे गिलहरी की पूंछ होती है जबरेली। तो आपने अपने आसपास तरह तरह के जानवर देखे हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत छोटी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ बहुत लंबी है, या ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी पूंछ ना तो बहुत छोटी है और ना ही लंबी है। लेकिन आप प्यारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनकी पूंछ हमेशा मुड़ी रहती है। मैं समझ सकती हूँ आप सभी कुत्ते के बारे में बात कर रहे होंगे कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, वह कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तो आपने गाय की पूंछ भी देखी है, भैंस की पूंछ भी देखी है, हाथी की भी पूंछ देखी है। अब हाथी तो इतना मोटा और इसकी पूंछ इतनी छोटी सी। तो और तरह तरह के जानवर कौन से हैं? ऊंट की भी पूंछ होती है, शेर की पूंछ होती है, और बंदर की पूंछ होती है, और लंगूर की पूंछ तो बाप रे बाप कितनी लंबी होती है। वह इतने ऊंचे पेड़ की एक टहनी पर बैठता है और उसकी पूंछ नीचे जमीन को छूती है। तो लंगूर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है। तो अब आप ये खेल खेलिए, आप ये प्रश्नोत्तरी कीजिए अपने घर में, और आप एक कागज पर सारे जानवरों के नाम लिख लीजिए, और ये अपने आप तय कर लीजिए कि किसकी पूंछ छोटी है और किसकी पूंछ बड़ी है। और आप फिर एक एक पर्ची खोलते चले जाइए और सबसे पूछते जाइए, अच्छा बताइए कि गधे की पूंछ कैसी होती है, छोटी है या बड़ी है? लंगूर की पूंछ कैसी है, छोटी है या बड़ी है? ये खेल खेलने में आप सभी को बहुत मजा आएगा।

ये कविता सुनी ऊंट चला। कैसी लगी आपको कविता? यकीनन आपको इस कविता को सुनने में बहुत मजा आया होगा। भाई मुझे तो कविता गाने में बहुत मजा आया। तो आज हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।

0: कुर्मी के उपचार से ऊंट का दर्द मिटा तो लगा ऊंघने। तब उपदेश दिया उर्मी ने,
1: ऊंट का है बस एक उपाय, मिलके

साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते।

0: हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
3: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
2: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
4: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
2: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
5: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
2: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
6: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
2: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: FM ग्रीन हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि, जी हाँ किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं रूबरू हो रही हूँ आप सभी के बीच, आप सभी के पास उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। और हमारे साथ आज एक और खास मेहमान है और खास विषय भी है आप सभी के लिए, और वो है पपीता की वैज्ञानिक खेती। जी हाँ दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश की बात करें तो रंग बिरंगे फल और फूल यहाँ पर मिलते हैं, और फलों की बात करें तो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं ये फल, और बहुत सारे पौष्टिक गुणों से भरे रहते हैं ये फल। वैसे पपीता की बात करें तो इसकी वैज्ञानिक खेती एक जो समझ है वो हमें होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसान भाइयों को ये समझ होनी चाहिए। और इसी विषय पर और यही समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फिज़ा अहमद, जो है प्रोफेसर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, जब पपीता की बात आती है तो खेती का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सही समय क्या होता है?
11: देखिए, पपीता एक ऐसे फल है जो कि हम यहाँ पे हर समय लगा सकते हैं, सिर्फ आप ठंडे को छोड़ करके। उसकी वजह यह है कि पपीता जो है ठंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है।
2: अच्छा।
11: तो आप ये रखिए उम्मीद कि आपको नवंबर से लेकर के फरवरी तक पपीते को नहीं लगाना चाहिए, बाकी समय में आप कभी भी पपीता लगा सकते हैं। लेकिन पपीता लगाने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना होगा, और जो एक अहम प्रक्रिया है पपीते का बाग लगाने के लिए, नर्सरी जैसे कि आपने फरवरी में लगा दिया है तो आपका एक महीने के बाद ये नर्सरी तैयार हो जाएगा, और आप मार्च में भी लगा सकते हैं। किसी वजह से आपने मार्च में नहीं लगा सके तो आप अप्रैल में भी लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं। अगर मई में नहीं है तो जुलाई में अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय नर्सरी का प्रबंधन बहुत समुचित तरीके से की जानी चाहिए, क्योंकि आपको जैसा बताया कि पानी में पपीता नहीं चल पाता है।
2: अच्छा।
11: तो इसलिए आपको चाहिए कि जब पपीता का नर्सरी तैयार करना है तो आपको जमीन से करीब

0: एक फीट ऊपर का मट्टी का एक बना दें, रेज बेड बना दें और रेज बेड पे ही आप उसमें सीड डालें। ताकि रेज बेड डालने से क्या होता है कि पपाया जो सीड है वो पानी के संपर्क में नहीं आएगा और मरेगा नहीं, इसलिए हमेशा रेज बेड पे उगाना चाहिए। नर्सरी प्रबंधन करने के लिए पपीता में सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीज़ों के लिए हमें मट्टी में ज़्यादा नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि मट्टी में सीड का जर्मिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि सीड बहुत महंगे आ रहे हैं आजकल, इसलिए हमें हर सीड से पौधे बनने चाहिए। उसके लिए प्रोट्रे आता है, किसान भाइयों के लिए प्रोट्रे समझाना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से वो विश्वविद्यालय आकर के यहाँ हम देख सकते हैं कि हम पपीता का सीड कैसे तैयार करते हैं। प्रोट्रे होता है, उसमें एक बुरादा हम लोग डालते हैं और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल देते हैं, जिससे कि पपाया का पौधा तैयार होता है। पपीता जो है इसमें वायरस बहुत लगता है, जब नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसको बाहर में छोड़ देते हैं, उससे वायरस लग जाता है। तो हम लोग उसको पपीता को बाहर में नहीं नर्सरी को तैयार करते हैं, अगर करते भी हैं तो उसमें हम लोग एक जाली नुमा दार जो है चद्दर डाल देते हैं, वो मार्केट में मिलता है,
1: कवरिंग
0: कर देते हैं, ताकि उसमें जो है कीट जो है नहीं घुस सके। अगर कीट वो चला जाएगा तो वायरस कर देगा और वायरस कर देगा तो आगे चल के कुकड़िया रोग लग जाएगा इसमें, जो पपीता का सबसे बड़ी समस्या है। किसान भाई पपीता का बहुत अच्छा पौधा देखते हैं, एक दो महीने के तक बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चला कि इसमें कुकड़िया रोग लग गया और कुछ भी फल नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है इसके लिए। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब भी वो नर्सरी तैयार करें, रेज बेड में करें, जमीन से उठे हुए एरिया में करें जहाँ पानी ना लगता हो, और जब वो सीड डालें और जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसमें नेट लगा दे वो, ताकि इंसेक्ट नहीं जा सके उसमें, अगर कीड़ा जाएगा तो मुश्किल होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने कुकरैया रोग के बारे में कहा, अभी उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पपीता की खेती के लिए जो बीज से नर्सरी तैयार किया जाता है तो उसकी विधि क्या हो सकती है?
0: हाँ, हमने जैसे कहा कि जो प्रोट्रे है उसमें बहुत अच्छा होता है, उसमें आपको 100% जर्मिनेशन मिलेगा, और वही चीज़ अगर आप जमीन में लगा के करते हैं तो उसमें आपको 60%, 60% 70% तक मिलेगा, लेकिन प्रोट्रे में बहुत अच्छा होगा। और किसान को चाहिए कि वो विश्वविद्यालय आकर के सीखे कि पपीता का सीड को कैसे बनाया जाता है, उससे किसान बहुत लाभान्वित होंगे।
1: अच्छा, तो ये बात हो गई है यहाँ पर सीखने की। तो जहाँ तक बात आती है सीखने की, तो हमारे किसान भाई जितना कुछ सीखना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, हम कोशिश करते हैं कि आपको हम पूरी की पूरी जानकारी रेडियो के थ्रू, यानी कि हमारा जो FM ग्रीन है उसके थ्रू दे। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉक्टर साहब, जब बाग तैयार करने के तरीके आते हैं तो बाग तैयार कैसे करें, उस तरीकों के बारे में भी आप किसान भाई।
0: ये अहम प्रक्रिया है, बाग तैयार करने से पहले भूमि का चयन का बहुत जरूरी है कि पपीता जो है वो पानी जहां लगता वो नहीं लगेगा, इसलिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पानी ना लगता हो। अगर बारिश में पानी एक रात भी अगर किसी खेत में लग जाएगा और वो पपीता के संपर्क में आ जाएगा तो पपीता रात भर में मर जाएगा। इसलिए किसान भाई इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जरूरत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस खेतों का चुनाव करें जहाँ की सालों भर पानी ना लगता हो। अगर पानी भर भी जाता हो तो 2 या 3 घंटे में वो पानी निकल जाने चाहिए, तो ऐसे खेतों का चुनाव होना चाहिए। और मट्टी जो है दोमट बलवाही मट्टी जरूरी है इसके लिए, बलवाही मट्टी भी, दोमट भी चलेगा इसमें, मतलब हर तरह के फील्ड में रहता है, लेकिन काली मट्टी में ये नहीं चलेगा क्योंकि उसके रूट नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो ऐसे जब चुनाव कर लिया गया है तो ये वैरायटी पे डेवलप करता है कि कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिस है, ये अच्छी वैरायटी है और ये वैरायटी जो है पैदावार के लिहाज से भी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये पौधा राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में, वहाँ पे IRI का रीजनल स्टेशन है, वो बीज तैयार करते हैं वहाँ पे, और किसानों के लिए ही बीज वो तैयार किया जाता है। तो किसान पूसा में जाकर के पपीता का बीज ला करके नर्सरी तैयार करेंगे। अगर पूसा डिलीशियस लगा रहे हैं तो वो 2 मीटर बाय 2 मीटर पे वो गड्ढा खोदेंगे जिसमें लगाना है, उससे करीब 15 दिन पहले गड्ढे को खुला छोड़ दें। अब छोड़ने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर उसमें 2 टोकरी कम से कम डाल दें। अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है किसानों को तो वो भी 0.5 किलो 1 किलो के बीच में हर गड्ढे में डालते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाग में जो हम पौधे लगाते हैं तो साथ ही हम जानना चाहेंगे आपसे कि पौधे की दूरी, मतलब पौधे के बीच में जो दूरी होती है वो कितनी सेंटीमीटर है?
0: हाँ, जैसे वो लगा रहे हैं जो पूसा डिलीशियस है, पूसा मजेस्टिक है, पूसा ड्वार्फ है, ये सबको डेढ़ मीटर से दो मीटर के बीच में लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: आज जो चलन यहाँ हो रहा है बिहार में वो रेड लेडी का चलन चल रहा है यहाँ।
1: ये क्या होता है?
0: रेड लेडी एक वैरायटी है जो ताइवान

0: आती है।
1: अच्छा।
0: और ए वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है इसमें नर और मादा दोनों जो है फल देते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसीलिए इसमें कहते हैं ना पपीता में कि आधे में फल आता है आधे में नर आता है, तो नर वाला तो फल नहीं देता है। लेकिन ये जो रेड लेडी वैरायटी है ये जो भी पौधा लगेगा खेत में सब में फल आएगा, इसलिए किसान जो है इसी को प्रीफर करता है कि हमको जो है हर पौधे में फल मिले। इसलिए ये वैरायटी जो है ड्वार्फ वैरायटी है, ये छोटा वैरायटी है।
1: हाँ।
0: तो इसको आप 1.5 मीटर पे भी लगा सकते हैं, ये 1.25 मीटर पे भी लगा सकते हैं।
1: और तो अक्सर अच्छा देखा भी गया कि जो किसान भाई हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द फल मिले हमें, तो ये वाला वैरायटी मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा।
0: जी जी, हर साल लगाना चाहिए, ये वैरायटी बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है रेड लेडी में, इसमें बीमारी बड़ी जबरदस्त तरीके से लगती है। अगर सही समय पे इसका उपचार जो कुकड़िया रोग है नहीं करा जाएगा तो हम समझते हैं कि किसान फिर मुश्किल में लग जाएगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप खाद की मात्रा बता रहे थे अभी कुछ देर
0: जी पहले। जी जी, खाद जो है अहम है, किसी भी पौधों को खाद जो एक अहम है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हर टाइम खाना खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, उसी तरह पौधा भी चाहता है कि हमको बार बार मिले। तो हम देखते हैं किसानों को क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार में वो खाद की मात्रा को पूरा कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीका ये है कि पपीता में हर जो डोज है उसका, जैसे 200 ग्राम नाइट्रोजन है, 200 ग्राम फास्फोरस है, और लगाते हैं 100 ग्राम फास्फोरस है और 200 से 300 ग्राम जो है पोटाश है। तो फास्फोरस की मात्रा वो लगाते समय ही डाल दे 100 ग्राम, उसके बाद वो कभी पौधे की जिंदगी भर जब तक पौधे रहेंगे तब तक फास्फोरस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने कहा 200 ग्राम यूरिया का और 200 ग्राम पोटाश 300 ग्राम पोटाश का, उसको 5 भाग में बांट करके दे वो, ताकि वो हर महीना अगर डालते रहेंगे तो उसको खाना मिलता रहेगा। अगर वो खाना मिलता रहेगा तो उसका बढ़वार भी बहुत अच्छा होगा। पपीता का जो असली खाना है वो पोटाश है।
1: अच्छा।
0: अगर आप पोटाश उसमें डालते हैं तो पपीता जो है अंदर से लाल और पीला जैसा जो वैरायटी है वो अच्छा होगा और स्वाद बहुत जबरदस्त होता है। हम देखते हैं कि किसानों के खेत में टमाटर लाल नहीं हुआ, टमाटर लाल ना होने की वजह है कि किसान पोटाश डालता ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: जो भी रंगीन फल है उसके लिए पोटाश का होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसे केला है, केला बहुत ही पोटाश चाहता है, उसी तरह से पपीता भी है वो भी पोटाश बहुत चाहता है। तो पोटाश की मात्रा को आप हर महीने उसमें 50-50-50 ग्राम देते रहें 5 डोज में, तो आपका हम समझते हैं कि पपीता जो है बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट और मीठा और बाजार में बहुत पसंद किया जाएगा। जब उसको काट करके आप रखेंगे और रंग देखेगा तो जो व्यापारी भी होंगे वो भी ले जाएंगे और जो डेली कंज्यूमर है वो भी इस चीज को पसंद करेंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक कुकरैया रोग के बारे में भी आप बता रहे थे और उसमें आप कह रहे थे कि ये पपीता जो है इसमें गलना, जमीन से गलन इसका जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके उपचार के बारे में।
0: हाँ देखिए, गलन वाला जो बीमारी है, हम लोग जितने बैठते हैं ऑफिस में मैं देखता हूँ कि सारे किसान जो भी आ रहे हैं वो पपीता के गलने वाले रोग को अभी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वो जब क्या होता है कि किसानों को उतना अंदाज नहीं है, वो जहाँ चाहे वहाँ पपीता लगा देते हैं, लेकिन जब पानी लग जाता है तो वहाँ गलन शुरू हो जाती है, क्योंकि जो जड़ से लगा हुआ होता है वहीं से ये गलन शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए कि थोड़ा सा रेज बेड पे पपीता को लगाए, जहाँ जहाँ पानी लग रहा है थोड़ा सा पपीता को रेज बेड लगाया था, पानी जो है उसके जो मेन ट्रंक है उसको टच न कर सके,
1: एक
0: तो ये चीजें हैं। हाँ, अगर मान लिया जाए कि किसी पौधे में 1-2 पौधे में गलना शुरू हो गया है तो उसको बचाव करने के लिए आप 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके उसके जड़ में दे दें। 1 ग्राम वेवेस्टीन पानी में घोल करके करीब आधा लीटर या एक आधा लीटर पानी हर पौधे में डाल दें, तो ये गलने का रोग जो है वो से आप दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे पौधे। लेकिन पानी अगर नहीं लगेगा तो ये गलना वाला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है।
1: अच्छा।
0: दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बीमारी है इसमें है, ये है ये कुकड़िया रोग, जो कि पौधा का पत्ती जो है कुकड़ी होकर के मुड़ करके ये नीचे लटक जाते हैं।
1: अच्छा।
0: ये वायरस से होते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है।
1: अच्छा।
0: इसका इलाज जो है वो है कि जो इसको वायरस फैलाता है उसको मारना है, जैसे डेंगू बीमारी है, डेंगू का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज है डेंगू को? डेंगू का इलाज है मच्छर को मारना। अगर आप मच्छर मार दिए तो डेंगू नहीं होगा। उसी तरह से पपीता में है, अगर आपने कीड़े को मार दिया तो उसमें कुकड़िया रोग लगेगा ही नहीं है। तो ये एक समस्या है, यहाँ पे किसान इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मिर्चा में कुकड़िया रोग लगता है उसी तरह पपीता में भी लगता है, तो वो नहीं समझता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर 20 दिन से 22 दिन के अंदर पे कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी कीटनाशक पौधों में छिड़के, और इसका जो कीड़ा रहता है वो पत्ती के नीचे रहता है, तो दवाई ऐसे छिड़कना चाहिए कि पत्ती के नीचे भी दवाई लगे, तो इससे बहुत इफेक्टिव होगा, वो कीड़ा मर जाएगा। तो ये जो बीमारी जहाँ लगा है वहाँ नहीं ले जाएगा। अगर शुरू के टाइम पे किसी पौधे में ये बीमारी लगा है तो उसको उखाड़ करके जमीन में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि यही रोग फैलाने का कारण बनता है। एक रिंग स्पॉट होता है।

0: होता है। किसान भाई जब आप खेत में जाएं तो पत्ती को गौर से देखें और गौर देखने के बाद वहां देखेंगे कि पत्ती पर अगर गोल गोल रिंग बन रहा है तो आप उसको तुरंत उखाड़ करके जमीन के नीचे गाड़ दें, क्योंकि यही रिंग स्पॉट वायरस जो है पूरे बाग को चौपट कर देता है अगर ये लग गया रिंग स्पॉट वायरस तो। इसका वही कंट्रोल है कि उसमें आप हर 15 से 20 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। कोई भी इंसेक्टिसाइड लें, सिस्टमेटिक ले लें या आप कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड ले लें, जो भी है आपके पास उपलब्ध आप छिड़क दीजिए, तो हम समझते हैं कि उससे बहुत बच जाएंगे और पपीता का उत्पादन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग खेती सिर्फ कुकड़िया बीमारी की वजह से नहीं करते हैं किसान भाई, लेकिन अगर आप समुचित प्रबंधन करेंगे कीटनाशक के द्वारा तो हम समझते हैं कि आपका बहुत अच्छा फल आएगा इसमें।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 20 से 25 दिन पर आप अपने जो पपीता के जो पौधे हैं उसका देखभाल करते रहें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर कोई रोग आ रहा है तो आप उसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये पपीता गलन के इस बीमारी के बारे में हमने जाना, उसके उपचार के बारे में भी जाना, अब एक सवाल और पूछना मैं चाहूँगी आपसे कि जो पपीता में जो फल लगते हैं वो कितने समय में लग जाते हैं?
0: हाँ देखिए, ये पपीता जो है, जैसे कि पपीता आपने लगाया, रेड लेडी पपीता लगाया, तो ये करीब 3 से 4 महीने के बीच में फूल आ जाते हैं इसमें, और ये फिर उसके बाद जो है 7-6 महीने में ये तैयार हो जाते हैं। करीब साल भर में आपका साइकिल तैयार हो जाता है। तो किसान आजकल क्या कर रहे हैं, वो दो साल नहीं ले रहे हैं पपीता, वो एक साल का पपीता लेके काट देते हैं। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वो एक पपीता से करीब 5-6 साल लेते थे, तो वो अब जमाना नहीं रह गया है। अब ये जमाना आ गया है कि हर साल पपीता लगाइए और हर साल आप पपीता को लगा करके फल ले लीजिए। एक साल में आप रेड लेडी पपीता को अच्छी तरह तोड़ करके बेच करके अच्छा आय कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये फल लगने के समय हो गया डॉक्टर साहब, और इसकी तुड़ाई हम कब करें ये जानना चाहेंगे?
0: हाँ देखिए, इसका तुड़ाई करने का तरीका है, कैसे जानेंगे कि ये पपीता मेरा पक गया है? तो इसके लिए किसान भाइयों, देखिए आप जो पपीता लगा हुआ है उसमें आप ब्लेड से चीरा लगाएं, अगर वहां से दूध जो गिर रहा है वो पतला धार हो गया है तो समझिए कि वो पपीता आपका पक गया है। अगर दूध का धार जो है वो गाढ़ा है तो समझ लीजिएगा कि ये अभी नहीं पका है। ये सबसे अच्छा तरीका है। और वो एक दो पौधे में देखेंगे कि वहां पे रंग चल रहा है तो वो भी एक तरीका है पपीता को जानने का कि ये पक गया है और इसको अब तुड़ाई शुरू करनी चाहिए।
1: तो ये पूरी की पूरी जानकारी किसान भाइयों, आपने सुने पपीता की वैज्ञानिक खेती के बारे में, और साथ ही अंत में डॉक्टर साहब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, किसान भाइयों से सलाह देना चाहता हूँ कि रेडियो पे तो आप सुनते ही हैं हम लोगों को, लेकिन आप अगर विश्वविद्यालय में आके यहाँ के प्राध्यापक के साथ बैठ करके आप चर्चा करेंगे तो हम समझते हैं कि आपको, किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिसके लिए विश्वविद्यालय बना है वही लोग यहाँ नहीं आते हैं, ये किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है। यहाँ पे एक प्राध्यापक बैठा हुआ है जो शोध करके किसानों तक पहुंचाने के लिए, अगर किसान भी एक कदम आगे बढ़ा करके विश्वविद्यालय में आता है, हम समझते हैं कि किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना डॉक्टर साहब ने कैसे कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप मिल सकते हैं, और पूरी की पूरी जो एक डॉक्टर्स की टीम है, आप समझ लें कि आपकी खेती के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। जैसे कि आप अपने रोगों का इलाज कराते हो डॉक्टर के पास जाकर, तो आप अपने फसलों का इलाज, अपने जो भी रोग हैं आपके पौधों के, फल के, सब्जियों के, आप उसका इलाज भी यहाँ पर आके करवा सकते हो, यानी कि जानकारी ले सकते हो, और सही जानकारी से कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चलेंगे, इसे अपनाएंगे और अच्छे तरीके से पपीता की खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If you're

0: Kids are 5 or less who have missed a vaccine. Hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
1: See you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि

बुवाई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते के बीज बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं। और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं की बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके कार्यक्रम उन्नत कृषि में. दोस्तों जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमें लगता है ये कोई ओल्ड फैशन टाइप चीज़ें होंगी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, उस काम को बीच में छोड़कर या उस काम को ख़त्म करके वो वापस खेती की ओर मुड़ रहे हैं और पूरा परिवार मिलकर खेती कर रहा है. कोई तो इसका फ़ायदा होगा या फिर कुछ तो इसमें बात होगी. तो पारिवारिक खेती क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा. सर आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.

0: धन्यवाद अम्मा जी।
1: सर आपसे पहला सवाल ये है कि पारिवारिक खेती क्या होती है?
0: पारिवारिक खेती एक बहुत पुरानी पद्धति है खेती का, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आता है खेती करने के लिए। मान लीजिए कि हर जो आप एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के पास कुछ ना कुछ होगा जो कि अलग होगा। मान लीजिए कोई युवा है, उसमें वो बहुत अच्छा मार्केट तक पहुंचा सकते हैं सामान को। मान लीजिए हर सोइंग करना है या फिर उसको लगाना है, उसमें महिलाएं बहुत आगे रहती हैं उसमें। तो जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं वो सब इंगेज रहते हैं ऐसी खेती में, और ऐसी खेती का बहुत महत्व है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी हम देखते आए हैं कि ऐसी खेती जब होती थी तो बहुत अच्छा जो हमारा पोषक तत्व जो है हमारे पास, वो हमारे पास कभी हमें बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता था। इसका महत्व को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जो हैं उन्होंने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय साल घोषित किया था पारिवारिक खेती को। तो पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है कि पारिवारिक खेती एक बहुत अच्छा जरिया है, जिससे कि अच्छा कृषि का उत्पादन तो हो ही सकता है, इसके साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी बन सकता है, जिसमें कि हम पुरानी प्रजातियाँ या फिर हमारी जो पौष्टिक आहार है वो सब हम ले सकें, एक साथ ले सकें। इसीलिए इसका महत्व आज के ज़माना में तो और भी ज़्यादा है।
1: तो सर बिहार में पारिवारिक खेती की वर्तमान स्थिति कैसे है?
0: बिहार में पारिवारिक खेती का ये अभी इस मोड़ पे है कि अभी बिहार में आप देख जानते होंगे कि बहुत हमारा जो है जितना भी हमारा क्षेत्रफल है बहुत कम हो गया है। अभी सारा जो जितना भी ज़मीन है बहुत कम, एक किसान के पास बहुत कम ज़मीन है बचा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल होती है पारिवारिक खेती करना। हमारे यहाँ आप देखते होंगे कि बहुत सारा माइग्रेशन है, जितने भी मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं परिवार के, वो सब चले जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये सब अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं। एक पहल ये भी है कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे FPO हैं, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अभी बहुत सारे कृषि उत्पाद में ये सब FPO बने हुए हैं। तो ये FPO में क्या होता है कि मान लीजिए कोई परिवार है जिसके पास बहुत छोटा जोत का खेत है, वो लोग भी FPO के साथ जुड़ के अपना अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, अपने सामान को अच्छे तरह से बेच सकता है, कम लागत में, जो भी लागत लगता है कृषि में उसको कम लागत में ले सकता है, क्योंकि FPO के पास एक बार्गेनिंग पावर होता है, उसके पास ये क्षमता होती है कि वो कम दाम में आपको सामान उपलब्ध करवा पाए। तो बिहार में इसकी अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लोग छोड़ देते हैं खेती और चले जाते हैं दूसरे राज्य, लेकिन वहां पे भी मजबूर हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता, उनको अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये अगर पारिवारिक खेती करेंगे तो वो बहुत अच्छा पोषण भी अपने परिवार को दे पाएंगे, इसके साथ साथ वो अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे।
1: सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग बाहर चले जाते हैं और बाहर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उनके मन में ये भी सवाल होता है कि पारिवारिक खेती का महत्व क्या है, हम क्यों करें पारिवारिक खेती? हालांकि आपने कुछ महत्व बताए, लेकिन और भी क्या महत्व होता है?
0: बिल्कुल, तो पारिवारिक खेती का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा कमाना ही आपका लक्ष्य है या फिर किसी भी परिवार का लक्ष्य है, तो जो आप अपने परिवार को छोड़ के इतना दूर जा रहे हैं, आप वही आमदनी जो है यहाँ पे भी ले सकते हैं अगर आप, लेकिन इसमें क्या है कि आपको समूह में जुड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे कृषक को आप देखेंगे जो कि अकेले खेती कर रहे हैं, वो उनके पास कोई सहायता नहीं है और उनको कोई समझाने वाला भी नहीं है, लेकिन अगर वो समूह में जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण है, आप अगर महाराष्ट्र राज्य लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे FPO हैं जिसके FPO हैं जिसमें कि 5,000-6,000 किसान परिवार जुड़ा हुआ है उससे, और वो लोग बहुत अच्छा इनकम करते हैं। वहाँ के किसान का आप देखेंगे तो सालाना इनकम, सालाना जो आय है वो 5,00,000-8,00,000-6,00,000 पहुँच गया है। तो अगर 5,00,000 किसी को घर पे मिल रहा है, उसके जगह पे मिल रहा है, तो उसमें एक अच्छा इनकम का स्रोत है, उसको बाहर जाने का और सिर्फ छठ या दिवाली में बिहार आने का ये मौका नहीं आना चाहिए।
1: सर जैसे आप बता रहे थे कि इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होता है पारिवारिक खेती, तो कैसे ये किसानों की आय बढ़ाने में कैसे मदद करती है?
0: ये किसान का आय बढ़ाने में इसलिए मदद कर सकता है क्योंकि आजकल देखते होंगे आप कि लेबर का बहुत शॉर्टेज है, मतलब बहुत कम आपको मिलेंगे लेबर काम करने के लिए खेत पे। तो पारिवारिक खेती अगर आप करते हैं तो सारे आपके परिवार में, मान लीजिए 5 सदस्य हैं, सब इसमें एंगेज रहते हैं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आप सब कुछ अपने ही परिवार में सब कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, कोई महिला है, तो जो महिला है वो मान लीजिए उनके पास अच्छा बीज है, वो बीज लगा सकती हैं, वो नर्सरी बेड लगा सकती हैं, वो सोइंग कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं। उसके बाद जो भी मान लीजिए उसमें फर्टिलाइजर डालना है या फिर कोई भी उर्वरक डालना है, वो कोई जो मेल मेंबर है वो कर सकता है। उसके बाद जो आपकी इरिगेशन है वो कोई संभाल सकता है, मार्केट तक ले जाना कोई और।

0: कर सकता है, तो पूरा परिवार जो इसमें इंगेज रहेगा तो अपने को तो अच्छा वो पोषण दे ही पाएगा, और साथ ही साथ जो भी है वो बेचेगा भी सामान वो भी एक अच्छा गुणवत्ता का होगा, क्योंकि उसको खुद भी खाना है और बेचना भी है। और समूह से अगर वो मिल जाता है तो आप जानते होंगे समूह उसको बहुत फ़ायदा करवा सकता है। अभी बिहार में भी बहुत सारे समूह हैं, आपने सुना होगा बांका जिला हमारा है, वहाँ पे मशरूम के बहुत सारे समूह हैं, उसमें भी बहुत सारे परिवार हैं। या मुंगेर में आप देखेंगे कि मुंगेर में बहुत सारे परिवार हैं जो पारिवारिक खेती के तहत मशरूम का उत्पादन करते हैं, और उससे भी बहुत उनको मुनाफा होता है। तो इस तरह कुछ आप सोच सकते हैं जिसमें कि आपको समूह भी हेल्प करेगा और आपको FPO भी हेल्प करेगा, आपका परिवार का सदस्य भी हेल्प करेगा, तो फिर आप बहुत अच्छा आय भी आमदनी भी कर सकते हैं। और जो हमारा अभी जो पर्यावरण का इतना चेंज इतना सारा मतलब अंतर आ रहा है उसको भी आप मिटा सकते हैं ऐसा करके।
1: सर आप लगातार FPO के बारे में बात कर रहे हैं, ये FPO क्या है और ये कैसे मदद करते हैं?
0: हाँ, तो FPO जो है इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक समूह है किसानों का। तो FPO जो है आप देखेंगे कि हर जिले में बहुत सारे आजकल FPO आ गए हैं, सरकार का लक्ष्य भी था कि 10,000 FPO खुल जाए और वो हो भी गया है। तो FPO का कोई भी आदमी FPO बना सकता है। FPO एक तरह से कंपनी ही है, उस कंपनी में लेकिन 300 सदस्य होने चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट है FPO बनाने में, किसी को भी किसान को बनाना चाहते हैं FPO, तो वो 300 उनको किसान जुटाना पड़ेगा जो कि खेती करते हैं, सिर्फ कृषक होने चाहिए वो। और अभी NABARD जो है वो मदद भी करती है FPO खोलने के लिए, क्योंकि FPO एक कंपनी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब एक खर्चीला प्रक्रिया है, लेकिन NABARD उसके उसमें बहुत अच्छा मदद करती है। इवन उसका जो आपका FPO का जो मालिक होते हैं जिसको CEO बोलते हैं हम, उसकी सैलरी भी NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए, और उसके बाद उससे आप उससे जुड़ के हम अच्छा खेती कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा भी पा सकते हैं, क्योंकि FPO के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वो कम दाम में ले सके सामान। क्योंकि जानते होंगे आप कि FPO के पास 300 सदस्य रहते हैं, 300 सदस्य का अगर जरूरत अगर उसको उसको लेना है, मान लीजिए उर्वरक 300 किसान के लिए, तो उसको सस्ते दाम पे मिल सकता है। मान लीजिए उसको किसी मार्केट में बेचना है, किसी मॉल में बेचना है, तो वो मॉल ऐसे लोगों से अनुबंध करना चाहेगा जिसके पास ज़्यादा मेंबर है, ताकि उनको हमेशा वो सप्लाई मिल सके। इसीलिए मशरूम में आप देखेंगे तो हमारे भागलपुर ज़िले में इधर बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब में मशरूम का FPO बहुत सारा खुला है, क्योंकि उसमें बहुत मुनाफा है। अभी होटल में आप जाते हैं तो आपको सालों भर मशरूम का कोई सब्जी या कुछ खाने को मिलता है, एक समय नहीं था ऐसा सुविधा। तो इसीलिए FPO का बहुत सारा संभावनाएं हैं और किसान को अच्छा आय मिल रहा है इससे।
1: सर जैसे कि आप बता रहे थे कि FPO के लोग होते हैं उनको सैलरी कुछ महीनों तक,
0: हाँ FPO के लोगों को नहीं, जो FPO के CEO होते हैं, मतलब जो FPO के मालिक होते हैं, CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसको संभालते हैं, उसकी सैलरी जो है NABARD देती है कुछ सालों तक, ताकि वो आत्मनिर्भर हो पाए और उनको ये चलाने के लिए वो मदद मिल पाए, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मेरे अगर लॉस हो गया तो थोड़ा सा लॉस NABARD की तरफ से कवर कर लिया जाता है। और उसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जो है वो भी NABARD ही बियर करती है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है अगर कोई FPO खोलना चाहे तो वो भी ये सोच सकते हैं FPO खोलने का।
1: तो सर सरकार की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पारिवारिक खेती को प्रोत्साहित करती है?
0: बिल्कुल, हाँ सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडी भी मिलता है सरकार के द्वारा। तो FPO तो एक अच्छी योजना है जिसके तहत आप कंपनी ही खोल सकते हैं, अगर जिस जो मान लीजिए छोटे जोत के किसान हैं, तो उसके लिए मशरूम के ऊपर भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सरकार 50 से लेके 90% तक अनुदान देती है। तो ये सब योजना का भी किसान फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मशरूम यूनिट स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपया अगर उसका यूनिट का खर्च है, तो अगर 50% सरकार दे देती है तो 50,000 ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आप एक शुरू करके देख सकते हैं कि सही में इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सरकार की और भी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी हैं सरकार की जो कि मान लीजिए आप छत पर बागवानी करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी छत पर भी सरकार की योजनाएँ हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को शुरू करना चाहिए कुछ, अगर वो शुरू करेंगे तो उनको एक दिशा दिखेगी और फिर वो वृहद स्केल पे बड़े पैमाने पे उसको कर सकते हैं।
1: सर पारिवारिक खेती के बारे में इतनी सारी बातें हुई, सरकार ने भी अपनी योजनाएं चलाई हुई है, लेकिन इसमें प्रमुख चुनौतियां क्या आती है?
0: इसमें प्रमुख चुनौतियां यही हैं कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी अगर कोई नौकरी लग जाती है या फिर उनको लगता है कि कृषि बहुत मेहनत वाला कार्य है, तो वो छोड़ देते हैं बीच में। और इस केस में क्या होता है कि वो पूरा जो आपका जितना भी माध्यम है सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसीलिए किसान को ये चाहिए कि वो कम से कम 3 साल तक वो देखे कि ये सच में काम करता है या नहीं। अगर वो 3 साल तक करके देखेंगे तो सच में उनको मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, और फिर वो एक कदम ले सकते हैं कि वो इसमें पूरे परिवार

0: को एंगेज कर पाए। और एक चुनौती इसमें ये भी आती है पारिवारिक खेती में कि लोगों को लगता है कि हम बाहर से भी सब कुछ करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, तो अपने परिवार को क्यों एंगेज करें। तो इसका ये हो सकता है कि देखिए आजकल आप देखेंगे बहुत सारे गांव में लेबर नहीं मिलने लगा है, वहाँ पे अगर छोटे जोत के आप किसान हैं तो आप मशीन का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका परिवार आपके साथ रहेगा तो अभी जो युवा हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, अभी बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, तो आपके जो युवा हैं वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा बहुत अच्छे स्केल पे इसको ले जा सकते हैं। इसीलिए एक परिवार को साथ आना बहुत जरूरी है।
1: मतलब आधुनिक तकनीक का अभाव भी एक समस्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप अब देखेंगे कि हर परिवार में आजकल जब से कोविड हुआ है उसमें तब उसके बाद से एक चीज़ हुआ है कि हर परिवार में एक स्मार्टफोन तो आ गया है। पहले सबके पास एक फीचर फ़ोन हुआ करता था जो नोकिया का जो पैड वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है, अब सबके पास एक परिवार के पास एक स्मार्टफोन तो है लेकिन वो स्मार्टफोन का प्रयोग सही रूप में नहीं हो पा रहा है। जनरली लोग उसको गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कृषि में बहुत संभावनाएं हैं। कितने सारे अच्छे अच्छे ऐप हैं अभी जिसका आप यूज़ करके देख सकते हैं कि सही में आपको खेती में बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको जो युवा हैं आपके परिवार में वो जरूर मदद कर सकते हैं। इसलिए एक एक, एक चेष्टा करनी चाहिए कि परिवार को एक साथ आके एक बार वो खेती करना शुरू करें तो इसमें ज़रूर मुनाफा होगा।
1: सर, पारिवारिक खेती को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए?
0: पारिवारिक खेती को अगर मजबूत करना है तो फिर आपके पास बहुत सारे इसमें स्रोत हैं। सबसे पहले तो है कि गवर्नमेंट का जो भी सरकार की योजनाएं होते हैं कम से कम किसी योजना के साथ जुड़िए। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि आप एक समूह में काम कीजिए, कभी अकेले काम मत कीजिए। आपके किसी और भी किसान होंगे जो मान लीजिए किसी FPO से जुड़े हैं, आप उनके पास जाइए और आप भी जुड़िए। अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो फिर नहीं अच्छा हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये भी है कि पारिवारिक खेती में आप हमेशा तकनीक से अपना जो दिमाग है हमेशा खुला रखिए कि हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करें। अभी हमारी यूनिवर्सिटी के पास कितनी सारी नई तकनीकें हैं, हम लोग हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो ये सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, तकनीक को अपनाइए। जब तक आप नई उन्नत तकनीक नहीं अपनाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है इस कृषि में जो गुजारा कर पाना आजकल 21वीं शताब्दी में। और एक और अच्छी बात है कि अभी किसान के पास उनके पास से बहुत सारा ज्ञान का भंडार है और बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ऐसा ज्ञान भी जो है आप पारिवारिक खेती करते हैं तो आप भी एक तरह से साइंटिस्ट हैं, और फिर वो सब अगर आप यूज़ करेंगे, ऐसी कोई पद्धति यूज़ करेंगे तो आप एक अच्छा कृषि बिना फर्टिलाइज़र वाला बिना किसी केमिकल वाला एक अच्छा कृषि कर सकते हैं जो आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आगे तक लाभकारी होगा। तो ये सब कुछ बिंदुए हैं।
1: तो सर, अगर आधुनिक तकनीक को भी अपना लिया जाए तो फिर पारिवारिक खेती का भविष्य कैसा हो सकता है?
0: तो पारिवारिक खेती की बहुत संभावनाएं हैं। आप अभी बहुत सारे देश आप देखेंगे जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो कि अब वो देख रहे हैं कि कितना जो केमिकल वाले जो भी कृषि हो रहे हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम है, कितने सारे बीमारी हैं जो कि केमिकल यूज रसायन यूज़ करने से हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पूरा एक परिवार साथ आ रहे हैं और वो लोग इवन वो लोग जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं और वो एक तरह से कर रहे हैं। तो हमारे भी किसान को ये जागरूक होना है कि हम लोग बाजार पे निर्भर ना रहें, अपना भी ऐसा खेती करें जिसमें कि हम अच्छा उपज ले सकें, जो कि हम खुद भी खाएं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जानते होंगे कितना अभी 100 साल पहले आप ले लीजिए जब उतना रसायन का ऐसा नहीं चलन था, उस समय बहुत अच्छी आयु भी अच्छी होती थी, ऐसी कोई बीमारी इतनी जटिल बीमारी नहीं हुआ करती थी, और उस समय जो वैरायटी था वो सब वैरायटी भी बहुत अच्छा था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था वो सब वैरायटी, और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो ये सब अभी अपनाने का ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत अनसर्टेन पूरे दुनिया में बहुत सारा अराजकता है। अगर परिवार पूरा खेती करेगा तो फिर एक अच्छा आय के साथ साथ वो एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएगा जिससे कि परिवार भी समृद्ध हो पाएगा और जो जिसको भी बेच रहा है वो लोग भी उससे जुड़ के अच्छा कर पाएंगे।
1: यानी कि पारिवारिक खेती के बहुत फायदे हैं और खास तौर से तो ये कि पलायन भी रुक सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो पारिवारिक खेती अपनाना चाहिए और खास तौर से आप के घर पे अगर युवा है तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आपके पारिवारिक खेती में आपका सहयोग दे। बहुत फायदे उनको भी होंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और समाज का भी फायदा होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें आपने बताई।
0: धन्यवाद आपको मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

കൃഷി. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज हम बात करने वाले हैं कीट पतंगों के बारे में। तो आप सभी को बता दूं किसान भाइयों कि आपकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं, और ऐसे में चुनौती भरा काम आपके लिए हो जाता है कि आप अपने

0: धान के फसलों को इन कीट पतंगों से कैसे बचा कर रखें? तो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास कीटों का पहचान हो और उनके रोकथाम के लिए पूरी जानकारी हो। तो आज इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर SN राय, मुख्य वैज्ञानिक कीट विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैडम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि धान में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं और इसके इनसे जो बचाव है उनके क्या क्या तरीके हैं, या फिर किस तरीके से हम इन कीट पतंगों से बच सकें, अपने धान के फसलों को बचा पाएं।
1: धान में लगने वाले प्रमुख कीट में मधुआ कीट, तनाछेदक कीट, गंधी कीट, राई सिस्पा, सैनी कीट, धान की बभनी, धान का केसवर, धान का लपेटक, धान का पतंगा आदि कीट प्रमुख हैं। कीटों की पहचान, फसल के आक्रमण के समय एवं लक्षण, उपयुक्त प्रबंधन तकनीकियां एवं कीटनाशियों के संबंध में जानकारी आवश्यक है। इसे उचित समय पर कीटों को रोकथाम किया जा सकता है। पहला कि धान की तनाभेदक कीट। तनाभेदक कीट मादा पतंग हल्के पीले रंग का उजला कीट होती है। वयस्क मादा के पंखों पर एक काला धब्बा पाया जाता है जो धान के फसल को बैठी दिखाई पड़ती है। मादा कीट पत्तियों पर गुच्छे में रोएदार आवरण में ढके अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। इस अंडों से 5 से 7 दिनों में लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शिशु, जिसको शिशु कहते हैं, पत्तियों को पर चलकर पौधों की बढ़ती कोमल को बेधकर तने में घुस जाती है तथा अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसके फल स्वरूप तना सूख जाता है। इसे डेड हार्ट या मृत कला कहते हैं। बालियां निकलते समय इस कीट का प्रकोप होने पर ग्रसित बालियां सफ़ेद दिखाई पड़ती हैं तथा इन्हें व्हाइट ईयर हेड कहते हैं। दाना खखड़ी हो जाता है। महीन एवं सुगंधित किस्मों जहां साल में धान की फसल 2 या अधिक बार ली जाती है, तना बेधक कीट का आक्रमण अधिक होता है। यदि 5% मृत कले या प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अंडा का समूह दिखाई पड़े तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन में इस कीट के बचाव हेतु पौधों की रोपाई के समय पौधों के पत्तियों के ऊपर के भाग को थोड़ा काट कर रोपाई करें ताकि इस कीट के अंडे मुख्य खेत में न जा सके। पौधे रोपाई से पहले अंडों को क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 6 ml प्रति लीटर पानी में उपचारित करने पर फसल को 30 दिनों तक तनाबेधक से बचाया जा सकता है। तनाबेधक के वयस्क को पकड़ने के लिए 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तनाबेधक कीट को अंडों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम 50,000 से 1,00,000 प्रति हेक्टेयर का प्रयोग 7 दिनों के अंतराल पर 6 बार करें। तनाबेधक के आर्थिक क्षति होने पर काटा फाइडोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 0.3G 15 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित दशा में करें। असिंचित दशा में काटा हाइड्रोक्लोराइड 25 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। प्रति हेक्टेयर के लिए 800 से 1000 लीटर पानी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नैपसेक या गटोर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। धान का मधुआ कीट। यह कीट हल्के गहरे भूरे रंग का होता है।

0: इसकी लंबाई 3 मिलीमीटर होती है। स्केट के लिम्फ एवं व्यस्क निम्फ एवं व्यस्क दोनों ही क्षति पहुंचाते हैं। स्कीट के धान के पौधे के तने के रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं एवं भूरी हो जाती हैं। इस अवस्था को हॉपरबर्न कहा जाता है। यह कीट पहले एक स्थान पर पाया जाता है, फिर तेजी से दूसरे स्थान पर फैल जाता है। यह कीट धान के ऊपरी भूमि की अपेक्षा निम्न भूमि धान पर इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट का प्रकोप ठीक पानी के जमाव के ऊपर भाग में धान के पौधों को तनों से रस चूसता है, जिससे पौधे सूख जाता है। इस कीट का प्रकोप पौधों में वृद्धि की अवस्था एवं पुष्प गुच्छ निकलने के बाद होता है, जो धान के पौधों को अधिक क्षति होती है। इस कीट के द्वारा कभी कभी 10-70% तक की क्षति होती है। यह कीट ग्रासी स्टंट वायरस नामक बीमारी फैलाता है। इस मधुआ पौधों के पत्तियों को रस चूसता है। प्रबंधन: प्रभावित क्षेत्रों में धान की रोपाई 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। कम दूरी पर रोपाई करने से इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जिस क्षेत्र में इसकी प्रकोप अधिक हो, उस क्षेत्र में संभव हो तो खेत में 10 दिनों के लिए पानी निकाल देना चाहिए। नेत्रजन एवं अन्य खादों का प्रयोग अनुशंसा अनुसार ही करना चाहिए। अधिक नेत्रजन का प्रयोग करने से इस कीट का बढ़ावा देता है। यदि धान के पौधों के प्रति हिल 5-10 मधुआ कीट दिखाई दे, तभी कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। तरल दवा बिप्रोफेजिन दवा का 1 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड दवा का 17.8 SL 250 मिलीलीटर, थायोमिथोएक्जेम 25 WG दवा का 250 ग्राम या मोनोकोटोफॉस 36 SL दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कीटनाशी का प्रयोग पौधों के निचले हिस्से में अवश्य पहुंचे।
1: और सर, आपने अभी बताया हमें कि जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि कीट पतंगों का पहचान हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए, और आपने बताया तना बेधक के बारे में। तो आपको बता दूं किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हल्के पीले रंग का कोई अगर कीट दिखता है आपको, तो समझ लें कि वो तना बेधक कीट है। और उसके उपचार के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। और इसके अलावे अगर इसके उपचार की बात करें तो पौधा रोपाई से मुझे लगता है कि अच्छा उपचार मिल जाएगा इसका, डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि धान का मधुआ कीट, और इसके पहचान के लिए आप ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं, तो आप समझ लें ये धान का मधुआ कीट है। और इनके प्रबंधन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया। तो आगे डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावे भी क्या कोई और कीट हैं जिसे हमारे किसान भाई पहचान सकें और उनके रोकथाम के लिए प्रबंधन कर सकें, तो आगे आप बताना चाहेंगे कुछ और बातें।
0: इस कीट के अलावे गंधी कीट, यह कीट लंबा पतला एवं हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा होता पाया जाता है। इस कीट के एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है, जिसे इसकी पहचान आसानी से किया जा सकता है। गंधी कीट का प्रकोप पौधों की फुलावस्था से लेकर दाने बनने तक होता है। व्यस्क मादा पीले रंग का 25 से 30 अंडे पत्तियों पर एक कतार में देती है। ये अंडे 6-7 दिनों में शिशु निकलते हैं। इस कीट के शिशु एवं व्यस्क दोनों की अवस्था में फसल को दुधावस्था में दानों से रस चूसते हैं। फलस्वरूप इन दानों में एक भूरे रंग का धब्बा बन जाता है तथा ये खोखले रह जाते हैं। इस कीट के आक्रमण आघात प्रभेद में अधिक होता है। जिस खेत में इस कीट की आक्रमण हो जाता है, उस खेत में धान के चावल बनने में टूटने की संभावना अत्यधिक पाया जाता है। प्रबंधन: खेत के मेड़ों को खरपतवार 9 गुने दें, क्योंकि खरपतवार इस कीट के लिए वैकल्पिक

0: पौधों की भूमिका निभाते हैं। यदि खर पतवार साफ कर लेते हैं तो इसे कीट का प्रकोप कम होगा। खेत में चार प्रकाश प्रपंच, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें ताकि व्यस्त कीटों को पकड़ा जा सके। कीटनाशी का प्रयोग करने से पहले खेत के चारों ओर से घास को साफ कर देना चाहिए। यदि कीट की संख्या एक से अधिक प्रति हिल दिखाई पड़े तो इकालॉक्स डस्ट या मलाथियन 5% डस्ट के दवा को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम में करें। पत्र लपेटक कीट, इस कीट के भारत में कुल चार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसे केवल एक प्रजाति काफ़ी क्षतिकर पाई गई है। इसका प्रकोप अगस्त से सितंबर तक पाया जाता है। इस कीट का व्यस्क हल्का बादामी रंग का होता है। इसके पंखों पर काली धारियां होती हैं। व्यस्क मादा पत्तियों के सिराओं या आधार पर एक एक अंडा या समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 4 दिनों में नवजात शिशु निकलते हैं। ये शिशु पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं तथा बाद में उसकी लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारे से मोड़ लेती हैं और अंदर ही अंदर उसके हरे भाग को खुरच कर खाती रहती हैं। फलस्वरूप प्रभावित पत्तियां धान की पत्तियों को सफ़ेद, सूखी एवं झुलसी दिखाई पड़ती हैं। इस कीट के शिशु अब्लिक लार्वा अवस्था में क्षति पहुंचाती है। प्रबंधन, खेत के मेड़ पर उगे खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए ताकि इस कीट की जनसंख्या में कमी हो। 11 प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप कहते हैं, प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए ताकि इस कीट के व्यस्क को पकड़ा जा सके। इस कीट के अंडे को नष्ट करने के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1,00,000 प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। ट्राइकोग्रामा को देने के लिए 6 बार एक सप्ताह के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करें। 10% पत्तियों को क्षतिग्रस्त होने पर कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। इस कीट का कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 50 SP दवा का 600 ग्राम या मोनोक्रोफोस 36 SL दवा का 1 लीटर या ट्राइजोफॉस 40 EC दवा का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सैनिक कीट, यह कीट इसके शिशु में हल्के भूरे रंग के होते हैं। इसके पार्श्व में पीली धारियां होती हैं। इसके शिशु एक साथ सैनिकों के समान प्रकोप करते हैं क्योंकि इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। एक कीट गोधूली के बाद रात में पौधों को चढ़कर धान की बालियों को काट गिराते हैं। यह कीट के द्वारा आक्रमण होने पर या पकने के पूर्व फसल के बालियों को कटी हुई दिखाई देती है। अधिक आक्रमण होने पर पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। यह कीट सैनी के समान रात में आक्रमण करते हैं एवं दिन में खरपतवार या पौधों के निचले भाग पर छिप जाते हैं एवं रात में अधिक आक्रमण करते हैं। प्रबंधन, धान की कटाई के बाद पुआल एवं खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। धान को कटते ही हल चलाकर खेत की जुताई कर देनी चाहिए जिसे शिशु मर जाए। जिस खेत में एक शिशु 1 वर्ग मीटर में दिखाई पड़े तो उस खेत में मोनोकोटोफॉस दवा का 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो तो डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों आप सभी को बताया, इसके अलावे यानी कि तना बेधक और मधुआ कीट के अलावे गंधी कीट होते हैं जो कि पतला और हरे भूरे रंग का होता है, जिसकी पीठ पर काले बादामी रंग का बड़ा धब्बा पाया जाता है और इस कीट की एक तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इसके अलावा इन्होंने पत्र लपेटक कीट के बारे में बताया, तो इस कीट में यहाँ पर चार प्रजातियाँ पाई जाती है। और इसके अलावे मैं बता दूँ कि इनके पंखों पर

0: वाली जो धारियां हैं वो पाई जाती हैं। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो सारे प्रबंधन की बात करें, जितने भी कीट हैं उनके प्रबंधन की बात करें, तो सबसे पहले तो खरपतवार जो मेड़ों पर हैं उन्हें हटा देना चाहिए, और क्योंकि उससे कीट पतंग जो हैं उनकी जनसंख्या में कमी आती है। तो आपके मेड़ों पर अगर खरपतवार हैं तो उन्हें बिल्कुल हटा दें, नष्ट कर दें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी है हमारे किसान भाइयों को, इससे बहुत फ़ायदा और लाभ उठाएंगे हमारे किसान भाई और बहन। और आशा करती हूं मैं कि डॉक्टर साहब के दिए गए सुझावों को अगर आप अपनाएंगे तो अपने धान की फसल को इन कीट पतंगों से बचा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान भाइयों से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, कुछ अलग विषय के साथ, कुछ अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, this is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब कोई पहलवान अखाड़े पर ताल ठोकता है तो यही कहता है, है कोई माई का लाल जिसने माँ का दूध पिया हो।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दे, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।

जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर

इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में टीके जरूर लगवा दें। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दें। पशुपालक भाई बहन, लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के करियर के बारे में और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस दिशा में आप जाकर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और उन्हीं बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है IBPS AFO, यानी कि IBPS के द्वारा जो बहुत सारे उनमें से एक होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। अगर हम IBPS AFO के बारे में बात करें तो अब तक आप समझ गए होंगे ये एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों में IBPS के द्वारा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि IBPS AFO है क्या। ये परीक्षा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर उनसे संबंधित छात्रों के लिए विशेष तौर पर ली जाती है और AFO का जो मुख्य काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है किसानों और कृषि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं देना, किसान के ऋण का मूल्यांकन करना, ग्रामीणों को वित्त सलाह देना और फिर किसानों को वित्त सलाह देना और साथ ही कृषि ऋण सहायता देना, ऐसे जो भी काम होते हैं यानी कि किसानों से जुड़े हुए बैंक में जो भी काम होते हैं वो एक AFO देखते हैं। और अगर हम बात करें कि AFO का नोटिफिकेशन कब आता है तो आमतौर पर AFO का नोटिफिकेशन जून से जुलाई के बीच आ जाता है। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक होता है वो 1 से 3 हफ्ते तक ये खुला रहता है। तो अगर हम बात करें आज

आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप जून या जुलाई में इस नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप IBPS AFO के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, डेयरी साइंस में हो सकती है, फिशरी में हो सकती है, फॉरेस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, अधिकतम आप 30 साल के होने चाहिए। और वहीं सरकारी नियमों के अनुसार OBC को अधिकतम वर्ष में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं ST या SC को 5 साल की छूट दी जाती है। और वहीं अगर आप पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो आमतौर पर IBPS के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और फिर कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो इस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और वहीं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। और आपको तीनों ही सेक्शन के लिए 40-40 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स के लिए ये 150 क्वेश्चन होते हैं। और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के आगे की बात करें, यानी कि मेंस के बारे में बात करें, तो मेंस का एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और ये भी ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में आपके जो पूछे जाते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूरी तरह से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के मार्क्स जो होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में काम आते हैं। और मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं। इंटरव्यू जैसे कि आमतौर पर होता है एक क्वालिफाइंग पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि फाइनल मेरिट जो आपका बनता है उसमें इंटरव्यू का 20% और मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है जो आमतौर पर बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि पजल्स होते हैं, सिटिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, DI, प्रॉफिट लॉस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है या कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग होता है, पैरा सिंबल्स होता है, जैसे बहुत ही बेसिक से जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मेंस में क्या पूछा जाता है, तो मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाती है आपकी एग्रीकल्चर की कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने एग्रीकल्चर के बारे में जितनी पढ़ाई की है वो तो काम आने ही वाली है, और साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है इस बारे में पूछा जाता है, सॉयल साइंस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आपने मन बना लिया है कि आपको IBPS AFO बनना है, तो इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और कब कैसे किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, कहाँ से किसकी तैयारी करनी है ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें या नोट कर लें। और साथ ही आप एक स्टडी प्लान भी बना लें कि आपको हर रोज़ आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं या फिर एक हफ्ते में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन तरीकों से
से आप अपना एक स्टडी प्लान बना लें और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम ज़रूर निर्धारित कर लें। आप एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के साथ या तो फिर इंग्लिश क्वांट के साथ जा सकते हैं। और साथ में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, उनसे

रिलेटेड जो भी नए रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, और अगर कोई नई योजना आई हुई है तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। और अभी तो हमारे पास सूचनाओं की, जानकारियों की बाढ़ है, और आप YouTube से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। और अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करें, रिविज़न करें, मॉक टेस्ट लगाएं। हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है, तो वीक एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जहाँ गलती हो रही है मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कहाँ ज़्यादा आप गलतियाँ कर रहे हैं। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको इसके लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी कृषि योजनाएँ आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आम तौर पर IBPS AFO का जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप रेगुलरली चेक करते रहें कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कहां से अप्लाई करना है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रखें। किसी भी एग्ज़ाम की या पोस्ट की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार उस पोस्ट से मिलने वाली सैलरी भी होती है। और अगर हम IBPS AFO की सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो होती है ना, वो 38,000 से 60,000 पर मंथ की हो सकती है। और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग की लोकेशन क्या है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन

0: आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
1: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
2: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
3: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाए।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम गिलहरी।

0: रमेश और सुधीर दो भाई थे। एक दिन वे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक सुधीर बोला,
1: भैया वो देखो गिलहरी।
0: ये कहकर सुधीर ने पत्थर उठा लिया। रमेश ने कहा,
2: नहीं नहीं पत्थर मत मारो, गिलहरी किसी को नहीं काटती, देखो कितने मजे से कुतर कुतर कर बेर खा रही है, कितनी प्यारी है, चलो उसके पास चले।

0: सुधीर बोला,
1: अरे ये तो पेड़ पर चढ़ गई।
0: रमेश ने कहा,
2: गिलहरी को फल बहुत अच्छे लगते हैं, इसे मूंगफली भी बहुत अच्छी लगती है। अगर इसे मूंगफली दे तो ये हमारे पास आ जाएगी।
0: सुधीर ने एक मूंगफली गिलहरी को दिखाकर फेंकी। गिलहरी बड़ी तेजी से नीचे उतरी। वो मूंगफली उठाकर पेड़ की डाल पर चढ़ गई और कुतर कुतर कर मूंगफली खाने लगी। रमेश बोला,
2: देखो गिलहरी के शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं, इसके बाल बड़े मुलायम होते हैं।
0: सुधीर ने कहा,
1: भैया ये गिलहरी बहुत सुंदर है, आओ इसे पकड़े, मैं इसे घर ले जाऊंगा।
0: रमेश बोला,
2: सुधीर गिलहरी बड़ी फुर्तीली होती है, इसे पकड़ना आसान काम नहीं, जरा सी आवाज होते ही ये पेड़ पर चढ़ जाती है।
0: सुधीर ने पूछा,
1: क्या गिलहरियां पेड़ पर रहती हैं?
0: रमेश ने उत्तर दिया,
2: हाँ गिलहरियां पेड़ पर ही रहती हैं, वही उनका घर होता है।
0: इतने में गिलहरी फिर पेड़ से उतरी। वो एक जगह रुक गई। अपनी चमकीली आंखों से वो दोनों भाइयों को देखने

0: लगी। सुधीर उसे पकड़ने दौड़ा। गिलहरी छोट से पेड़ पर चढ़ गई। सुधीर देखता ही रह गया।
1: गिलहरी अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्त लूद्रा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खट्टर। कलाकार अरिदमन शर्मा। बाल कलाकार राजेश और तेजस। ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सविता। तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें जल निकासी, गैप फिलिंग एवं

0: पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें। स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा, मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त

0: प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि,
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, और इस बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SK चौधरी सर। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद मैडम।
1: सर सबसे पहला प्रश्न यही है कि धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है?
4: धान में खरपतवार प्रबंधन क्यों जरूरी है, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं इसकी भूमिका के बारे में बताना चाहूँगा। जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग को पूरा करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। धान हमारे देश की प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 4,22,00,000 हेक्टेयर में की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 9 करोड़ टन तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा बिहार राज्य में इसकी खेती लगभग 31,00,000 हेक्टेयर में की जाती है तथा इसकी उपज 70,00,000 टन तक तथा उत्पादकता 22.45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो कि इसकी

0: क्षमता से काफी कम है। इसके कई कारण प्रमुख हैं, जैसे कि कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन, बीज की गुणवत्ता में कमी, और भी इसके अलावा जो खरपतवार का प्रबंधन की समस्या और गलत शस्य क्रियाएं, इस सब कारणों से जो औसत उपज है वो बिहार राज्य में कम है। धान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधि से धान की खेती को अपनाना होगा। हमारे देश तथा बिहार राज्य में मुख्यतः दो परिस्थितियों में धान की खेती की जाती है, पहला वर्षा आधारित और दूसरा संचित अवस्था में।
1: जी सर, अगर अब हम बात करें कि धान में अगर खर पतवार का प्रबंधन ना करें तो खर पतवार से किस प्रकार से हानि पहुँचता है हमारे धान के फसल को?
0: सबसे पहले तो खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल में उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसलों में खरपतवार से लगभग 15-85% तक का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% तक पहुंच जाता है। सीधे बोए गए धान में खरपतवार से नुकसान रोपाई किए गए धान की तुलना में अधिक होता है। पैदावार में कमी के साथ साथ खरपतवार धान में लगने वाले रोगों के जीवाणु एवं कीट व्याधियों का भी आश्रय देता है। कुछ खरपतवार के बीज धान के बीज के साथ मिलकर उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। इसके अतिरिक्त खरपतवार सीधे बोए गए धान में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन, 5 से 15 किलोग्राम स्फुर और 15 से 50 किलोग्राम पोटास तथा रोपाई वाले धान में 4 से 12 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम स्फुर और 7 से 14 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेता है तथा धान की फसल में पोषक तत्व से वंचित कर देता है और यह डायरेक्टली जो उपज है उसको कम कर देता है।
1: तो धान के फसलों में कौन कौन से प्रमुख खरपतवार हैं जो उगाते हैं?
0: मुख्यतः धान में या कोई भी फसल में तीन तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। पहला एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरा है सकरी पत्ती वाले खरपतवार और एक होता है मोथा कुल के खरपतवार। उसमें से जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसमें नाम है जो इक्लिप्टा अलवा जिसको कहते हैं, कैना भी नाम से जानते हैं, सिजुलिया एक्जेलरिस है, कोमेलिना बेंगेलसिस है, एजीटीटम कोनोजॉइट्स जो उस फैमिली का प्रजाति का जो घास है वो निकल आते हैं, और उस तरह से लाल साग को भी देखा गया है जो कभी कभी निकल आते हैं खरीफ मौसम धान के फसल में। इसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जिसको खास घास कुल के खरपतवार है, उसमें जो है छोटा सावक जिसको हम लोग इकाइनोकोलोना कोलोनम भी कहते हैं, उसके बाद एक सावक होता है जो इकाइनोकोलोना क्रुसिगेली होता है, इसके अलावा जो है मरुआ जिसको एलोसिन इंडिका, इसके अलावा एरगोटिस जेपोनिका जो मुरमुर नाम से जो खरपतवार है वो प्रायः सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। इसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार आते हैं उसमें से जो साइप्रस इरिया है, साइप्रस फैमिली के मुख्य खरपतवार आते हैं, जिसमें साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस डिफॉर्मिस जो कि स्केपरस मेरिसिमस इत्यादि, ये जो खरपतवार है वो मोथा कुल के खरपतवार होते हैं।
1: तो सर, कौन से स्टेज पे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं?
0: धान की फसल में खरपतवार से होने वाले नुकसान, खरपतवारों की संख्या, धान की किस्म एवं फसल से प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास के कुल के खरपतवार जैसे सावा, कोदो, फसल के प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि सिजुलिया जिसको थुकचट्टा भी कहते हैं, इसके अलावा जो साग के जो एमरेंथस होता है, वो सब जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो फसल के लेट मतलब कि देरी से निकलते हैं। इसके अलावा जो है धान में बुआई के लगभग 15 से 45 दिन तथा रोपाई वाले धान में रोपाई के 35 से 45 दिन के धान में बाद समय में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक या नाजुक दिन के बाद का समय खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए आते हैं। इस दिनों में खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल के उत्पादन में भी अधिक प्रभावित नहीं करता है।
1: तो अब बात करते हैं कि खरपतवार का प्रबंधन कैसे करना चाहिए।
0: खरपतवार का प्रबंधन बहुत तरह से करते हैं, जिसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवार को सही समय पर नियंत्रण किया जाना।

चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। धान की फसल में खरपतवार की रोकथाम निम्न तरीके से की जा सकती है। पहला है निवारक विधि। इस विधि में वो सस्य क्रियाएं हैं जिनके द्वारा धान की खेती में खरपतवार के प्रवेश को रोका जा सकता है, जैसे कि प्रमाणिक बीजों का प्रयोग करके, अच्छी सरी गोबर की खाद जो हम खेत को तैयारी करते समय देते हैं उसको अपना करके, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके, सिंचाइयों की नाली साफ सफाई करके, खेत की तैयारी एवं बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र की बुआई से पूर्व साफ सफाई करके। इसके अलावा जो है यांत्रिक विधि है, जो कि खरपतवार को पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। इस विधि में किसान अपने हाथ या खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। खेतों में हो चलाकर या पेडीवीडर चलाकर खरपतवार का रोकथाम करते हैं। समानता धान की खेती की फसल में दो निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद एवं दूसरी 40 से 45 दिन बाद करने से खरपतवारों को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है तथा फसलों की पैदावार में काफी वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा जो सस्य क्रिया विधि है उसमें भी परिवर्तन करके खरपतवार को आप अच्छी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा है बुआई से पूर्व खरपतवार को नष्ट करके, इसको स्टेल सीड बेड टेक्निक भी कहते हैं। इसमें कहते हैं खरीफ की पहली बारिश के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाए तो इसको शाकनाशी जैसे ग्लाइफोसेट पाराक्वाइट जो केमिकल जो शाकनाशी है उसके द्वारा स्प्रे करके, उसका एप्लीकेशन करके आप यांत्रिक विधि जोताई करके नष्ट कर सकते हैं, जिससे मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफ़ी कमी आती है। इसके अलावा जो है गहरी जुताई करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवार के बीज एवं उसके कंद ऊपर आ जाते हैं तथा तेज धूप में जलकर ऊपरी अंकुरण क्षमता खो देते हैं। इस विधि से कीट एवं बीमारियों का भी प्रकोप कम हो जाता है। रोपाई वाले खेत में पटलिंग करके खरपतवार की समस्या को कम किया जा सकता है। पटलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करके खेत में पानी भरकर लंबे समय तक खरपतवार को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किस्मों को चयन, जो सही चयन करके आप उसका भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर खरपतवार के रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो वहां पर ऐसी धान की किस्म का चुनाव करना चाहिए जिनकी प्रारंभिक बढ़ावार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियां खरपतवारों को आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उन्हें नीचे दबा सकें। प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई असिंचित उपजाऊ भूमि में धान का छिटकाव विधि से बोते हैं। छिटकाव विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई आती है। अतः धान को हम कतार में ही बोना लाभदायक होता है और उसमें खरपतवार की जो समस्या है वो छिटकाव विधि से कम होता है। इसके अलावा जो कतार की जो बीच की दूरी है उसको आप मेंटेन करके भी खरपतवार को अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें करते हैं धान की कतारों के बीच की दूरी कम रखते हैं, खरपतवार उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह बीज की मात्रा में वृद्धि करने से भी खरपतवार की संख्या एवं वृद्धि में कमी की जा सकती है। धान की कतारों को संकरा करने से लगभग 15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा देने से प्रयोग करने से खरपतवार को वृद्धि की दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र अपनाकर भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। एक ही फसल को बार बार एक खेत में उगाने से भी खरपतवार की समस्या और भी जटिल हो जाती है तथा उसका जो रख रखाव है, जो एक ही इकोलॉजी का जो खरपतवार है वो ज्यादा उगते हैं। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष एक ही खेत में एक ही फसल लेने की बजाय फसल के बाद उसमें दूसरी फसल जो पल्सेज है, ऑयल सीड है, अगर दूसरी कोई भी परिवार का फसल है उसको लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल का प्रबंधन करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। रोपाई किए गए धान में पानी की उचित प्रबंधन करके खरपतवार को रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद से 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक
समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग की

0: धान सीधे बोए धान की खेत में जब फसल 30 से 40 दिन का हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत की विपरीत दिशा में जुताई क्रॉस जुताई करके पाटा लगा देने से भी खरपतवार की रोकथाम की जा सकती है। उर्वरक का प्रयोग करके भी खरपतवार का प्रबंधन करते हैं। भूमि में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय के फसल एवं खरपतवार की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में नियत पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने से पोषक तत्व की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय एवं उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाता है। असिंचित उपजाऊ भूमि जहां खरपतवार समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा में बुआई समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान में की लाइनों के पास डालना चाहिए जिससे कि इसका ज्यादा भाग फसल को मिल सके।
1: जी सर, ये तो आपने बताया अलग अलग तरीकों से किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन धान की फसलों में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। सर, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि रासायनिक विधि से खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और इस विधि के दौरान कौन कौन से रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान भाई बहन।
0: निश्चित ही रासायनिक विधि बहुत ही कारगर, जितने भी विधि बताए उसमें सबसे ज्यादा कारगर रासायनिक विधि को माना जाता है। धान की फसल में खरपतवारों की रोकथाम की यांत्रिक विधियां तथा हाथ से निराई गुड़ाई यद्यपि काफी प्रभावी पाई गई है लेकिन विभिन्न कारणों से इसका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया है। इनमें से मुख्य कारण यह है कि धान के पौधे एवं स्वसमय खरपतवार जैसे जंगली धान एवं सावा के पौधे में पुष्प अवस्था के पहले काफी समानता पाई जाती है, इसलिए पहले साधारण किसान निराई गुड़ाई के समय आसानी से इनको पहचान नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी में विधियां आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा के क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता में कमी, खरीफ मौसम का असामान्य मौसम जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पाता है, अतः उपरोक्त परिस्थितियों में खरपतवार का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करने के समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना भी बनी रहती है। धान की फसल के प्रयोग की जाने वाली प्रमुख रासायनिक बहुत से हैं जिसमें कि जो हम शुरू के ही समय बताए थे जो धान में मुख्य तीन तरह के खरपतवार पाए जाती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और साथ ही साथ मोथा कुल के खरपतवार। उसको मारने के लिए चाहे उसका प्रबंधन करने के लिए निम्न रसायन का प्रयोग करना किसान के भाइयों के द्वारा उचित होता है, जिसमें से सबसे पहला है ब्यूटाक्लोर जो कि बहुत अच्छी दवाई है जिसको मिचेट नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग बुआई एवं रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद करना अति आवश्यक है। ये लगभग में इसका जो मात्रा है वो कम से कम 1.5 से 2 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए जो कि सिर्फ घास कुल के खरपतवार को ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो है एलिलोफॉस एलिलोगार्ड जिसका मात्रा जो है 400 से 500 सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, ये भी प्री इमरजेंस जो है उसके लिए उपयोग करते हैं, वो भी बुआई के 2-3 से 4 दिन के बाद ही उसको देना लाभदायक है। ये भी घास एवं मोथा कुल के खरपतवार के लिए कारगर है। इसके अलावा जो है विस्पेरीबैग सोडियम नाम का एक दवा है जो कि इसका जो 10% इसी की मात्रा पाया जाता है जो कि लगभग में 250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से इसका दर होता है और ये 25 से 30 दिन के बाद देना उपयुक्त होता है। ये चौड़ी पत्ती एवं घास कुल के खरपतवार के लिए कारगर होता है। इसके अलावा जो है एक ऑक्सीडाइजोन जो है कम से कम 750 से 1500 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर की दर से है जो कि घास और मोथा और चौड़ी पत्ती तीनों के लिए ये बहुत ही कारगर दवा है। इसके अलावा किसान भाइयों जो नर्सरी लगाते हैं उसमें भी बहुत से खरपतवार का प्रकोप रहता है, उसमें भी ये दवा जो है वो कारगर है, जैसे कि पेट्राक्लोर जो कि 50% इसी का मात्रा पाया जाता है जिसका डोज है 750 ml से 1000 ml AI प्रति हेक्टेयर। या घास मोथ

0: चोरी पत्ती कुल के खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है, जो कि आप इसको धान के नर्सरी में भी और जब रोपा करते हैं उस समय भी देना बहुत ही लाभदायक है। जो कि एक और भी दवा है जो चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जो कि 240 जो 240 नाम का एक दवा है, जिसका जो डोज है आधा लीटर से एक लीटर ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से है। रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद देना कारगर पाया गया है और ये सिर्फ चोरी पत्ती के खरपतवार के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा जो है बहुत से दवा है, जैसे ऑल मिक्स जो दो हर्बिसाइड दो शाकनाशियों का कम्बिनेशन है, जिसमें क्लोरोमिरोन और मेटसल्फिरोन है, ऑल मिक्स करके आता है, वो 4 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से पाया जाता है, जिसमें कि चोरी पत्ती मोथा कुल के खरपतवार के कारगर है। जिन किसान भाइयों को चोरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को मारना है, उसमें इथॉक्सी सल्फिरोन सनराइज के नाम से है, जो कि 100 ml प्रति AI प्रति हेक्टेयर के दर से है, जिसमें चोरी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार को खत्म करते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई सिर्फ मोथा को ही मारना है, उसमें है एजीम सल्फिरोन नाम का एक है, जिसमें 50 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के दर से देते हैं, जो कि सिर्फ मोथा के ही घास जो कुल है उसको ये कारगर होता है। इसके अलावा जो भी और भी जो खरपतवार है, इतना अगर कोई भी अगर शाकनाशी अवेलेबल है उपलब्ध है, उसमें कोई भी खरपतवार नाशी अगर आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको जो रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन में सहायता मिल सकता है।
1: जी सर, सर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश यही है, जो अगर आपके खेत में खरपतवार से संबंधित कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले तो उसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है, उसके उपरांत ही आप कोई भी जो उसका उपाय है उसका आप उपयोग करें, नहीं तो लाभ के बदला हानि ही हो सकता है। और साथ साथ पहले आप उसकी पहचान करें, उसके बाद ही उस शाकनाशियों को उसके जो अगेंस्ट जो उसमें काम करे उसका प्रयोग करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे किसान भाई बहनों, जिस तरीके से सर ने बताया उन तरीकों को अपनाकर आप धान की फसलों में खरपतवार का प्रतिबंधन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि

19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 70 प्रतिशत रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रवि फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रवि फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रवि फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी की ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 सेंटीमीटर आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्कासू।

रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: prší. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अल्प उपयोगी सब्जी के बारे में जो स्वाद पोषण और स्वास्थ्य के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है, यानी कि बहुत अच्छी संभावना है आय बढ़ाने में। इस फसल का नाम है गार्लिक चाइव। किसान भाइयों, आज के समय में खेती के सामने कई सारी चुनौतियां आती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, तापमान में भी अक्सर आप देखते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, पानी की कमी तो बहुत बड़ी समस्या है, और खेती की बढ़ती लागत, बाजार में अच्छी कीमत वाली फसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। और ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कम क्षेत्र में उगाई जा सकती है और बार बार उपजते, पोषण से भरपूर हो और बदलती जलवायु में भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर सके। और गार्लिक चाइव एक ऐसी ही संभावनाशील फसल है, और इसके बारे में यानी कि गार्लिक चाइव के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर राजकुमारी आशा देवी से। मैम, आप हैं सब्जी विज्ञान विभाग से, BAU सबौर से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। ये आज के श्रोताओं के लिए, जैसे किसान भाइयों बहनों, आपके लिए एक नया क्रॉप है। आपने पहली बार सुना होगा इस गार्लिक चाइव के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम ट्यूबरोसम, और यह प्याज और लहसुन वाले कुल जैसे एमिलडेसी, इसकी एक महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सब्जी है। इसकी हम लोग देखा जाए तो पत्तियां इसकी लंबी होती है, पतली होती है और हरी होती है, जिस तरह से लहसुन और प्याज का होता है। बट इसमें क्या होता है, ये हम लोग बार बार इसको काट कर हम लोग खाया जा सकता है, और इसका सुगंध एकदम से लहसुन की तरह लगता है, जिसके वजह से इसको

0: कर्नाटिक चाय बोला गया है। इसको हम लोग तड़के पे खाते हैं, आलू चोखा में आप डाल सकते हो, सूप में डाल सकते हो, चटनी बना सकते हो, नूडल्स वगैरह में, यानी कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी पत्तियों की कटाई के बाद पौधे पुनः बढ़ते हैं, तो इसीलिए उचित प्रबंधन के साथ एक ही खेत से कई बार हरी पत्तियों की उपज प्राप्त की जा सकती है।
1: जी मैम, अगर हम पोषण की दृष्टि से बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
0: जी बिल्कुल उमा। तो और देखा जाए कि आज उपभोक्ता केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं चाहता, बल्कि ऐसा भोजन चाहता है जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो। इसी कारण पोषण युक्त सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो इनमें से जो गार्लिक चाइफ है, इसकी जो हरी पत्तियां है, इसमें विभिन्न विटामिन, खनिज तत्व, आहार फाइबर तथा जीव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा पे उपलब्ध है, कैरोटीनॉइड्स तथा विभिन्न सल्फर भी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं, जिससे हम लोग देखा जाए कि लहसुन के पत्तियों से भी ज़्यादा इसमें मात्रा पाया जाता है।
1: जी, और अगर हम बिहार के दृष्टि से बात करें तो ये बिहार के लिए कितना उपयोगी हो सकता है?
0: बिहार में सब्जी उत्पादन की अच्छी संभावना है, ये सब हम सब जानते हैं। यह छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में है, और कम क्षेत्र में अधिक मूल्य प्राप्त करने वाली फसलों की आवश्यकता रहती है। तो गार्लिक चाइफ को खेत के साथ साथ हम लोग किचन गार्डन, पोषण वाटिका और छोटे व्यावसायिक प्लॉट में भी उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ताजी, विशिष्ट और स्वस्थ वर्धक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। यदि किसान स्थानीय बाजार, होटल, रेस्टोरेंट और प्रत्यक्ष उपभोक्ता बाजार से जुड़ते हैं, जैसे कि हम लोग बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से विशेष सब्जियों से अतिरिक्त आय प्राप्त करने की संभावना बन सकती है।
1: और मैम, हमने जलवायु अनुकूल के बारे में भी बात की, तो जलवायु अनुकूल कितना है गार्लिक चाय?
0: जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें केवल अधिक उत्पादन देने वाली फसलों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जलवायु सहिष्णु और विविधीकृत फसल प्रणालियों को अपनाना चाहिए। गार्लिक चाय अपेक्षाकृत मजबूत फसल है और उचित संभव प्रबंध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जा सकती है। इसकी बार बार पत्तियों की कटाई की क्षमता किसान के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकती है। हालांकि देखा जाता है कि किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी फसल की सफलता के लिए सही किस्म, उपयुक्त मौसम, मिट्टी, सिंचाई, पोषण और स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए बिहार के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसके वैज्ञानिक परीक्षण और स्थानीय उत्पादन तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी दिशा में हमारे BAU सबौर में भी इसका शोध शुरू हो चुका है।
1: जी मैम, अब हम इसकी खेती की बात करते हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बहन गार्लिक चाय की खेती करते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: अगर देखिए, जैसे कि गार्लिक चाय है, इसके लिए हम लोग को अच्छी जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त रहती है। खेत में पानी का लंबे समय तक जमाव नहीं रहना चाहिए। जैविक खाद या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग मिट्टी का संरचना और उर्वरता सुधारने में सहायक हो सकता है। पौधों की स्थापना के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी के बाद उचित दूरी पर पौधे को स्थापना करनी चाहिए। जैसे हमको पता है कि इसमें क्लोव नहीं बनता है, तो इसका होता है नीचे का जो एक राइजोम रूट्स होता है, उसको हम लोग कट करके लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लम्प। तो इससे हम लोग लगाते हैं 15-10 की दूरी में। तो सिंचाई आवश्यकता के अनुसार हम लोग को करनी चाहिए इसमें, और खेत में अधिकतम पानी जमा नहीं होना देना चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण, संतुलित पोषण और रोग कीट की नियमित निगरानी आवश्यक है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही और अनुचित मात्रा में ही करना चाहिए, जबकि इस फसल में पाया गया कि बहुत ही कम किसी कीटाणु या कोई बीमारी का प्रभाव पड़ता है।
1: जी मैम, आजकल हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई बहन और हम लोग भी जैविक और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं और जैविक खेती को ही अपनाना चाहते हैं, तो गार्लिक चाय में जैविक और प्राकृतिक संसाधन

0: दोनों का उपयोग किस हद तक किया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल। आज किसान खेती की लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में भी सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो गार्लिक चाइव की खेती में हम लोग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक और अन्य जैविक स्रोतों के समन्वित उपयोग पर ध्यान दिया जा सकता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पोषण तत्व की उपलब्धता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित कराने में भी मदद मिल सकती है।
0: जी मैम, अगर हम हमारे किसान भाई बहन आमदनी बढ़ाना चाहें गार्लिक गार्लिक गार्लिक चाइव की खेती की मदद से, तो क्या मूल्य संवर्धन भी किया जा सकता है?
1: देखिए किसान भाइयों, केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है कि हम उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें। तो गार्लिक चाइव की ताजी पत्तियों को साफ करके छोटे पैकेटों में बाजार में बेचा जा सकता है और इसको हम लोग अलग दूसरे देश में भी भेज सकते हैं। तो स्थानीय मांग, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, इसमें अधिकतम इसका मांग ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर अन्य राज्यों से भी लोग रहते हैं और वहां पर इसकी डिमांड जो होता है वो ज्यादा रहता है। तो इसके अनुसार हम लोग इसको उपयोग मसाला मिश्रण, सूखी पत्तियों या अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों में भी इसको किया जा सकता है। इससे किसान, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे उद्यमी मिलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर पैदा कर सकते हैं। और इसको हम लोग इसी में ही नहीं, पोषण वाटिका में भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। गार्लिक चाइव केवल व्यवसाय किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के लिए उपयोगी है, हो सकता है। इसको हम लोग घर की पोषण वाटिका में लगाया जा सकता है। थोड़ी सी जगह में इसे उगाकर परिवार को ताजी हरी पत्तियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे भोजन में विविधता आती है और परिवार के आहार में भी हरी सब्जियां की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
0: जी मैम, तो क्या गार्लिक चाइव में अभी भी अनुसंधान की जरूरत है?
1: बिल्कुल, गार्लिक चाइव को बिहार में एक संभावनाशील अल्प उपयोगी सब्जी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसके विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारे बीएयू साबौर में इसकी शोध शुरू हो चुका है, जिससे बिहार के अलग अलग कृषि जलवायु परिस्थितियों में इसकी किस्मों की मूल्यांकन, रोपण समय, पौध दूरी, सिंचाई, पोषण प्रबंधन, मल्चिंग, जैव उर्वरक, जैविक खाद को तथा कटाई प्रबंधन पर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इसके पोषण गुणवत्ता, बाजार मांग, उत्पादन लागत, लाभ लागत अनुपात और उपभोक्ता पसंद का भी हम लोग अध्ययन शुरू किया गया है।
0: जी मैम, मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी मेरे किसान भाइयों और बहनों, खेती में सफलता केवल परंपरागत फसलों से ही संभव नहीं है। समय की मांग है कि हम फसल विविधीकरण को अपनाएं और बाजार तथा पोषण की मांग के अनुरूप नई एवं अल्प उपयोगी फसलों को अपनी खेती में स्थान दें। गार्लिक चाय ऐसी ही एक फसल है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अतिरिक्त आय, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी नई फसल को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले किसान भाई स्थानीय स्तर पर छोटे क्षेत्र में इसका परीक्षण करें, बाजार की मांग को समझे और कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग की सलाह जरूर ले।
0: जी मैम, तो किसान भाई बहन जैसे कि मैम ने कहा, बाजार की मांग को समझना चाहिए और जो नई फसल है उसमें भी आपको चाहिए कि आप बिल्कुल शोध करें, यानी कि नई फसल, नई सोच और नया बाजार, यही भविष्य की टिकाऊ खेती का आधार है। गार्लिक चाय जो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, जैसे अल्प उपयोगी गार्लिक चाइव जैसी अल्प उपयोगी सब्जी फसलें हमारे खेतों में विविधता ला सकती है, हमारे भोजन को अधिक पौष्टिक बना सकती है और किसानों के आय के लिए नए अवसर खोल सकती है। आइए हम ऐसी फसल को बढ़ावा दें जो पोषण से भरपूर हो, बदलती जलवायु के अनुकूल हो और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बने। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हमारे किसान भाई बहनों को एक नई फसल के बारे में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: धन्यवाद उमा, मुझे भी आपने ये अवसर दिया है।
0: जी मैम। तो किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
9: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद
10: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है

0: क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके

0: माध्यम से एचएस, बीक्यू, एफएमडी, एंथ्रेक्स, पीपीआर एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिससे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही

0: जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
5: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
4: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
6: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
4: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
7: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
4: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
8: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
4: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
9: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
10: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
2: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम, किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं उन पशुपालक भाई बहनों के बारे में जो इस बात से परेशान होंगे कि जब उनके फार्म से बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं उसका किस तरीके से वो प्रबंधन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से वो उसका उपयोग कर सकते हैं और उससे भी वो मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं हम डॉक्टर ज्योति माला साहू से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पशु अपशिष्ट प्रबंधन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है।
1: देखिए, पशु अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है पशुओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट, जैसे गोबर, गौमूत्र, बिछावन की सामग्री और अन्य जैविक अवशेषों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से संग्रह करना, भंडारण करना, उनका उपयोग करना और निपटान करना, यह पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशुशाला स्वच्छ रहती है,

0: और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोगों का खतरा कम होगा, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हम जैविक खाद बनाने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे खेती की लागत कम होगी और पशुपालकों की अतिरिक्त आय भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ की दृष्टियों से ये अत्यंत आवश्यक है।
1: जी मैम, अगर उचित प्रबंधन ना किया जाए तो क्या ये पर्यावरण पर प्रभाव डालता है?
0: देखिए, उचित प्रबंधन ना करने पर इसका पर्यावरण पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके साथ ही साथ मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि खुले में पड़ा हुआ पशु अपशिष्ट जो होते हैं वो दुर्गंध फैलाते हैं, मक्खियाँ, मच्छर और अन्य रोगकारक जीवों को वो उनकी संख्या को बढ़ावा देते हैं। इससे मानव में डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा होता है। साथ ही साथ पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, और खास करके इस मौसम में जो अभी चल रहा है बारिश का मौसम, तो वर्षा के दौरान क्या होता है कि पशु अपशिष्ट जल स्रोतों में मिलकर पानी को प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और खुले में इस तरह से अगर अपशिष्ट हैं तो उनके सड़ने से मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि वायु का प्रदूषण करती है और जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए अगर पशु अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह, उपचार और उपयोग किया जाता है तो हम जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, इन पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और इससे मीथेन जैसी हानिकारक गैसें का उत्सर्जन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इसके उपयोग से, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि LPG सिलेंडर का क्राइसिस है, तो इनके उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता कम हो सकती है, और इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करके हम रासायनिक उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है उनको कम कर सकते हैं।
1: तो मैम, प्रबंधन के कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके हैं?
0: देखिए, जो भी पशुपालक भाई बहन है वो गोबर को खुले में ना फेंकने के बजाय अगर इन्हें गड्ढों में या इकाइयों में डालकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर सकते हैं, है ना। इसमें आता है कंपोस्टिंग, जिसमें गोबर एवं अन्य पशु अपशिष्ट को नियंत्रित परिस्थितियों में सड़ाकर खाद बनाई जाती है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें केचुओं की सहायता से, इसमें एक विशिष्ट प्रजाति का केचुआ आता है जो लाल रंग का होता है, इसे एसिना फेटिरा कहते हैं। तो इनकी सहायता से गोबर या अपशिष्ट को विघटित किया जा सकता है। तीसरी वैज्ञानिक विधि है गोबर को बायोगैस संयंत्र में डालकर उससे मीथेन उत्पन्न करना, और इस मीथेन का उपयोग हम खाना बनाने में या बिजली उत्पादन करने में कर सकते हैं। इस बायोगैस संयंत्र से निकलती है स्लरी, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट खेत में कर सकते हैं, और स्लरी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसके अलावा गौमूत्र को अलग से एकत्र करके जैविक तरल खाद, जिसे जीवामृत कहते हैं, वो बनाया जा सकता है, जो कि जैव कीटनाशक, एक अच्छा जैव कीटनाशक है। इसके अलावा डेयरी फार्म से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उनका उपचार किया जा सकता है, तो इसके लिए सेटलिंग टैंक बिठा सकते हैं, ऑक्सीकरण पॉन्ड बना सकते हैं और बायोफिल्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो पानी का उपचार कर सकते हैं और इन उपचारित पानी को पुनः सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे गोबर हैं, उनके गोबर के कंडे बनाए जा सकते हैं, और एक महत्वपूर्ण है बायोचार, इसको बनाया जा सकता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोगी है।
1: मैम, बायोचार क्या होता है?
0: देखिए, बायोचार एक ठोस पदार्थ है जो कि कार्बन से परिपूर्ण होता है। यह गोबर, फसल अवशेष, लकड़ी के टुकड़े, पत्तियां और अन्य जैविक पदार्थों को एक सीमित ऑक्सीजन में, या कह लो कि कम हवा में, गर्म करके बनाया जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पायरोलिसिस। अब ये सारे अवशेषों को भट्टी में डाला जाता है, जिसका तापमान होता है 300 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो जैविक पदार्थ होते हैं वो पूरी तरह जलने के बजाय कार्बन युक्त बायोचार में बदल जाती है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं। तो यह मिट्टी में लंबे समय तक रहता है और यह पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखता है।

0: और साथ ही साथ यह सूक्ष्म जीवों के लिए भी एक अच्छा वातावरण तैयार करता है और यह बायोचार खास करके अम्लीय मिट्टी के सुधार में सहायक होते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी बहुत लाभदायक है। ये
1: मैम, बायोगैस संयंत्र के लिए कितना गोबर लगता है और गैस कितना बनता है और लागत कितनी होती है इसकी?
0: देखिए, बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर की जो मात्रा होती है वो संयंत्र के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र के लिए प्रतिदिन लगभग 25 से 30 किलोग्राम ताज़ा गोबर और उतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह गोबर लगभग 1 से 2 गाय या भैंस से आसानी से मिल जाता है और इसी प्रकार अगर 2 घन मीटर का संयंत्र हो तो लगभग 50 से 60 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन हमें चाहिए होगा। अब उत्पादन की बात करें तो 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र से प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 घन मीटर गैस बनती है जो कि लगभग 1 LPG सिलेंडर के एक हिस्से के बराबर ऊर्जा देती है। तो उसी तरह से हिसाब लगा लेंगे कि अगर 2 से 3 घन मीटर संयंत्र है तो यह होगा कि एक परिवार के एक दैनिक खाना बनाने की ज़रूरत को वो पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं कि समय की, तो कितना समय लगता है अगर एक बार बायोगैस संयंत्र बैठा दिए तो संयंत्र को चालू करने के बाद गैस बनने में लगभग 30 से 45 दिन लगते हैं क्योंकि गोबर को सड़ा कर उनका गैस बनाना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। और इसके बाद प्रतिदिन गैस बनती रहती है अगर गोबर और पानी की सही मात्रा उसमें डाली जाए तो। अब लागत की अगर हम बात करें तो एक घरेलू संयंत्र से लागत लगभग 25,000 से 60,000 रुपये तक हो सकती है और बड़े संयंत्र की लागत उससे अधिक हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई योजनाएं हैं तो उनसे सब्सिडी भी मिल सकती है जिससे वास्तविक खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि हर महीने LPG गैस पर जो होने वाला खर्च है वो बच जाता है और साथ ही साथ जैविक खाद भी मिल जाती है जिससे खेती का खर्च भी कम हो जाता है।
1: जी मैम, तो क्या इस क्षेत्र में सरकार की भी कोई योजनाएं हैं और क्या कोई ऐसी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है हमारे पशुपालक भाई बहन को?
0: जी हाँ, पशु अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार सहायता प्रदान कर रही है। बिहार राज्य की बात करें तो पहले योजनाएं थी बायोगैस संयंत्र बैठाने के लिए, पर अभी फिलहाल ये योजना बिहार सरकार में नहीं है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, इसके तहत ये योजना है जो बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए सहायता देती है। इसके अलावा गोबरधन स्कीम के माध्यम से गोबर और जैविक कचरे को धन में बदलने, बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन विभाग समय समय पर प्रशिक्षण दे रही है, जागरूकता कार्यक्रम और तकनीकी परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। तो पशुपालकों को मैं सलाह देना चाहूँगी कि वे अपने जिले के पशुपालन विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और उनसे होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो मैम, क्या पशु अपशिष्ट का खाद और ईंधन के अलावा भी किसी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है?
0: जी हाँ, बायोगैस के अलावा पशु अपशिष्ट से कई और लाभकारी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। बाजार में हाल ही में कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की काफी अच्छी मांग है और इसके अलावा गोबर से गोबर के उपले, दिए, अगरबत्ती और प्राकृतिक पेड़ जैसी कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। और आजकल गोबर आधारित जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन में इनके मांग में काफ़ी तेज़ी बढ़ रही है जिससे किसान सीधे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकता है। तो इस प्रकार पशु अपशिष्ट को केवल कचरा ना मानकर अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है।
1: अंत में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं पशुपालकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि वे वैज्ञानिक विधि का उपयोग करें।
1: तो पशुपालक भाई बहन, जो भी आपके एनिमल फार्म से वेस्ट आता है उसका आप उपयोग करें, सदउपयोग करें और इससे न केवल आपको फायदा होगा बल्कि पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित BP जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर,
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर

में 60-70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3-7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहाँ पौधों की संख्या पर्याप्त है वहाँ फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकाल लें और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350-400 ग्राम बीज और 20-25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे, साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60-80 किलोग्राम फास्फोरस, 40-60 किलोग्राम पोटाश और 10-15 किलोग्राम बोरेक्स और 1-2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अर्का श्वेता, कोण कंकृति, अर्का मेघना, अर्का हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800-1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250-300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25-30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-50 किलोग्राम फास्फोरस और 40-50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300-350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7-10 cm की दूरी पर 10-15 cm ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20-25 cm ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर ले। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, CO7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, पशुओं में PPR, FMD यानी कि खुरपका, मुंह पका और HS यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। अगर किसी पशु में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बिना जरूरत के आवाजाही पर नियंत्रण रखें। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए इस महीने में

टीके जरूर लगवा दे। पशुओं को संतुलित एवं पौष्टिक आहार दे। पशुपालक भाई बहन लंपी रोग से बचाव के लिए पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हां, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लेम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत

0: ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए। तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए। उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके अलावा इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं, तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हम आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बा
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर, खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहा है तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि।
9: किसान भाइयों, वैसे तो सब्जियां खाना हर किसी को पसंद रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, गोभी हो, टमाटर हो, हर किसी के अलग अलग फायदे हैं। यानी कि इस देश की पूरी जनता के लिए आप उगाते हैं इतने मेहनत से, कैसे इसे उगाते हैं उनके तरीकों के बारे में भी हमें जानने की जागरूकता रहती है। वैसे तो मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियां

0: जो है जैसे कि गोभी और भी बहुत सारे जो सब्जियां हैं उसे खाने का अलग ही मज़ा होता है। लेकिन अगर बेमौसम, अगर यानी कि जब मौसम होती है गोभी की उस समय नहीं, उसके अलग दूसरे मौसम में अगर हम उस सब्जियों को खाते हैं तो उसका अलग आनंद होता है। तो वैसे तो हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान जो हैं, इन सब्जियों को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आज उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। और आज हम जानेंगे कि क्या है बेमौसमी सब्जियां और इन्हें किस तरीके से उगाया जाता है। तो आज का विषय है हमारा बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे करें। तो ज़रूर उत्पादन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आर बी वर्मा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में और साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेमौसमी सब्जियां क्या होती हैं?
1: देखिए, सब्जी उगाने के लिए जनरली हम लोगों ने मौसम को बांट रखा है, जाड़ा, गर्मी और बरसात, और इसी के अनुसार जो है हम सब्जियां उगाते हैं। जाड़े की सब्जी जाड़े में, बरसात की सब्जी बरसात में, और गर्मी की सब्जी गर्मी में उगाते हैं। परंतु बेमौसमी सब्जियों का मतलब होता है जो गर्मी का सीजन हो तो हम गर्मी की सब्जी ना उगा करके हम जाड़े की सब्जी उगा लें, बरसात की सब्जी उगा लें, तो ये होती है बेमौसमी सब्जियां। जाड़े का सीजन है तो गर्मी की सब्जी उगा लें, बरसात का सीजन है तो जाड़े गर्मी दोनों उगा लें। तो जो अपने सीजन से हटके अगर हम कोई चीज उगाते हैं तो उसका जो है अलग बेनिफिट होता है। मेन सीजन में सारी सब्जियों का ग्लट हो जाता, जो एक सब्जी आप उगाते हैं उस एक सब्जी का जो है ग्लट हो जाता उस सीजन में, और ज़्यादा भरमार होने के नाते जो है उसकी प्राइस आपकी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसान उसको जो है जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए बेमौसमी सब्जी का मतलब होता है कि जो आपकी मेन सब्जी का सीजन है उस सीजन को छोड़ करके अन्य सीजन में हम जो सब्जी को उगाते हैं हम उसी को कहते हैं कि बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन।
0: जी डॉक्टर साहब, हम जाते हैं बाज़ार सब्जियों को खरीदने के लिए तो देखते हैं जैसे कि बेमौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके दाम कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिस मौसम में उन्हें उगने चाहिए उस मौसम में खरीदने जाते हैं तो दाम लगभग ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जब बेमौसम जाते हैं हम उन्हें खरीदने के लिए तो दाम कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे किसान भाई बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके।
1: बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं बेमौसमी सब्जियाँ क्या हैं, और इसके बाद जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत, हमारे किसान भाइयों को इसके उत्पादन की ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज भारत जो है विश्व में चीन के बाद जो है दूसरा सब्जी उत्पादक देश है।
0: जी,
1: इसके दूसरा सब्जी उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो है इसकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता युक्त सब्जियों का उत्पादन में अभी हम पीछे हैं, और देश की बढ़ती हुई भयावह जनसंख्या, भी आप समझ रहे हैं कि 132 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की हो गई है।
0: जी, जी।
1: इनके सब्जी की खपत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो सीमित संसाधन है, हमारी खेती का जो है आंकड़ा जो है सिकुड़ रहा है, हमारे सारे संसाधन जहां सिकुड़ रहे हैं वहां, और एक तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सीमित संसाधन में जो है हमें सारी सब्जियों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसके लिए हमें किसी न किसी विकल्प की तलाश करनी पड़ेगी। वो विकल्प है बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। मेन सीजन में होता क्या है, जब मुख्य मौसम में सब्जी हम उगाते हैं तो बाजार में सब्जी एक ही सब्जी की भरमार हो जाती है।
0: जी, जी।
1: और जब एक सब्जी की भरमार हो जाती है तो किसान
0: प्राइस कम,
1: हाँ, उसका प्राइस जो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसान भाई जो अपना प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं कभी कभी वो बिना बेचे हुए छोड़ के चले जाते हैं।
0: हाँ।
1: कभी कभी ऐसा भी समझते हैं कि हम लेके जाएंगे तो हमारी लागत उससे ज्यादा हो जाएगी जो है, इसलिए वो छोड़ के ही चले जाते हैं। लेकिन वही सब्जी जो थोड़ी सी बेमौसम में आप उगा लेते हैं, अभी छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता, जैसे कॉलीफ्लावर फूल गोभी है।
0: जी जी।
1: फूल गोभी को आप थोड़ा सा अगर आगेती कर लेते हैं
0: पहले,
1: तो ये हाँ थोड़ा सा अगर पहले कर लेते हैं, मौसम से थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि 50-60 रुपए गोभी बिक जाती है।
0: हाँ, यानी कि उसके मौसम आने से हाँ, थोड़े महीने
1: थोड़ा
0: पहले,
1: सा पहले आपने कर लिया तो भी आपको जो उसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर मेन सीजन में, मुख्य सीजन में जब वो सब्जी जाती है तो हमारी वहाँ एक ही सब्जी की एक ही बाजार में भरमार हो जाती है और उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो ये जरूरी आज के परिवेश में हमारे पास विकल्प है कि हम बेमौसमी सब्जियों की खेती को अपनाएं और बेमौसमी सब्जियों की खेती अपनाने का तरीका एक संरक्षित खेती भी है।

0: संरक्षित खेती की तरफ हमको जाने की जरूरत है, और इसी यही एक माध्यम है जिससे हम उनके जो है आवश्यकता को, जो हमारे आजकल जो है प्रति व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिकमेंडेशन है उसमें 300 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को चाहिए, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास अभी भी केवल 145 ग्राम सब्जी उपलब्ध है प्रतिदिन पर डे पर कैपिटा। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है, और वो है एक तरह से संरक्षित खेती या बेमौसमी सब्जियों की खेती। इस पे जाना हमारा जो है वो ज्यादा उपयुक्त है और करनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी बात करते हैं बेमौसमी सब्जियों की, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भरा काम भी हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अलग अलग सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु अलग अलग होती है, उसके लिए टेम्परेचर अलग अलग होती है, मिट्टी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु उस समय उपयुक्त जलवायु जो है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उस बेमौसमी सब्जियों के लिए। तो उस समय हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जो हमारे किसान भाई हैं वो किन किन और बाधाओं को झेलते हैं।
0: बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि सब्जियां सब सीजन बेस्ड होती हैं। गर्मी के समय में गर्मी की सब्जियां, जाड़े में जाड़े की सब्जियां, और बरसात में बरसात की सब्जियां ही उगा सकते हैं। और अभी आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप बेमौसमी सब्जियां उगाने जा रहे हैं, यानी उसका जो उपयुक्त टाइम है ग्रोथ के लिए या उसकी बढ़वार के लिए या फल लगने के लिए या उसके अस्थायित्व के लिए जो भी उपयुक्त वातावरण चाहिए वो वातावरण उस समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको उगाने जा रहे हैं, बेमौसम में उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही बेमौसम में नहीं हो जाए, बेमौसम में सब्जियों उगाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ न कुछ तकनीकी अडाप्ट करनी पड़ेगी, और वो तकनीकी एक तरह से जो आपका जो है संरक्षित खेती की तरफ ले जाती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ ले जाती है। और वो तकनीकी अपना करके जिसमें हम करते क्या है, जो हमारा बाहर का वातावरण है, बाहर के वातावरण में हम बाहर के वातावरण के अनुसार ही सब्जियां उगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जब हम वो स्ट्रक्चर बना लेंगे संरक्षित खेती का, जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लें बेमौसमी सब्जियों का, एक अलग से स्ट्रक्चर जब तैयार कर लेंगे तो उसमें हमारे अनुकूल, अब तक हम जो है इन्वायरमेंट के ऊपर या वातावरण के ऊपर जो है आधारित हैं, जैसा वो चाहता है वातावरण, जैसा हमको प्रोवाइड करता है वैसे हम सब्जी उगाते हैं। लेकिन अभी जब संरक्षित खेती की तरफ अगर जाते हैं, बेमौसमी सब्जियों खेती की तरफ जाते हैं, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसमें हम वातावरण को पूरी तरह से अपने बस में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, और हम जैसा
1: चैलेंजिंग हो जाता है,
0: चैलेंजिंग होता है, और जैसा हम चाहते हैं वातावरण को वैसे ही काम करना पड़ता है, और उस तरह की हम सब्जी तब हम उगा पाते हैं। तो ये चैलेंजेज है, इसके साथ हमारे जो है स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर, संरक्षित खेती के अंदर जो है हमारे तमाम स्ट्रक्चर, जैसे एक बोलते हैं उसको जो है हाई टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो होता है, हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें इन्वायरमेंट को हम क्या करते हैं, वातावरण को क्या करते हैं, हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: एकदम जैसे हम लोग ने यहाँ एसी में कंट्रोल कर रखा है वैसे वातावरण को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, और जिस क्रॉप के लिए, जमने के लिए कितना जलवायु चाहिए, बढ़ने के लिए क्या जलवायु चाहिए, उसके लिए फूल आने के लिए क्या चाहिए तापमान चाहिए, या फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, राइपेनिंग के लिए, मतलब हर एक अवस्था के लिए क्या क्या उसका तापमान चाहिए, वो सारा चीज हम उस सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराते हैं जब उसको आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी होता है, एक होता है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आधा सिस्टम हम जो, चूंकि इस तरह पहले वाले सिस्टम में जो फुली ऑटोमेटेड होता है, तो वो फुली ऑटोमेटेड यानी पूर्ण रूप से मशीन द्वारा संचालित होता है, तो उसमें क्या होता है हमारी लागत जो है बहुत ज्यादा
1: होती है,
0: तो ये हर किसान भाई उसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ किसान भाई उसको एफर्ट कर सकते हैं, तो उसको एफर्ट मतलब उसको एडाप्ट करें, जो किसान भाई उसको एडाप्ट नहीं कर सकते हैं, एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इस स्थिति में नहीं कि उसको लगा सकें, तो दूसरा भी स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम। सेमी इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत हम जो है उसकी जो मशीनरी होती है, जितना इन्वायरमेंट कंट्रोल करने वाली, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने वाली, और जो कूलिंग, हाँ ये सब जो कास्टली स्ट्रक्चर है हम उसको, ऑटोमेटिक सिस्टम वाले जितने स्ट्रक्चर है हम उसको हटा देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो उसको हटा देने से क्या होता है कि हमारी उसकी कास्ट जो है 50% जो है
1: लो हो जाती है।
0: तो जो किसान भाई 50% लो या इस कास्ट में उगाना चाहते हैं तो उसको ले जाकर के अपना प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या संरक्षित खेती उसमें कर सकते हैं। तीसरा जो

0: है कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो इस
1: हमारे
0: टेक्नोलॉजी
1: छोटे
0: के, हाँ
1: किसान
0: छोटे
1: जो
0: किसान
1: है।
0: हैं, तो छोटे किसान भाई जो हमारे इस तकनीकी को अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी तकनीकी है, वो है लो टनल पॉली हाउस का
1: अच्छा
0: एक छोटा सा स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अर्ली और थोड़ा सा लेट हम कर सकते हैं। जैसे अभी
1: अच्छा
0: हमने फूल गोभी की बात की,
1: हाँ हाँ
0: अब ऐसे हम अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हम करते हैं लौकी कद्दू की, जिसकी हम
1: हाँ
0: बात
1: हाँ
0: करते हैं कद्दू को,
1: ठंडे के
0: हाँ
1: मौसम
0: ठंडी का मौसम
1: आने से
0: नहीं,
1: पहले कुछ
0: ठंडे
1: महीने
0: गर्मी
1: पहले।
0: आने से पहले
1: अच्छा
0: कद्दू जो है हमारा फरवरी मार्च, मार्च में तो सबके, मार्च अप्रैल में जो है सारा का सारा कद्दू जो है मार्केट में आ जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: जब सारा का सारा कद्दू मार्केट में आ जाता है मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में कद्दू का रेट जो है दो
1: बढ़
0: रुपए
1: जाता
0: एक रुपए हो जाता है,
1: अच्छा
0: कोई नहीं पूछता है। लेकिन वही कद्दू अभी मार्केट में जब तक फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीने तक अगर निकल गया फरवरी मार्च तक हमारा कद्दू जो है, तो वो कद्दू 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए लौकी तक, कुछ कद्दू तक
1: बेमौसम
0: बेच
1: में
0: जाते,
1: उसकी जो दाम है वो बढ़ जाती
0: बढ़
1: है।
0: जाती है। तो थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया इसमें, थोड़ा सा हमने
1: हाँ
0: क्या किया, ये जाड़े मतलब गर्मी वाली फसल है, हमने इसके नर्सरी को क्या किया दिसंबर में ही लगा लिया।
1: जी
0: और दिसंबर में लगाने के लिए हमारा भी जो हमने स्ट्रक्चर जो बताया कि लो टनल पाली हाउस, जो किसान भाई जिसको अडाप्ट कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उस को आप जो है लो टनल पाली हाउस में 1 महीना पहले डाल दीजिए।
1: अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि हमारे जो छोटे किसान हैं जो उस ज्यादा मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें लागत ज्यादा लगती है, तो उनके लिए इनमें से कौन सी तकनीक ज्यादा उचित रहेगी?
0: हाँ ये यही मैं बता रहा था कि जो हमारे छोटे किसान भाई है उनके लिए सबसे ज्यादा और सबसे उपयुक्त तकनीकी जो है वो जो है जो नेचुरल कंडीशन कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम भी इसको कहते हैं, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम इसको कहते हैं, या लो टनल पॉली हाउस बोलते हैं।
1: जी
0: तो ये लो टनल पॉली हाउस को इसको किसान भाई हमारे जो इसको अडाप्ट कर सकते हैं, और इस लो टनल पॉली हाउस को अडाप्ट करके इससे अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बताया कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है माइल्ड, या थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, इतना टेम्परेचर होता है तब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम जो है समय से थोड़ा सा पहले हम उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारी कास्ट बढ़ जाती है, कास्ट कर रहे जो उसकी इनकम, उसकी आय हमारी जो है बढ़ जाती है।
1: और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो मुख्य मुद्दा होता है या फिर उनका एम होता है कि बेमौसमी सब्जियों को गाना, मतलब ज़्यादा आय उन्हें मिलना, यानी कि बेमौसमी सब्जियों के दाम ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बाज़ार में, और उस इनसे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो थोड़ी मजबूत होती है। तो ये थोड़ा फ़ायदा है हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग भी है, रिस्क भी इसमें उठाना पड़ता है, क्योंकि जलवायु उन सब्जियों के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसमें आपको इन जलवायु के, जैसा कि हमारे सर ने बताया यहाँ पर, कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन सब्जियों के लायक आपको खुद बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सावधानियों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो इन बेमौसमी सब्जियों को उगाने में हमारे किसान भाइयों को, अगर वो चाहते हैं उगाना, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है, कहें तो दुगुना तिगुना पैसे मिलते हैं उन्हें, हाँ, तो इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई ऐसा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए?
0: देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो किसान भाई प्रोटेक्टेड या संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहते हैं, बेमौसमी सब्जियां उगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस किसान भाई के अंदर थोड़ी बहुत तो दक्षता होनी चाहिए सब्जी उगाने की, थोड़ा बहुत सब्जी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी के लिए किस तरह की लगभग जलवायु चाहिए,
1: मिट्टी
0: और
1: चाहिए।
0: हाँ अगर किस तरह की मिट्टी चाहिए, किस तरह की जलवायु चाहिए, तो इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कि बिना इसके ज्ञान के आप जानेंगे नहीं कि इसमें फूल किस मौसम में आता है, या कैसा तापमान चाहिए फूल आने के लिए, कैसा चाहिए इसको जमने के लिए, कैसा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, पानी कितना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाई को इससे वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से उसको जानकारी उस फसल के बारे में जिसको आप लगाने जा रहे हैं अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज,
1: नवसिखिए नहीं होना,
0: हाँ,
1: चाहिए बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए
0: थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं से जानकारी या ट्रेनिंग आपको लेना आवश्यक है, बिना ट्रेनिंग के आप मत शुरू करिए, अदरवाइज आप जो है
1: जो मौसमी सब्जियां हैं उन्हें उगाइए।
0: दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप संरक्षित खेती की तरफ जाना चाहें तो उसमें एक वर्ड होता है कि ऐसी सब्जी उगाइए जो मात्रा में भले कम हो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा हो, हाई प्राइस वैल्यू जिसको कहते हैं, लो वैल्यू हाई कॉस्ट जो है जो वैल्यू कहते हैं, जिसको इसे मान लिया आपका इसे ब्रोकली है, ब्रोकली आप उगाते हैं तो आप महंगे रेट से बिकती है, या शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च उगाते हैं तो आपको काफी महंगे रेट से बिकता है, या चेरी टमाटर है, टमाटर है, तो कुछ मतलब ऐसे आपको सब्जी उगाना होगा, ऐसे सब्जी को चुनना होगा जो भले हम कम उत्पादन क्यों न करें।

0: लेकिन उसकी कीमत बाजार में हमको ज्यादा, कभी भी आप शिमला मिर्च खरीदने जाते हैं तो 40-50 से नीचे
1: जी जी जी
0: नहीं मिलता है। तो ऐसे हाई
1: हर साल, मतलब पूरे साल वो बिकती है।
0: तो लो वॉल्यूम और हाई प्राइस वाली क्रॉप हमको सेलेक्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, जब टमाटर की आप खेती करने जा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें जो है कभी भी ये सीमित बढ़वार वाली जो है टमाटर नहीं लेना है। टमाटर दो तरह की होती है जैसे बता दूं किसान भाइयों को, कि इसमें एक होती है सीमित बढ़वार वाली, एक होती है असीमित बढ़वार वाली। तो सीमित बढ़वार वाली होती है उसमें एक बार ही फूल फल सब आ करके वो खत्म हो जाती है, तो इसको संरक्षित खेती में ले जाने से आपको कोई फायदा
1: नहीं है,
0: नहीं होगा। तो खासकर टमाटर के केस में जो है आप जो है सीमित बढ़वार वाली सब्जियों को ही चुनेंगे, और सीमित बढ़ वाली सब्जियां में आपकी बढ़ती रहेगी, उस पे हर तीसरे नोट पे उसमें फूल आते रहेंगे, आपको फल मिलता रहेगा। तो इससे आप जो है लंबे अवधि तक आप फ्रूट की हार्वेस्टिंग या फल की कटाई आप जो है कर सकते हैं, और इससे अधिक से अधिक आप जो है लंबे समय तक इसे आप फायदा ले सकते हैं। ये चीजें जो है, और जब भी एक चीज और आपको बता दूं किसान भाइयों कि जब भी आप तकनीकी बेमौसमी सब्जियों की खेती करने की तकनीकी के बारे में आप जा रहे हैं या उसको बेमौसमी सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, तो उसका तकनीकी ज्ञान पहले आप पूरी तरह से ले लें। जब तक आप पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान नहीं लेंगे तो बात वही होगी कि आप जो है कुछ भी, मतलब हाँ कुछ भी, हाँ आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे हमने इतना महंगा स्ट्रक्चर लगाया और फायदा हमको
1: नहीं,
0: कुछ नहीं हुआ। तो इसके पहले कि आप जो है बेमौसमी सब्जियों की खेती करना शुरू करें, आप विश्वविद्यालय में आकर के या कहीं भी जाकर के, कृषि विज्ञान केंद्र है, विश्वविद्यालय है या और भी अन्य किसी प्लेस पे जहां भी इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, गवर्नमेंट संस्थानों में भी आप जाकर के वहां से ट्रेनिंग ले लें, उसके उपरांत ही इस पे खेती करें। और इसकी खेती करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है
1: जी जी।
0: अब तो आप अगर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे बढ़ावा दे रही है, को आपको 50% सब्सिडी भी करवा रही है
1: जी।
0: आप जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, सपोज करिए कोई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेमौसमी सब्जी कोई तकनीकी आप चुनने जा रहे हैं, तो जहां लो टनल पाली हाउस की हमने बात किया, मान लीजिए 30,000 रुपए का उस पे खर्चा आ जाता है तो 15,000 रुपए गवर्नमेंट देगी
1: जी।
0: 15,000 रुपए आपको लगाना है, जहां 2-2.5 लाख रुपए खर्च आते हैं
1: 50% सब्सिडी सरकार की,
0: 50% सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है आपको, बस अपने और क्या चाहिए, और आपको मेहनत करना है और उसको मेहनत करके जानकारी हासिल करके उससे ज्यादा से ज्यादा आपको आमदनी हासिल करना।
1: तो श्रोतागणों और हमारे किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास बेमौसमी सब्जी को उगाने की तकनीक के बारे में, और इसके अलावा आपको मेहनत करना है, और सरकार तो आपके साथ है ही, हमेशा हमारे किसान भाइयों के साथ सरकार रहती है। 50% आपको सब्सिडी भी मिल रही है, और जानकारी आपको लेना है तो आप हर क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी अच्छे तरीके से और पूरे विस्तार में ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जब इतनी बात हो गई है तो एक बार फिर फायदे के बारे में बात हो जाए, यानी कि बेमौसमी सब्जियों, अगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी कि बेमौसमी सब्जियां अगर किसान भाई उगाना चाहते हैं तो क्या क्या फायदे हैं इसके।
0: देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अगर बेमौसमी सब्जियां उगाते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज इसमें जो निकल के आती है कि आपका जो प्राइस है, जो मेन सीजन में उगाते हैं ग्लट हो जाती है और आपकी प्राइस नहीं मिल पाती, आप सब्जी को बाजार में फेंक के चले आते हैं, तो एक तो फेंकने से आपको फुर्सत हो गई, आप फेंकने से फुर्सत हो गई, दूसरी उसी सब्जी से, सेम सब्जी को अगर आपने बेमौसम में लगा लिया तो उससे आपको हाई प्राइस मिल जा रही है, आपको उसकी वैल्यू मिल जा रही है, और कम क्षेत्रफल से देखिए ना आप कितना जो है
1: लो वॉल्यूम,
0: हाँ लो वॉल्यूम हाई क्रॉप तो लेते हाई वॉल्यूम आप जो है, और लो वॉल्यूम हाई प्राइस का क्रॉप आप लेते ही हैं, और दूसरी फायदा ये है कि आप जो देखिए ना कम क्षेत्रफल में आपने पोली हाउस का क्षेत्रफल बहुत कम लिया है, अगर 1 एकड़ भी लिया है या 500 स्क्वायर मीटर आपने अगर ले लिया है तो कितना कम क्षेत्रफल है, 500 स्क्वायर मीटर आपका आपने पोली हाउस बनाया है उससे आप साल भर इनकम कर रहे हैं, तो आपकी प्रति वर्ग मीटर जो है या कहिए कि प्रति व्यक्ति आय जो है उससे आपकी बढ़ जाती है, उसकी उत्पादकता आपकी बढ़ जाती है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर आप ओपन कंडीशन में रहते हैं तो उसमें तमाम तरह के मौसम की मार पौधे को झेलनी पड़ती है
1: जी जी,
0: बीमारियां हैं, रोग है, इंसेक्ट पेस्ट है, तमाम उसमें आते रहते हैं जिससे हमारे फ्रूट की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। मेन सीजन में आप उगाते हैं, फील्ड में उगाते हैं तो मेन सीजन में हमारे फूड की क्वालिटी खराब हो जाती है, लेकिन अगर अभी इसमें बेमौसमी सब्जियों में लगाते हैं और संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर आप करते हैं

0: प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है क्वालिटी प्रोड्यूस
1: जी,
0: क्वालिटी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होता है। जब क्वालिटी प्रोड्यूस ज्यादा होगी तो आपकी मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो इससे आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, पर यूनिट एरिया आपका प्रोडक्शन बढ़ गया और आपके प्रोडक्ट का जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल गया। आप उसको मार्केट में फेंकने के बजाय आपने उसका उपयुक्त
1: पैसा
0: निकाल लिया जो है। ये तमाम सारे फायदे हैं इसके जो है।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना ना क्या क्या फायदे हैं इसके, और बहुत अच्छे फायदे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप अगर नए हैं इस किसानी खेती में तो आप बिल्कुल बेमौसमी सब्जियां उगाने का ना सोचें, अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बीच बीच में आपको बताया कि आपको अगर नॉलेज नहीं है इसके बारे में तो बिल्कुल ना उगाएं। और उन्होंने फायदे के बारे में बताया कि यानी कि कम क्षेत्रफल में आपको अच्छे दाम मिल जाते हैं इसके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपसे इन सारे विषयों पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी भी मिली बेमौसमी सब्जियों के बारे में और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्हें उगाने के समय, हमारे किसान भाइयों को सावधानी क्या बरतना चाहिए, साथ ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ ही तकनीक के बारे में जाना, जो हमारे छोटे किसान हैं जो ज़्यादा मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है तो उन्हें कौन सी तकनीक अपनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना डॉक्टर साहब आपसे। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो हमारे किसान भाइयों और हमारे लिसनर्स और मेरे मित्र, आप सभी से अगली बार फिर से मुलाकातें होंगी, लेकिन फिलहाल तो बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी। उन्नत कृषि,

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज उन किसान भाई बहनों के लिए बातें होने वाली है जो श्री अन्न की खेती करते हैं और वो परेशान होते हैं कि श्री अन्न में बहुत अलग अलग प्रकार के कीट लगते हैं और किस प्रकार से उन कीटों को पहचाने, उनका प्रबंधन कैसे करें। ये सारे सवाल जो आपके मन में आते हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किरण कुमारी। आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम, आप हमें ये बताइए कि श्री अन्न के कौन कौन से कीट होते हैं?
1: श्री अन्न में जो कि काफ़ी ही पोषक अनाज है और इसमें जो है ज्वार, बाजरा, रागी और कंगनी इत्यादि फसल आते हैं और लगभग इन सभी पर एक ही प्रकार के कीट लगते हैं। और ये जो कीट हैं वो ज्वार का तना छेदक, प्ररोह मक्खी, बाली बग, पत्र लपेटक, गुलाबी तना छेदक, लाही एवं बाली मिर्च, ये जो कीट हैं और ये सारे कीट जो हैं जितने भी श्री अन्न हैं वो उन पे इसका प्रकोप होता है।
0: जी मैम, तो जो आपने अभी कीटों के नाम बताए उन कीटों के बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। और मैम, शुरुआत करते हैं ज्वार के तना छेदक कीट के बारे में, आप हमें बताइए शुरुआत में।
1: ज्वार का तना छेदक कीट, वो उसका भी जो वयस्क होता है वो मौत होता है, जिसे पतंगा भी कहते हैं, और ये हल्के पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंख तिनके के रंग के होते हैं, यानी क्रीम कलर का, और इसके जो पंख होते हैं उसके अंतिम छोर पर दो पंक्ति में काले बिंदु पाए जाते हैं, और इसका जो नर है उसके पिछले पंख पर जो धुएंधार कलर का, मतलब थोड़ा डल कलर का होता है, और मादा में सफ़ेद कलर का होता है, और मादा के उदर भाग के अंतिम भाग में बालों का एक गुच्छा होता है। इस तरह से इसकी वो पहचान करते हैं कि ये ज्वार तना छेदक है। और इसका ये जो ज्वार तना छेदक है उसका जो पिल्लू है वही इसको हानि पहुंचाता है, और इस जो ये पिल्लू है वो पत्तियों को खुरच खुरच कर खाता है। बाद में फिर यही सुई के समान छेद करके खाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे जो तना है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ज़मीन के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से बीज का जो होता है भाग उसको खाते हैं, और जिससे कि पत्तियां सूख जाती हैं, और जिसे खींचने पर सूखी हुई जो पत्ती होती है बीज वाली उसको खींचने पर वो आसानी से खींचा जाता है। ये इसको डेड हर्ट कहते हैं, या मृत कल्ला भी इसको कहते हैं। और ये जो इस तरह से जो डेड हर्ट बन जाता है और तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ये गांठ के से टूटकर गिर जाते हैं। और इसके बचाव हेतु जो है कीट ग्रस्त पौधों को जिसमें डेड हर्ट दिखाई दे रहा है उसको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूठ हैं उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में उसके जो पिल्लू हैं और पीपा हैं वो उसमें रहते हैं। इसलिए कटाई के बाद जिस खेत में अगर इसका प्रकोप हो गया है तो कटाई के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है, ठूठ है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो इसके वयस्क हैं उस पर आकर्षित हों, और वो चूँकि लाइट ट्रैप के नीचे पानी आप रख दें तो उसमें वो गिरकर मर जाएंगे। फिर तना छेदक का जो ये कीट से बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप भी जो 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, और प्रकोप अधिक हो जाए तो 2 से 3 पत्ती का जब पौधा हो जाए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करें, या फ्लुवेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें, और इस तरह से इसका बचाव कर सकते हैं।
0: जी मैम, अब मैम आप हमें प्ररोह मक्खी के बारे में बताइए कि प्ररोह मक्खी की क्या पहचान होती है और इसके प्रबंधन के लिए क्या करें?
1: हाँ, ये जो प्ररोह मक्खी है इसे सूट फ्लाई भी कहते हैं, और ये एक तरह की मक्खी है जो

0: घरेलू मक्खी होती है उससे आकार में थोड़ी छोटी होती है, और इसमें जो है इसके बॉडी के ऊपर स्पाइन नहीं होता है, थोड़ा मोटा बाल, घना बाल पाया जाता है, और इसका जो नर होता है उसका एंटीना जो है पीला कलर का होता है, ये इसकी पहचान है। और ये इसका जो पिल्लू होता है वो तना में छेद कर वो खाता है, और ये भी तना में अंदर जाकर बीज के पार्ट को खाता है, और जिससे कि ऊपर वाली पत्ती सूख जाती है, जो ऊपर में जो बीज की पत्ती है, तो इसलिए ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, ये ज्वार तना छेदक जो है वो भी डेड हर्ट काउज करता है, और प्ररोह मक्खी ये भी डेड हर्ट काउज करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो प्ररोह मक्खी है वो जब पौधे करीब 6 से 8 इंच तक के रहते हैं तभी तक उसका प्रकोप होता है, उसके बाद नहीं होता, और ज्वार तना छेदक का थ्रू आउट द पूरे फसल तक इसका प्रकोप होता रहता है। दोनों में यही अंतर है। और इस कीट से बचाव हेतु जिन पौधों में जो डेड हर्ट पाया गया हो तो उनको उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और बीजोपचार भी करना चाहिए इस कीट से बचने के लिए। तो क्लोरपाइरीफॉस 3 ml या इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से कोई एक कीटनाशी से बीजोपचार कर सकते हैं। तो अगर इमिडाक्लोप्रिड लेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड का 48 FS का 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए, और प्रकोप खड़ी फसल पर अधिक हो जाए तो रासायनिक कीटनाशी में फ्लुविंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर पानी में, या डेल्टा मेथ्रिन का 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम ज्वार बाली कीट से क्या हानि होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: ज्वार बाली बग ये जो है ये पतले हरे रंग का होता है, कभी कभी ये धान के ऊपर भी दिखाई देता है, और इसका शरीर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, और ये जो है ज्वार धान पे भी, मक्का रागी इत्यादि को भी हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है इसके वयस्क और जो इसके शिशु होते हैं निम्फ, इसको बोलते हैं वयस्क, और इसके जो वयस्क होते हैं और निम्फ तो दोनों एक समान होते हैं, केवल निम्फ में इसके पंख नहीं होते हैं और वयस्क में पंख हो जाते हैं, बाकी रंग दोनों का हरा ही होता है। और ये जो है दोनों वयस्क और निम्फ यानी शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूस कर इसको बर्बाद करते हैं, और जिससे पत्तियां सूख जाती हैं, और किसी किसी में बाली में तो दाने ही नहीं लगते हैं। और इसके बचाव हेतु फसल पर नीम बीज चूर्ण, जो नीम का बीज है उसका पाउडर बनाकर भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 1 ml या थायोमेथेक्सम 25 WG का 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम पत्र लपेटक कीट किस प्रकार के होते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करें?
0: पत्र लपेटक कीट जो है ये भी, इसका वयस्क जो है वो मौत पतंगा होता है, और जिसके पंखों पर भूरी धारियां होती हैं और सफ़ेद जो शरीर इसका सफ़ेद होता है, और उस पर भी जो है हल्की भूरी धारियां होती हैं, यानी इसके पंख और शरीर दोनों पे धारियां होती हैं। और ये भी ज्वार है, मक्का है, बाजरा, इवन जो गन्ना है उसको भी हानि पहुंचाते हैं, और इसके जो पिल्लू हैं वो भी शुरू में इसके पत्ती को खुरच खुरच कर खाते हैं, बाद में जैसे जैसे ये जो पिल्लू के साइज मतलब बढ़ते हैं, इस पिल्लू में जो इसका जैसे विकास होता है तो पत्तियों को क्या करते हैं कि मोड़ करके रेशम सी डोरी जैसा पत्तियों को मोड़ देते हैं और उसके अंदर घुसकर खाते रहते हैं, और पत्तियों की जो नोक होती है वो सूख जाती हैं और पत्तियां सफ़ेद भी पड़ जाती हैं, और देखने से जैसे मालूम होता है कि वो कागज़ हैं, क्योंकि अंदर अंदर वो क्लोरोफिल को खा जाते हैं, और एक पिल्लू लगभग 5 से 6 पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती हैं। और इस कीट से बचाव हेतु जो मुड़ी हुई पत्तियां हैं, जो पत्र लपेटक पत्र ये लपेटी हुई जो पत्तियां दिखाई देती हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए।

0: और अगर ये बायोपेस्टिसाइड के रूप में नीम बीज चूर्ण का भुरकाव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में पिप्रोनिल 1 ml का 3 प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम एक और कीट लगता है जिसे कहते हैं गुलाबी तना छेदक कीट।
0: हाँ, ये भी तना छेदक जो है वो जैसे ज्वार का जो तना छेदक कीट है उसी की तरह ये भी हानि पहुंचाता है। अंतर ये है कि इसका जो पिल्लू होता है वो गुलाबी रंग का होता है और ये भी उसी तरह से शुरू में तो इसके जो है पिल्लू पत्तियों को थोड़ा सा खुरच कर खाते हैं, जैसे ये बड़े हो जाते हैं तने के अंदर घुसकर उसके बीच वाले पार्ट को खाते हैं और इस तरह से पत्तियां सूख जाती हैं और डेड हार्ट ये भी काउच करता है। तो इसका ये भी जो है ज्वार मक्का बाजरा रागी जई गेहूं में भी दिखाई देता है कभी कभी, वो तो धान में भी ये इसको भी हानि पहुंचाता है। और ये जो है जहाँ से ये प्रवेश करता है वहाँ पर इस पिल्लू का मल दिखाई देता है और इस तरह से ये जो जिस पौधे पे वो खाते हैं वहाँ वो पीले पड़ जाते हैं, पौधों की बढ़वार जो है वो भी रुक जाती है और जब अंदर के पार्ट को खाते हैं तो ये भी जो है डेड हर्ट जो मृत केंद्र बनाते हैं जिसे खींचने से आसानी से खींचा जाता है, ये इसकी पहचान है। और इसका बचाव के लिए मई जून महीने में गहरी जुताई कर देना चाहिए और ये लाइट ट्रैप जो है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक से बचाव हेतु ट्रैप भी लगाना चाहिए जो 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से इसको लगाना चाहिए। और अगर कीटनाशी का प्रयोग करना हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG का 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में या फ्लुबेंडामाइड 480 SC का 1 ml प्रति 5 लीटर में या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन जो मिक्सचर कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, मैम लाही कीट की पहचान कैसे करें?
0: लाही कीट ये हरे काले रंग का जूं जैसा उसको कहते हैं, ये पौधों का जूं है और ये माहू मेचा एफिड के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है अचानक से 6-7 दिन के अंदर में इसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि जो है ये 6 से 7 दिन में इसके वयस्क बन जाते हैं और फिर ये इस तरह से वो इसकी जो है वो अंडे नहीं देती है बल्कि मतलब शिशु ही पैदा करते हैं, इसलिए इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये तनों के निचले हिस्से में समूह में रहते हैं, तनों से रस चूसते हैं, पत्तियों से भी रस चूसते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। विकसित अवस्था में जब इसका प्रकोप होता है तो जब दाने सिकुड़ कर छोटे रह जाते हैं, दाने कभी कभी लगते भी नहीं हैं, इस तरह से इसका जो है वो हानि करते हैं। और इसका बचाव के लिए ये एक लेडी बर्ड बिटल जो कि नारंगी रंग का होता है, इस पे काले धब्बे भी होते हैं या काले लहरदार धब्बे होते हैं, ये इस एफिड को खाते हैं। यानी ये लेडी बर्ड बिटल जो है वो मित्र कीट है, ये जो एफिड है लाही है जो चूसकर जो खा रहे हैं हानि पहुंचा रहे हैं उनको ये खाते हैं। तो इनको देखने जब भी खेत में अगर रहे तो इसका बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके लिए रासायनिक कीटनाशी का कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मित्र कीट ये जो लेडी बर्ड बिटल है जो इन लाहियों को खाते हैं वो मर जाएंगे। तो इसके लिए अगर छिड़काव करना भी है तो कोई भी नीम आधारित दवा का 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए या येलो स्टिकी ट्रैप लगाना चाहिए। ये कोई डब्बा हो उसको पेंट करके और उसको लकड़ी गाड़ कर खेत में और उसके उस पर उल्टा लगा देना चाहिए जिससे कि उस पर ग्रीस पे वो आकर जो है लाही सट जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा उपाय है।
1: जी मैम, मैम बाली मिर्च ये श्रीअन्न के फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है और प्रबंधन के लिए क्या करें?
0: हाँ, ये जो मिर्च है वो ये भी छोटी मक्खी के जैसा होता है

0: छोटी मक्खी या मच्छर कहें, दोनों के बीच का जैसा वो छोटा होता है, और इस कीट का जो उदर भाग होता है वो चमकीला नारंगी रंग का होता है, और पंख मक्खी जैसा पारदर्शी ही होता है। और ये जो मिज है वो फूलों पर अंडे देते हैं, और फूलों के पराग गिर जाते हैं, दानों से उजले पीपा के कोष दिखाई देते हैं, मतलब इस जो पिल्लू होते हैं वो बाद में पीपा बनते हैं, तो उसका जो कोष होता है वो भी दानों की जगह दिखाई देता है, और जो पिल्लू दानों को खाते हैं वो दाने खकरी हो जाते हैं। और बाली मिर्च से बचाव के लिए लाइट ट्रैप भी लगाना चाहिए। नीमाधारित कीटनाशी नीम बीज चूर्ण अर्क का 5% का छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी में इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC का 0.5 ml यानी आधा ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% दवा का जो कीटनाशी है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
1: जी मैम, तो ये आपने जिस प्रकार से बताया कि श्रीअन्न में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा।
1: तो उम्मीद है हमारे किसान भाई बहन जो श्री अन्न की खेती करते हैं उनके लिए हमारी आज की ये चर्चा काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो किसान भाई बहनों, जो भी बातें मैम ने बताई उन बातों का आप ध्यान रखें, और साथ ही जिस प्रकार से मैम ने कहा कि हमारे कुछ जो कीट होते हैं वो मित्र कीट भी होते हैं, तो उन कीटों का बचाव करते हुए ही आपको प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान, और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
4: कब से?
3: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
4: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
3: खांसी?
4: हाँ।
3: इसको तो एक आध महीना हो गया।
4: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
3: डॉक्टर, खांसी तो है।
4: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
4: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जाँच कराइए।
3: ठीक है।
4: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
8: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
7: और लाइट बिल के,
8: अब 0 रुपए कैसे दूं?
7: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
12: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
11: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
12: आपकी सेहत की बातें,
11: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
12: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
11: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
12: वो कहाँ पर?
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
12: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 19 से 22 सितंबर के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। हालांकि जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 70% रहने की संभावना है और अनुमान है कि इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दे, निचली भूमि वाले धान की फसलों में 3 से 7 दिनों तक जल भराव और आंशिक क्षति की स्थिति में तत्काल पानी निकाले और क्षतिग्रस्त स्थानों पर पुनः रोपाई करे। ध्यान रखें कि रोपाई के लिए उपलब्ध स्वस्थ पौधों का ही उपयोग करें। पानी निकलने के बाद जरूरी पौध संरक्षण उपाय करें। जो धान की फसलें लंबे समय तक पानी में डूबी हुई रही, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, तो ऐसे में खेत की स्थिति और बुआई का समय ध्यान में रखकर सरसों, मसूर, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलें आप बो सकते हैं और जहां पौधों की संख्या पर्याप्त है वहां फसलों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जल निकासी, गैप फिलिंग और पोषक तत्व प्रबंधन जरूर करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसल की तैयारी कर ले। कम वर्षा की स्थिति में खरपतवार की वृद्धि बढ़ जाती है, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें और निराई गुड़ाई करने के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और 20 पायरीबेक सोडियम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, साथ ही पायरेजोस ल्यूफ्रान 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर का मिश्रण खेत में हल्की नमी रहने पर स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद नाइट्रोजन डालना जरूरी होता है। जो खरीफ मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मक्का से अतिरिक्त पानी निकालने और जो फसल बची है उन्हें बनाए रखें। गंभीर क्षति होने पर पुनः बुआई कर सकते हैं और आप उपयुक्त रबी फसल की भी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, खरीफ मक्का में तना छेदक के प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। तना छेदक से प्रभावित पौधों की मध्य कलिका सूख कर मुरझा जाती है और खींचने पर आसानी से निकल आती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे तो कार्बोफ्यूरान 3G की 7 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से गाभा में प्रयोग करें। जो अरहर की खेती करते हैं उन्हें बता दे, अरहर में जरूरत के हिसाब से गैप फिलिंग, छटाई और निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली अरहर के लिए खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दे, फूल गोभी की पूसा, हीम ज्योति, D96 और पंत शुभ्रा जैसी मध्य अवधि वाली किस्मों की बुआई कर ले। 350 से 400 ग्राम बीज और 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर दे। साथ ही 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटाश और 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स और 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की नियमित निगरानी करते रहे और इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में साफ मौसम होने पर इमिडाक्लोप्रीड 30.5 SC की 0.25 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करना चाहिए जब मौसम साफ हो। जल जमाव से बचाव के लिए लताओं को बांस की मचान यानी कि ट्रेलिस पर चढ़ाकर भूमि से ऊपर रखें। जो मिर्च की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, मिर्च की उठी हुई क्यारियों पर बुआई करें। मिर्च की मुक्त परागित किस्में हैं अरका लोहित, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौरव, पंत C1 और पंजाब लाल। वहीं मिर्च की संकर किस्में हैं अरका श्वेता, कोण कंकृति, अरका मेघना, अरका हरिता, काशी सुर्ख, काशी अगेती और काशी तेज। मुक्त परागित किस्मों के लिए बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। वहीं संकर किस्मों के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। बीजों उपचारित करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। रोपाई 50x45 cm की दूरी पर करें और 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, पपीते की बीज बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसान भाई बहनों, अगस्त के मध्य से ही बीज बुआई शुरू कर देनी चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 300 से 350 ग्राम बीज की जरूरत होती है। बीजों को बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ले। 150 गेज पॉलिथिन की 20x15 cm आकार की थैलियों में बोएं। पौधशाला में 7 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 15 सेंटीमीटर

ऊंची क्यारियों में बीज बोएं और आपको बता दें कि 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई होने पर पौधों को रोपाई के लिए तैयार कर लें। पपीते की अच्छी किस्में हैं पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डेलीसियस, सीओ 7, अर्का सूर्या और रेड लेडी। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें पशुओं में पीपीआर, एफएमडी यानी कि खुरपका, मुंहपका और एचएस यानी कि गला घोटू रोगों का खतरा अधिक रहता है, इसलिए पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, उन्हें साफ और सूखा रखें और बीमार पशुओं को

पशुओं के बाड़ों को साफ और सूखा रखें और हर रोज सफाई के बाद चूने के पाउडर का छिड़काव करें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: नाइन्टी पॉइंट एट FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए कि अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ ना कोई ट्रेन है और ना जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा।
2: जी,
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
2: जी,
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी, ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी।
2: जी,
0: लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए।
2: जी।
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओं, ये क्रांतिकारी

0: डोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है
1: जी।
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई
1: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
1: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओ, अब दुनिया के पास तापमान को मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं, बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहां पहुंचता है जहां वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओ, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी। और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है, जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, so tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger, lion,
2: yes,
3: monkey,
4: birds of different kind,
2: very nice,
4: camel, giraffe, and so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता। जंगल के जानवर उससे बहुत

परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी, जहाँ कहीं भी वो चींटियों को देखता कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: हाथी बोला,
1: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ।
0: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिया का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।

0: किसी एक दिन
1: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। हाँ, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा,
2: देखो डाकिया आया।
1: चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
3: डाकिया अंकल,
4: आओ बेटा।
3: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
4: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
3: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
4: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
3: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
4: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
3: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
4: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
3: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
4: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहां से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
3: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
4: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
3: ओ आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
4: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
3: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
4: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
3: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, धन्यवाद डाकिया अंकल।
4: धन्यवाद चंचल।
5: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता जगबंधु
6: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ, जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।